सुप्रभात, हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज सोमवार है, शक संवत 1948 की ज्येष्ठ माह की पांचवी तिथि, तदनुसार 25 मई 2026। इस समय हमारे स्टूडियो की घड़ी में प्रातः के 5:56 हो रहे हैं। अब हमारी आज की प्रसारण सभा आरंभ।

0: ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। सवेरे के 6 बजने को हैं। थोड़ी ही देर में आप समाचार सुनेंगे, जिसे हम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले कर रहे हैं।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं फरहतनाज। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में 66 विशिष्ट लोगों को वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगे। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण है। शेष पद्म पुरस्कार बाद में समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। कल नई दिल्ली में अमेरिका से 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। उन्होंने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में भावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमरीका रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधि मंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाना चाहिए।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
1: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के लिए विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। नई दिल्ली में जनजातीय सांस्कृतिक समागम में गृहमंत्री ने कहा कि समान नागरिक संहिता से किसी भी जनजातीय अधिकार का उल्लंघन नहीं होगा। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजातीय कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से इस जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ, कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
1: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार देबांशु पांडा ने फलता विधानसभा सीट जीत ली है। श्री पांडा ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी CPIM के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों के अंतर से हराया, जिन्हें 40,645 वोट मिले। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फलता विधानसभा पुनर्चुनाव में रिकॉर्ड अंतर से जीत दर्ज करने पर देबांशु पांडा को बधाई दी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड CBSE ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं की स्कैन प्रति प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा है कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया है। आज उत्तर पुस्तिका की आखिरी स्कैन प्रति उपलब्ध करा दिए जाने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित हो जाएगी। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने इस महीने की 28 तारीख को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा CUET UG 2026 की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा है कि सरकारी अधिसूचना के अनुसार ईद उल अजहा बकरीद की तिथि में बदलाव को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। देश के मध्य और उत्तर पश्चिम हिस्सों में भीषण लू के कारण सामान्य जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है और तापमान औसत से काफी ऊपर पहुंच गया है। कई क्षेत्रों में तेज गर्म हवा चलने से दिन में भीषण गर्मी पड़ रही है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सवेरे के 6:05 हुए हैं और अब आप सुनेंगे आज का चिंतन। शीर्षक है असफलता ही सफलता बहुत से कामों में। वाचन स्वर रजनीश गुप्ता का।
4: बहुत से कामों में हमें सफलता नहीं मिलती तो इसका कारण ये है कि हम उन कामों को पूरे मन से नहीं करते। काम उठाया, थोड़ा सा किया, मन में दुविधा पैदा हो गई, यदि ये काम पार ना पड़ा तो नहीं, इसे यूं नहीं, यूं करे तो ठीक रहेगा। उस तरह जरा सा किया कि मन फिर डावाडोल हो गया। काम के लिए आवश्यक है कि पहले अच्छी तरह से सोच लेना चाहिए, फिर उसे आरंभ करना चाहिए। एक बार आरंभ कर दिया तो उसे अपनी पूरी शक्ति से करना चाहिए। जिसकी निगाह इधर उधर भटकती रहती है वो अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर सकता। आपने देखा होगा तांगे में घोड़े की आंखों के दोनों ओर पट्टे बांध दिए जाते हैं। क्यों? इसलिए कि उसे सामने का ही रास्ता दिखाई दे, वो दाएं बाएं ना देखे। पांडवों के तीर चलाने की परीक्षा लेने के लिए एक दिन गुरु द्रोणाचार्य ने सब भाइयों को इकट्ठा किया, बोले, देखो वो सामने पेड़ पर सफेद रंग की एक नकली चिड़िया है। उसकी आंखों में लाल रंग के दो रत्न लगे हैं। तुम्हें उसकी दाहिनी आंख पर निशाना लगाना है। सब भाई धनुष बाण लेकर तैयार हो गए। गुरु द्रोण ने एक एक से पूछा, तुम्हें वहां क्या दिखाई दे रहा है? किसी ने कुछ बताया और किसी ने कुछ बताया। जब अर्जुन की बारी आई तो उसने बताया, गुरुदेव मुझे तो उस चिड़िया की दाई आंख के सिवा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इतनी थी अर्जुन की एकाग्रता, तभी तो वो बाण चलाने में बेजोड़ थे। एकाग्रता से आदमी को अपने काम को अच्छी तरह से करने का मौका मिलता है, साथ ही उसका संकल्प भी पक्का बनता है। एक ही साधे सब सधे। किसी महापुरुष ने ठीक ही कहा है, प्रतिभा के माने होते हैं 90% पसीना बहाना और 10% प्रेरणा। दुनिया के काम मेहनत और एकाग्रता से ही पूरे होते हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि एक एकड़ भूमि की घास में इतनी शक्ति भरी होती है कि उसके द्वारा अनेकों मोटरें और चक्कियां चलाई जा सकती हैं। आवश्यकता बस उस शक्ति को एकत्रित करने की है। अगर जिंदगी में कोई बुद्धिमानी की बात है तो वो एकाग्रता, और अगर कोई खराब बात है तो अपनी शक्तियों को बिखेर देना। दुनिया में लोगों में शक्ति की कमी नहीं है, लेकिन वे अपनी उस शक्ति को केंद्रित करना नहीं जानते। बंधी हुई भाप बड़े से बड़े इंजनों को खींच कर ले जाती है, लेकिन अगर वो बिखर जाए तो बेकार चली जाती है।
0: अभी आप सुन रहे थे चिंतन। शीर्षक था असफलता ही सफलता बहुत से कामों में। वाचन स्वर रजनीश गुप्ता का। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
5: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
6: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
5: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
6: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
5: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, FM, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
6: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
5: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
0: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सवेरे के 6:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। पहले करते हैं मातृभूमि का वंदन।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।

आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।

कार्यक्रम चल रहा है भक्ति संगीत का वंदना। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर।

ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर, और आप सुन रहे हैं भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना।

अभी आप सुन रहे थे भक्ति संगीत का कार्यक्रम वंदना FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब सुनिए श्री रामचरितमानस गान।

श्री राम अवतार की पूरी कथा सुनाकर काकभुशुंडे उस प्रकरण की चर्चा कर रहे हैं जब उन्होंने प्रभु से भक्ति का वरदान मांगा था। उन्हें प्रभु की उस अविरल तथा निष्काम भक्ति की कामना थी जिसकी महिमा श्रुतियों तथा पुराणों में गाई गई है। एवमस्तु कहकर रघुनाथ जी कहते हैं, हे काक, तू स्वभाव से ही बुद्धिमान है, अतः ऐसा वरदान क्यों करना मांगता। तूने तो सभी सुखों का स्रोत मांग लिया। तेरे समान बड़भागी इस संसार में अन्य कोई नहीं जिस भक्ति को मुनिजन जप और योग की अग्नि में शरीर को जलाकर भी नहीं पाते, वही भक्ति तूने मांगी है। अब तेरे हृदय में सभी गुणों का वास होगा, भक्ति, ज्ञान, विज्ञान, वैराग्य, योग, मेरी लीलाएं और उनका रहस्य तू सहज ही जान जाएगा। माया से उत्पन्न होने वाले भ्रम अब तुझे नहीं व्यापेंगे। यह वरदान देकर प्रभु ने काकभुशुंडी को निज सिद्धांत की सीख दी। यह सारा संसार मेरी माया से उत्पन्न हुआ है, इसके सभी जीव मुझे प्रिय हैं, किंतु सबसे अधिक मुझे मनुष्य प्रिय है। उनमें भी वेद के अनुसार धर्माचरण करने वाले, उनमें भी वैराग्य धारण करने वाले, फिर ज्ञानी, ज्ञानियों में भी विज्ञानी, विज्ञानियों में भी अति प्रिय वो हैं जिन्हें केवल मेरी भक्ति का सहारा और भरोसा है।

अभी आप सुन रहे थे श्री रामचरित मानस गान FM 100.5 MHz पर। यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। अब प्रस्तुत है हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा।

आज रात्रि 10 बजे सुनिएगा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। रात्रि 9:10 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम स्पॉटलाइट। कार्यक्रम फिल्म संगीत आप सुन पाएंगे सुबह 10:02 पर, दोपहर 1:15 पर, शाम 7:40 पर, रात्रि 8:30 पर और रात्रि 9:30 पर। सुबह 7:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शैल संगीत, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे लता पांडे और साथियों की आवाज़ में कुमाऊनी लोकगीत। सुबह 8:30 पर आप सुनेंगे दैनिक सूचना पर कार्यक्रम नमस्कार देहरादून। सुबह 9:10 पर सुनेगा पीपल्स पद्मा और आकाशवाणी श्री चंद्र गोड़बोले और श्री रामचंद्र गोड़बोले और सुश्री सुनीता गोड़बोले के साथ। कार्यक्रम सेहत आप सुनेंगे सुबह 9:45 पर, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे थायराइड लक्षण कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर अश्विनी शर्मा से वार्ता। कार्यक्रम लोक संगीत आप सुनेंगे सुबह 10:35 पर, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे शशि जोशी और रुचिका रानी की आवाज़ में रोहेलखंडी लोकगीत। सुबह 11:00 आप सुनेंगे कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। दोपहर 12:12 पर सुनिएगा कार्यक्रम सुगम संगीत के अंतर्गत आयुषी चौहान से भजन। दोपहर 12:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम घर गृहस्थी, जिसके अंतर्गत आज आप सुनेंगे श्रीमती नीलम से काव्य पाठ। दोपहर 1:30 पर सुनेगा प्रायोजित कार्यक्रम NCERT। दोपहर 2:30 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सैनिकों के लिए फिल्म संगीत। शाम 4:02 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम शास्त्रीय संगीत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे हरे कृष्ण शाह का सितार वादन, राग शुद्ध सारंग और राग मांड में। शाम 4:30 पर सुनेगा कार्यक्रम एक कलाकार। शाम 5:10 पर आप सुनेंगे युवाओं का पसंदीदा दैनिक कार्यक्रम युववाणी। पर्वतीय अंचलों का कार्यक्रम ग्राम जगत आप सुन पाएंगे शाम 5:45 पर। शाम 7:00 सुनेगा कार्यक्रम कृषि जगत, जिसके अंतर्गत आप सुनेंगे गर्मियों में कैसे रखे उत्पादन बरकरार विषय पर डॉक्टर प्रमोद पाठक से वार्ता। शाम 7:50 पर आप सुनेंगे क्षेत्रीय समाचार एकांश देहरादून की प्रस्तुति ज्ञान दर्पण। रात्रि 8:00 आज सुनिएगा हिंदी वार्ता और रात्रि 8:15 पर आप सुनेंगे कार्यक्रम सुगम संगीत।

ये थी हमारे केंद्र से आज प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की संक्षिप्त रूपरेखा। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। आज 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री अलंकरण दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री अलंकरण हैं। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजाति समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने का विशेष प्रबंध किया है। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों की पूरी तरह संरक्षण करना है। नई दिल्ली में जनजाति सांस्कृतिक समागम में प्रधान गृह मंत्री ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है।
1: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आज इस मंच से जनजाति महाकुंभ को कहना चाहता हूँ। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोटों से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा को बधाई दी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने नई दिल्ली में कई मुद्दों पर चर्चा की। दोनों नेताओं ने भारत अमेरिका रणनीतिक भागीदारी को और मजबूत करने की प्रतिबद्धता व्यक्त की और व्यापार, ऊर्जा, मोबिलिटी तथा क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई क्षेत्रों में सहयोग का उल्लेख किया। डॉक्टर जयशंकर ने प्रतिनिधिमंडल स्तर की बातचीत के बाद संवाददाता सम्मेलन में कहा कि दोनों देशों के बीच व्यापार समझौते को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा।
2: हमने हाल ही में ऊर्जा क्षेत्र में विस्तार का स्वागत किया है। भारत की ऊर्जा सुरक्षा के लिए आपूर्ति विविध माध्यम में उपलब्ध है। हमने परमाणु ऊर्जा सहयोग पर भी बातचीत की है। शांति अधिनियम के पारित होने से हमारे सामने नई संभावनाएं खुली हैं।
0: अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भागीदारी के रणनीतिक आयामों का उल्लेख किया और भारत को अमेरिका का सबसे महत्वपूर्ण भागीदार बताया। विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर है। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने खुद को प्रधानमंत्री मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताया और कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर 100% भरोसा कर सकता है। आईपीएल क्रिकेट में अंतिम मैच में कोलकाता में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
3: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय अभिषेक मुखोपाध्याय। President Draupadi Murmu will present 66 Padma Awards at the first civil investiture ceremony for 2026 to be held at Rashtrapati Bhavan today. During the ceremony to be attended by Vice President C.P. Radhakrishnan, Prime Minister Narendra Modi and Union Home Minister Amit Shah, among others, the President will confer 2 Padma Bhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri Awards. For the year 2026, the President has approved conferment of 131 Padma Awards, including 5 Padma Bhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. The remaining Padma awardees will be conferred in the second round of the ceremony to be held later. Union Home Minister Amit Shah has said that the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code, UCC, ensuring that the rights are fully protected. Addressing the Janjatiya Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights. External Affairs Mr. Dr. S. Jayashankar has said that India and the United States have a strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. Addressing the gathering at the 250th Independence Day celebrations of the United States in New Delhi yesterday, Dr. Jayashankar said that India and US must always be clear about zero tolerance for terrorism, and that is why the counter-terrorism cooperation is so important. He said that both nations have a common interest in de-risking the global economy and providing the world with more choices.
4: We must always be clear about zero tolerance for terrorism. And that is why our counter-terrorism cooperation is so important. The people-to-people connect has also been a very special characteristic of our relationship. It has helped build political understanding between our two nations and remains a living bridge.
3: Mentioning the visit of U.S. Secretary of State and NSA Marco Rubio, Dr. Jayashankar said, this visit highlights the significance of India-U.S. ties in contemporary times. He added that a year ago, Prime Minister Narendra Modi and U.S. President Donald Trump set out a pathway for the further development of both nations' enduring partnership. U.S. President Donald Trump dialed Secretary of State Marco Rubio during an event celebrating America's 250 years of independence at the Bharat Mandapam in New Delhi yesterday. U.S. President described Prime Minister Narendra Modi as a friend and stated that ties between the two nations had never been so closer. He even called himself a big fan of PM Modi. Mr. Trump said India can count on him 100%.
5: I just want to say hello to everybody. I love the Prime Minister. Modi is great.
3: U.S. President's remarks came amid Mr. Rubio's four-day visit to India. Mr. Rubio met Prime Minister Modi on Saturday, followed by his meetings with External Affairs Minister S. Jayashankar and National Security Advisor Ajit Doval yesterday. The National Testing Agency NTA has postponed the Common University Entrance Test undergraduate 2026 examinations, scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid ul-Zuha or Bakrid holiday as per the government notification. The agency informed that revised exam dates will be announced soon. The Central Board of Secondary Education CBSE has extended the last date for obtaining scanned photocopies of answer books for class 12 examinations by one more day until today. CBSE said that the decision was taken to provide adequate time to students for submitting requests. In IPL cricket, Delhi Capitals defeated Kolkata Knight Riders by 40 runs at the Eden Gardens in Kolkata last night. Delhi Capitals set a target of 204 runs for Kolkata Knight Riders, KKR. In reply, KKR scored only 163 runs in 18.4 overs. Put into bat, Delhi Capitals posted 203 runs for the loss of 5 wickets in the stipulated 20 overs. Early in the day, in another fixture, Rajasthan Royals defeated host Mumbai Indians by 30 runs at the Wankhede Stadium. And that is the end of this news bulletin.
6: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सवेरे के 7:10 हुए हैं और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत चित्र रागिणी।

0: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम चित्ररागिणी FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब सुनिए प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। पहले मुख्य समाचार। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को लेकर 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नमाज पढ़ने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, लेकिन नमाज केवल चिन्हित स्थानों पर ही अदा की जानी चाहिए। वनाग्नि की घटनाओं के लिए वन विभाग ने प्रयास तेज कर दिए हैं। वनों में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। और सहकारी समितियों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 98% बोर्डों पर जीत दर्ज हासिल की है। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। विकसित भारत की रामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़कर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय के अनुसार इस कानून के मसौदा नियम धारा 33 और अन्य संबंधित प्रावधानों के तहत तैयार किए गए हैं। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। पुष्कर सिंह धामी ने कल हल्द्वानी में अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक कर विभिन्न व्यवस्थाओं का जायजा लिया। बैठक में कानून व्यवस्था, विकास कार्यों और चारधाम यात्रा से जुड़ी तैयारियों पर चर्चा की गई। खुले में नमाज पढ़ने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि नमाज पढ़ने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, लेकिन नमाज केवल चिन्हित स्थानों पर ही अदा की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि इस बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए कि धार्मिक गतिविधियों से आम लोगों को किसी प्रकार की परेशानी न हो। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में इस समय चारधाम यात्रा चल रही है और बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। ऐसे में यातायात और व्यवस्थाओं को सुचारू बनाए रखना सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि इसी उद्देश्य से खुले में नमाज न पढ़ने की बात कही गई है। लोक भवन नैनीताल में आयोजित गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट 2026 कल समाप्त हो गया है। इस अवसर पर लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने टूर्नामेंट के ओवरऑल विजेता चैंपियन समर जैन, उपविजेता आशीष जैन के साथ ही बेस्ट नेट विजेता नुसरत अब्बासी और उपविजेता अंशुल छाबरा के अलावा अन्य वर्गों में जीत हासिल करने वाले गोल्फर को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। इस अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि 21वां गवर्नर्स गोल्ड कप ने एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। उन्होंने कहा कि ये आयोजन प्रतिभागियों के जुनून, खेल भावना और सामूहिक उत्सव का प्रतीक रहा। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें 25 मई यानी आज नई दिल्ली में सम्मानित करेंगी। कोश्यारी को ये पुरस्कार शिक्षा, समाज सेवा, राजनीति और राष्ट्र निर्माण में उनके दीर्घ योगदान के लिए दिया जा रहा है। सम्मान पाने पर कोश्यारी ने कहा कि समाज हित के लिए निरंतर कार्य करना जीवन का उद्देश्य है और वे निरंतर ये कार्य करते रहेंगे। गंगा स्नान पर्व व बकरीद को लेकर पुलिस विशेष सतर्क रहेगी। गंगा दशहरा स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं को आज सुबह से हरिद्वार पहुंचना

0: शुरू हो गया है। हाईवे से लेकर शहर के प्रमुख मार्गों पर यातायात व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। वहीं पौड़ी जिले के पुलिस अधीक्षक सर्वेश पंवार ने सभी थाना प्रभारियों को सतर्क रहने के साथ ही चेकिंग अभियान तेज करने के निर्देश दिए हैं। पुलिस अधीक्षक ने जिले के कोटद्वार, श्रीनगर और लक्ष्मण झूला क्षेत्र में संवेदनशील और भीड़भाड़ वाले स्थानों पर लगातार निगरानी रखने को कहा है। उन्होंने कहा कि गंगा घाटों, बाजारों, मस्जिदों और अन्य सार्वजनिक स्थलों पर पर्याप्त पुलिस बल की तैनाती की जाएगी। इसके अलावा पुलिस ने स्थानीय जनप्रतिनिधियों, धर्मगुरुओं और समिति के सदस्यों के साथ समन्वय बनाकर भाईचारे और सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाए रखने की अपील भी की है।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
0: पौड़ी जिले में वनाग्नि की घटनाओं को रोकने के प्रयास तेज कर दिए गए हैं। प्रभागी वनाधिकारी महातिम यादव ने कहा कि वनों में आग लगाने वाले लोगों के खिलाफ वन विभाग सख्ती से कार्रवाई करेगा। उन्होंने कहा कि वनाग्नि मामलों में प्राथमिकी दर्ज करने के साथ ही वन क्षेत्रों, नापखेतों व आसपास के क्षेत्रों की वन विभाग सघन निगरानी रखेगी। वहीं प्रभागी वनाधिकारी सिविल सोयम पवन नेगी ने बताया कि पूर्व में बुआखाल व कालेश्वर बीट में वनाग्नि की घटनाओं को लेकर दो मामलों में प्राथमिकी दर्ज कर कार्रवाई की गई है। जिला पौड़ी गढ़वाल को वनाग्नि की दृष्टि से अत्यंत संवेदनशील क्षेत्र घोषित किया गया है व आपदा प्रबंधन शमन व रोकथाम अधिनियम 2025 के तहत वनाग्नि को आपदा की श्रेणी में रखा गया है। वर्तमान में वर्षा न होने और लगातार बढ़ते तापमान के कारण वन क्षेत्रों में आग लगने की घटनाओं की आशंका बढ़ गई है। इसे देखते हुए वन विभाग व प्रशासन वनाग्नि नियंत्रण और रोकथाम के लिए सभी स्तरों पर निगरानी बढ़ा रहा है। वन विभाग ने आमजन से अपील की है कि वन क्षेत्रों में आग से संबंधित किसी भी गतिविधि या घटना की सूचना तत्काल वन विभाग अथवा प्रशासन को दें ताकि समय रहते आग पर नियंत्रण पाया जा सके। सहकारी समितियों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 98% बोर्डों पर जीत दर्ज की है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि टिहरी के जौनपुर व हरिद्वार की लंठौर सहकारी समिति में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। दोनों समितियों में 68 वर्ष बाद पहली बार पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 39 सहकारी समितियों में हुए चुनावों में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में जीत दर्ज की है। सहकारिता मंत्री ने सहकारी समितियों के चुनावों में भाजपा की जीत को कार्यकर्ताओं की मेहनत, संगठन की मजबूती और सरकार की जनहितकारी नीतियों का प्रतिफल बताया। उन्होंने कहा कि इस जीत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व केंद्रीय सहकारिता मंत्री अमित शाह के सहकार से समृद्धि के मंत्र को साकार करने में मदद मिलेगी। चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। फूलों की घाटी को जोड़ने वाले पैदल मार्ग को भी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन ने सुचारू कर दिया है। इस बार घाटी की सैर के दौरान पर्यटकों को मार्ग में हिमखंड का दीदार होंगे। गौरतलब है कि फूलों की घाटी प्रत्येक वर्ष 1 जून से 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है। यहां जैव विविधता, सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। ये दुर्लभ वन्य जीवों, हिमालयन थार, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ सहित अन्य प्राकृतिक वास स्थल भी हैं। इन दिनों घाटी के फूलों के खिलने का सिलसिला शुरू हो गया है और विभिन्न प्रजाति के फूल रंग बिरंगी आभा बिखेर रहे हैं। और अब एक नजर आज के समाचार पत्र की सुर्खियों पर। प्रदेश में वनाग्नि की घटना को लेकर सभी समाचार पत्रों ने प्रमुखता से समाचार प्रकाशित किए हैं। दैनिक जागरण लिखता है, बांज के जंगलों में पहुंची आग, जांच के आदेश। उत्तराखंड में एसआईआर को लेकर मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार के बयान को भी सभी समाचार पत्रों ने प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, उत्तराखंड में मतदाता सूची शुद्धिकरण की तैयारी तेज। अमर उजाला लिखता है, प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के प्री फेज में 89% मैपिंग। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को लेकर 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नमाज पढ़ने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, लेकिन नमाज केवल चिन्हित स्थानों पर ही अदा की जानी चाहिए। वनाग्नि की घटनाओं के लिए वन विभाग

0: प्रयास तेज कर दिए हैं। वनों में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं और सहकारी समितियों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 98% बोर्डो पर जीत दर्ज हासिल की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन पूर्वाह्न 10:30 प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब आप सुनेंगे कार्यक्रम शैल संगीत, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं लता पांडे और साथी की आवाज़ में कुमाऊनी लोकगीत।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: कार्यक्रम चल रहा है शैल संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से और आज आपको हम सुनवा रहे हैं लता पांडे और साथियों की आवाज़ में कुमाऊनी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान

0: खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
3: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम शैल संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से। आज हम आपको सुनवा रहे हैं लता पांडे और साथियों की आवाज़ में कुमाऊनी लोकगीत।

कार्यक्रम चल रहा है शैल संगीत, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं लता पांडे और साथियों की आवाज़ में कुमाऊनी लोकगीत।

शैल संगीत का कार्यक्रम चल रहा है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से, और आज आप सुन रहे हैं लता पांडे और साथियों की आवाज़ में कुमाऊनी लोकगीत।

शैल संगीत का कार्यक्रम आप सुन रहे हैं आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से, और आज हम आपको सुनवा रहे हैं लता पांडे और साथियों की आवाज़ में कुमाऊनी लोकगीत।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शैल संगीत। शैल संगीत के अंतर्गत आज हमने आपको सुनवाया लता पांडे और साथियों की आवाज़ में कुमाऊनी लोकगीत। FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी से सवेरे के 8 बजने को हैं और अब से कुछ ही पलों में आप सुनेंगे समाचार प्रभात। कृपया प्रतीक्षा करें।

आजकल भारत के गांव-गांव में छतों का रूप बदल गया है। जहां पहले छतों पर सिर्फ पापड़ और कपड़े सूखते थे, वहां पर अब बिजली बिल जीरो हो रहे हैं। गांव-गांव में लोग सोलर पैनल लगवा रहे हैं, आप भी लगवा लीजिए। 78,000 की सब्सिडी दे रही है भारत सरकार। 30,00,000 से अधिक परिवार तो इसका लाभ उठा चुके हैं। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना से जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in पर।

0: नमस्कार। आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृहमंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CEUT स्नातक परीक्षा 2026 से स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से लड़ने के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, भारत उन पर विश्वास कर सकता है और वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबसे बड़े प्रशंसक हैं। आईपीएल क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति CP राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 86 अलंकरण आज दिए जाएंगे। राष्ट्रपति ने वर्ष 2026 के लिए 131 पद्म पुरस्कारों की स्वीकृति दी थी। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री शामिल हैं। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे दौर में दिए जाएंगे।
1: इस वर्ष भारत सरकार ने कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है, जिसमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं, जिसकी शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी और प्रत्येक वर्ष गणतंत्र दिवस के अवसर पर इनकी घोषणा की जाती है। ये पुरस्कार कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए दिए जाते हैं। सौम्य शरण, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
0: आकाशवाणी से पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में प्रतिदिन अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। कार्यक्रम सवेरे 9:10 से आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इसे न्यूज ऑन AIR ऐप और न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर भी सुना जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखने के विशेष प्रावधान किए हैं। इसका उद्देश्य उनके अधिकारों को पूरी तरह संरक्षित रखना है। श्री शाह ने ये बात नई दिल्ली में कल जनजातीय सांस्कृतिक समागम में कही।
2: नरेंद्र मोदी सरकार के गृह मंत्री के नाते स्पष्ट कर देना चाहता हूँ, UCC की कोई पाबंदी वनवासी जगत पर, वनवासी व्यक्ति पर लगने वाली नहीं। UCC से कोई वनवासी अधिकारों का अतिक्रमण नहीं होने वाला है।
0: गृह मंत्री ने धरती आबा भगवान बिरसा मुंडा की विरासत का उल्लेख करते हुए कहा कि उन्होंने संदेश दिया था कि वन भूमि पर जनजातीय समुदाय का स्वामित्व होना चाहिए। श्री शाह ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार ने जनजाति कल्याण के लिए बजट बढ़ाने का काम किया है।
3: नरेंद्र मोदी जी ने एक प्रकार से जनजाति कल्याण को आगे बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस के जमाने में जनजातियों के कल्याण का कुल बजट 28,000 करोड़ था और नरेंद्र मोदी जी ने उसको 1,50,000 करोड़ तक बढ़ाने का काम।
0: पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार देवांशु पांडा ने फालता विधानसभा सीट 1,00,000 से अधिक वोट से जीत ली है। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के शंभुनाथ कुर्मी को 1,09,021 वोट से हराया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के दौरान फालता में मतदान में धांधली के बाद निर्वाचन आयोग ने इस सीट पर पुनर्मतदान के आदेश दिए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फालता विधानसभा चुनाव रिकॉर्ड अंतर से जीतने पर देवांशु पांडा को बधाई दी है। पेट्रोल की कीमतों में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि की गई है। पेट्रोलियम, पेट्रोल और डीजल के मूल्य में ये पिछले दो सप्ताह में चौथी वृद्धि है। अब दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए 12 पैसे प्रति लीटर और डीजल 95 रुपए 20 पैसे प्रति लीटर मिलेगा। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। एनटीए ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण ये निर्णय लिया गया। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह निर्णय लिया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।
4: सबके लिए सामाजिक सुरक्षा अटल पेंशन योजना मोदी जी का संकल्प।
5: योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको।
4: अब तक इस योजना से 8,85,00,000 से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित 3 गारंटीड फायदों के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें।
0: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा है कि भारत और अमेरिका आतंकवाद के हर रूप का मुकाबला करने को तत्पर हैं। नई दिल्ली में कल अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस समारोह को संबोधित करते हुए डॉ. जयशंकर ने कहा कि दोनों देशों को आतंकवाद को कतई बर्दाश्त न करने की नीति पर दृढ़ रहना होगा।
6: भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी रूपों के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। आतंकवाद के खिलाफ हमारी कतई बर्दाश्त ना करने की नीति रही है। ऐसा इसलिए कि आतंकवाद के खिलाफ आपसी सहयोग बहुत जरूरी है। हमारे संबंधों में आपसी सहयोग की बहुत बड़ी भूमिका है। ये हमारी राजनीतिक समझ को बनाने में सेतु का काम करता है।
0: डॉक्टर जयशंकर ने कहा कि वैश्विक अर्थव्यवस्था को जोखिम से बचाने और विश्व को अधिक विकल्प उपलब्ध कराने में दोनों देशों का हित है। विदेश मंत्री ने कहा कि अनेक स्थितियों में दोनों देशों को विभिन्न क्षेत्रों में प्रभावी रणनीतिक साझेदार बनाया है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कल नई दिल्ली के भारत मंडपम में अमेरिका के 250वें स्वतंत्रता दिवस पर आयोजित कार्यक्रम में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर को फोन किया। श्री ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बड़ा प्रशंसक बताते हुए कहा कि वे भारत से प्रेम करते हैं और भारत उन पर शत प्रतिशत भरोसा कर सकता है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उन्होंने अपने प्रतिनिधियों को ईरान के साथ किसी समझौते में जल्दबाजी नहीं करने को कहा है। 3 महीने से जारी संघर्ष में अमेरिकी प्रशासन ने फिलहाल किसी बड़े समझौते की संभावना से इनकार किया है। श्री ट्रंप ने कहा कि उनके प्रशासन के अंतर्गत ईरान के साथ किसी भी संभावित समझौते में कोई वित्तीय छूट नहीं दी जाएगी।
6: मीडिया के अनुसार विचाराधीन समझौते में 60 दिन के लिए युद्ध विराम बढ़ाना, हॉर्मुज जलडमरू मध्य को फिर खोलना और ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर आगे की बातचीत शामिल है। हालांकि इस प्रस्ताव को लेकर रिपब्लिकन पार्टी में भी मतभेद हैं। कुछ का कहना है कि प्रस्ताव ईरान के प्रति बहुत नरम रुख अपनाता है। सीनेटर ट्रेड क्रूज ने इसे एक बड़ी गलती बताया है, जबकि सीनेट सशस्त्र सेवा समिति के अध्यक्ष रोजर विकर ने कहा कि 60 दिन का युद्ध विराम ऑपरेशन एपिक फ्यूरी की उपलब्धियों को निरर्थक कर देगा। विदेश मामलों की समिति के प्रतिनिधि माइक लॉलर ने कहा कि अमेरिकी प्रशासन ईरान को बातचीत करने के लिए विवश करने में सफल रहा है। अमेरिका और इसराइल ने 28 फरवरी को ईरान पर व्यापक हमले शुरू किए थे। समाचार कक्ष से शक्ति सिंह।
0: 5 दिन की वार्षिक हज यात्रा आज से शुरू हो रही है। भारत सहित पूरे विश्व से मुस्लिम समुदाय के 10,60,000 से अधिक लोग मक्का से हज यात्रा शुरू करेंगे और सऊदी अरब के मीना में एकत्र होंगे। इस वर्ष हज में भारत से लगभग 1,75,000 जायरीन भाग ले रहे हैं। मौसम विभाग ने दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब के कई भागों के लिए लू का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, तटवर्ती आंध्र प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और तेलंगाना में भी भीषण गर्मी का अनुमान है। पश्चिम बंगाल के गांगी क्षेत्र में गर्मी और उमस रहेगी। पूर्वोत्तर भारत, पश्चिम बंगाल के उप हिमालयी क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी

0: में तेज वर्षा हो सकती है। जम्मू कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप में गरज के साथ आंधी और वर्षा का अनुमान है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। कोलकाता में कल दिल्ली कैपिटल्स के 204 रन के लक्ष्य के जवाब में कोलकाता की टीम 163 रन पर सिमट गई। कुलदीप यादव को प्लेयर ऑफ द मैच चुना गया। एक अन्य मुकाबले में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हरा दिया। इसके साथ ही राजस्थान रॉयल्स प्लेऑफ में पहुंचने वाली चौथी टीम बन गई है। पहले क्वालिफायर मुकाबले में कल रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का मुकाबला गुजरात टाइटंस से होगा। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी ढकाटे परिचर्चा में भाग लेंगे। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं फरहत नाज।
1: धन्यवाद मुकेश। भारत और अमेरिका के विदेश मंत्रियों की बैठक पर हिंदुस्तान की सुर्खी है, हॉर्मुज सबके लिए खुला रहे। विदेश मंत्री जयशंकर और मार्को रूबियो ने बैठक के बाद जताई सहमति। पत्र के अनुसार ईरान बोला, नियंत्रण हमारा ही रहेगा। नवभारत टाइम्स के अनुसार कड़े वीजा नियम पर यूएस ने कहा, भारत टारगेट नहीं। जनसत्ता लिखता है, भारत अमेरिका व्यापार समझौता को जल्द अंतिम रूप मिलेगा। पंजाब केसरी ने डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से दिया है, 60 दिन के सीज फायर पर लगभग सहमति, हॉर्मुज जल डमरू मध्य खोला जाएगा। ईरान यूरेनियम प्रोग्राम छोड़ने को तैयार, फिजिशियन बोले हम परमाणु हथियार नहीं चाहते। नवभारत टाइम्स ने सबसे बड़ी राहत शीर्षक से संपादकीय में लिखा है, अमरीका और ईरान के बीच हॉर्मुज खोलने के लिए सैद्धांतिक सहमति बनना पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ी राहत है। हालांकि ईरान के पास मौजूद एनरिच्ड यूरेनियम समेत कुछ संवेदनशील मुद्दों पर अभी सहमति नहीं बन पाई है। फिर भी संकेत बताते हैं कि दोनों पक्ष इस बार मामले को सुलझाने के लिए गंभीर हैं। लोकसत्ता ने ऐतिहासिक जीत शीर्षक से लिखा है, पश्चिम बंगाल में ममता का आखिरी किला ढहा, पालता में भाजपा की 1,00,000 वोटों से विजय। दैनिक जागरण ने घुसपैठियों की वापसी शीर्षक से लिखा है, ये अच्छा है कि पश्चिम बंगाल की भाजपा सरकार पहले दिन से ही राज्य के हालात सुधारने वाले ठोस फैसले लगातार ले रही है। ऐसे समय की मांग भी है क्योंकि ममता बनर्जी ने 15 साल के शासन में राज्य को पटरी से उतारने का काम किया था। देशबंधु की सुर्खी है, पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ट्रेन विस्फोट, 30 की मौत, 100 से अधिक घायल, प्रतिबंधित अलगाववादी संगठन BLA ने ली हमले की जिम्मेदारी। राजस्थान पत्रिका ने विडंबना शीर्षक से लिखा है, फीस से ज्यादा स्कूल आने जाने और किताब यूनिफॉर्म का खर्च, कई राज्यों में स्कूल ट्रांसपोर्ट सबसे बड़ा बोझ, आंकड़े बता रहे हैं कहां है सुधार की जरूरत। दैनिक भास्कर ने CBSE द्वारा री एवल्यूशन की अंतिम तिथि बढ़ाकर 25 मई करने की खबर मुख्य पृष्ठ पर दी है। पत्र के अनुसार स्कैन कॉपी आने के बाद 2 दिन और मिलेंगे। अमर उजाला की सुर्खी है, नॉर्थपा आज से शुरू, कई राज्यों में पारा 46 डिग्री के पार, शुक्रवार तक राहत नहीं, उत्तर प्रदेश में लू और आंधी की दोहरी मार, 40.8 डिग्री के साथ बांदा सबसे गर्म।
0: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, सरकार ने सभी जनजातीय समुदायों को समान नागरिक संहिता के दायरे से बाहर रखा। पेट्रोल की कीमत में 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए प्रति लीटर की वृद्धि। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने कहा, भारत और अमेरिका आतंकवाद के सभी स्वरूपों से मुकाबले के लिए तत्पर। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बड़े प्रशंसक हैं और भारत उन पर पूरी तरह विश्वास कर सकता है। और IPL क्रिकेट में दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
2: आकाशवाणी प्रेजेंट्स मॉर्निंग न्यूज। गुड मॉर्निंग, आई एम अभिषेक मुखोपाध्याय। द हेडलाइंस: President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi today. Union Home Minister Amit Shah says government has excluded all tribal communities from ambit of Uniform Civil Code. petrol price hike by 2 rupees 61 paise per litre, while that of diesel by 2 rupees 71 paise per litre. National Testing Agency postpones CUET UG 2026 examinations scheduled for the 28th of this month. External Affairs Minister S. Jaishankar says India and US have strong interest in combating terrorism in all its forms and manifestations. US President Donald Trump says India can trust on him, also says he's a big fan of Prime Minister Modi. And in IPL cricket, Delhi Capitals beat Kolkata Knight Riders by 40 runs at Eden Gardens in Kolkata. President Draupadi Murmu will present the Padma Awards at the first civil investiture ceremony at Rashtrapati Bhavan this evening. Padma Awards, one of the highest civilian awards of the country, are conferred in three categories: Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri. In the first civil investiture ceremony of 2026 today, the President will confer 66 Padma Awards, including 2 Padma Vibhushan, 6 Padma Bhushan and 58 Padma Shri. The remaining Padma Awards will be given in the second round of the civil investiture ceremony to be held later. We have a report.
3: This year, the government has announced a total of 131 Padma Awards. These include 5 Padma Vibhushan, 13 Padma Bhushan and 113 Padma Shri Awards. Among the awardees, 19 are women, while 16 individuals will be awarded posthumously. The Padma Awards, namely Padma Vibhushan, Padma Bhushan and Padma Shri, are amongst the highest civilian awards of the country. Instituted in the year 1954, these awards are announced on the occasion of Republic Day every year. The award seeks to recognize work of distinction and is given for distinguished and exceptional achievements in various fields and disciplines, including art, literature, education, sports, medicine, social work, science and engineering, public affairs and trade and industry. Priya Mondal, Akashwani News, Delhi.
2: News Services Division of Akashwani will broadcast special programs as part of a series People's Padma on Akashwani.
4: We launched an environmental protection movement, forest conservation, for about 6 years together. Because the importance of Darjeeling Hill Forest had hardly been known.
5: मेरा शोध विशेष रूप से इस क्षेत्र में रहा, जिसमें पत्ती के झुलसा और झोंका रोग के लिए रोगरोधी किस्मों का विकास मैंने किया।
6: फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में असंग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए।
2: In these episodes, we provide listeners insights into the work and life of Padma awardees. To listen to the episodes, tune to 100.1 Akashwani Gold today from 9:10 a.m. onwards. It can also be heard on News on AIR app and News on AIR official YouTube channel. Union Home Minister Amit Shah has said that the government has made special provisions to exclude all tribal communities from the ambit of the Uniform Civil Code UCC, ensuring that their rights are fully protected. Addressing the Janjati Sanskritik Samagam in New Delhi, Mr. Shah said the UCC will not infringe upon any tribal rights.
7: Narendra Modi Sarkar ke Guru Mantri ye nate.
8: As the Home Minister of the Narendra Modi government, I want to make it clear that no restriction of the UCC will apply to the tribal world or any tribal individual. No violation of tribal rights will occur because of the UCC. In the two states where the Bharatiya Janata Party is in power, Gujarat and Uttarakhand, we have implemented the UCC, and by making special provisions, the Narendra Modi government has worked to keep all the tribal communities out of the purview of the UCC.
2: The Home Minister also said that the tribal welfare budget, which stood at 28,000 crore rupees during the Congress-led government, has been increased to 1,50,000 crore rupees under the Narendra Modi government. Petrol price has been hiked by 2 rupees 61 paise per litre, while that of diesel by 2 rupees 71 paise per litre today, marking the fourth hike in 2 weeks. With this revision, petrol will now cost 102 rupees 12 paise per litre in Delhi, while diesel will now cost 95 rupees 20 paise per litre in the national capital. The National Testing Agency NTA has postponed the Common University Entrance Test undergraduate 2026 examinations, scheduled for the 28th of this month. NTA said that this decision was taken in view of the change in the date of the Eid al-Zuha or Bakra Eid holiday as per the government notification. The agency informed that revised exam dates for affected candidates will be announced soon. NTA also advised candidates to regularly visit its official website for the latest updates. The Central Board of Secondary Education, CBSE,

नमस्कार देहरादून, स्वागत है आपका आज के इस अंक में और मैं हूं आज आपके साथ आपकी होस्ट प्रियंका जेना। हरे पेड़ों की छाओं में जीवन मुस्कुराता है, नदियों का मीठा जल भी जंगल से ही आता है, पर जब लपटें उठती हैं लाल अंगार बनकर प्रकृति रो पड़ती है इंसान को पुकार कर। जी हाँ श्रोताओं, जंगल सिर्फ पेड़ों का समूह नहीं होते, ये धरती के फेफड़े हैं। यहीं से हमें शुद्ध हवा मिलती है, वर्षा का संतुलन बना रहता है और लाखों जीव जंतुओं को अपना घर मिलता है। लेकिन जब इन्हीं जंगलों में आग लगती है तब प्रकृति कराह उठती है। आज हम बात करेंगे ऐसी समस्या की जो सिर्फ जंगलों को ही नहीं बल्कि पूरे मानव जीवन को खतरे में डाल रही है। जी हाँ, जंगलों में आग लगने की घटना। आज हाल ही में आपने देखा होगा कि जंगलों में आग लगने की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही है। जरा कल्पना कीजिए, चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़, पक्षियों की मीठी आवाजें, जानवर अपने परिवार के साथ शांत जीवन जी रहे हों और अचानक एक छोटी सी चिंगारी सब कुछ बदल दे। कुछ ही मिनटों में आग तेज हवाओं के साथ फैलने लगती है, पेड़ धू धू कर जल उठते हैं, आसमान काले धुएं से भर जाता है, जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागते हैं। श्रोताओं, जंगलों की आग कई कारणों से लगती है, कभी तेज गर्मी और सूखे पेड़ों के कारण तो कभी इंसानों की लापरवाही से। जलती हुई सिगरेट या बीड़ी जंगल में फेंक देना, पिकनिक मनाकर आग को ठीक से ना बुझाना, कूड़ा जलाना, ये छोटी छोटी गलतियां एक बड़े विनाश का रूप ले लेती है और इसका असर सिर्फ जंगल तक सीमित नहीं रहता। पेड़ों के जलने से वातावरण में धुआं और जहरीली गैसें भी फैलती है, प्रदूषण बढ़ता है, बारिश का चक्र प्रभावित होता है, धरती का तापमान बढ़ने लगता है। यानी जंगल की आग केवल पेड़ों को नहीं हमारे भविष्य की भी दुश्मन है। लेकिन श्रोताओं, अगर इंसान ने पैदा की है ये समस्या तो समाधान भी इंसान के पास ही है। हमें कुछ कुछ छोटी छोटी सावधानियां अपनानी होगी ताकि हम इन जंगलों को आग लगने से बचा सके और अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख सके। जंगलों में आग या जलती वस्तु बिल्कुल ना फेंके, कैंप फायर या चूल्हा इस्तेमाल करने के बाद पूरी तरह बुझाएं, जंगल में धूम्रपान से बचें। आग लगने की घटना दिखे तो तुरंत वन विभाग या प्रशासन को सूचना दें, अधिक से अधिक पेड़ लगाएं और लोगों को जागरूक करें। आज गर्मी सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि एक चिंता का विषय भी बनती जा रही है, तो इन छोटे छोटे प्रयासों को अपना कर हम जंगलों में इस बढ़ती आग की घटनाओं को बचा सकते हैं। तो आइए, कार्यक्रम में और भी बातें होंगी लेकिन अब आगे बढ़ते हैं कार्यक्रम में और सुनवाते हैं आपको ये पहला गीत।

उम्मीद करते हैं श्रोताओं आप भी इस गीत के साथ खो गए होंगे। जी हाँ, एक बार पुनः स्वागत है आपका कार्यक्रम नमस्कार देहरादून में। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रियंका जेना के साथ, और अब आप तक पहुंचाते हैं समाचार पत्रों की सुर्खियां। बद्रीनाथ धाम से करीब 2 किलोमीटर पहले कंचन नाले के उद्गम स्थल पर रविवार सुबह हिमस्खलन हो गया। प्रदेश में भीषण गर्मी के बावजूद चार धाम यात्रा में बेतहाशा भीड़ उमड़ रही है। धामों में दर्शन और हरिद्वार ऋषिकेश में काउंटरों पर ऑनलाइन पंजीकरण के लिए मारामारी चल रही है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में चार धाम यात्रा चरम पर है, लगातार भीड़ बढ़ती जा रही है, इसलिए थोड़ी चुनौती जरूर पैदा हो गई है, लेकिन सभी को दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने यात्रियों से पंजीकरण कराने के बाद ही चार धाम यात्रा शुरू करने की अपील की। पर्यटकों के लिए आज खुलेगा एफआरआई। प्रवेश शुल्क बढ़ा, 4 महीने पहले सुरक्षा कारणों से पर्यटकों के लिए बंद किया गया था फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। पैदल भारतीय नागरिकों के लिए अब प्रवेश शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। संग्रहालय में प्रवेश करने के लिए उन्हें 150 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। विदेशी नागरिकों के लिए शुल्क 1,000 रुपये रखा गया है। वाहन पार्किंग के लिए भी शुल्क लागू होगा। स्कूली बच्चों से संग्रहालय में प्रवेश के लिए 30 रुपये और कॉलेज के छात्र छात्राओं के लिए शुल्क 50 रुपये निर्धारित किया गया है। पूर्व सीएम भगत सिंह कोश्यारी को आज मिलेगा पद्म भूषण। उत्तराखंड में मतदाता सूची शुद्धिकरण की तैयारी तेज। मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने दून में रविवार को उत्तराखंड में विशेष गहन पुनरीक्षण की तैयारियों की समीक्षा की। मसूरी के जंगल में आग, दहशत में आई आबादी। देहरादून जिले में भी 24 घंटे

0: भीतर आग की 21 घटनाएं। मौसम की बात करें तो देहरादून में 6 दिन में तीसरी बार पारा 40 पार। गर्मी के तीखे तेवरों पर मौसम विभाग ने सोमवार को मैदानी क्षेत्रों में भीषण हीट वेव चलने का अलर्ट जारी किया है। उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, चमोली, बागेश्वर और पिथौरागढ़ जनपदों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। तो श्रोताओं, ये थी स्थानीय अखबारों की सुर्खियां। अब आप तक पहुंचाएंगे इतिहास के पन्नों से भी जानकारियां, लेकिन लेते हैं उससे पहले एक छोटा सा अंतराल।
1: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
0: इतिहास के पन्नों पर नज़र डालें तो आज के इतिहास के पन्नों में दर्ज है 25 मई 1915 की ये तारीख। महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में सत्याग्रह आश्रम स्थापित आज के दिन किया था, जिसके बाद में नदी के किनारे स्थानांतरित कर साबरमती आश्रम नाम दिया गया। सन 1831 25 मई को प्रसिद्ध उर्दू शायर दाग देहलवी का जन्म हुआ था और 1935 25 मई को अमेरिकी बेसबॉल खिलाड़ी वेवे रुथ ने 714वां और अंतिम होम रन मारा था। 25 मई 2005 को हिंदी फिल्म अभिनेता सुनील दत्त का निधन मुंबई में आज ही के दिन हुआ था और 2011 25 मई को द ओपेरा विफ्री शो का अंतिम एपिसोड प्रसारित हुआ था। ये थी इतिहास के पन्नों से कुछ जानकारियां। आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से, और लिए चलते हैं आपको अगले म्यूजिकल ट्रैक की ओर।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम नमस्कार देहरादून आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। श्रोताओं, आज 25 मई है और आज महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती भी मनाई जाती है। रास बिहारी बोस उन वीर स्वतंत्रता सेनानियों में से एक थे जिन्होंने भारत की आज़ादी के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ क्रांतिकारी आंदोलन चलाए और विदेश में रहकर भी भारत की स्वतंत्रता के लिए हमेशा संघर्ष करते रहे। उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की नींव मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और बाद में उसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस को सौंपा। आज उनकी जयंती हमें देशभक्ति, साहस और त्याग की प्रेरणा देती है। जिनके इरादों में आज़ादी का जुनून था, हर धड़कन में भारत माँ का सुकून था, देश के लिए जिसने हर मुश्किल को अपनाया, ऐसे वीर रास बिहारी बोस को देश आज नमन करता है उनकी जयंती पर। इसी के साथ ही बढ़ते हैं कार्यक्रम में आगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शी भर्तियों में 28,000 युवाओं को मिली सरकारी नौकरी। राज्य ने G20 समिट, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट और 38वें राष्ट्रीय खेल जैसे महत्वपूर्ण कार्यक्रमों का भव्य और सफल आयोजन किया और राष्ट्रीय एवं वैश्विक स्तर पर अपनी खास पहचान बनाई।
2: संकल्प बेहतर उत्तराखंड कायम की एक नई मिसाल। उत्तराखंड का हर घर अब देखो हो रहा खुशहाल।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
4: इस अंतराल के बाद बढ़ते हैं मनोरंजन की ओर और पहुंचाते हैं आप तक कार्यक्रम का ये अगला गीत।

श्रोतो, अभी आपने सुना ये जोश और ऊर्जा से भरा गीत, और उम्मीद है इस गीत ने आपके दिन की सारी थकान और टेंशन कम कर दी होगी और सुबह की ये शुरुआत बेहद अच्छी होने वाली है। तो श्रोताओं, ज़िंदगी में मुश्किलें तो आती रहती हैं, लेकिन मुस्कुराते हुए आगे बढ़ना ही असली जीत है। तो हमेशा खुश रहिए और अपने सपनों पर भरोसा रखिए और ज़िंदगी को खुल कर जिए। तो इसी के साथ बैठते हैं हम कार्यक्रम के इस अगले और अंतिम गीत की ओर, और पहुँचाते हैं ये गीत आप तक।

श्रोताओं, आज हमने आपसे कार्यक्रम के शुरुआत में बातचीत की जंगलों में बढ़ती आग और गर्मी के बारे में। जी हाँ, आज कल सूरज की तपिश बेहद ज़्यादा बढ़ती जा रही है और मई की तपती गर्म हवाओं के थपेड़े और लगातार बढ़ता तापमान मानो प्रकृति हमें बार बार एक ही संदेश दे रही हो कि अब संभलने का समय आ गया है। आज गर्मी सिर्फ मौसम ही नहीं बल्कि एक चिंता का विषय बनती जा रही है। शहरों में पानी की कमी, बढ़ती बिजली की खपत और पहाड़ों में सूखते जल स्रोत, ये सब बदलते पर्यावरण की तस्वीर दिखा रहे हैं। और सबसे चिंताजनक है जंगलों की बढ़ती आग। तो ऐसे में हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन छोटे छोटे प्रयासों को अपनाएं जो हम अपने स्तर पर कर सकते हैं। इसी के साथ ही अब वक्त हो चला है कार्यक्रम से आपको अलविदा कहने का, लेकिन इससे पहले नोट कर लीजिए आप हमारा पता। हमारा पता है कार्यक्रम नमस्कार देहरादून द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी हरिद्वार बायपास रोड देहरादून, पिन है 248001। हमारा ईमेल एड्रेस है namaskardehradun@gmail.com। और इसी के साथ ही मुझे यानी प्रियंका जैना को दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आकाशवाणी का देहरादून केंद्र FM 100.5 MHz पर। नमस्कार देहरादून।

अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम नमस्कार देहरादून FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब प्रस्तुत है सदाबहार फिल्मी गीत। सदाबहार फिल्मी गीतों के इस सिलसिले में हम आगे बढ़ते हैं और ले चलते हैं आपको इस पहले गीत की ओर।

0: गीत को हमने लिया है फिल्म आरजू से, जिसे अपनी आवाज़ दी है मोहम्मद रफ़ी ने, संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने और बोल है हसरत जयपुरी के।
1: बस इतनी शिकायत है, समझा हम।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
2: आपने ट्यून किया है 100.5 मेगाहर्ट्ज़ और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत। जी हाँ श्रोताओं, आज के अगर गीतों से तुलना की जाए तो जो बीट्स आज तीज है, म्यूज़िक हाईटेक है, लेकिन उस दौर के गीतों में जो ठहराव, मिठास और अल्फाज की खूबसूरती थी वो आज भी लोगों को अपनी ओर खींच लेती है। बिल्कुल प्रकृति की तरह, जो हर मौसम में अपना रंग भले ही बदलती है लेकिन उसकी ताजगी और खूबसूरती हमेशा सदाबहार रहती है। ठीक वैसे ही ये पुराने गीत भी हमें हर दौर में दिल को सुकून देते रहते हैं। तो ऐसा ही एक सुकून भरा गीत आप तक पहुंचा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म अभिमान से। लता मंगेशकर की आवाज़ में गीत को संगीतबद्ध किया है।

इस गीत के साथ ही कार्यक्रम सदाबहार फिल्मी गीत यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब सुनिए पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी श्री रामचंद्रा गोडबोले और सुश्री सुनीता गोडबोले के साथ। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किया जा रहा है।

0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं छत्तीसगढ़ में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री रामचंद्र गोडबोले और श्रीमती सुनीता गोडबोले के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं नरेश मिश्रा।
2: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के इस पॉडकास्ट में मैं नरेश मिश्रा आप सभी का स्वागत करता हूँ। छत्तीसगढ़ बस्तर संभाग के दंतेवाड़ा के घने जंगल और दुर्गम क्षेत्र के कई गांव आज भी ऐसे हैं जहां बुनियादी सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं। वहां एक दंपत्ति बीते 3 दशक से निस्वार्थ भाव से स्वास्थ्य सेवा की अलख जगा रहा है। मीलों मुश्किल दुर्गम पगडंडी पथरीले और धूल भरे रास्तों से सफर करते हुए गांव-गांव तक पहुंचना, स्थानीय बोली में संवाद और 1 लाख से भी अधिक लोगों का उपचार, ये कहानी है डॉक्टर रामचंद्र त्रयंबक गोडबोले और सुनीता गोडबोले की। उनके इस सराहनीय कार्य को देखते हुए सरकार ने इस बार पद्मश्री सम्मान के लिए उन्हें चुना है। उनके इस प्रेरक सफर की कहानी आइए जानते हैं उनकी ही जुबानी। सबसे पहले तो रामचंद्र सर और सुनीता मैडम, मैं आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ इस पॉडकास्ट में और आप दोनों को बहुत बहुत बधाई पद्मश्री सम्मान के लिए चुने जाने के लिए।
3: धन्यवाद।
2: रामचंद्र सर, आप ये बताइए कि आप बस्तर कब पहुंचे? मूल रूप से तो आप महाराष्ट्र के रहने वाले हैं, और कैसे आपके मन में ये प्रेरणा आई कि आपको बस्तर के क्षेत्र में या आदिवासी क्षेत्र में काम करना है?
4: मैं रहने वाला सतारा महाराष्ट्र का हूँ, और जब मैं BAMS डॉक्टर कोर्स के लिए जब पढ़ाई कर रहा था, ये 1980 की बात है करीब करीब, तो एक डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइटजर करके एक डॉक्टर था, यूरोप में उसका जन्म हुआ लेकिन वो अफ्रीका में चला गया और वहां से आदिवासियों के लिए उन्होंने जीवन भर काम किया। तो डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइटजर की ये जो कहानी है वो मैं कहीं किसी समाचार पत्र में पढ़ा था, उसका जीवन ही उसके आत्मकथन है। वो मुझे अंग्रेजी में एक छोटा सा किताब मिला, वो मैंने पढ़ने के बाद मुझे ऐसा थोड़ा सा स्पर्श हुआ मेरे मन में कि ऐसा भी कोई जीवन हो सकता है कि जो आदिवासी समाज के लिए जीवन भर के लिए वहां जाके काम करे। ऐसा भी एक जीवन मैंने अभी पढ़ा है डॉक्टर अल्बर्ट श्वाइटजर, वो मेरी थोड़ी सी प्रेरणा हुई। उसके बाद मैं डॉक्टर प्रकाश अमटे जो गढ़चिरौली में काम करते हैं, वहां कुछ साल के लिए काम में जाने का मैंने विचार किया, वहां मिला मैं उनको, लेकिन दुर्भाग्यवश वहां लेप्रसी का कोई मैं कोर्स नहीं किया था इसलिए मैं ज्वाइन नहीं हो पाया। लेकिन बाद में ये एक वनवासी कल्याण आश्रम करके एक संस्था है, उन लोगों को मालूम हुआ कि ये आदमी कहीं तो आदिवासी क्षेत्र में जाके कुछ काम करने का सोच रहा है, तो वो मेरे से संपर्क उन्होंने किया और उन्होंने मुझे ये किया कि आप नासिक और डांग डिस्ट्रिक्ट जो गुजरात का है उस बॉर्डर में आप काम कर सकते हो। तो वहां मैंने 4 साल भिल्ल आदिवासियों के बीच में काम किया और वो उनका जो जीवन है, उनकी जीवन की कठिनाई, स्वास्थ्य की उनकी असुविधा इतनी सारी, उनकी गरीबी, पहाड़ी क्षेत्र में उनका दुर्गम इलाके में रहने का उनका जो जीवन है, बारिश में उनको होने वाली समस्याएं, ये सब देखने के बाद मेरे अंदर से प्रेरणा जागृत हो गई कि ये हम काम कर सकते हैं। और वही से मेरा धीरे धीरे ऐसा लगता है कि मुझे मन की तैयारी हो गई कि मैं लंबे समय के लिए आदिवासी क्षेत्र में काम करूंगा। ऐसा मेरा जो प्रोग्रेस है वो धीरे धीरे हो गया। फिर हमारे संस्थाओं ने हमको बताया कि भाई महाराष्ट्र के बाहर ज्यादा समस्या है, वहां जाके काम करना चाहिए। तो फिर मेरे मन में यह हो गया कि मैं महाराष्ट्र के बाहर जाने के लिए तैयार हूँ। मैं जाके अधिकारियों को बताया, 89 की बात है ये। हाँ, तो फिर 90 में हमारा शादी हो गई और 10 दिन के अंदर हम दोनों बस्तर में बारसूर में आ गए हम लोग, तो तब से हम लोग बारसूर में है समझ लीजिए।
2: सुनीता जी, आमतौर पर ऐसा होता है कि शादी के बाद लोग कुछ समय खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं, और ये बड़ी रोचक बात है कि डॉक्टर रामचंद्र जो है उनका कमिटमेंट अलग था, उससे पहले से आपने एक कमिटमेंट कर रखा था अपने जीवन को लेकर के, तो ये शादी और आपका ये कमिटमेंट कि आपको आदिवासी क्षेत्रों में ही काम करना है, ये कैसे हुआ, आपके जीवन में ये चुनाव कैसे तय हुआ?
3: हाँ, इसका 2 प्रमुखता से मुझे लगता है कारण है ये विचार मेरे मन में आने का, क्योंकि मेरे घर में जो वातावरण है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए मेरा मामा था जो ज्यादा रूप से काम करता था, और बाकी भी घर के सदस्य कोई कुछ ना कुछ छोटा बहुत थोड़ा बहुत काम करते थे, तो उसके कारण और पुणे का एक जो सांस्कृतिक और सामाजिक सब वातावरण है उसका भी असर हमारे सभी के ऊपर पड़ता है, जो संवेदनशील है उनके ऊपर तो होता ही है। तो बहुत सारे जो सामाजिक सुधारों का इतिहास है पुणे शहर को, उसके यहाँ जो काम करने वाले समाज सुधारक थे उनके कारण वो भी हम पाठ्य पुस्तकों में पढ़ ही रहे थे जब पढ़ाई चल रही थी शालेय जीवन में। फिर महाविद्यालय जीवन में मेरा संपर्क अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद छात्र संगठन से संपर्क आया, उसके

0: मुझे अपने भारत में जो भी इस प्रकार से समाज है अलग अलग, और उनकी अवस्था क्या है, हम किस प्रकार से जीना जी रहे हैं, और उनको कितने छोटी छोटी बातों का भी सामना करना पड़ रहा है रोज के जीवन में, जिसको हम अन्न वस्त्र और मकान कहेंगे तो उतना भी मतलब उनको नसीब नहीं है। ये सब हमको हमारे जो ज्येष्ठ कार्यकर्ता, प्राध्यापक कार्यकर्ता भी हमारे साथ काम करते हैं विद्यार्थी संगठन में, तो वो सब बताते थे और वो हमेशा यह आह्वान करते थे, हमें एक छात्र के रूप में ये सभी समस्याओं को जानना चाहिए, अपने देश के सामने क्या क्या समस्याएं हैं, केवल मैं मेरा करियर मेरा नौकरी इतना ही ना सोचते हुए इस प्रकार से कुछ काम हमें करना चाहिए। और हमारे साथ साथ कुछ छात्र भी ऐसे थे कि जो मास्टर डिग्री कर रहे थे लेकिन पूर्णकालिक कार्यकर्ता के रूप में विद्यार्थी परिषद का काम करते थे, तो उनका भी वो सब देख के मेरे मन में विचार आया था कि मैं ऐसा कुछ काम कर सकती
1: और
0: हूँ।
1: ये शादी से पहले आपने सोच लिया था?
0: हाँ, तो नहीं, शादी से पहले तो ये सोचा था कि मुझे ऐसा कुछ सामाजिक काम करना है। फिर जब मैंने मुझे जब ऐसा एक ये हुआ, बहुत लोगों को फिर पता चला कि भाई इसके मन में ऐसा कुछ काम करने का है, तो वैसे ही हमारे जो मैं जहाँ रहती हूँ, मेरा मायका का घर है, वहां ही एक वनवासी कल्याण आश्रम की फाउंडर मेंबर रहती थी नंदा ताई करके, तो उन्होंने मुझे बताया कि अरे तुम्हें तो गांव में जाके कुछ काम करना है तो तुम्हें फिर आओ हमारे साथ, अपना जो संगठन का काम है वो ऐसे ही वनवासी क्षेत्र में है, आदिवासी क्षेत्र में काम है, तो आप वहां जाके आपके मन में जो काम की इच्छा है वो कर सकते हो, आप देख के तो आओ कम से कम इस प्रकार से। फिर वो संगठन के पदाधिकारियों से बातचीत हुई, फिर उन्होंने मुझे कुछ जगह भेजा, नासिक जिले में भेजा, रायगढ़ जिले में भेजा, ठाणे जिले में भेजा, जहां जहां मतलब काम चलता है अभी भी वहां पर भेजा, और वहां के कार्यकर्ताओं से मैंने बातचीत किया, कुछ गांवों में घूमी, तब जाके मुझे ये मेरा विचार पक्का हो गया कि नहीं मैं ऐसा काम कर सकती हूँ। शादी के पहले भी मैं काम करती ही थी, 3 साल काम किए, तो
1: पहली
0: उसमें
1: बार
0: ये
1: काम कर
0: विचार
1: रहे हैं
0: पक्का
1: डॉक्टर
0: हुआ कि भाई मुझे अभी, अब फिर घर से प्रेशर होने लगा कि भाई मतलब बात होने लगी कि आप लड़की हो शादी करना चाहिए वगैरह, तब मैंने घर वालों को बताया कि मुझे कार्यकर्ता से ही शादी करना है। मेरे संगठन को भी, वनवासी कल्याण आश्रम के संगठन को भी मैंने बताया कि मुझे शादी करना है, तो आप कार्यकर्ता कोई है तो देखिए मुझे अच्छा लगेगा ऐसा शादी करके काम करने का। तो फिर घर के और संगठन के दोनों ने मिलके हुई वो सब ढूंढा, फिर डॉक्टर गोडबोले जी का नाम सामने आया, उसके बाद फिर जैसा रामचंद्र जी के पीछे पीछे फिर।
1: डॉक्टर रामचंद्र, ये बताइए कि जब आप बस्तर पहुंचे तो आपने बारसूर में रहना शुरू किया और फिर यहां से गतिविधियां शुरू की। अबूझमाड़ तो उस समय और भी दुर्गम रहा होगा, आज भी अनसर्वेड एरिया है। कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए और कैसे आप लोगों ने इन चैलेंज का सामना किया?
2: अबूझमाड़ में जाना आना तो काफी कठिन ही था उस समय, फिर भी हमारे साथ कुछ माड़िया आदिवासी लड़कियां थी, तो वो 8-10 लड़कियां पहले से रहती थी, उनके साथ ही हम लोग जंगल जाते थे, उनके साथ ही अबूझमाड़ में गए थे। देखने के लिए आया था बस्तर, उस समय भी अबूझमाड़ ही जाके आया। थुनथुली कोलंकाल जो गांव अभी हमने सुना है, वहां तक मैं उस समय घूम के आया था। तो अबूझमाड़ तो काफी, मुझे देखने से ही पता चला कि ये काफी कठिन है और इतना दूर से पेशेंट आते हैं, तो हमको कुछ ना कुछ अपने प्रिंसिपल्स हमको पक्के करने हैं। बिना नाम लिखने के पहले ही पेशेंट को ट्रीटमेंट चालू कर देना, पैसा नहीं पूछना, और उसको जहां ठीक हो जाए वहां तक ले जाके उसको ठीक करवा के लाना। हम अबूझमाड़ में इतना दूर मेडिसिन के लिए नहीं जा सकते थे, ले जाके पेशेंट हमारे यहाँ आते थे तो उनका आना ही इतना कठिन था। 2 घंटा 3 घंटा 4 घंटा 6 घंटा, कभी कभी 6 बजे पेशेंट निकला है, वो पेशेंट शाम को 6 बजे हमारे पास आ रहा है, 12 घंटा उनको पैदल आना पड़ता है। ये सब देखने के बाद मेरे अंदर इतनी प्रेरणा जागृत हो गई, आपको आश्चर्य लगेगा कि 20 किलोमीटर गिदम है, 4-4 महीना में गिदम नहीं आता था, मैं बारसूर में बैठा रहता था, क्योंकि सेरेब्रल मलेरिया की केस है, निमोनिया की केस है, गैस्ट्रोएंटेराइटिस का बहुत डेंजरस केस है। ऐसी केसेस जब आएगी उस समय आपको उसके साथ रहना ही है। अगर मैं यहाँ ट्रीट नहीं कर सकता हूँ, ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम है, तो महाराज अस्पताल जगदलपुर में ट्रांसफर करना है, तो एम्बुलेंस ड्राइवर डीजल हम पक्का तैयार करके रखते थे। इतना ही नहीं, इतवार को जो पेशेंट रुकते थे वो पेशेंट के लिए सवेरे जो भी ट्रीटमेंट करना है सब करना है, तो एक ऐसा लगता है कि इतवार को मैं थोड़ा जंगल घूमने के लिए जाऊंगा, इंद्रावती घूमने के लिए जाऊंगा, कहीं भी जाऊंगा। तो मैं घूमने के लिए जाऊंगा तो भी मैं आश्रम में बोल के जाता था कि मैं इस इलाके में हूँ, अगर जंगल का पेशेंट आए तो तुरंत मुझे बुलाना है। इतना इतवार को भी हम लोग सतर्क रहते थे और पेशेंट को हम जैसा करेंगे ट्रीट करेंगे, अब नहीं हो रहा है, ज्यादा प्रॉब्लम लग रहा है, तो 1.25 घंटा में उसको महारानी में जाके पहुंचाना है। ये हमारा एक कोड ऑफ कंडक्ट जैसा ही हो गया था वो, इसलिए कई पेशेंट वो हम जान बचा पाए। क्योंकि हम हमारे पास आने के बाद जब मुश्किल से 15-20 मिनट हमको मिलेगा, अगर झटका आ रहा है, सर्वर मरिया की केस है, हम जितना कर सकते उतना कर लेंगे, 1.25 घंटा में उसको कैसा भी करके महारानी में पहुंचाना है। हम लोगों का एक नीतिगत निर्णय था वो, इसलिए हम लोग कर पाए और हम अच्छा काम कर रहे हैं। अपने अंदर एक विश्वास रहता है कि मैं ऐसे लोगों के लिए काम कर रहा हूँ, तो इसलिए हम लोग ये कर पाए। कठिनाई भाषा के प्रश्न था, लेकिन हमारे साथ माड़िया महिला ही थी, इसलिए वो भाषा का प्रश्न हमारे लिए प्रॉब्लम नहीं आया।
1: अच्छा मैडम, आप बताइए कि महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर बड़ा हमेशा प्रश्न रहता है, शहरी समाज में भी है, फिर आप तो अबुझमाड़ और बस्तर के दूरस्थ क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, वहां आपने क्या देखा और कैसे देखा कि जो सिस्टम में काम हो रहा है उसकी सीमाएं हैं, बहुत ज्यादा मनमाने तरीके से कहीं कोई अंदर जा नहीं सकता, तो आपने क्या देखा कि वहाँ के समाज की महिलाओं के स्वास्थ्य को लेकर किस तरह की चुनौतियां हैं?
0: वो क्षेत्र ही पूरा बुनियादी सुविधाओं से वंचित था, इसीलिए किसी को भी आना और वो जैसे डिलीवरी के लिए आना है या कोई बच्चा बीमार है या बार बार, अभी तो हम इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी की बात करते हैं कि भाई अस्पताल में डिलीवरी हो सभी महिलाओं, लेकिन उस समय ये सब संभव ही नहीं था क्योंकि उन तक वो बात पहुंचती ही नहीं थी, उनको वो समझ में भी नहीं आती थी, क्योंकि स्वाभाविक रूप से वहां से आना ही उनके लिए एक बहुत ही कठिन बात थी। अच्छा, वो डिलीवरी की अगर कोई महिला है, मतलब प्रेग्नेंट गर्भवती महिला है, तो उसको 6-7 घंटा चला के लाना, मतलब वो खुद पैदल चल के नहीं आएगी, यानी उसको तखत खटिया पर डाल के वैसा सब लाना है, तो उसके लिए बाकी लोगों का जुगाड़ करना पड़ता है। फिर अगर वो बाकी लोगों का जुगाड़ करना है तो उनको भी कुछ देना पड़ता है कभी कभी, कम से कम दाल चावल दे दो, तब जाके लोग तैयार होते हैं। तो ये सभी दिक्कतें हमको धीरे धीरे समझ में आई, पहले तो नहीं आई लेकिन धीरे धीरे समझ में, क्योंकि हम जैसा अस्पताल तो चलता ही था, लेकिन हमारे जो कार्यकर्ता महिला थी, बहने थी और मैं, हम लोग तो गांव-गांव में जाते थे, तो गांव-गांव में ये सभी समस्या आई, तो हम लोग महिला चेतना शिविर जो लेते थे उसमें ये सब बातें रख बहुत सारा है, क्योंकि अभी छत्तीसगढ़ अलग राज्य बनने के बाद बहुत कुछ माहौल बदला है, क्योंकि स्वाभाविक रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों में सुधार आया है। पहले तो बारसूर में अस्पताल भी ढंग का नहीं था, लोग हमारे यहाँ ही कल्याण आश्रम के ही अस्पताल में आते थे, तो ऐसे में, और वो महिलाओं को उतना ये भी नहीं था, मतलब अभी भी बहुत जगह जो पहुंच विहीन गांव अभी भी है, तो ऐसे गांव में यही मान्यता है कि जैसे हमारे आजू बाजू में वो आदिवासी जो है ना, वो एक निसर्ग का भाग है ना, तो ये सब देख के हमें लगा कि भाई ये तो ठीक नहीं है, इस प्रकार से अगर इनके समझ में हमको बदलाव लाना है तो सबसे पहला है कि महिला ही है कि जो ये बदलाव की वाहक है, तो उसको हमने फिर हाथ में ले लिया भाई, ऐसे महिलाओं के हमने समूह बनाए, समूह मतलब आज की भाषा में जो आर्थिक समूह है वैसा नहीं, लेकिन उनका गुट बनाना, उनकी महिला समिति बनाना, फिर कुछ महिलाएं वहां पर थोड़ी जागरूक थी, जागरूक इन द सेंस कुछ आध्यात्मिक संप्रदायों से जुड़ी हुई थी, तो ऐसे महिलाएं साफ सुथरा रहना है, कुछ अच्छे कपड़े, मतलब ठीक ठाक कपड़े, बहुत फैशन के कपड़े की आवश्यकता नहीं है या महंगे भी नहीं, लेकिन ठीक ठाक कपड़े पहनना, अपना जैसे पानी भी भर के लाया या पेज बनाया, मतलब घर में जो भी अन्न बनाएंगे उसको ढक के रखना, यहाँ तक मालूम नहीं था, तो ये तो बाल संगोपन और ये सभी की बातें तो और दूर की बातें हैं, तो ये सब हमने धीरे धीरे उनके शिविरों में ऐसा जा जाके बता के, हमारी दो दो जो बहने थी उनको हमने प्रशिक्षित करके ऐसे हम 8 सब सेंटर चलाए, और उसके आजू बाजू के 15-16 गांवों में ये बहने जाती थी, वहां पर ये सभी बातें बताती थी, उसके कारण ये बात हुआ कि जल्द से जल्द पेशेंट को लाना है, बारसूर ले जाना है और ठीक ठाक करना है, अपने बच्चे को भी जो बीमारी हुई है उसको कैसे बताना यहाँ तक भी सिखाना पड़ता था। एक बच्चा आया था, मतलब माँ लेके आई थी उसकी, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का होगा, गोद में उसको बिठाई, ये जांच कर रहे थे, और जांच करते समय उसने बताया कि इसको दस्त हो रहा है, 8-10 दिन हो गया ऐसा वैसा, फिर उन्होंने पूछा बुखार है क्या, ये है क्या, जो भी उससे संबंधित जो भी पूछना था जानकारी पूछ लिया, फिर उसको इंजेक्शन देना था या और कुछ जांच करना था, तो जांच करते समय वो ऐसा पल्लू रखी थी उसके सिर पर, वो पल्लू हट गया, हटने के बाद देखते हैं तो क्या वहां पर पूरा घाव सिर में और उसमें कीड़े हुए थे, और वो महिला उसके लिए नहीं आई थी, ये मुझे आश्चर्य लगा। मैं बोली आपको, मैं उसको पूछा मैंने कि आपको ये नहीं लग रहा है कि ये भी है बीमारी? हाँ बीमारी है, लेकिन वो गुनिया के पास हम जाते हैं। उसने इतना सहजता से जवाब दिया कि 2 साल के बच्चे को यहाँ इतना घाव है, उसमें कीड़े हुए हैं, उसकी कोई जानकारी, मतलब वो गंभीरता है ये जानकारी नहीं है, और वो खाली दस्त हुआ है, बुखार आ रहा है, उसके लिए वो बता रही। तो ये जो ऐसे धक्के मिले ना हमको एक एक अनुभव के, तो ये मतलब अभी भी हमको ऐसे इस प्रकार के लोगों को इतना बता रहे हैं, फिर भी कुछ गांवों में अभी तक ये बातें पहुंची ही नहीं है।
1: डॉक्टर रामचंद, आपको कैसा अनुभव रहा? आप उजमाड़ क्षेत्र में जब आप गए तो सबसे बड़ा चैलेंज जागरूकता ही था, सबसे बड़ी चुनौती लोगों को जागरूक करना ही था स्वास्थ्य के लिए।
2: जागरूक करना ये सबसे बड़ी बात है, वो कि हमको जो बीमारी आई है वो बीमारी ठीक हो सकती है, ये इनके दिमाग में नहीं है। तो बीमारी है तो शरीर है तो बीमारी रहती ही जाएगी, ये कौन सा बड़ी बात है। अरे लेकिन ये बीमारी तो ठीक हो सकती है। तो एक पेशेंट को लाए थे तो बोला कि 6 महीना हो गया, 6 महीने से बीमार है। तो बीमारी अबुझमार से था और बारिश के दिनों में वो ला रहे थे, तो गुडरा करके एक नदी है, वो नदी पार करके फिर इंद्रावती नदी पार करके उस पेशेंट को लाया। तो मैं बोला भैया मैं इसमें ही तो इतना बड़ा प्रॉब्लम था कि ये दोनों नदियों में तो आदमी बह जाता है, इसमें बच करके यहाँ आया है। और उसको डायबिटीज विद ट्यूबरकुलोसिस विद जॉन्डिस, ऐसे 3 बीमारी थी उसको, इस पेशेंट को। तो मैंने देखा तो मैं बोला अरे भैया ये तो बहुत ज्यादा है, सीरियस केस है ये, इसको कैसा रखेंगे। तो वो फिर पेशेंट को हम लोगों ने जगदलपुर ट्रांसफर किया, पेशेंट ठीक होके आ गया। अबुझमाड़ में इसका हम लोगों ने अभी भी दर्शन कर रहे हैं, अभी भी कुपोषण का कार्यक्रम हम लोग ले रहे हैं ना। तो बच्चों को 10 दिन का चिक्की देने के बाद 3 दिन के बाद जाते हैं तो पूरी चिक्की खत्म हो गई, कौन खाया? तो बोला हमारा एक साला है दूर से आया अबुझमाड़ से, वो आया है वो देखा और वो 4-5 किया वही खा लिया। अरे ऐसा मत करो, बच्चों को बीमारी से मुक्त करने के लिए सब अभियान चल रहा है और वो चिक्की अब दूसरे लोग खा रहे हैं, कोई आया और जवान लड़का आया और 4-5 चिक्किया वही खा लिया, ऐसा नहीं करना है। तो हम लोगों कभी लोग बोलते हैं अबुझमाड़ में आपको काम करना है तो इस समस्या से आपको जूझना पड़ेगा कि कोई भी चीज गंभीरता से नहीं लेते, उनको गंभीरता लानी पड़ेगी, चेतना जागृति, उसके बाद ये सारे कार्यक्रम। तो अबुझमाड़ में अपने मेडिकल सर्विसेज पहुंचाना आज भी बहुत बड़ा चैलेंज है।
1: जी जी, आपने देखा महिलाएं काफी ज्यादा एनेमिक होती हैं, खासतौर पर आदिवासी समाज में सिकल सेल की भी समस्या है, इसको आप लोगों ने कैसे एड्रेस किया? पहले आप बताइए कि वाकई में मतलब जो महिलाएं हैं वो कितने जागरूक हैं, एनीमिया है उनको इस बात को लेकर के, और क्या ये वाकई में कई तरह की बीमारियों को?
0: वही बात मैं फिर से बताऊंगी कि जो अभी भी पहुंच विहीन गाँव है, आपको रोड साइड के गांवों में जहां तक ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन की सब सुविधाएं अभी पहुंच रही है, वहां की महिलाएं जागरूक हो रही है, इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी कर रही है, मितानिन जो बता रही है उसको समझ रही है, आगे अपने जो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है उनका भी वो सुनती है, कुछ कुछ टीकाकरण है वो सब करती है, लेकिन अंदर में अभी भी दुनिया का ही प्रभाव है। और वो अगर आते भी है तो भी बूढ़े लोग वहां पर है। अभी जैसे हमारा नारायणपुर रोड पर जो बोतली घोटिया हरा कोडेर वगैरह गांव है वहां पर ये चलता है उनके जो, क्योंकि वो तो बस्तर जिला पड़ता है वहां से, लेकिन फिर भी वहां से नर्स और ये लोग आते हैं, वेलनेस सेंटर करके आजकल जो कल्पना सरकार ने ये की है उसके अंतर्गत होते हैं, मेरे ख्याल से 2 नर्स और एक ये डॉक्टर तो कभी कभार ही आता है लेकिन 2 नर्स वहां बैठे रहते, तो उनके पास गोली वगैरह मांगने, लेकिन वही पुराने ही मतलब जो बुजुर्ग पुराने नहीं बुजुर्ग जो है वही बार बार आते हैं। मेरे बच्चे को वहां पर समय पर ले जाना चाहिए और ये करना चाहिए, ये बहुत ही कम होता है
1: अभी भी ये।
0: बस कुछ गांवों में हमारे कारण जो है वो ये हुआ है, चलो भाई कम से कम मलेरिया जो जांच है वो तो करो। आपको लगता है ना कि बच्चे का मलेरिया उसको कैसा हो रहा है, उनको समझाया हमने दिन तक है बीमारी और ठंड लग रही है ये है, तो वो सब पहचानते हैं और वो वेलनेस सेंटर में आके कम से कम वहां पर ये करते हैं, नहीं तो पहले तो वो उसके लिए भी गुनिया के पास ही जाते थे, लेकिन ये है। और कुछ क्षेत्रों में गुनिया भी हमको सहयोग कर रहे हैं कि भाई आप जाओ जो मतलब हाँ वो उनमें वो जागृति आई है कि भाई मलेरिया है वो तो तुम जांच करके आओ उसके बाद मैं दवाई दूंगा। वो एक बार अस्पताल गए तो अस्पताल में दवाई मिलती ही है, वो थोड़ा बहुत ये होता है।
1: डॉक्टर रामचंद, आप लोग इसके अलावा कुपोषण एनीमिया के लिए भी एक अभियान चला रहे हैं इस क्षेत्र में?
2: हाँ, हम लोगों ने माल न्यूट्रिशन एनीमिया एलिवेशन स्कीम मास नाम से अलग स्कीम बनाई है, उसमें हम लोग जो जंगल का क्षेत्र एकदम अबुझमाड़ या अबुझमाड़ में 5-6 गांव में हमने चालू किया और बाकी क्षेत्र में भी है, जैसे इंद्रावती किनारे का सब इलाका है, वहाँ हम लोग एक गांव के 20 बच्चों को चुनते हैं जिनका हीमोग्लोबिन 8 ग्राम परसेंटेज के नीचे है, उन बच्चों को हम चुनते हैं, उनकी पूरी जांच बाल रोग तज्ञ से उससे पूरी जांच करवा लेते हैं, उसके बाद उसके अदर जो डिसीजेस है वो सब कंट्रोल करने के बाद फिर कृमि का गोली, फिर मलेरिया की ट्रीटमेंट, मलेरिया प्रतिबंधन जो है वो, उसके बाद फलीदाना गुड़ और काला तिल इसका चिक्की, और एक चूड़ा बनाते हैं कि वो चना मूंगफली तेल हल्दी जो मुरा ये सब चूड़ा ये देते हैं। उसके बाद हम लोग तेल दाल तेल और बाकी मिरी और हल्दी हल्दी ये सब कुछ तो ये सारा उनको हम देते हैं। तो मध्यान्ह भोजन उनको करना है, उनका घर का चावल और हमारा दाल और तेल दिया वाला उसका उनको रोज खिलाना है बच्चों को। तो ये कार्यक्रम चलता है। सब्जी बीज भी देते हैं कि सब्जी बना सब्जी उगा के वो अपने रोज का जो भोजन है उसमें सब्जी पन्ना डाले हरे पन्ने का सब्जी डाले ये भी हम लोग उनको देखते हैं। मच्छरदानी लगाते हैं कि नहीं ये भी देखते हैं क्योंकि मलेरिया के कारण भी खून टूट रहा है तो वो मच्छरदानी का भी प्रावधान रखते हैं हम लोग। अगर मच्छरदानी नहीं है तो हम मच्छरदानी देंगे लेकिन बच्चे को मच्छरदानी में ही सुलाना है। तो उस गांव में भी एक मॉनिटर करने के लिए एक व्यक्ति को नियुक्त करते हैं और हम इतना तक बोलते हैं कि रात को 10 बजे जाके देखो कि वो बच्चा मच्छरदानी में सोया है कि नहीं सोया है। अगर रिपोर्ट आया कि नहीं मिल रहा है तो हम मच्छरदानी भी भेजेंगे। इतना तो करने के बाद 6 महीना प्रयास करने से हीमोग्लोबिन 12 के ऊपर चला गया तो 10 में से 8 बीमारियां बंदी हो जाती। तो उनको मंत्री के पास जाना सरकारी अस्पताल में जाना ब्लड ट्रांसफ्यूजन करवाना पड़ता है ये सारी चीजें मलेरिया ये सारी चीजें बंद हो जाती है। हम लोगों ने अभी तक 24-25 गांवों में ये कार्यक्रम चलाया 400 के ऊपर बच्चों को हम लोगों ने इसमें ठीक करवाया है। एक समय हम लोग 1-2 गांव लेते हैं इस बार हम लोगों ने 4 गांव लिए हैं माने 80 बच्चों के लिए हम लोग कार्यक्रम चला रहे हैं हम लोग। तो ये हम लोग प्रोग्राम अभी लगातार चल रहा है 2021 से हम लोग कुपोषण के ऊपर लगातार काम कर रहे हैं और इसका मैंने विचार बदलो तो नसीब बदलेगा ऐसा बोलते हैं। तो स्कूल में जाके इसी सारे अनुभव हम स्कूल में जाके बच्चों को सुनाते हैं 6वीं 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं 11वीं के बच्चों को भी हम सुनाते हैं कि ये सारी चीजों को हम लोगों को ठीक करना है। हमारा कुपोषण हमारा सबसे बड़ा शत्रु है मलेरिया भी हमारा शत्रु है उससे हम लोगों को पार होना है। और तीसरा शत्रु हम लोग जो बोलते हैं कि गुटखा गुड़ाखू पोगो सल्फी लान मंदा इससे दूर रहना ही है तो ये भी अलग से हम लोग बच्चों को सिखाते हैं। हम शपथ लेते हैं बच्चों को स्कूल में जाके बच्चों से शपथ लेते हैं कि हम इन नशीली चीजों को हम कभी स्पर्श नहीं करेंगे। जो दोस्त आपको भोजन खिला रहा है केला खिला रहा है सब्जी खिला रहा है फल खिला रहा है मछली अंडा खिला रहा है वो आपका दोस्त है। जो आपको पोगो गुटखा गुड़ाखू सल्फी लन मंदा पिला रहा है वो आपका दोस्त नहीं है वो छद्म है। वो आप पहचानो आपका दोस्त कौन है और दोस्त के ऊपर आपका प्रभाव होना चाहिए दोस्त का प्रभाव आपके ऊपर नहीं होना चाहिए।
1: सुनीता जी आप और आपके पति बारसूर में रहते हैं लंबे समय आप लोगों ने ऐसे क्षेत्र में रह करके आपने जीवन बिताया है कभी शहरी जीवन की इच्छा नहीं?
0: नहीं नहीं शहरी जीवन की इच्छा नहीं हुई। अभी जब भी कभी हम शहर में जाते हैं तो थोड़ा दिन के लिए जाते हैं फिर हमको बारसूर की तुरंत याद आती है जंगल की याद आती है तो आ ही जाते हैं। और यहाँ जो सुकून है भले वो चैलेंजेस है बहुत सारी हमको भी निराशा का इसका सामना करना पड़ रहा है पड़ता था और ऐसे सब कुछ खट्टे मीठे अनुभव भी है इसमें स्वाभाविक रूप से लेकिन एक जो मन में लिया है उसको तो हमको करना है और वही जीवन में अब हमको रुचि है कि नहीं हम आखिरी में जो हमको आनंद देते हैं ऐसे भी तो बहुत सारे प्रसंग है ही कि अरे चलो इनको ठीक किया तो वो बच्चा आज ठीक होके हमारे सामने चलने लगा या उसकी माँ भी आनंद से बताती है कि नहीं देखो आपने जो ऐसा ऐसा इसको ठीक किया था ना ये अभी बड़ा हो गया है जब वो बाजार दिन लेके आती है तो अच्छा ही लगता है।
1: जी जी रामचंद्र जी आप दोनों ने आजीवन निस्वार्थ सेवा की है इस क्षेत्र में बड़ा त्याग किया है जीवन का तो अब आप जो नई युवा पीढ़ी है जो शहरी क्षेत्रों में है इन विभिन्न तरह की समस्याओं के बारे में सुनती है उनको लेकर कोई संदेश देना चाहेंगे?
2: पहली बात तो मैं ये बोल रहा हूँ कि मैंने किया ऐसा तो मुझे कुछ नहीं लग रहा है मेरे अंदर जो कोई एक भगवान बैठा है वो मेरे से करवा रहा है तो ये है। दूसरी बात मैं इसका एक अनुभव मेरे जितने युवा लोग हैं ज्यादा करके जो जनजाति समाज के आदिवासी समाज के जो युवक लोग हैं युवतियां लोग हैं मैं उनको बिल्कुल ये बताना चाहता हूँ कि जिस समय हम लोग ये काम कर रहे हैं हमारे सामने ऐसा कभी नहीं लगा था कि हमको केंद्र शासन से कोई पद्मश्री मिलने वाला है। हमको कभी हमने सोचा भी नहीं था कभी हमने मन में इच्छा थी ऐसे भी नहीं है इच्छा भी नहीं थी मिलने का भी संभावना ही नहीं था। हम अपना काम करते रहे लेकिन मेरा अनुभव ये है कि अच्छा कर्म का फल आपको अच्छा मिलता ही है। ये केवल मैं सुनता था पढ़ता था लेकिन अब मैं प्रत्यक्ष रूप में देख रहा हूँ कि जो हम लोगों ने काम किया उसका फल हमको हमारी भारत माता ने हमको ये दे दिया है। ये एक प्रकार की माँ बच्चे को जो एक मीठा उपहार खिलाती है उसी दृष्टि से मैं देखता हूँ कि भारत माता और मैं हम माँ और बच्चे का जो प्रेम है वो भारत माता ही हमको ये पुरस्कार के रूप में हमको उपहार खिला रही है इसलिए उसका अलग आनंद है और आनंद ही आनंद है प्रश्न ही नहीं। अच्छा कर्म करेंगे उसका अच्छा फल मिलता ही है ये मैं जीवन से अपने अनुभव से मैं स्पष्ट रूप से अनुभव कर रहा हूँ।
1: सुनीता जी, आप कुछ कहना चाहेंगी ग्रामीण क्षेत्रों की नई युवतियों को भी और जो युवतियां हैं उनको भी और जो शहरी क्षेत्र में अभी पढ़ लिख रहे हैं?
0: हाँ, दोनों के लिए भी एक है कि अपने समाज के बारे में हमें सोचना चाहिए। जो स्वयं जो जनजाति समाज से है उनको तो सोचना ही चाहिए, क्योंकि जो भी बदलाव होता है वो समाज में जो विचार करने लायक युवक किशोरी वयन से वो जो सामने आते हैं और विचार करते हैं, कुछ उसमें कृति करते हैं उसके लायक, तभी वो बदलता है। क्योंकि हम जाके बताएंगे कि भाई आपने ये क्यों नहीं सोचा, आप ऐसा क्यों सोचते हो, आपने ऐसा करना चाहिए, ये बात एक अलग होती है। और मैं खुद उस गांव की हूँ और मैं स्वयं अपने गांव को अगर समझाऊंगी तो उसका असर अलग ही होता है। इसलिए वो ये जनजाति समाज में इनको सोचना चाहिए कि सोशल मीडिया है, बाकी बहुत सारे है, रील्स बनाना है, ये करना है, वो सिनेमा देखना है, ये सब है, होटलिंग करना है, गोलगप्पे खाना है, ये है, लेकिन इसके बाद भी मेरा गांव, मेरा परिवार, मैं तो स्कूल में आ गई लेकिन मेरा परिवार घर में कैसा है, वो अगर बार बार फिर वही जा रहा है, मेरी माँ, मेरी भाभी या मेरे बहन अगर वही कुपोषण में एनीमिया से जूझ रहे हैं, बार बार बीमार पड़ रहे हैं, और मैं यहाँ पर हॉस्टल में रह के खाली पैसे की मांग कर रही हूँ और पढ़ रही हूँ, या पढ़ने में भी मैं अच्छी हूँ, तो भी उसका उपयोग नहीं है। मतलब लोकमान्य तिलक जी बोलते थे कि आपके विद्या का उपयोग अगर आपके देश के लिए ना हो तो वो विद्या का कोई अर्थ नहीं है, उसी प्रकार हो गया। इसीलिए हमने जो पढ़ा है स्कूल में तो उसका उपयोग हमें गाँव में अपने समाज के लिए करना चाहिए, शुरुआत हमेशा परिवार से ही होना चाहिए। तो ये है। और जो युवक मतलब जो शहर में रह रहे हैं उनको तो अपने समाज को देखना है, भाई मैं अकेला आगे गया तो जैसा परिवार का कोई एक व्यक्ति अकेला गया तो परिवार आगे गया नहीं बोलता है ना कोई, परिवार के अगर कोई कमजोर है पीछे है तो वो बोलेंगे ही। उसी प्रकार है कि भाई देश में कुछ समाज घटक ऐसे है कि जिनको जो वंचित है, बुनियादी सुविधाओं से वंचित है, बुनियादी ज्ञान से वंचित है, लेकिन उनमें भी कुछ विजडम है, कुछ अच्छी बातें है, उसको जीवित करते हुए हम क्या कर सकते हैं, और उसके लिए हम हमारे जीवन का कुछ काल अगर ऐसे इसमें गांव में या ऐसे परिसर में अगर हम बिताएंगे तो हम तो बोलते हैं कि स्वागत है। हम जो स्कूल में एजुकेशन का काम करते हैं, गांव में जाके काम करना इतना आसान नहीं है क्योंकि यहाँ पर हल्बी गोंडी ये जो उनकी जो स्थानीय भाषा है वो सीखनी पड़ती है, लेकिन स्कूलों में जो हमारा काम चलता है उसमें हमें जरूर ये जो निवृत्त शिक्षक है या कोई भी जो रुचि रखता है कहानी बताने में, ये बताने में, गीत बताने में, कुछ खेल लेने में, तो वो जरूर आए हमारे पास। हम स्कूलों में उनका कार्यक्रम रखेंगे, हमारी ओर से कुछ हम प्रशिक्षण भी देंगे कि भाई कैसा होता है, क्या करना है, और 15 दिन भी रहेंगे, 15 दिन में 7-8 स्कूल तो आराम से हो जाते हैं, ऐसे 15-15 दिन में 2-2, 4-4 लोग आते जाएंगे, तो ये होना चाहिए। मेरा और एक मतलब है आखिरी का कि हमारा एक विनती है छत्तीसगढ़ वासियों को, छत्तीसगढ़ के जो शहर है वहाँ की जन युवक जो है वो हमारे क्षेत्र में बहुत कम आते हैं, बाहर के राज्य के बहुत सारे आते हैं लेकिन यहाँ के क्षेत्र के बहुत कम आते हैं। तो यहाँ के क्षेत्र के युवाओं को मैं जरूर आह्वान करूंगी और कि आप जरूर बस्तर आइए, देखने के लिए, टूरिज्म के लिए तो आते ही हैं, लेकिन कुछ एक अपना अच्छा यहाँ के लोगों के साथ जीवन कैसा ये करना है उसके लिए भी जरूर आइए।
1: तो ये थे सुनीता गोड़बोले जी और डॉक्टर रामचंद्र, जिन्होंने अपना पूरा जीवन निस्वार्थ भाव के आदिम समुदाय की सेवा में बिताया है, और उनकी इस प्रेरक बातचीत के जरिए आपने जाना कि हमारी शिक्षा का, हमारी हमारी जो जीवन शैली है उसके क्या दायित्व हैं परिवार और समाज के लिए।
3: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी छत्तीसगढ़ में चिकित्सा क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान देने वाले श्री रामचंद गोड़बोले और श्रीमती सुनीता गोड़बोले के साथ हमारी खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे नरेश मिश्रा। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं, पता है podcast.airnews@gmail.com।
4: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी FM 100.5 MHz पर, ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, और अब सुनिए देशगान।

0: अभी आप सुन रहे थे देश गान FM 100.5 MHz पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है। सुबह के 9:45 हुए हैं और अब सुनिए कार्यक्रम सेहत, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं थायराइड लक्षण कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर अश्विनी शर्मा से रमेश चंद्रा की बातचीत।
1: श्रोताओं, आज कार्यक्रम में हम जानेंगे थायराइड लक्षण कारण और उपचार के बारे में। इस विषय पर जानकारी देने के लिए हमने अपने स्टूडियो में आमंत्रित किया है वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर अश्विनी शर्मा को। डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी, कार्यक्रम आपका बहुत बहुत स्वागत।
2: धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। आपसे जानना चाहेंगे थायराइड क्या होता है।
2: देखिये, थायराइड एक ग्रंथि होती है, एक बटरफ्लाई शेप की ग्रंथि है जो की हमारे गले के पास में होती है और इसको हम मास्टर ग्लैंड ऑफ द बॉडी भी कहते हैं, जो मेटाबोलिज्म भी देखता है। तो थायराइड ग्रंथि हमारा T3 एंड T4 नाम के दो हार्मोन को बनाती है जो कि हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करते हैं और वो हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाते हैं।
1: डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी, आजकल थायराइड के जो मरीज हैं वो तेजी से क्यों बढ़ रहे हैं?
2: देखिए, थायराइड अगर हम सतही तौर पे जाएं स्टार्टिंग से, तो थायराइड

0: दो टाइप का होता है। एक होता है हाइपोथायरायडिज्म, जिसमें हमारी थायराइड की ग्रंथि जरूर से कम काम कर रही है, और एक हाइपरथायरायडिज्म। ठीक है, ये दोनों चीजें थायराइड ग्रंथि की एक कम प्रक्रिया से काम कर रहा है, एक ज्यादा काम कर रहा है। अभी आपका जैसे पूछा है कि आजकल ज्यादा क्यों है, देखिए जो हम हाइपोथायरायडिज्म जो कि हमें ज्यादातर अपने पेशेंट्स में देखने को मिलता है, ये बेसिकली दो तीन कारण होते हैं। जैसे मोस्ट कॉमन इज हाशिमोटो थायराइडाइटिस, मतलब कि आपके बॉडी का इम्यून सेल्स जो है वो आपकी बॉडी के ही सेल्स को मार देते हैं या थायराइड की ग्रंथि को ही मारने लगते हैं, तो उसकी वजह से जो थायराइड है वो जरूर से कम काम करने लगता है। इसके अलावा जो और दो चार कॉजेज हैं, जैसे कि थायराइड ग्रंथि का ऑपरेशन हो जाना, तो थायराइड ग्रंथि को काट दिया जाता है तो उसका काम थोड़ा कम हो जाएगा, या फिर आयोडीन की कमी। पर इन तीनों में सबसे ज्यादा जो कॉमन है वो है ऑटोइम्यून हाशिमोटो थायराइडाइटिस, और ये हमारी बॉडी के एक ऑटोइम्यून सिस्टम को ट्रिगर ऑन होने से होता है। आजकल हमारा जैसे रहन सहन है, खान पान है, तो उससे बहुत कॉमनली ये होता है कि हमारा ऑटोइम्यून इश्यू जो है वो पनप जाता है, और उसकी वजह से हमें हाइपोथायराइडिज्म की दिक्कत आ जाती है।
1: डॉक्टर अश्विनी शर्मा, थायराइड के लक्षण क्या हैं?
0: देखिए जैसे मैंने अभी बताया, एक हमारे पास हाइपोथायरायडिज्म होता है और एक हाइपरथायरायडिज्म होता है। हाइपोथायरायडिज्म मींस थायराइड ग्रंथि का जरूरत से कम काम होना। तो जैसे अब मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि हमारा मेटाबॉलिज्म मेंटेन होता है, जब मेटाबॉलिज्म कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है, तो हमारा पूरी बॉडी में लेथार्जी हो जाती है, सुस्ती बना आ जाता है, मांसपेशियों में दर्द हो जाता है, इसको टेंडनाइटिस कहते हैं, कब्ज होने की दिक्कत हो जाती है, जरूर से ज्यादा ठंड लगने लगती है, शरीर में फुलावट आ जाती है, बिना कारण वजन बढ़ने लगता है, बाल झड़ने लगते हैं, नाखून टूटने लगते हैं, ऐसे बहुत सारे कॉमन सिम्टम्स आपको हाइपरथायरायडिज्म में दिखते हैं। और इसी के विपरीत जो सिम्टम्स हैं वो आपको हाइपरथायरायडिज्म में दिखेंगे, जिसमें थायराइड की ग्रंथि जरूरत से ज्यादा काम कर रही है।
1: बात करें महिलाओं की, तो उनमें थायराइड की समस्या ज्यादा क्यों देखी जा रही है?
0: देखिए इसका कहना तो बिल्कुल मतलब मुश्किल है कि महिलाओं में ज्यादा क्यों है, क्योंकि देखा गया है जो स्टडीज में कि महिलाओं को थायराइड के जो इश्यूज हैं वो मतलब जेंडर बेस्ड वो उनको ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू मेल बेस्ड, जो कि हमारा स्टडीज ने एविडेंस बेस्ड स्टडीज हैं उन्होंने इस चीज में बताया है।
1: जी, डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी, क्या तनाव या अनियमित जीवन शैली भी इसका एक कारण है?
0: ऑटोइम्यून इश्यू जो होता है वो ट्रिगर हो जाता है एक्सेसिव स्ट्रेस से, या फिर हमारी जो अनियमित दिनचर्या, जैसे कि देर रात तक जागना, खान पान में गड़बड़ी होना, तो ये बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कभी ना कभी किसी चीज में ऑटोइम्यून इश्यू को ट्रिगर ऑन कर देते हैं, जिसकी वजह से थायराइडाइटिस हो जाता है, ऑटोइम्यून थायराइडाइटिस हो जाता
1: जी,
0: है।
1: कोई पेशेंट है, किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि उसे थायराइड हो चुका है या संभावना है, तो कब जांच करवाए वो?
0: इसकी बहुत सरल जांच है, इसको हम कहते हैं थायराइड फंक्शन टेस्ट, जिसमें मुख्य तौर पर तीन पार्ट्स होते हैं, T3, T4 एंड TSH। T3 एंड T4 ये ऐसे हार्मोन्स हैं जो थायराइड ग्रंथि खुद बनाती है, और TSH जो हार्मोन है वो बेसिकली पिट्यूटरी ग्लैंड बनाता है, जो कि पिट्यूटरी से संदेश लेके आता है कि थायराइड को ज्यादा से ज्यादा काम करना है, तो वो उसको TSH कहते हैं, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो इसका जो जांच होता है वो खाली पेट होता है, और इसका जो एक पर्टिकुलर टाइम है कि उस समय अगर ब्लड का सैंपल दिया जाए तो सही रिपोर्ट आने के ज्यादा संभावना है, सुबह 7 से 10 बजे के बीच में खाली पेट हमारा पेशेंट जांच दे देता है, तो सही रिपोर्ट आने के चांसेस काफी बेहतर होते हैं।
1: डॉक्टर साहब, थायराइड का उपचार क्या है?
0: देखिए थायराइड का जो मैंने बताया, अगर हाइपोथायराइडिज्म है और आयोडीन की डिफिशियंसी से है, जिसको एंडेमिक गॉइटर भी कहते हैं, तो उसमें तो हम आयोडीन सप्लीमेंट देते हैं, बट जो मोस्ट कॉमन कॉज है, जैसे अभी मैंने हाशिमोटो थायराइडाइटिस बताया है कि ऑटोइम्यून इश्यू की वजह से होता है, इसका अभी तक जड़ से तो कोई इलाज नहीं है, पर इसके लिए हम हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी अपने पेशेंट्स को देते हैं, लॉन्ग
1: जी
0: टर्म देते हैं,
1: जी
0: जिसमें उनको थायरोक्सिन सोडियम या लिवर थायरोक्सिन की टैबलेट्स दी जाती हैं, जिनको वो रोज सेवन करते हैं, हार्मोनल रिप्लेसमेंट करते हैं और एक सामान्य जीवन व्यतीत करते हैं।
1: डॉक्टर साहब, आपने कहा कि हार्मोनल रिप्लेसमेंट थेरेपी जो चलेगी, ये जीवन भर चलेगी क्या?
0: देखिए मुख्य तौर पर ये जीवन भर ही चलती है, अगर किसी कारण से जो ऑटोइम्यून इश्यू है वो क्षीण हो जाता है या बहुत कम लेवल पे आ जाता है, तब हमारे जो हार्मोन लेवल्स हैं वो मेंटेन हो जाते हैं, तो हम कहीं हद तक गोलियों को कम कर सकते हैं, या कभी कभी हम उनको गोलियों को पेशेंट की कंडीशन के हिसाब से टाइटर कर देते हैं। जैसे कई पेशेंट्स हैं जिनको हफ्ते में एक बार गोली देनी पड़ती है, और ऐसे पेशेंट भी हैं जिनको रोज गोली भी खानी पड़ती है।
1: डॉक्टर अश्विनी शर्मा, क्या थायराइड के जो मरीज हैं उन्हें खाने पीने कुछ विशेष चीजों का ध्यान रखना चाहिए?
0: जी बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, एक तत्व होता है गोइट्रोजेंस, आमतौर पर देखा गया है जो हमें लिटरेचर भी बताता है कि एक फैमिली होती है वेजिटेबल्स की, जिसको क्रूसीफेरस फैमिली कहते हैं,
1: जी
0: जिसमें ज्यादातर फूल गोभी, पत्ता गोभी, मूली, शलगम, सोया

0: बहुत ही गंभीर इशू है शिशु के लिए, क्योंकि जैसे मैंने बताया थायराइड ग्रंथि हमारे मेटाबॉलिज्म को मेंटेन करती है। जब कोई भी औरत गर्भावस्था में होती है तो उसका मेटाबॉलिक डिमांड जो होता है वो सामान्य आदमी से ज्यादा होता है।
1: जी
0: तो अगर उसका थायराइड का इशू उनको पहले से है या उस दौरान पनपा है, और अगर थायराइड ग्रंथि कम काम कर रही है या ज्यादा काम कर रही है, तो उसका जो शिशु का डेवलपमेंट है, जो वो अंदर वूम के अंदर डेवलपमेंट है, उस पे असर पड़ता है, जिसपे बहुत सारी कंजेनाइटल एनोमलीज जो गर्भावस्था के दौरान जो शिशु को दिक्कतें हो सकती हैं।
1: आगे क्या शिशु के मानसिक विकास में या शारीरिक विकास में कोई फर्क पड़ेगा?
0: जी बिल्कुल, अगर थायराइड को मेंटेन नहीं किया तो शारीरिक और मानसिक विकास में फर्क पड़ने के पूरी संभावना है।
1: डॉक्टर साहब, क्या थायराइड से जुड़ी हुई कुछ गलत फहमियां भी हैं जो मरीज हैं उनमें प्रचलित हों?
0: थायराइड से जुड़ी प्रचलन ये है कि लोगों को लगता है कि हम जब थायराइड का टेस्ट कराते हैं कि TSH का टेस्ट करा लिया और वो बढ़ा हुआ आया, तो लोगों को ये लगता है कि भाई हमें थायराइड हो गया, और वो गोली का सेवन करने लगते हैं, या जो ब्लड रिपोर्ट उनके पास आती है वो देखते हैं कि सारे पैरामीटर्स बॉर्डर के अंडर हैं तो हमें थायराइड के इश्यू नहीं है, या हमने गोली खा रहे हैं, रिपोर्ट करा लेते हैं और फिर देखते हैं कि रिपोर्ट एकदम सही आई तो गोली छोड़ देते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। गोली का सेवन करना और गोली को छोड़ना आपको अपने चिकित्सीय सलाह के साथ ही करना चाहिए। अपने आप से कभी भी गोली को स्टार्ट करना या उसका सेवन बंद कर देना अपने आप से बिल्कुल नहीं करना चाहिए।
1: गोली कब खानी चाहिए?
0: गोली हमेशा अपने चिकित्सीय सलाह के साथ लेनी चाहिए, और सबसे बेस्ट टाइम गोली खाने का है वो होता है सुबह उठते ही खाली पेट, क्योंकि अगर आप जब भी गोली खाएं उससे 1 घंटा पहले और 1 घंटे बाद तक कुछ खाना नहीं होता है। अगर ऐसा किया तो कहीं ना कहीं जो गोली का असर है वो काफी कम हो जाता है, बॉडी में एब्जॉर्प्शन उसका कम हो जाता है। इसलिए बेस्ट टाइम हम कहते हैं जैसे ही आप सुबह उठें आप सबसे पहले गोली का सेवन कर लीजिए, उसके 1 घंटे पश्चात ही कोई टी कॉफी चाय वगैरह या कुछ भी नाश्ता है उसके 1 घंटे पश्चात ही करें।
1: डॉक्टर साहब, अगर कोई मरीज है वो गोली खाना भूल जाए तब क्या करे?
0: वो अगर गोली खाना भूल जाए, 1 दिन की गोली से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, वो नेक्स्ट डे अपना सेम रूटीन फॉलो कर सकते हैं।
1: 2-3 दिन भूल जाए तो क्या फिर ज्यादा डोज लेना सही है?
0: देखिए, एक गोली का जो असर होता है वो करीबन 5 से 7 दिन तक का होता है। अगर 1-2 दिन अगर वो भूल जाए तो कोई बहुत बड़ा बात नहीं है। हाँ, डिपेंड करता है कि वो कितने पावर की गोली खा रहे हैं। अगर उनका काफी डिरेंज्ड है तो उनको उसी अकॉर्डिंगली अपने चिकित्सा सलाह लेनी चाहिए, तो उस हिसाब से उनके जो डॉक्टर हैं वो उनको सलाह दे सकते हैं।
1: डॉक्टर अश्विनी शर्मा जी, आजकल सोशल मीडिया पर तरह तरह के थायराइड या अन्य बीमारियों के नुस्खे बताए जाते हैं। थायराइड के लेकर ये नुस्खे जो बताए गए हैं उनको बिना चिकित्सकीय सलाह के प्रयोग में लाना कितना घातक हो सकता है?
0: जी बिल्कुल, देखिए आजकल जैसे ही हमारे पास इंटरनेट है, मोबाइल है, तो हमारे पास ज्ञान का बहुत बड़ा भंडार है, पर हमें अपने विवेक का इस्तेमाल करके सिर्फ जो सर्टिफाइड लोग हैं, जो सर्टिफाइड डॉक्टर्स हैं, चिकित्सक हैं, आपके अपने घरेलू चिकित्सक जो हैं, जो आपके आसपास हैं, आप जिनसे ट्रीटमेंट लेते हैं, उन्हीं के सलाह को आप मानिए, और उन्हीं के सलाह से आप कोई भी थायराइड की गोली या इनका सेवन करें। कोई भी बिना जो सोर्स है उसको बिना जांचे आप उस इंफॉर्मेशन पे बिलीव ना करें।
1: डॉक्टर साहब, हमारे यहाँ ओवर द काउंटर झाड़ फूंक और तमाम इस तरह की अन्य चीज़ों का भी प्रचलन है, ये कितनी कारगर हो सकती हैं थायराइड में?
0: जी, ये बिल्कुल कारगर नहीं है, और मैं अपने श्रोताओं से कहना चाहूंगा कि ऐसी चीजों पे बिलीव ना करें, सिर्फ सर्टिफाइड वेरीफाइड इंफॉर्मेशन पे ही भरोसा करें और चिकित्सीय सलाह पे ही दवाई को सेवन करें।
1: यदि कोई व्यक्ति थायराइड से ग्रसित है तो उसे रोजमर्रा की जिंदगी में कौन सी सावधानियां अपनानी चाहिए?
0: सबसे पहली बात है कि आपको अपनी दवाई को नियमित रूप से लेना है, और कभी भी बहुत ज्यादा ओवर एग्जर्शन नहीं करना है, और तनाव मुक्त रहना है। 1/2 आवर की वॉक पूरे दिन भर में रखनी है और 10 बजे तक सो जाना चाहिए।
1: आप तनाव मुक्त जीवन की बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब, लेकिन आज के समय जो व्यक्तियों का जीवन है वो तो तनाव से पूरी तरह भरा हुआ है, चारों तरफ तनाव ही है।
0: जी देखिए, मैं जब तनाव की बात कर रहा हूं तो मैं आपको एक्सप्लेन करना चाहता हूं कि मैं चिंता की बात नहीं कर रहा हूं, मैं चिंतन की बात कर रहा हूं। जो ओवर थिंकिंग हम करते हैं, छोटी छोटी बातों को मन में चलाते रहते हैं, हर बात में छोटी छोटी चीजें चलती रहती हैं, तो उस चीज को हम काफी हद तक हमारे कंट्रोल में है। हम चिंता को अगर कम नहीं कर सकते पर हम चिंतन को कम कर सकते हैं। तो इस बारे में हम अगर मेडिटेशन की हेल्प लें या हमारी कुछ हॉबीज होती होती हैं जब हम हॉबीज कर रहे हैं और हम उसमें सब चीज़ दिन दुनियादारी भूल जाते हैं, सिर्फ अपने हॉबीज में फॉलो रखते हैं। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप अपनी दिनचर्या अपनी शैली में ला सकते हैं और अपने माइंड को फोकस रख सकते हैं।
1: डॉक्टर साहब, कहीं कहीं अक्सर सुनने में आता है जो वैद्य लोग हैं उनके नुस्खों को लेकर कहा जाता है ये थायराइड क्या अन्य बीमारियों की रामबाण दवा दे देंगे,

0: थायराइड 2-3 डोज में खत्म हो जाएगी, कितना सच है?
1: इसमें कोई सच्चाई नहीं है, और मैं अपने श्रोताओं को ये कहूंगा कि ऐसी किसी भी बातों पे भरोसा ना करें। अपने चिकित्सीय सलाह के साथ ही आप गोली का सेवन या गोली का निदान करें।
0: डॉक्टर अश्विनी शर्मा, कोई 3 नुस्खे आप हमारे श्रोताओं को देना चाहें जो थायराइड से ग्रसित हैं?
1: सबसे पहली बात है अपनी जीवन शैली को बिल्कुल स्वस्थ बनाएं और प्रकृति के अनुसार चलें। अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज मेक अ मैन हेल्दी वेल्दी वाइज। 10 बजे से पहले आप सो जाइए, 8 घंटे की नींद पूरी कीजिए, 6 बजे उठिए, 10 मिनट सूर्य भगवान के सामने खड़े हो जाइए, जिससे कि आपके जो बायोलॉजिकल क्लॉक है, सर्कैडियन रिदम है, वो सन से अलाइन हो जाएगी, तो आपके हार्मोनल बैलेंस ठीक रहेगा। दूसरा, आधे घंटे की वॉक जरूर कीजिए। और तीसरा, ओवर थिंकिंग, जो चिंतन की मैं बात कर रहा हूँ, उसको अवॉइड कीजिएगा। किसी हद तक आपका जो हार्मोनल बैलेंस है बॉडी में वो मेंटेन रहेगा।
0: प्राणायाम की भी कुछ भूमिका हो सकती
1: जी
0: है?
1: बिल्कुल, आप अपनी बॉडी में जितना अच्छे से इसका व्यायाम करेंगे, प्राणायाम करेंगे, आप सूर्य नमस्कार करेंगे, तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं हमारी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए लाभप्रद हैं।
0: डॉक्टर अश्विनी शर्मा, आज आप हमारे कार्यक्रम में शामिल हुए और श्रोताओं को थायराइड लक्षण कारण व उपचार विषय पर जानकारी दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
2: अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सेहत, जिसके अंतर्गत आज आपने सुना थायराइड लक्षण कारण और उपचार विषय पर डॉक्टर अश्विनी शर्मा से रमेश चंद्रा की बातचीत। FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है।
3: ये आकाशवाणी है। आकाश में तैरती ये उद्घोषणा 90 सालों का सफर पूरा कर रही है, बल्कि ये कहें ये आकाशवाणी की अनंत यात्रा है।
4: 1936 से शुरू हुई रेडियो यात्रा आज सबसे बड़े रेडियो नेटवर्क के रूप में जानी जाती है। स्पूल टेप रिकॉर्डिंग से गुजरते हुए आकाशवाणी की वाणी अब हुई टोटल डिजिटल।
3: देश के 92% क्षेत्रफल में 99% लोगों तक पहुंच है आकाशवाणी की।
4: डिजिटल प्लेटफॉर्म वेव ओटीटी और सोशल मीडिया पर भी आकाशवाणी ने अपनी धमक बनाई है।
3: शॉर्ट वेव, मीडियम वेव, FM, ध्वनि तरंगों से चलते हुए आज आकाशवाणी मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR के माध्यम से वैश्विक स्तर पर पहुंच गया है। 23 भाषाओं और 184 से ज्यादा बोलियों में प्रसारण के जरिए आकाशवाणी लोक संस्कृति का संवाहक बना हुआ है।
4: सूचना, शिक्षा और मनोरंजन के उद्देश्य से शुरू हुई आकाशवाणी की इस प्रसारण यात्रा में हमारे असंख्य श्रोता इन 9 दशक में हमारे साथ हैं।
3: आपका धन्यवाद। इस प्रसारण यात्रा में आपके साथ हमेशा आकाशवाणी देहरादून।
2: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब सुनिए न्यूज हेडलाइंस।
5: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप पंकज सनवाल खुलबे से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 को लेकर 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत किए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा, नमाज पढ़ने पर किसी प्रकार की कोई रोक नहीं है, लेकिन नमाज केवल चिन्हित स्थानों पर ही अदा की जानी चाहिए। बकरीद के चलते 28 मई को होने वाली CUET परीक्षा स्थगित कर दी गई है। वनाग्नि की घटनाओं के लिए वन विभाग ने प्रयास तेज कर दिए हैं। वनों में आग लगाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। विश्व प्रसिद्ध फूलों की घाटी पर्यटकों के लिए 1 जून से खोल दी जाएगी। लोक भवन नैनीताल में आयोजित गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट 2026 पुरस्कार वितरण के साथ संपन्न। राज्यपाल ने विजेताओं को पुरस्कार देकर सम्मानित किया। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाएगा। गंगा दशहरा पर्व पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु हरिद्वार, हर की पैड़ी समेत अन्य घाटों पर गंगा में श्रद्धा की डुबकी ले रहे हैं। बकरीद को देखते हुए पुलिस ने सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाने के साथ ही चेकिंग अभियान शुरू कर दिया है। प्रदेश में मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण के प्री फेज में 89% मैपिंग पूरी कर ली गई है। आदि कैलाश यात्रा के लिए पिथौरागढ़ में भी इनर लाइन परमिट की सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। इलेक्ट्रोपैथी मेडिको एसोसिएशन ने उत्कृष्ट कार्य करने वाले चिकित्सकों को सम्मानित किया और सहकारी समितियों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 98% बोर्डो पर जीत हासिल की है। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
2: अभी आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है और अब प्रस्तुत है कार्यक्रम फिल्म संगीत।

नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका कार्यक्रम फिल्म संगीत में और मैं हूँ आपके साथ प्रियंका जेना। तो लिए चलते हैं आपको फिल्मी गीतों के इस सफ़र में और सुनवाते हैं आपको कार्यक्रम का ये पहला गीत जिसे हमने लिया है फिल्म अर्जुन पटियाला से। गीत को अपनी आवाज़ दी है सचित टंडन ने, बोल हैं प्रिया सरैया के और संगीतबद्ध किया है सचिन जिगर ने।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से, और अगला गीत हम आप तक पहुंचा रहे हैं जिसे हमने लिया है फिल्म आ अब लौट चले से, और गीत को अपनी आवाज़ें दी हैं उदित नारायण और अलका याग्निक ने, संगीतबद्ध किया है नदीम श्रवण ने, बोल हैं समीर के।

आप सुन रहे हैं कार्यक्रम फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म चुप चुपके से। गीत को अपनी आवाज़ें दी है सोनू निगम और कुणाल गांजावाले ने, और संगीत बद किया है हिमेश रेशमिया ने, और बोल हैं समीर के।

आप आनंद ले रहे हैं फिल्मी गीतों का आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत। अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं अरमान मलिक की आवाज़ में और इस गीत को हमने लिया है फिल्म दे दे प्यार दे से।

फिल्म संगीत का कार्यक्रम चल रहा है आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। अगला गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म देवदास से श्रेया घोषाल और उदित नारायण के युगल स्वर में। गीत को संगीतबद्ध किया है इस्माइल दरबार ने और बोल है नुसरत बर्द के।

कार्यक्रम चल रहा है फिल्म संगीत आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से, और आपने ट्यून किया है 100.5 मेगाहर्ट्ज़। सब अगला और अंतिम गीत आप तक पहुंचा रहे हैं फिल्म आशिक बनाया आपने से। गीत को अपनी आवाज़ें दी है हिमेश रेशमिया और अहीर ने, संगीतबद्ध किया है हिमेश रेशमिया ने, और बोल है समीर के।

श्रोताओं, इस गीत के साथ ही कार्यक्रम फिल्म संगीत अब यहीं संपन्न होता है। अब मुझे यानी प्रियंका जैना को दीजिए अनुमति और सुनते रहिए आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम फिल्म संगीत। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है, FM 100.5 MHz पर। अब सुनिए पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

0: मुकदमा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे हैं जयंत पाथरीकर।
2: आज ये कहना चाहूंगा कि आकाशवाणी प्रयोग धर्मिता की ओर बढ़ रही है। समय के साथ जिस तरह के बदलाव प्रसारण की तकनीक में आए हैं, उन सबको आत्मसात करते हुए, उसके साथ अपने आप को परिवर्तित करते हुए आकाशवाणी आगे बढ़ती रही है। आकाशवाणी संगीत सम्मेलन हर वर्ष आयोजित होता है, उनमें आपने महान कलाकारों का गायन वादन देखा होगा, उसका आनंद उठाया होगा। जब जब उसका प्रसारण हुआ है उसे भी आप लोगों ने एंजॉय किया होगा, मगर ये पहली बार हो रहा है कि मंच पर एक मूर्धन्य कलाकार को प्रत्यक्ष रूप से आप बात करते हुए देखेंगे। ये सजीव साक्षात्कार यहाँ आयोजित किया गया है। और पद्म विभूषण डॉक्टर एन राजम जी, मैं आपको अम्मा जी कहूंगा, अम्मा जी आपको पाकर हम अभिभूत हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सबसे पहले ये जानना चाहूंगा कि पद्म पुरस्कारों में जो सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार है पद्म विभूषण, इससे आपको सम्मानित किया गया है और इसके लिए बारंबार अभिनंदन आपका। निसंदेह ये आपकी तपस्या का प्रतिफल है। इसका श्रेय आप किसे देंगी? ग्रेटिट्यूड जिसे कहते हैं, वो आप किसके प्रति व्यक्त करना चाहिए?
3: ये सम्मान घोषित हुआ, बड़ा आनंद हुआ, खुशी हुई। सबसे पहले मेरे मन में जिनकी याद आई, जिनकी छवि मेरे सामने आई, वो थी मेरे गुरुजनों का, मेरे माता पिता का। हमारा परिवार जो है एक संगीतकारों का परिवार है, कई पीढ़ियों से संगीत चला आ रहा है। और मुझे सबसे पहले श्री गणेश मेरे पिताजी ने किया, व्हेन आई वाज केवल 3 साल की थी, तो तब से मैं बजाती हूँ, सीख रही हूँ, अभी भी सीख रही हूँ, अभी भी रियाज करती हूँ, सिलसिला जारी है।
2: आपसे मैं जानना चाहूंगा कि आकाशवाणी से आपका रिश्ता कैसा रहा है?
3: उन दिनों जब मैं छोटी थी, मेरी आयु रही होगी 9 साल की, उन दिनों ये नियम नहीं था कि ऑडिशन के लिए 15 साल की जरूरत है, तो मैंने ऑडिशन दिया। उसके बाद उसका रिजल्ट आया कुछ समय बाद, तो मेरे घर में मेरे पिताजी और बड़े भाई लोगों की एक आदत रही कि बच्चों को चिढ़ाना है और उससे वो आनंदित होते हैं। तो कहने लगे मेरे एक भाई, और कोई बात नहीं, इस साल इस बार नहीं हुआ, आगे हो जाएगा, कोई बात। जैसे उन्होंने कहा, उसको मैंने सही समझा, तो लगी रोने। 9 साल की उम्र में और क्या हो सकता है, तो काफी देर चिढ़ाने के बाद पिताजी भी उसमें शामिल थे, तो अब फिर कहा चने रो मत, तुमको मिल गया है। और इस तरह रेडियो से मेरा संबंध जो है उस समय से है, जबकि मैं 9 साल की थी। और चिट्ठी भी जो है कि ऑडिशन में मैं पास हो गई करके जो पत्र आया था वो अंग्रेजी में लिखा हुआ था। उस समय अंग्रेजी विशेष नहीं आती थी, बिल्कुल ही नहीं आती थी, विशेष क्या, तो मैं पढ़ नहीं पाई थी स्वयं, तो उसके पहले ये ड्रामा हुआ घर में, उसके बाद।
2: वाह, इतनी नाजुक उम्र में आपने शुरुआत की, और आप बहुत छोटी थी जब आपका पहला प्रेजेंटेशन हुआ था स्टेज पर, तो उस वक्त सुर डर पे हावी थे या डर सुर पे हावी था?
3: डर।
2: हाँ, मन में डर जो होता है,
3: डर ऐसे कोई चीज होती है वो पता ही नहीं चला।
2: क्या बात है।
3: वायलिन हाथ में ले लेते हैं और रियाज करते हैं, तो अगर कहीं बजाने, हाँ हमारे घर में ये भी लोग बाग आते रहे, क्योंकि संगीतकार का परिवार है, तो कई लोग आते जाते रहे, तो कोई भी आते हैं तो पिताजी उससे तुरंत कहते हैं कि आ जाओ अंकल के लिए एक गाना बजा दो, तो हम आकर के भाग जाते रहे, तो इस तरह का एटमोसफियर था, तो डर की कोई बात नहीं थी।
2: वो आपके स्वभाव में आ गया था बड़े सहज रूप से।
3: बड़ी सहज।
2: क्या बात। बहुत जल्दी आपने अम्मा जी कर्नाटक शैली से हिंदुस्तानी शैली की ओर जो है यात्रा शुरू कर दी, ये कितना मुश्किल था, कितना चैलेंजिंग था, क्योंकि आपके पिताजी का तो कहना था कि कर्नाटक शैली में ही वायलिन बज सकता है, हिंदुस्तान में तो बजेगा ही नहीं शायद।
3: हाँ, शुरुआत तो मेरा कर्नाटक म्यूजिक से था, 3 साल की उम्र में पिताजी ने शुरू किया था, फिर जैसे ही 9 साल की हुई रेडियो का ऑडिशन हुआ, सिलेक्शन हो गया वगैरह वगैरह, तो जब मैंने SSLC पास किया, 10th कही 11th कही,
2: जी जी,
3: तो पास हो गई थी, पर आगे की पढ़ाई के लिए यानी कॉलेज एडमिशन के लिए वो संभव नहीं था, क्योंकि उस समय मैं 14 साल और 3 महीने की थी, जबकि कॉलेज एडमिशन के लिए मिनिमम एज रिक्वायरमेंट जो था 14 साल और 6 महीने। तो मेरे पिताजी बड़े, ही वाज अ स्ट्रिक्ट डिसिप्लिनेरियन, तो उन्होंने कहा कि एक साल तक घर पे बच्चों को रखना नहीं ठीक है, आलसी बन जाएंगे। तो उन्होंने कहा तुम प्राइवेटली कहीं इंटरमीडिएट की परीक्षा दे दो। और उन्होंने पता भी लगाया कि कहाँ इस तरह की सुविधा मिलती है, तो पता चला उनको कि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में, काशी हिंदू विश्वविद्यालय में, और ये सुविधा है कि प्राइव गर्ल वो भी केवल लड़कियों के लिए ये सुविधा दी जाती थी।
2: अच्छा।
3: तो पिताजी ने कहा तुम आज सब्जेक्ट सोच लो और परीक्षा देख के हो। तो उन्होंने कहा संगीत एक सब्जेक्ट ले लो, संगीत भी एक सब्जेक्ट था
2: जी।
3: तो तब तक मेरा 12 साल के समय का कर्नाटिक म्यूजिक का प्रैक्टिस था, 12 साल मैं बजा चुका। और रेडियो में तो 9 साल के बाद बराबर बजाती भी थी, और रेडियो के साथ उतना पुराना संबंध था मेरा। तो पिताजी ने कह तो दिया कि हिंदुस्तानी संगीत ले लो, और उम्र कम थी ना, तो इसीलिए मुझे भी नहीं समझ में आया कि मैं कर पाऊंगी नहीं कर पाऊंगी, ये सब चिंता इन्हें पिताजी ने कह दिया, तो फादर्स वर्ड वॉज लास्ट। तो ले लिया मैंने, और उसके बाद बातें ऐसी होती गई तो मुझे उसमें रुचि भी आ गई और मैं सीख पाई। और पंडित ओमकारनाथ जी जैसे महान गुरु का शिष्य होने का सौभाग्य मुझे प्राप्त हुआ।
2: बस मैं उन्हीं के बारे में भी आपसे पूछने वाला था कि गायकी अंग से वादन जो है आपका है, जो आपके वादन की विशेषता है, ये सोच कहाँ से आई, इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली?
3: जितने भी वाद्य थे, वीणा कहिए या वायलिन कहिए या फ्लूट कहिए, सभी में वोकल म्यूजिक जिस तरह गाया जाता है उसी तरह बजाने की प्रथा वहां थी।
2: अच्छा।
3: सेपरेट स्टाइल नहीं था इंस्ट्रूमेंट्स के लिए
2: जी।
3: तो ये बात मेरे मन में आई कि यहाँ भी, जबकि उत्तर भारत में वाद्यों के लिए खास शैली थी गतकारी।
2: हाँ।
3: तो मेरे मन में आया ये विचार, मेरे पिताजी का भी इसमें बहुत बड़ा आहत रहा। हिंदुस्तानी संगीत को गायकी स्टाइल से, यानी जिस तरह कंठ से
2: जी
3: आवाज आती है, उस तरह एक अनोखा काम हो भी जाएगा, उन्होंने कहा। तो उस तरह, और चूंकि मुझे 10-12 साल का अभ्यास था कर्नाटक म्यूजिक में, और उसके कारण मुझ में ये एबिलिटी थी ये कि कोई भी कुछ भी फ्रेज गाए तो उसको मैं तुरंत रिप्रोड्यूस करने की शक्ति थी मुझे। तो इस तरह शुरू हो गया।
2: और पंडित ओमकारनाथ जी के बारे में कुछ?
3: और मेरा परम सौभाग्य रहा कि उन इतने महान कलाकार से
2: जी,
3: संगीत साधक से संगीत सीखने के, हिंदुस्तानी संगीत सीखने का अवसर मिला। मेरे पास शब्द नहीं कहने के लिए कि कितनी खुशी हुई, कितना आनंद हुआ, और उसके बाद सिलसिला चल पड़ी।
2: जी जी जी। आपके वादन के बारे में एक और प्रश्न है कि बनारस घराने की जो गायकी है उसे आपने वायलिन में कैसे उतारा, उसमें जो ठहराव होता है खासतौर से?
3: नहीं, बनारस घराने की बात नहीं उठती है
2: जी।
3: कैसे मैं गायकी स्टाइल मैंने आत्मसात किया?
2: हाँ जी।
3: मैंने गुरुजी एक राग, मान लीजिए कोई भी राग को लेते थे तो वो एक दो फ्रेज गाते हैं, मैं तुरंत बजा तो लेती थी। पर इससे ये नहीं कह सकती हूँ कि हिंदुस्तानी म्यूजिक आ गया हो गया, वो सिखाते थे मैं बजाने लगी, और उसमें हिंदुस्तानी म्यूजिक की आत्मा जो है
2: जी जी,
3: उसकी बू जो है उसको कैसे ले आना है। तो मुझे कई साल परिश्रम करना पड़ा, मेहनत करनी पड़ी, इसमें मेरे गुरुजी मेरे पिताजी सभी ने मेरे साथ काम किया, और एक एक करके हो गई बात।
2: निश्चित रूप से किसी भी कला के साधक को निरंतर अभ्यास और प्रैक्टिस, ये उसकी साधना की आत्मा होते हैं। तो रियाज अब भी आपका जारी है? कभी ऐसा होता होगा रियाज छूट गया, नहीं हो पाया?
3: नहीं, खाना छूट जाता है पर रियाज नहीं, किसी कारण से एक दिन नहीं, ऐसा होता नहीं था। हाँ। फिर भी अगर हुआ तो चैन नहीं होता था
2: जी, जी।
3: कि आज कुछ मिस किया मैंने, ऐसी भावना आती थी।
2: बिल्कुल।
3: और मुझे संगीत के अलावा मेरी दुनिया में और कोई भी बात नहीं थी।
2: किसी भी साधक के जीवन में इससे बढ़कर और क्या होता होगा? एक आपका चूंकि संगीतकारों का, कलाकारों का परिवार रहा है, तो आपके भाई साहब टीएन कृष्णन साहब भी बहुत बड़े कर्नाटक शैली के वायलिन वादक रहे हैं।
3: बिल्कुल।
2: तो ये सवाल ऐसा है,
3: हम सभी लोग बजाते हैं, यानी हम रहे 5 बच्चे।
2: अच्छा।
3: मेरे पेरेंट्स के।
2: हाँ हाँ।
3: तो सभी को, बच्चा जिस दिन 3 साल का हो जाता है,
2: हाँ,
3: चाहे लड़की हो या लड़का,
2: हाँ,
3: पिताजी भेंट में दे देते हैं एक वायलिन, और वो तब से शुरू हो जाता है। तो आफ्टर दैट देयर इज नो लुकिंग बैक।
2: जब कृष्ण साहब थे तो बचपन से लेके जब भी कभी पारिवारिक सम्मेलन होता होगा त्योहारों के मौके पे या राखी के समय भाई दूज के समय, तो आपकी नोकझोंक किसी तरह का हल्का फुल्का झगड़ा किस बात पे होता था? वो मिठाई को लेके होता था या वायलिन को?
3: नहीं, मेरे बड़े भाई की जो बात है उनको हम सभी लोग बाकी बच्चे बड़े रिस्पेक्ट से उनके साथ रहते हैं जी, जी. तो इसीलिए उनका वो हम सब लोगों को वो खुद मार्गदर्शन देते थे, उनका स्थान इतना था.
2: बहुत से कलाकारों को हम देखते हैं कि अपने साज में वो अपने मुताबिक बदलाव करते हैं, आपने वायलिन में कुछ चेंजेस किए हैं?
3: वायलिन में इंस्ट्रूमेंट में? जब मुझे इंस्ट्रूमेंट में कोई चेंज करने की सूझ नहीं आई और जरूरत भी नहीं थी, इट्स अ परफेक्ट इंस्ट्रूमेंट.
2: क्या बात. अमर जी, वायलिन पर उपशास्त्रीय संगीत जब बजता है उसका अलग ही मजा है, उसका आनंद ही कुछ और है, तो उसके बारे में हमें बताइए. जैसे ठुमरी या टप्पा का जो नखरा होता है वो जिस तरह से प्रदर्शित होता है वायलिन पर, जिस तरह बजाया जाता है, उसका आनंद जो आता है, उसके बारे में थोड़ा बताइए.
3: एक बार अच्छी टेक्निक हाथ में मिल जाता है
2: जी,
3: तो उसके बाद क्लासिकल हो, सेमी क्लासिकल हो या लाइट हो, सब कुछ आसानी से बजाया जा सकता है. इतना ही है कि आपके पास सही टेक्निक होना चाहिए.
2: कलाकारों को तारीफें भी मिलती है और ताने भी सुनने पड़ते हैं. आपने अपने परफॉर्मेंसेस शुरू किए 1950 में और उस वक्त सिनेरियो कुछ ऐसा था कि बहुत से जो कलाकार थे बड़े बड़े कॉन्सर्ट जिनके होते थे उनमें मेल आर्टिस्ट ज्यादा थे, पुरुष कलाकार ज्यादा थे, महिलाएं उनके बनिस्बत कम थी. तो कैसा अनुभव था आपका? किसी बड़े कलाकार की तारीफ आपको अब तक याद हो, किसी ने कोई बात कही हो?
3: मुझे किसी से कभी भी कोई तकलीफ नहीं हुई. बड़े बड़े कलाकारों का स्नेह वात्सल्य मुझे हमेशा प्राप्त हुआ. निसार हुसैन खान साहब, एक का नाम नहीं ले रही, बहुत से लोगों का, बड़े गुलाम अली खान साहब से मेरी मुलाकात हुई है, तो वो मेरा बजाना वगैरह सुन करके खुश होते थे.
2: अब मंच पर जब जब आपने जुगलबंदी का प्रस्तुतिकरण दिया है उसकी बात करते हैं मजी. आपकी शहनाई पर बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ जो जुगलबंदी है वो बहुत ही पॉपुलर
3: है. उनका बड़प्पन है मेरे साथ, उन्होंने बजाया और मुझे प्रोत्साहित किया, खूब उन्होंने प्रोत्साहन दिया.
2: और जो कौन कौन से कलाकार जिनके साथ आपने जुगलबंदी?
3: बिस्मिल्लाह खान साहब के साथ, वो भी बनारस के थे.
2: हाँ जी, हाँ जी.
3: वो भी गायकी बजाते थे, जो भी बजाते हैं वो गायन शैली की. तो कहां शहनाई खत्म होता है और वायलिन कहां शुरू होता है, और कहां वायलिन खत्म होता है वो फिर शहनाई शुरू होती है, मुश्किल से समझ में आता.
2: बिल्कुल, बिल्कुल सही कहा
3: लोगों को
2: जी.
3: तो बड़ा अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा. मुझसे काफी सीनियर थे. हाँ. तो ये जैसे मैंने शुरू में ही कहा था, उनका बड़ा पुण्य, पिता तुल्य थे मेरे लिए वो.
2: और किसी कलाकार को आप याद करना चाहें जिनके?
3: मेरे भाई के साथ भी कई जुगलबंदियां हुई है. तो वो कर्नाटक म्यूजिक बजाते थे, मैं हिंदुस्तानी बजाती थी. अब कई कॉमन रैग्स रहते हैं दोनों में, तो कॉमन जैसे कि यमन है, तोड़ी है, इस तरह बहुत सी, तो उसको लेकर के एक ही मंच से एट द सेम टाइम लोगों को दोनों का क्या फर्क है, हिंदुस्तानी की विशेषताएं क्या है, कर्नाटक की विशेषताएं क्या है, मींड गमक इत्यादि सब प्रस्तुत करने के लिए मौका मिलता था हम लोगों को, और एक ही मन से वो समझ पाते थे दोनों में क्या फर्क है, क्या समानता है.
2: सृजनात्मकता कलाकार की आत्मा होती है. कुछ नया क्रिएशन. तो आपका क्योंकि फंडामेंटल्स आपने कर्नाटक शैली में सीखे और बाद में आप हिंदुस्तानी शैली की ओर बढ़ी, तो इन दोनों शैलियों में जो संप्राकृतिक राग है, एक जैसे राग है, उनको लेकर के कुछ रागों का मिश्रण या कोई नया राग उत्पन्न हुआ हो मन में, ऐसा कुछ कभी हुआ?
3: नया राग बनाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि इतना भरा पड़ा है, इतना गहरा समुद्र है.
2: जी, जी.
3: फिर भी लोग बनाते हैं तो उससे मुझे संतोष ही मिलता है, आनंद ही मिलता है. पर मैंने कुछ ऐसा नया राग बनाने की चेष्टा नहीं की. जो है ऑलरेडी हजारों की संख्या में, उनमें से थोड़े बहुत भी हम ले सकें और आत्मसात कर सकें, वही बड़ी बात है. तो नया कुछ मैंने नहीं बनाया.
2: वाह, आपने पहले ही बताया कि बहुत छोटी उम्र में BHU से, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय से आपका संबंध रहा है, तो 40 साल आपने पढ़ाया है BHU में. तो गुरु शिष्य परंपरा में सबसे खूबसूरत पल कौन सा था और सबसे कठिन हिस्सा कौन सा था?
3: गुरु के सानिध्य में सीखने का जो मौका मिलता है उसका बहुत फायदे हैं. हाँ एक घटना बता दी इस संबंध में।
4: जी बिल्कुल।
3: बनारस में मेरे गुरुजी रहते थे पंडित ओमकारनाथ ठाकुर।
4: हाँ जी।
3: एक बार मुझे हमारे कॉलेज में पंडित विष्णु दिगंबर पलुस्कर जयंती मनाते थे हफ्ते भर के लिए, तो मेरा कार्यक्रम, टीचर्स के भी कार्यक्रम होते थे और जो सीनियर स्टूडेंट्स है जो गा बजाते हैं ठीक से उनके भी कार्यक्रम होते थे। तो मेरा कार्यक्रम था, यानी आज, यानी कार्यक्रम के एक दिन पहले गुरुजी से मुलाकात हुई थी और मैंने कहा कि मैं देश बजाना चाहती हूँ, मेरे पास कोई ठीक से कॉम्पोजिशन नहीं है, ख्याल नहीं है, मुझे बता दीजिएगा। तो उन्होंने कहा कब बजाना है, मैंने कहा कल शाम को। तो पूछा इतने में करोगी, तो मैं कोशिश करूंगी। उसके बाद उन्होंने बड़ा ख्याल का दो सिखा दिया, बड़ा ख्याल स्थाई अंतरा। उसके बाद मैं उसके बाद कल वहां से चली गई और दूसरे दिन शाम को कार्यक्रम था, हॉल खचाखच भरा हुआ था। मैं शुरू कर ही रही थी, शुरू पहला फ्रेज शुरू किया तो एंट्रेंस में, जैसे एंट्रेंस है ना, तो वहां हलचल हुई, थोड़ा कंफ्यूजन जैसे हो रहा था, आवाजें हो रही थी लोग बाहर। तो उसके बाद मैंने सिर उठा के देखा तो, अरे उसके पहले मैंने उस दिन पहले दिन ही उनसे सीखने के बाद कहा आप तो नहीं आएंगे ना प्रोग्राम में, नहीं नहीं मैं नहीं आऊंगा। तो जो हलचल जो हो रहा था तो मैंने कहा वो देख रही हूँ कि वो छड़ी ले हुए आ रहे हैं धीरे धीरे, तो मेरा सप्त नाड़ी जो है समाप्त हो गए थे। और मैंने उनको कहा अब मैं निश्चिंत थी ये कहाँ आने वाले हैं प्रोग्राम में, बच्चों का प्रोग्राम, तो छड़ी ले करके वहां उनको लोग बाहर जो है जगह दे रहे थे आगे जाने के लिए, तो आके बैठ गए फ्रंट रो में। हाँ चल, उनको देख करके मैं रोक दिया था मैंने, और उसके बाद वो आके बैठे, उसके जब आए तो हाँ चल बजा। तो मैंने सोचा आज मुझे डांट पड़ेगी जरूर। तो उसके बाद मैंने 45 मिनट रात देश बचाया। तो उन्होंने क्या किया, उठ के खड़े हुए और पूरा एक लंबा चौड़ा भाषण दिया, बहुत सुंदर बोलते थे, चाहे हिंदी हो, गुजराती हो, मराठी हो, सब अच्छी तरह बोलते थे। तो उन्होंने कहा आप लोग एकलव्य जानते हैं, नाम सुनना है उनका एकलव्य का, तो लोग कर, तो ये वैसा ही एक एग्जाम्पल आपको देखने को मिल रहा है। ये लड़की कल आई थी मुझसे और मुझसे सीख करके आज बजा दिया। तो उसके बाद खूब तारीफ की मेरे बारे में और मैंने सोचा कि बच गई किसी तरह।
4: अम्मा जी, 90 के दशक में संगीत का एक नया रूप हमारे सामने आया जिसे हम सब फ्यूजन म्यूजिक के नाम से जानते हैं, तो आप ये जो स्टाइल है फ्यूजन म्यूजिक का, इसमें क्लासिकल को और सेमी क्लासिकल को और लाइट म्यूजिक को मिला करके कुछ नया बनाने की कोशिश होती है, कई बार फोक म्यूजिक भी इसमें मिलाया जाता है, इसे किस तरह से देखती है, ये कैसा एक्सपेरिमेंट लगता है?
3: मेरा दृष्टिकोण ये है कि लोग करते हैं उसके मैं खिलाफ कुछ नहीं बोलूंगी
4: जी,
3: पर मैं यही सोचती हूँ हमें ये इतना बड़ा समुद्र है इसमें एक डुबकी भी अब तक नहीं हो पाया है, तो हम कहां चले गए कि उसको इसको मिलाओ और एक नई बात बनाओ, उसमें मुझे रुचि नहीं है। और जो लोग करते हैं उनके प्रति मेरा कोई विरोध भी नहीं है, अलग अलग पर्सनैलिटी है।
4: आज के इस सब कुछ इंस्टेंट और फास्ट फटाफट वाला जमाना है, तो इस दौर में आप अपने शिष्यों को ठहराव का जो महत्व है वो कैसे समझाती है?
3: अन्य क्षेत्रों में हो सकता है कि जल्दी का जमाना है तो जल्दी फटाफट कर लो, पर जहां तक शास्त्रीय संगीत है, वेदर वो कर्नाटक शैली का संगीत हो या हिंदुस्तानी हो, बिल्कुल पूरा अपने को अर्पित करना है और खूब रियाज करना है, उससे बच नहीं सकते हैं।
4: बहुत छोटी उम्र में आपने पहला प्रेजेंटेशन दिया था, वो 9 साल की नन्ही राजम अभी आपके सामने आ जाए तो आप उसे कैसे आशीर्वाद देंगी?
3: यही है, अच्छा किया, इसी तरह हर जन्म में करते रहो।
4: थैंक यू सो मच अम्मा जी, आपसे बात करके, आपके अनुभव सुनकर के हम बहुत अभिभूत हुए हैं। आकाशवाणी मुंबई की ओर से और यहाँ उपस्थित सभी प्रेक्षकों की ओर से मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद।
3: थैंक यू सो मच, मुझे भी आपके साथ बातचीत करते हुए बड़ा आनंद आया और श्रोताओं के सामने कुछ बातें कहने का अवसर मिला, वो भी अच्छा लगा। थैंक यू सो मच,
4: धन्यवाद। डॉक्टर एन राजम जी अब प्रस्तुत कर रही हैं एक धुन।

0: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी देश की जानी मानी वायलिन वादक श्रीमती एन राजन के साथ हमारी खास बातचीत। इस साक्षात्कार का संचालन कर रहे थे जयंत पाथरीकर। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
1: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। ये आकाशवाणी का देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर, और अब सुनिए लोक संगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सवेरे के 10:59 और 55 सेकंड हुए हैं। अब आप सुनेंगे अपने मनपसंद फरमाइशी गीतों का कार्यक्रम आपकी फरमाइश। तो प्रस्तुत है ये पहला गीत।

श्रोताओ, इस गीत की फरमाइश हमसे की थी बिलासपुर छत्तीसगढ़ से गुणवंत श्रीनिवास, करुणा श्रीनिवास, आयुष श्रीनिवास, विवेक श्रीनिवास, बेबी आयुषी श्रीनिवास, मोहन सिंह राज, अनीता राज, सुमित और सोमू ने, और ये गीत था फिल्म राजा और रंग से मोहम्मद रफी के आवाज़ में। अब सुनते हैं कुछ संदेश।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
3: श्रोताओ, अब अगला गीत आप सुनने वाले हैं फिल्म गिरफ्तार से किशोर कुमार के स्वर में, और इस गीत की फरमाइश हमें लिख भेजी है गांव लोहगढ़ ठाकुरां वाला जिला फिरोजपुर पंजाब से स्वर्ण सिंह गिल, गुरनूर सिंह, शुभमन सिंह, गुरलाल सिंह, गुरमान सिंह और अविराज सिंह ने। इसी के साथ गंज डुंडवारा से मोहम्मद यासीन हाशमी, नाजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी और मोहम्मद तैमूर हाशमी इस गीत को सुनना चाहते हैं।

श्रोताओं, किशोर कुमार और आशा भोसले के स्वर में ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म गिरफ्तार से, एफएम 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून से। श्रोताओं, आप सुन रहे हैं कार्यक्रम व्हाट्सएप फरमाइश। अब आप बने रहिए श्रोताओं हमारे साथ अपने फरमाइशी गीतों के इस कार्यक्रम में। अभी सुनते हैं पीपुल्स पद्म ऑन आकाशवाणी का प्रसारण आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं आकाशवाणी संवाददाता कमल कुमार प्रजापति।
2: नमस्कार, आकाशवाणी पॉडकास्ट में हम इन दिनों आपको पद्मश्री से सम्मानित उन शख्सियत से मिलवा रहे हैं जिन्होंने देश और समाज में अपना एक अमूल्य योगदान दिया है, और आज एक ऐसे ही शख्सियत हमारे बीच हैं, हमारे साथ आज जुड़े हैं बातचीत में, डॉक्टर अशोक कुमार सिंह।
3: नमस्कार।
2: डॉक्टर अशोक कुमार सिंह के बारे में अगर हम थोड़ी सी बात करें उनसे बातचीत से पहले, तो भारत में जो हम चावल की खेती देखते हैं, या हम अगर अपने घरों में भी अपनी प्लेटों में खुशबूदार और लंबे चावल को परोसते हुए देखते हैं, तो इस चावल की किस्म की उपज में, पैदावार में, इसे उन्नत करने में इनका बहुत बड़ा योगदान है। और भारत में कृषि उपज, कृषि विज्ञान में डॉक्टर अशोक कुमार सिंह ने अपना

0: बेहद महत्वपूर्ण योगदान दिया है और साइंस और इंजीनियरिंग में इस साल डॉक्टर ए के सिंह को पद्मश्री से सम्मानित किया जा रहा है। तो बहुत स्वागत हम फिर से करते हैं आपका डॉक्टर ए के सिंह।
1: बहुत बहुत धन्यवाद
0: जी। तो सबसे पहले हम चर्चा को इसी से शुरू करते हैं कि इस बार आपको साइंस और इंजीनियरिंग के क्षेत्र में आपके किस योगदान को लेकर इस सम्मान से आपको सम्मानित किया जा रहा है।
1: मैं आकाशवाणी का हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं कि आपने हमें इस अवसर पर यहां पर बुलाया है। मुझे जो पुरस्कार दिया गया है इस बार वह विशेष रूप से बासमती चावल की उन्नत प्रजातियों के विकास के ऊपर दिया गया है। जैसा कि हम जानते हैं बासमती हमारे देश की एक महत्वपूर्ण धरोहर है और इसकी खेती सदियों से हमारे देश में होती आ रही है। बासमती चावल अपने स्वाद सुगंध के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है और जो इसकी परंपरागत किस्में होती थीं जैसे देहरादूनी बासमती टाइप 3 आदि, तो ये किस्में लंबी होती हैं, ऊंचाई में ज़्यादा होती है इनकी ऊंचाई और पकने में 160 दिन का समय लेती थीं और ऊंचाई ज़्यादा होने के कारण अक्सर जब बाली में दाना भरता था तो ये किस्में गिर जाती थीं, जिसकी वजह से इनकी पैदावार कम होती थी, मुश्किल से 20-25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए शोध का कार्य बासमती पर सिर्फ मेरे द्वारा ही नहीं बल्कि सबसे पहले डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन जो 1968 में भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान के निदेशक थे उनके द्वारा ये सोच लाई गई कि किस प्रकार से हम बासमती चावल की गुणवत्ता बौनी प्रजातियों में ले आएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा बासमती चावल कम क्षेत्र में पैदा करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सके। तो उसी कड़ी में ये हमारा काम रहा डॉक्टर स्वामीनाथन के बाद उनके छात्र डॉक्टर ए सिद्दीक डॉक्टर V.P. सिंह डॉक्टर जमन ये लोग काम किए और उसके बाद मैं इस कार्यक्रम से छात्र के रूप में 1986 में जुड़ गया था और तब से मैं लगातार PhD करने के बाद भी यहाँ पर वैज्ञानिक के रूप में शोध का कार्य बासमती पे कर रहा हूँ।
0: बिल्कुल, इस बारे में हम आगे बातचीत में जरूर जानेंगे किस तरह से आपने अपने करियर में और कृषि विज्ञान में इस क्षेत्र को चुना, लेकिन एक बहुत रोचक सवाल शायद हमारे देखने सुनने वालों के मन में भी आ रहा होगा कि बासमती चावल की हम उन्नत किस्म आजकल देखते ही हैं, लेकिन इसमें बार बार सुधार की जरूरत क्यों पड़ी? जैसा कि आपने भी जिक्र किया कि पहले भी इस पर शोध होते रहे, तो ये शोध क्यों हो रहे हैं और किस तरह से समय समय पर बासमती उन्नत हुआ है?
1: एक पहली बात तो मैंने बताई कि जो हमारी परंपरागत किस्में थीं अधिक ऊंचाई होने के कारण गिर जाती थीं और उनकी पैदावार बहुत कम होती थी, तो इसको पैदावार में वृद्धि करना, ऐसी प्रजातियों का विकास करना जो अधिक उपज देने वाली हों, एक तो मुख्य लक्ष्य ये था। दूसरा, तमाम तरह की बीमारियां और कीड़े चावल में लगते हैं, सभी फसलों में लगते हैं, उसी तरह से चावल में भी लगते हैं, तो किस प्रकार से हम रोग रोधी और कीट रोधी किस्मों का विकास करें, एक मुख्य लक्ष्य शोध का था। और तीसरा, जब जलवायु परिवर्तन जैसा कि आप जान रहे हैं हो रहा है और जलवायु परिवर्तन का कृषि के ऊपर काफी विपरीत प्रभाव है, उसमें कभी बाढ़ आती है कभी सूखा पड़ता है, तो ऐसी परिस्थितियों में हम किस प्रकार से ऐसी किस्मों का विकास करें जो विपरीत परिस्थितियों में भी अच्छा उत्पादन दे सकें और किसान को नुकसान नहीं हो। तो ये मुख्य कारण है जिसके वजह से बासमती पे शोध करने की आवश्यकता हुई। और एक और बात मैं इसमें जोड़ना चाहूँगा, चूंकि चावल बासमती का जो है अपनी गुणवत्ता के लिए पूरे विश्व में जाना जाता है, तो इसकी मांग भी विश्व बाजार में धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और उसके लिए हमको ज़्यादा पैदावार चाहिए होगी और एक निर्धारित क्षेत्र से चाहिए होगी जिसमें गुणवत्ता अच्छी आती है, तो इसलिए हमको अधिक उपज देने वाली रोग रोधी किस्मों का विकास करना आवश्यक हो जाता है।
0: जी डॉक्टर साहब, जैसे कि आपने अभी बासमती चावल के बारे में हमें बताया, लेकिन थोड़ा सा बारीकी से और हम ये समझना चाहेंगे और ये सवाल भी सबके मन में आ रहा होगा कि क्या हर खुशबूदार लंबा चावल ही बासमती चावल है? क्या होता है बासमती चावल, कहाँ इसकी उपज ज्यादा होती है, इसके बारे में थोड़ा सा और बताएं।
1: बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। आमतौर पर एक अवधारणा होती है कि सभी खुशबूदार चावल जो है बासमती होते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। सारे बासमती चावल जो हैं ये बासमती किस्में हो खुशबूदार होती हैं, लेकिन सभी खुशबूदार किस्में बासमती नहीं होती हैं। तो खुशबू के साथ साथ बासमती होने के लिए चावल के अंदर कुछ और विशेष गुण होने चाहिए, जिसमें एक गुण तो आपने बताया कि चावल की लंबाई जो है वो ज़्यादा होनी चाहिए, करीब 6.7 मिलीमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। पकाने के बाद चावल कम से कम दोगुना लंबाई में बढ़ जाता है, और एक कप चावल अगर पकाएं आप तो उसे कम से कम 4.5 कप जो है पका हुआ चावल बनता है, तो उसका वॉल्यूम एक्सपेंशन जो है आयतन बहुत ज़्यादा बढ़ता है। और इसके साथ ही साथ पकाने के बाद चावल का एक एक दाना खिला हुआ होता है, एक दूसरे से चिपकता नहीं है, तो ये गुण जो है बासमती चावल को और भी बहुत सारे प्रोफाइल में, जैसे एमाइलोज एक विशेष प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है, उसकी मात्रा करीब 22% के आसपास बासमती में होती है और वही होनी चाहिए तभी ये गुणवत्ता आती है। तो मुख्य रूप से मैं कहना चाहूंगा कि सभी बासमती चावल खुशबूदार होते हैं, लेकिन सभी खुशबूदार चावल बासमती नहीं होते हैं। खुशबू के साथ साथ बासमती चावल होने के लिए चावल में लंबाई होना विशेष, उस पकाने के बाद चावल की लंबाई में बढ़ोतरी होना, और इसके बाद उसके आयतन में वृद्धि होना, चावल का एक दूसरे से चिपकना नहीं बिल्कुल खिला रहना, ये सारे विशेष गुण हैं जिनके साथ हम अगर एक साथ समाहित करते हैं तो उन किस्मों को हम बासमती कहते हैं। और इसके साथ ही साथ एक और महत्वपूर्ण बात है कि इन किस्मों को जब एक निर्धारित जलवायु क्षेत्र में उगाया जाता है तभी हमको बासमती की असली गुणवत्ता प्राप्त होती है।
0: तो कौन से क्षेत्र हैं जैसे जहां पर ये उपज ज्यादा होती
1: जी है? तो इसीलिए बासमती चावल को जियोग्राफिकल इंडिकेशन या भौगोलिक रेखांकन इसको दिया गया है, और इसमें 7 राज्य आते हैं, जिसमें जम्मू कश्मीर, जिसमें कि जम्मू के 3 जिले हैं, इसके अलावे हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और दिल्ली, उत्तर प्रदेश के पश्चिमी उत्तर प्रदेश के 27 जिले और उत्तराखंड, इन्हीं क्षेत्रों को हम GI मानते हैं, और यहाँ की जलवायु बासमती चावल की गुणवत्ता के लिए बहुत विशेष होती है। और उसका एक कारण होता है कि जो चावल पकता है तो उसके अंदर जो खुशबू होती है एक विशेष केमिकल के कारण होती है, जिसको हम 2-acetyl-1-pyrrolin बोलते हैं, और ये वोलाटाइल कंपाउंड होता है। जब गर्मी बहुत ज्यादा होगी, चावल में दाना भर रहा होगा जिस समय, दुधिया दाना होगा, उसमें अगर गर्मी ज्यादा होती है तो ये खुशबू दाने में रहने के बजाय उड़ करके वातावरण में चली जाती है। तो इसीलिए माना जाता है कि जब चावल में दाना भर रहा हो उस समय जो है तापक्रम कम होना चाहिए, और वही इन क्षेत्रों में तापक्रम पाया जाता है जो कि चावल में ज्यादा से ज्यादा खुशबू होने के लिए जरूरी होता है।
0: तो क्योंकि हम सभी जानते हैं और ये फैक्ट भी है कि चावल के उत्पादन में भारत दुनिया में एक सबसे बड़ा देश बनकर उभरा है, और खासतौर पर जो हमारी बासमती चावल की किस्म है उसमें भी भारत अग्रणी है, तो इस लक्ष्य तक हम जब पहुंचे हैं और इतनी बड़ी मात्रा में हम चावल को एक्सपोर्ट कर रहे हैं बाहर, क्या इसमें भी जैसे आपने जो रिसर्च की है, जो अनुसंधान किया है, वो भी महत्वपूर्ण रहा है कि हम चावल का इतना बड़ा उत्पादन कर पा रहे हैं, उसका निर्यात कर पा रहे हैं, और कितना निर्यात और उत्पादन हम पूरे विश्व भर में कर पा रहे हैं, इस बारे में अगर आप कुछ बताएं?
1: मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि हम सभी देशवासियों के लिए, सभी वैज्ञानिकों के लिए गौरव की बात है, किसानों के लिए विशेष रूप से, कि भारत आज विश्व का नंबर एक देश है चावल के उत्पादन में। हम करीब 150-151 मिलियन टन चावल प्रतिवर्ष आज पैदा कर रहे हैं, और चावल की खेती करीब 50 मिलियन हेक्टेयर क्षेत्रफल में होती है। दूसरे नंबर पे चाइना है, जहाँ पे चावल का उत्पादन 145 मिलियन टन है। और अगर हम निर्यात की बात करें तो निर्यात में भी भारत पूरे विश्व का पहला राष्ट्र है, जो करीब करीब हम 21-22 मिलियन टन चावल का निर्यात कर रहे हैं, जिसमें 6 मिलियन टन बासमती चावल का निर्यात होता है। और इस 6 मिलियन टन बासमती चावल के निर्यात से देश को तकरीबन 50,000 करोड़ रुपए की विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है, जो करीब 6 बिलियन डॉलर के आसपास है। और ये बासमती किस्में, मूलतः जितनी किस्में हैं, ये सब पूसा संस्थान के द्वारा विकसित की गई हैं, जहां पर पिछले 35 वर्षों से मैं काम कर रहा हूं, जिसमें कुछ प्रमुख किस्में हैं, उसमें पूसा बासमती 1121 है, पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1692 है, पूसा बासमती 1718 है, और इसके अलावे 1847, 1885, 1886, ये सारे किस्मों के नाम हैं। और इन किस्मों का कुल चावल का उत्पादन बासमती का देश में करीब 10 मिलियन टन के आसपास होता है, जिसमें से 6 मिलियन टन का हम निर्यात कर रहे हैं, और बाकी चावल देश में प्रयोग में लाया जाता है खाने के लिए। तो इन किस्मों के विकास से बासमती चावल सर्व सुलभ हुआ है। आज किसी भी शादी विवाह पार्टी में जाइए, रेस्टोरेंट में जाइए, तो सभी जगह

0: को बासमती चावल खाने को मिलता है
1: बिल्कुल
0: और सर्वजन सुलभ हुआ है
1: जी।
0: और इसका कारण है कि शोध के द्वारा हम लोगों ने अधिक उपज देने वाली प्रजातियां विकसित की हैं।
1: बिल्कुल, तो इसी लाइटर नोट पर भी थोड़ा सा मैं आपसे बात करना चाहूंगा, क्या आपकी भी भोजन की रुचि में चावल है कि आपने चावल को भी अपना एक शोध का हिस्सा
0: बहुत
1: बनाया?
0: ज्यादा पसंद है चावल मुझे।
1: अच्छा,
0: और मैं बासमती, चूंकि हम लोग जब किस्मों का विकास करते हैं तो उस समय भी हजारों पौधे होते हैं, उनके चावल को पका करके उसी खुशबू को सूंघना, किसमें खुशबू है किसमें नहीं है, उसको खा करके टेस्ट करना, तो वह भी और उसके साथ साथ चावल हमारा एक विशेष भोजन है। मैं पूरी उत्तर प्रदेश से आता हूं, उन क्षेत्रों में चावल नहीं अगर मिला खाने को तो इसका मतलब आपका भोजन पूरा नहीं हुआ, तो चावल बहुत अच्छा लगता है।
1: थोड़ा सा हम बात करना चाहेंगे जो आपकी शिक्षा रही उस पर भी हम लौटना चाहेंगे, बनारस की गलियों से लेकर दिल्ली में पूसा तक का सफर, आप बताएं अपने बारे में थोड़ा।
0: मेरा जन्म जो है एक किसान परिवार में, पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर जिला है, वहाँ पर बरहट गांव का नाम है हमारा, जहाँ पर जन्म हुआ। और प्रारंभिक शिक्षा हमारी जो है प्राइमरी स्कूल, जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल इंटरमीडिएट की शिक्षा गांव में हुई। और विशेष रूप से मैं बताना चाहूँगा कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई करने के लिए उस समय गाँव में स्कूल उतने सुलभ नहीं थे, बहुत पास नहीं होते, तो हम लोगों को करीब करीब 20 किलोमीटर साइकिल चला के जाना पड़ता था और रोज आना पड़ता था। 40 किलोमीटर की साइकिलिंग करनी पड़ती थी प्रतिदिन। अपने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की पढ़ाई 4 वर्ष 1975 से लेकर के 1979 तक जो है, तो ये यात्रा हमारी शुरू की रही। और मैंने शुरू से ही पढ़ाई कृषि की, हाई स्कूल में भी कृषि, इंटरमीडिएट में भी कृषि की पढ़ाई की। और किसान परिवार में जन्म लेने के कारण खेती के सारे काम जो है शुरू से हम लोग करते रहे। बचपन में हम लोग बड़े हुए खेती को बहुत नज़दीक से देखते हुए, खेती को करते हुए, पशुओं को चारा खिलाना पिलाना, उनको जो है खेत में जुताई करना बुआई करना, हर तरह का काम कृषि का हम लोग करते थे। तो इंटरमीडिएट की परीक्षा गांव से पास करने के बाद उसमें हमारा उत्तर प्रदेश बोर्ड जो है, इलाहाबाद बोर्ड जो है, यूपी बोर्ड, बहुत बड़ा बोर्ड होता है, और उसमें हमारा इंटरमीडिएट की परीक्षा में चौथा स्थान आया था, तो एक गर्व की बात थी पूरे क्षेत्र के लिए। फिर मेरा प्रवेश जो है काशी हिंदू विश्वविद्यालय में बीएससी एग्रीकल्चर में मुझे प्रवेश मिला, और वहाँ से बीएससी कृषि, और इसके बाद फिर एमएससी कृषि जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग विषय हमने चुना। उसमें पढ़ाई करने के बाद फिर मैं पीएचडी के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान जो पूसा इंस्टीट्यूट है यहाँ पर मैं आया। और हमारे प्रेरणा स्रोत विशेष रूप से मैं कहूँ तो पिताजी हमेशा एक मार्गदर्शक के रूप में थे, किसान थे, कृषि को बहुत अच्छी तरह समझते थे। और हमारे बड़े भाई डॉक्टर ऋषि मुनि सिंह, वो उन्होंने भी कृषि की पढ़ाई की थी और 1962 में फ्लोरिडा विश्वविद्यालय से वो पीएचडी करके आए थे और जेनेटिक्स में ही पीएचडी उन्होंने किया था। तो एक लक्ष्य हमारे सामने था कि उनसे ज्यादा नहीं तो कम से कम वहां तक तो हमको पहुंचना ही चाहिए, तो वो लक्ष्य प्राप्त करना एक हमेशा ध्येय रहा। तो फिर मैं पूसा संस्थान में आया और यहाँ पर पीएचडी करने के बाद फिर मैं यहाँ पर वैज्ञानिक के रूप में कार्यभार शुरू किया। 1994 में वैज्ञानिक के रूप में मैंने यहाँ पर अपनी सर्विस की शुरुआत की और धान पे ही शोध शुरू से किया, और फिर वहीं पर मैं सीनियर साइंटिस्ट बना, प्रिंसिपल साइंटिस्ट बना। आनुवंशिकी विभाग जो है जहाँ पर डॉक्टर स्वामीनाथन भी अध्यक्ष रहे उस विभाग के, पूसा संस्थान में उसका अध्यक्ष बना। फिर बाद में चल करके पूसा संस्थान का निदेशक मैं 2020 में बना और 2024 तक करीब 4.5 वर्ष जो है पूसा संस्थान का निदेशक रहा। लेकिन इस सारी यात्रा के दौरान 35 वर्षों का जो कार्यकाल हमारा रहा पूसा संस्थान में, चावल से हमारा नाता कभी छूटा नहीं, शोध में मैं हमेशा जुड़ा रहा। और अभी सेवानिवृत्त होने के बाद भी मैं इमेरिटस प्रोफेसर के रूप में पूसा संस्थान में कार्य कर रहा हूँ और चावल के ऊपर ही शोध कर रहा हूँ। एक विशेष बीमारी होती है उसके निदान के लिए नई किस्मों के विकास पर मैं कार्य कर रहा हूँ।
1: बिल्कुल, बहुत आपका व्यापक अनुभव रहा है कृषि विज्ञान के फील्ड में, और इसी से मैं आपसे ये समझना चाहूंगा कि आपने भारत की खेती में, उपज में क्या बदलाव देखा है? क्योंकि हम सभी जानते हैं, एक तरफ जैसा कि आपने बताया किसान परिवार से थे तो व्यावहारिक तौर पर आपने खेती को देखा है और आपने लैब में भी खेती की रिसर्च की है। लैब से लेकर फार्म तक या प्रयोगशाला से खेत तक उन्नत खेती को जाना कितना जरूरी है, और आपने क्या कुछ बदलाव देखा है इस मामले में कि जो शोध लैब में हो रहे हैं वो अब किसानों के पास फसलों के रूप में, बीजों के रूप में पहुंच रहे हैं और उसके नतीजे भी हमें देखने को मिल रहे हैं?
0: निश्चित रूप से अगर हम भारत की कृषि यात्रा के ऊपर

0: दृष्टि डालें तो पाएंगे कि सन 1950 के दशक में हमारे देश का कुल खाद्यान्न उत्पादन मात्र 50 मिलियन टन था। उस समय हमको बाहर से अमेरिका से PL 480 एक स्कीम होती थी, पब्लिक ला 480, उस स्कीम के तहत लाल रंग का गेहूं आता था, उसकी गुणवत्ता बहुत अच्छी नहीं होती थी, रोटी कड़ी हो जाती थी, खाने में भी स्वाद नहीं होता था, और वो प्रति वर्ष करीब 5 से 7 मिलियन टन गेहूं आयात किया जाता था अपने देश की आवश्यकता पूरा करने में, और गेहूं का उत्पादन मात्र 12 मिलियन टन के आसपास उस समय होता था। और आज अगर आप देखें तो गेहूं का उत्पादन बढ़कर के 115 मिलियन टन हो गया है, और कुल खाद्यान्न उत्पादन जो 50 मिलियन टन था इस समय 358 मिलियन टन के आसपास हो रहा है। तो सिर्फ हम अपनी आवश्यकता ही नहीं पूरा कर रहे हैं बल्कि उसके साथ साथ जो दूसरे देश हैं जहां पर आवश्यकता है वहां पर हम निर्यात भी कर रहे हैं। चावल के निर्यात के बारे में मैंने बात की, उसी प्रकार से समय समय पर गेहूं का भी निर्यात किया जाता है। तो खाद्यान्न के उत्पादन के माने में अगर हम देखें तो एक तरह से राष्ट्र आत्मनिर्भर हुआ है, तो परिवर्तन बहुत आया है, और ये सारी टेक्नोलॉजी जो है किसानों तक गई है संस्थानों के माध्यम से। अगर देश की कृषि शोध प्रणाली के ऊपर आप देखें तो इस समय भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जिसको हम ICAR या इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च कहते हैं, इसके अंदर 113 संस्थान पूरे देश में कार्य कर रहे हैं, करीब करीब 75 कृषि विश्वविद्यालय हैं जिनमें कि 3 केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय हैं, और कुल मिलाकर के हमारे समझ से करीब 12-13 हजार वैज्ञानिक जो है वो शोध का कार्य कृषि के विभिन्न विषयों पर कर रहे हैं, और जिसका परिणाम है कि हम पर्याप्त मात्रा में खाद्यान्न उत्पादन कर रहे हैं और अपनी आवश्यकता पूरी करने के साथ साथ दूसरे देशों को भी निर्यात कर रहे हैं।
1: तो आज के समय में क्योंकि खेती में पर्यावरण को लेकर, जलवायु परिवर्तन को लेकर और डिजीज को लेकर, जैसे कि आपने रोग रोधी फसलों का जिक्र किया, बहुत सारी चुनौतियां भी बढ़ रही हैं, ऐसे में भी अब हम जैसे उन्नत खेती की तरफ बढ़ रहे हैं, तो आपके अनुभव क्या कहते हैं कि हम किस तरह से जो रोग रोधी फसलें हैं, उपज है, या जो हमारे पर्यावरण के अनुकूल जो पैदावार है उसको बढ़ाने में किस तरह से आगे बढ़ रहे हैं और ये कितना जरूरी है?
0: बहुत अच्छा प्रश्न है, और क्लाइमेट रिजिलिएंट वैरायटीज ये एक विशेष शोध परियोजना है जिसके अंतर्गत भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के विभिन्न संस्थानों में और कृषि विश्वविद्यालयों में कार्य किया जा रहा है, और इसमें मुख्य लक्ष्य यह है कि किस प्रकार से हम ऐसी किस्मों का विकास करें जिसमें कि रोग न लगे या बहुत कम लगे, कीड़े नहीं लगे। अगर हम धान की बात करें तो जैसे धान की जो किस्में हैं उनमें विशेष रूप से पत्ती का झुलसा रोग लगता है, झोंका रोग लगता है जिसको ब्लास्ट की बीमारी बोलते हैं, इसके अलावा ब्राउन स्पॉट एक बीमारी होती है, लीफ फोल्डर कीड़ा लगता है जो पत्ती को लपेट देता है, ब्राउन प्लांट हॉपर कीड़ा लगता है, तो ये सब तमाम तरह की बीमारियां और कीड़े लगते हैं जो उत्पादन को गिराते हैं। और इसके साथ ही साथ क्या होता है कि इन बीमारियों और कीड़ों का नियंत्रण

करें। खासकर महिलाओं में खून की कमी यानी एनीमिया की समस्या बहुत आम है, इसलिए आयरन और पोषक तत्वों से भरपूर भोजन लेना बहुत जरूरी है। बहनों, केवल शारीरिक स्वास्थ्य ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य भी उतना ही महत्वपूर्ण है। आजकल तनाव और चिंता की समस्या बढ़ती जा रही है। महिलाएं परिवार की चिंता में अपने मन की बात दबा लेती है, इसलिए जरूरी है कि वे अपने लिए भी समय निकालें, खुलकर बात करें, योग और ध्यान करें और सकारात्मक सोच बनाए रखें। गर्भवती महिलाओं का स्वास्थ्य भी बहुत महत्वपूर्ण है। समय समय पर जांच, सही पोषण और डॉक्टर की सलाह माँ और बच्चे दोनों के स्वास्थ्य के लिए बहुत जरूरी है। इसके साथ ही नियमित व्यायाम और साफ सफाई भी बेहद जरूरी है। सुबह की सैर, योग और हल्का व्यायाम शरीर को फिट और मन को प्रसन्न रखता है, क्योंकि बहनों स्वस्थ नारी ही स्वस्थ परिवार और स्वस्थ समाज की पहचान है। इसलिए अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। और अभी हम कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए थोड़ा मनोरंजन करते हैं और सुनते हैं ये प्यारा सा रोहिलखंडी लोकगीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: महिला सशक्तिकरण के अंतर्गत लखपति दीदी एवं हाउस ऑफ हिमालय जैसी पहलों ने स्थानीय उत्पादों को विश्व स्तर पर पहचान दिलाई। वही देवभूमि उद्यमिता योजना और स्टार्टअप इको सिस्टम ने युवाओं को आत्मनिर्भर बनाया।
0: कृषि उद्योग एवं पर्यटन को बढ़ावा देने से आर्थिक गतिविधियों में आई तेजी और निवेश को मिला प्रोत्साहन। साथ ही वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम और डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार से सीमांत क्षेत्रों का विकास किया गया सुनिश्चित।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
3: अब बहनों, समय हो रहा है आप सभी से विदा लेने का, पर आप हमें पत्र लिखकर ये जरूर बताइएगा कि आपको हमारा आज का कार्यक्रम

कार्यक्रम कैसा लगा, कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपको कैसी लगती है, ये सब आप हमें जरूर बताइएगा। तो जल्दी से हमारे कार्यक्रम का पता भी लिख लीजिए। हमारा पता है कार्यक्रम घर गृहस्थी अनुभाग कृषि जगत द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून। हमारा पिन है 248001 और आप jagatkrishi@gmail.com पर अपने ईमेल्स भी हमें भेज सकते हैं। अब अपनी बहन सुरुचि वर्मा को अनुमति दीजिए फिर से आपके लिए नई नई जानकारियां लेकर आने के लिए। तब तक आप स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए और अपना बहुत बहुत ध्यान रखते रहिए। बहनों नमस्कार।

0: FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1 बजने को है। अब आप आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार सुनेंगे।
1: आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा है। न्यायाधीश पीएम नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से ज्यादा छात्रों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारी संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण, पद्म भूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया की विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। विदेश मंत्रालय ने बताया है कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान के क्वाड समूह का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम करना है।

0: पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में अब पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। आईपीएल क्रिकेट के अंतिम लीग मैच में कल दिल्ली कैपिटल्स ने कोलकाता नाइट राइडर्स को 40 रन से हरा दिया। दूसरे मैच में राजस्थान रॉयल्स ने मुंबई इंडियंस को 30 रन से हराया। घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.1% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 845 अंक की वृद्धि के साथ 76,260 जबकि निफ्टी 244 अंक बढ़कर 23,964 पर था। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी देहरादून से अब प्रस्तुत है आकाशवाणी समाचार।
2: ये आकाशवाणी देहरादून है। अब आप मुद्रता से प्रादेशिक समाचार सुनिए। विश्वविद्यालय संयुक्त प्रवेश परीक्षा स्नातक की मई के अंतिम सप्ताह में अलग अलग तिथियों में होने वाली CUET UG परीक्षा अब एक निर्धारित तारीख में नहीं होगी। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने गुरुवार 28 मई 2026 को होने वाली CUET परीक्षा बकरीद के चलते स्थगित कर दी है। इस संबंध में NTA ने ऑफिशियल वेबसाइट पर आधिकारिक नोटिस भी जारी कर दिया है। आज गंगा दशहरा पर्व है। हरिद्वार हर की पैड़ी समेत गंगा घाटों पर स्नान के लिए श्रद्धालुओं की भीड़ सुबह से ही जुट रही है। प्रशासन ने गंगा घाटों पर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए हैं। वहीं गंगा दशहरा पर्व पर उत्तरकाशी में श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। देश विदेश से पहुंचे श्रद्धालु माँ गंगा में आस्था की डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। जिला मुख्यालय के मणिकर्णिका घाट सहित विभिन्न घाटों और कस्बों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। श्रद्धालु माँ गंगा की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि और परिवार की खुशहाली की कामना कर रहे हैं। घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और गंगा आरती का आयोजन भी किया जा रहा है। वन अनुसंधान संस्थान FRI आज से पर्यटकों और आगंतुकों के लिए फिर से खोल दिया जाएगा। इसे 4 महीने पहले सुरक्षा कारणों से बंद कर दिया गया था। संस्थान ने सामान्य प्रवेश और संग्रहालय के लिए शुल्क में वृद्धि भी की है। पैदल भारतीय नागरिकों के लिए अब प्रवेश शुल्क 100 रुपये निर्धारित किया गया है। संग्रहालय में प्रवेश के लिए उन्हें 150 रुपये का अतिरिक्त शुल्क देना होगा। विदेशी नागरिकों के लिए प्रवेश शुल्क 1,000 रुपये रखा गया है। संग्रहालय में जाने के लिए विदेशी नागरिकों को 1,500 रुपये अतिरिक्त चुकाने होंगे। वाहन पार्किंग के लिए भी शुल्क लागू होगा। स्कूटर और बाइक के लिए 50 रुपये, निजी कार या टैक्सी के लिए 150 रुपये शुल्क लिया जाएगा। ऑटो रिक्शा का पार्किंग शुल्क 100 रुपये और बस या ट्रक का 300 रुपये होगा। FRI की प्रभारी निदेशक ऋचा मिश्रा ने बताया कि पर्यटकों के प्रवेश शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। संस्थान को 16 जनवरी 2026 को सुरक्षा व्यवस्था के मद्देनजर बंद किया गया था। यह बंद अगले आदेश तक के लिए था जो अब समाप्त हो गया है। दून विश्वविद्यालय के 75 छात्रों का बहुराष्ट्रीय कंपनियों में प्लेसमेंट हुआ है। इस उपलब्धि पर दून विश्वविद्यालय की कुलपति प्रोफेसर सुरेखा डंगवाल ने कहा कि छात्रों का सफल प्लेसमेंट विश्वविद्यालय की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक रहा है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय का प्रत्येक विभाग छात्रों को रोजगारोन्मुखी कौशल प्रदान करने और उन्हें उद्योग की आवश्यकताओं के अनुरूप तैयार करने के लिए निरंतर प्रयासरत है। विश्वविद्यालय लंबे समय से परिणाम आधारित शिक्षा प्रणाली पर काम कर रहा है जिसके तहत न केवल सैद्धांतिक शिक्षा बल्कि औद्योगिक तत्परता, प्रशिक्षण गतिविधियों, व्यावसायिक कौशल, व्यक्तित्व विकास और रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया जाए।

0: का। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज उन्हें नई दिल्ली में सम्मानित करेंगी। श्री कोश्यारी को यह पुरस्कार शिक्षा, समाज सेवा, राजनीति और राष्ट्र निर्माण में उनके दीर्घ योगदान के लिए दिया जा रहा है। सम्मान पाने पर श्री कोश्यारी ने कहा कि समाज हित के लिए निरंतर कार्य करना जीवन का उद्देश्य है और वे निरंतर यह कार्य करते रहेंगे। सहकारी समितियों के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी ने 98% बोर्डो में जीत दर्ज की है। सहकारिता मंत्री डॉ. धन सिंह रावत ने बताया कि टिहरी के जौनपुर और हरिद्वार की लंढौर सहकारी समिति में भाजपा ने ऐतिहासिक जीत दर्ज की। दोनों समितियों में 68 वर्ष बाद पहली बार पूरी कार्यकारिणी निर्विरोध निर्वाचित हुई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश भर में 39 सहकारी समितियों में हुए चुनावों में महिलाओं ने भी बड़ी संख्या में जीत दर्ज की है। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला बुलेटिन आज अपराह्न 3 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।
1: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर यह आकाशवाणी देहरादून है। अब आप सुनेंगे अगला कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से।

0: न्यूज पद्मा ऑन आकाशवाणी।
1: ये आकाशवाणी है, प्रस्तुत है वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी। आज सुनते हैं सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले राजस्थान के स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हैं जितेंद्र शर्मा।
2: श्रोताओं नमस्कार, आकाशवाणी के इस विशेष साक्षात्कार में आपका स्वागत है। इस अंक में हम आपकी मुलाकात स्वामी ब्रह्मदेव महाराज से करवा रहे हैं, जिन्हें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर वर्ष 2026 के लिए देश का चौथा सर्वोच्च नागरिक अलंकरण पद्मश्री देने की घोषणा की गई है। स्वामी जी के प्रयासों से हजारों दिव्यांगों का जीवन रोशन हुआ है। आप पिछले लगभग 5 दशकों से श्री गंगानगर में जगदम्बा आनंद विद्यालय का संचालन कर रहे हैं। श्रोताओं जानते हैं समाज सेवा को समर्पित स्वामी जी की जीवन यात्रा के बारे में। स्वामी जी, सबसे पहले पद्मश्री पुरस्कार दिए जाने की घोषणा के लिए आपको बहुत बहुत बधाई। स्वामी जी, सबसे पहले हम आपके प्रारंभिक जीवन के बारे में जानना चाहेंगे। आपका बचपन, आपकी शिक्षा दीक्षा और अध्यात्म की ओर आपका झुकाव कैसे हुआ?
3: मैं 6ठी क्लास तक तो गांव में ही पढ़ा हूँ, ग्रामीण हमारा जीवन का प्रारंभ है। उसके बाद हमारा गुरुजी से संबंध जुड़ा, उनके सत्संग के माध्यम से हम अपने गुरुजी से प्रभावित होकर के संतों के शरण में चले गए। उसके बाद गुरुजी ने हमें पढ़ने लगा दिया, तो हमारी शिक्षा सारी अमृतसर की है। वहाँ अखाड़ा संगलवाला है, जहाँ रह करके हमने दुर्गयाड़ा मंदिर में जो संस्कृत विद्यालय है वहाँ हमारी शिक्षा दीक्षा हुई। वहीं बैठ करके हमने प्रभाकर की संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, वहीं हमने ग्रेजुएशन की। उसके बाद फिर हम गुरुजी के पास आ गए, उन्होंने फिर हमें गांव में सत्संग करने के लिए लगा दिया कि नशे के खिलाफ हर गांव में जाइए, तो हम इस अभियान में जुट गए। 1960 में मैं गुरुजी के चरणों में चला गया था। 1972 तक पढ़ने के बाद गुरुजी के पास सेवा की। 72 में गुरुजी ने हमें आज्ञा दे दी, तो हम पटियाला चले गए। पटियाला सत्संग के माध्यम से वहाँ एक आश्रम बढ़ गया। तो जब मैं अमृतसर में पढ़ता था, वहाँ हमारे संस्कृत विद्यालय के साथ एक छोटा सा अंध विद्यालय भी था, तो मैं अक्सर उसमें जाया करता था। तो मेरे मन में कई बार आता था, ये सबसे बड़ी तो ये सेवा है, बाकी तो सबको लोग पढ़ा लेते हैं, तो जिसको दिखते ही नहीं उसको पढ़ाना, उनको किताबें ऐसे पढ़ते देख करके मेरे बड़ी उत्सुकता थी कि प्रभु ने कभी कृपा की तो आप अंध विद्यालय में। वो मन में विचार हमारे बैठा हुआ, तो चलते चलते गुरुजी की आज्ञा से पटियाला चले गए, वहां भी आश्रम बन गया। तो 73 में हरिद्वार में भी आश्रम बन गया। उसके बाद हम इधर आए तो समाणा, पटियाला, धूरी, खन्ना इधर सत्संग करते रहे, तो अचानक हमें गंगानगर के 2 व्यक्ति हरिद्वार में मिले। वो हमें यहाँ ले 76 में, तो हनुमान जी का मंदिर है, वो भी निर्माणाधीन था। वहाँ 2 दिन सत्संग करके हम चले गए। उसके बाद फिर उन्होंने हमें अगले साल बुलाया, तो 8-10 दिन जगह सत्संग हुआ, तो वो कहने लगे जी हमारा बंदर पूरा करवाओ। 78 तक वो बंदर कंप्लीट हो, प्राण प्रतिष्ठा करवाने के बाद, यज्ञ करने के बाद हम चले गए। जब दोबारा फिर आए अगले साल 1 दिन के लिए, तब ये जो नया चक है जिसके बाद करचैल चौक कहते हैं, ये नया चक था। हम यहाँ 78 में आ गए। ये नए चक के एक पुरजाराम जी कुलचाणिया जो थे, उनकी ये जमीन है, 1 बीघा जमीन है। उन्होंने माता का मंदिर बढ़ाया हुआ था, उसका नाम था जगदम्बा माता मंदिर, छोटा सा मंदिर, 1 बीघा उसके नाम जमीन। तो ये हमारे पास हनुमान मंदिर में चले गए जी। हमारा मंदिर तो बन गया, वहाँ पूजा तो होती नहीं, तो हमें लगता है कि पूजा ना हो तो अपराध है, आप उसमें कुछ बनाना चाहते तो बनाओ। वहां से फिर पैदल चल करके गाँव के बाद जब इस जगह को देखा, सड़क के किनारे वहाँ नीम के पेड़ लगे हुए, छोटा सा मंदिर है, तो एकदम माता के दर्शन करते मन में विचार आया कि जो अपने अंध विद्यालय है ना, वो यहाँ पूरा हो सकता है। शहर से दूर है, चारों तरफ खेत है, कल को जगह की जरूरत हो तो जगह भी मिल सकती है। तो 13 दिसंबर 1980 को अंध विद्यालय की नींव हमारे गुरुदेव संत बाबा करदयाल दास जी महाराज जी के कर कमलों से रख दी गई। 81 में 6 कमरे हमने तैयार कर लिए थे, 1 बच्चे से जिसका नाम राजकुमार था और 1 हमारे थे अध्यापक जिसका नाम था अमरनाथ गर्ग, दोनों से स्कूल शुरू कर दिया। धीरे धीरे बच्चे बढ़ते चले गए, हम भी संघर्ष करते गए, सत्संग होता रहा, लोगों की भी रुचि बढ़ती गई। फिर गांव से जहां पता चलता था ब्राइड बच्चा लेने के लिए जाते थे, बड़ी समस्या आती थी उनको समझाने की, उनको समझा बुझा के गर्ग साहब को साथ लेके जाना, पढ़ के दिखाना, फिर बच्चे धीरे धीरे बढ़ते चले गए।
2: स्वामी जी, इस विद्यालय में दिव्यांग बच्चों के प्रशिक्षण और स्वावलंबन बनाने के लिए किस प्रकार सिखाते हैं ताकि वो खुद स्वावलंबी बन जाए?
3: ये विद्यालय जब शुरू हो गया इनको तो हम बनाने सिखाते थे, कुर्सियां बनाना, बैग बनाना, बाकी खेल कूद, संगीत की शिक्षा, ये तो इन बच्चों के जीवन यापन के लिए थे, आगे इनको सर्विस भी मिल सके। और साथ ही फिर 83 में डेफ बच्चों के लिए शुरू हो गया। अब उसमें बच्चे आने लगे, उन बच्चों के लिए शिक्षा तो थी ही साइन लैंग्वेज से, साथ के साथ लड़कियों के लिए सिलाई कढ़ाई एम्ब्रॉयडरी ब्यूटी पार्लर ये काम सिखाना, बच्चों को सर्टिफिकेट वगैरह दिलवाना, फिर बच्चों को धीरे धीरे कंप्यूटर आ गया, पहले हम टाइप सिखाते थे फिर कंप्यूटर सिखाने लग गए, तो बच्चों के लिए फिर प्रेस लगाई दूसरी कंपोजिंग वाली, फिर हमने ऑटोमेटिक प्रेस लगाई ताकि बच्चे आगे पढ़ लिख करके कहीं रोजगार प्राप्त कर सके। ये दोनों का डेफ के लिए अलग और ब्लाइंड बच्चों के लिए अलग, दोनों तरफ चलता रहा।
2: स्वामी जी अब तक की यात्रा में कितने बच्चे लाभान्वित हो सके हैं और भविष्य में क्या कुछ योजनाएं हैं?
3: इसके बाद फिर हमने शुरू किया था नेत्र चिकित्सालय कि जो ब्लाइंड बच्चे ब्लाइंड हो चुके हैं उनको तो शिक्षित करो, जो ब्लाइंडनेस बढ़ रही है वृद्धों में भी और कई जन्मजात बच्चों के भी कैटरेक्ट होता है सफेद मोतिया, उससे भी बच्चा ब्लाइंड हो जाता अगर इलाज ना हो, तो फिर आई हॉस्पिटल की स्थापना की, लोगों के सहयोग से आई हॉस्पिटल बढ़ गया। उस आई हॉस्पिटल में जिसका पढ़ाना तो पढ़ाए, जिसका इलाज नहीं तो उसको वहाँ हॉस्पिटल में इलाज करते, ताकि जो वृद्ध अवस्था में ब्लाइंडनेस आती है वो ब्लाइंडनेस का कंट्रोल होता रहे।
2: स्वामी जी भविष्य में क्या कुछ योजनाएं हैं?
3: बच्चों के लिए हमने जो यहाँ प्रयास किए, कुछ बच्चे तो हमने डेफ बच्चे पहलवान बनाए, ब्लाइंड बच्चों को क्रिकेट में जूडो में खेलों में दे करके नेशनल लेवल तक ये भी बच्चे जाते रहे। फिर हमारे पास मिलिट्री के लोग भी आने लगे, उसके बाद दयालु जनरल साहब आए थे, उन्होंने जो मिलिट्री का एमएस डिपार्टमेंट है उसमें हमारे डेफ बच्चे उन्होंने रख ली, फिर तो दयालु बच्चों की सर्विस की कोई चिंता नहीं रही। रेलवे में ब्लाइंड बच्चे हैं, एजुकेशन में ब्लाइंड बच्चे चले गए, स्कूल टीचर बन गए, अब तो उसके बाद हमारे पास डीएड का और बीएड का कॉलेज भी है, जो बच्चे प्लस टू कर लेते हैं वो डिप्लोमा करेंगे, जो बीए कर लेते हो बीएड कर लेते, अब तो हजारों की तादाद में जो टीचर है सरकारी स्कूलों में लगे हुए, पंजाब में भी यहाँ राजस्थान में भी। सर्विस की कोई अभी तक तो इन बच्चों को कोई चिंता नहीं, कई बच्चों का अपना पर्सनल बिजनेस भी है।
2: श्रोताओं हम बता दें देश का पहला ब्रेल एटीएम शुरू कराने में श्रेय श्री स्वामी जी को जाता है। स्वामी जी हम आपसे जानना चाहेंगे कि आपके मन में यह विचार कैसे आया?
3: पहले तो राजस्थान में ब्रेल बुक छापने का कोई व्यवस्था नहीं थी, तो हमने एम्बेसी के माध्यम से पता करके स्वीडन से 20 लाख की गवर्नमेंट की माध्यम से ब्रेल प्रेस मंगवाई, ताकि राजस्थान के बच्चों को फिर हम फ्री राजस्थान के कोर्स की किताबें जहां जहां भी ब्रेल स्कूल था वहां वहां भेजते रहे। दूसरा ये था कि बैंकों का काफी विस्तार होने लगा, एटीएम लगने लगे, तो हमारा ब्लाइंड बच्चा एटीएम से पैसे कैसे निकालेगा। फिर हमने बैंक से संपर्क किया, इन्होंने फिर एक ऐसा बनाया एटीएम जिसके ऊपर लिखा हुआ था ब्रेल प्रेस के शब्दों से, तब हमारे बच्चे जाकर के एटीएम में इससे अपने पैसे निकाल लेते थे। पहला एटीएम जो ब्रेल लिपि में था वो गंगानगर से शुरू हुआ, पहली जो कंप्यूटराइज्ड ब्रेल प्रेस है राजस्थान में पहली अपने लगाई थी।
2: स्वामी जी दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए समाज की धारणा में किस तरह बदलाव लाया जा सकता है और कैसे लाया जा सकता है और यह बदलाव क्यों जरूरी है?
3: जो यंग होता है ना यूथ, जिसको आजकल जेन जी बोलते हैं, उसके अंदर बहुत बड़ी एनर्जी होती है, उस एनर्जी को दिशा देनी है, जैसे हमें गुरुदेव ने दिशा दे दी जवानी में बढ़ते बढ़ते इधर लागे, तो ये दिशा मिलती है कॉलेजों में स्कूलों में यूनिवर्सिटियों में, अगर वहाँ भी इसी प्रकार के आयोजन होते रहें विकलांगों के प्रति, ब्लाइंड बच्चा कैसे पढ़ सकता है यूनिवर्सिटी में ऐसी कॉन्फ्रेंस हो, डेफ की भी कॉन्फ्रेंस जगह जगह रखी जाए, ताकि लोगों में बहुत बड़ी भावना है दयालु, कहीं भी बात करो यंग ब्लड सब कुछ करने के लिए, समाज सब कुछ करने के लिए तैयार है, हमारे को समाज ने बहुत सहयोग दिया, जगह जगह समाज सहयोग दे रहा है, सहयोग लेने वाला चाहिए, इसलिए अगर ऐसे आयोजन हो जगह जगह यूनिवर्सिटियों में कॉलेजों में के ब्लाइंड कैसे पढ़ता है, जैसे अब हमारे पास ना कॉलेजों के बसें भर के आती है, उनका एजुकेशनल टूर भी हो जाता है और ब्लाइंड बच्चों को पढ़ते भी देख लेते हैं, डेफ बच्चों को पढ़ते भी देख लेते हैं, और किस प्रकार कई लोग आते हैं, किस प्रकार हमारा आई हॉस्पिटल बड़ा है, उसमें आजकल 6 सर्जन है और 70-80 ऑपरेशन प्रतिदिन होते हैं, हर हफ्ते इन दिनों में जगह जगह फ्री कैंप लगते हैं, बस जाती है, फ्री चेकअप करेंगे, लोगों की कमेटियां बड़ी हुई हैं, उनसे जो डिटेक्ट होता है मरीज उनको फ्री लाते हैं, फ्री ऑपरेशन होता है, भोजन पानी की दवाई की व्यवस्था बिल्कुल फ्री है, फ्री ही उसको बस से वहां छोड़ के आएंगे उसके डेस्टिनेशन पे जहां से उसको लेकर के आए हैं। तो ये व्यवस्था भी सरकार के सहयोग से, जनता के सहयोग से और जो कमेटियां बनी हुई है उनके सहयोग से ये व्यवस्था भी बहुत सुंदर चल रही है और आज तक 5 लाख से ऊपर आई कैटरेक्ट के ऑपरेशन हो चुके हैं।
2: स्वामी जी, युवाओं को मौलिकता के इस युग में समाज सेवा से जोड़ने के लिए क्या कुछ किया जाना चाहिए?
3: एक पहले धारणा बनी थी कि कॉलेजों में कोई धार्मिक टीचर भी हो तो उनके माध्यम से हो सकता है। बाकी ये जो आजकल मैंने बताया ना कि कॉलेजों के स्टूडेंट जो है, जहाँ प्लस टू के जो स्टूडेंट है, जो बीएड कर रहे हैं, जो नर्सिंग कर रहे हैं, वो लोग बसे लेकर के अगर ऐसी संस्थाएं बच्चों को दिखाएं जहाँ वृद्धों के लिए काम हो रहा है, जहाँ डेफ बच्चों के लिए काम हो रहा है, ब्लाइंड के लिए काम हो रहा है, MR बच्चों के लिए काम हो रहा है, हमारे यहाँ निशुल्क अंग भी लगाए जाते हैं आर्टिफिशियल, बिल्कुल निशुल्क, यहाँ कैंप लगता है उसमें बिल्कुल निशुल्क, जो भी कोई आएगा चाहे रिपेयर करवाए चाहे अंग लगाए वो भी निशुल्क काम यहाँ होता है। तो इस प्रकार अगर संस्था दिखाई जाए विद्यार्थियों को, कॉलेज तक के विद्यार्थियों को, क्योंकि तब तक बच्चा समझने लग जाता है तो वो ना जाने कहां जाकर के कौन सा काम क्या कर दे। कई स्टूडेंट हमारे गए हैं यहाँ से, उन्होंने अपने गांव में 5-4 बच्चे लेकर के स्कूल खोल रखे हैं, वो भी सेवा बावला में लगे हुए हैं, कहीं उन्हें डेफ बच्चों के लिए ट्यूशन का काम कर रखा है। तो ये काम हो सकता है अगर इस प्रकार ये संस्था दिखाई जाए, तो मेरे को भी देखने से प्रेरणा मिली। या तो दयालु किसी चीज को देखता है तब वो देखता है कि मुझे भी ये करना चाहिए, जहाँ जो किसी चीज के बारे में सुनता है कि ये फलानी जगह संस्था चल रही है जी बहुत अच्छी है, तो उसका भी मन करता है कि मैं भी करूँ। इस प्रकार कई लोग हमें यहाँ संपर्क करते हैं, नाना प्रकार की जो संस्थाएं हैं कि आप कैसे डेफ को चला रहे हो, मोपद विद्यालय कैसे चला रहे हो, इससे प्रेरणा लेकर के आप देखिए बठिंडा में बहुत बड़ा स्कूल बन गया। हमारे संप्रदाय के संत ने 10 एकड़ जमीन दी, वहाँ उसको अब DC साहब जो है रेड क्रॉस वो चला रही। इसी प्रकार ये अबोर में हमारे पास में वहाँ भी मूक बधिर विद्यालय शुरू किया गया, फरीदकोट में भी है। इस प्रकार छोटे छोटे विद्यालय भी शुरू हो जाए तब भी बच्चा नजदीक ही अपनी शिक्षा प्राप्त करके, एक मैं आपको गारंटी देता हूँ दयालु, बच्चा अगर वो शिक्षित हो गया ना वो मुख्य धारा के साथ जुड़ जाता है, समाज को समझने लग जाता है, क्योंकि बुक्स पढ़ता है, बातें सुनता है, तो जो नौकरी लगे हुए हैं उनको भी मिलता है, उनके मिलने से वो भी प्रयास करते हैं। इसलिए ब्लाइंड बच्चे रेलवे में भी जा रहे हैं, ब्लाइंड बच्चे बैंकों में भी जा रहे हैं, डेफ भी जा रहे हैं, बस बच्चों को लेना है, स्कूल में लाना है, उसको किसी ढंग से प्रशिक्षित करो। एक बार वो प्रशिक्षित हो गया समझ लो बच्चा मुख्य धारा में जुड़ गया, अब वो समाज पे परिवार पे बोझ नहीं रहेगा, सपोर्टर बन जाएगा।
2: स्वामी जी, आपकी तपस्या को 50 साल पूरे हो रहे हैं, आने वाले समय में आप कौन से ऐसे सपने हैं जिन्हें साकार होते हुए देखना चाहते हैं?
3: चलो, मुझे ऐसा लगता है जो आजकल सरकार का जो वातावरण बन रहा है जैसे, और इनको नाम दे दिया दिव्यांग, दिव्यांग बच्चों के प्रति जो सरकार की योजनाएं चल रही है नाना प्रकार की, उनको ऋण देना, उनको अपने पांव पे खड़ा करने की योजना देना, उनको सर्विस देना, रिजर्वेशन देना, ऐसी योजना जो सरकार चला रही है, तो ये योजना बच्चों के भविष्य के लिए बहुत अच्छी है। तो मैं अपनी तरफ से सरकार का भी आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इन बच्चों के लिए योजनाएं शुरू की है, और समाज सरकार की योजनाओं से प्रेरित होकर के कई जो दानवीर हैं, जहाँ जो इसमें समाज में कुछ काम करना चाहते हैं समाज सेवी, उनको भी उत्साह मिलता है। तो मैं एक और भी सरकार का आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि सरकार ने इस गंगानगर जिले की सेवा को मान्यता दी है, ये पद्मश्री दे करके इनकी सेवा को स्वीकार किया है कि यहाँ कुछ हो रहा है, इसके लिए मैं जिले की ओर से भी सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।
2: स्वामी जी, मुझे जितेंद्र शर्मा को अनुमति दीजिए।
1: अभी आप सुन रहे थे वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कारों से जुड़ी विभूतियों पर हमारा विशेष कार्यक्रम पीपल्स पद्म ऑन आकाशवाणी। आज आपने सुनी सामाजिक कार्यों के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान देने वाले राजस्थान के स्वामी ब्रह्मदेव जी महाराज के साथ खास बातचीत। इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे थे जितेंद्र शर्मा। इस कार्यक्रम को आप हमारे मोबाइल ऐप News on AIR और यूट्यूब चैनल News on AIR ऑफिशियल पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल के माध्यम से भेज सकते हैं। ईमेल का पता है podcast.airnews@gmail.com।
0: पीपल्स पद्मा ऑन आकाशवाणी।

FM 100.5 MHz पर यह आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओं, स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 1:30:10 हुए हैं। अब आप सुनेंगे ये प्रायोजित कार्यक्रम जो प्रस्तुत कर रहे हैं NCERT की ओर से, तो प्रस्तुत है प्रायोजित कार्यक्रम।

0: उमंग
1: सीआईईटी प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: सभी श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन। विमलेश का नमस्कार
3: और अजीत का भी नमस्कार।
2: कस्बा बराड़ा, जिला अम्बाला, हरियाणा से रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका, नूर, नमन, सिमरत, गुरकीरत राहुल, गुरु शब्द सिंह जी ने सुविचार भेजा है। लिखते हैं,
3: जीवन में सवाल करने वाले तो बहुत मिलते हैं, लेकिन बिना सवाल किए ख्याल रखने वाले मुश्किल से मिलते हैं। सोच अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि नजर का इलाज तो मुमकिन है, लेकिन नजरिए का इलाज आसान नहीं है।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद संदेश भेजने के लिए। पिछले दिनों हमें संदेश भेजने वाले और श्रोताओं के नाम हैं।
3: खैरागढ़ राज लालपुर छत्तीसगढ़ से मोतीलाल भीमटे और सुशीला भीमटे जी ने लिखा है,
2: आपका उमंग कार्यक्रम मुझे बेहद उपयोगी, ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद लगता है। इस कार्यक्रम के माध्यम से नई नई जानकारी मिलती है, जो काफी लाभदायक सिद्ध हो रही है। साथ ही साथ गीत संगीत से कार्यक्रम की रोचकता बनी रहती है। आप सभी की अथक मेहनत, लगनशीलता और अनुपम प्रस्तुति को हम दिल से नमन करते हैं। इस कार्यक्रम का प्रसारण यूं ही बरकरार रहे।
3: बहुत बहुत धन्यवाद आपके संदेश के लिए। गांव गणेश धाम परसूली, पोस्ट खेरथा बाजार, जिला बालोद छत्तीसगढ़ से जितेंद्र दास मानिकपुरी, मिलव दास, जय दास, देवेश दास, धर्मंतीन भाई और मोतिम भाई मानिकपुरी जी ने लिखा है। सप्रेम अजीत साहेब और विमलेश मैडम जी, वंदगी जी। आगे लिखते हैं,
2: अजीत साहेब जी का कार्यक्रम आप दोनों के साथ शुरुआत होता है और बहुत शानदार रहता है। इस सप्ताह विमलेश मैडम कोई भी कार्यक्रम में नहीं आया। आप दोनों का वाणी विचार इस कार्यक्रम को और खूबसूरत बनाता है। आप दोनों का स्नेह श्रोताओं को मिलता रहे। 30 अप्रैल 2026 को एक टोकरी मिट्टी कहानी सुनने को मिला, बहुत प्रेरणादायक और शिक्षाप्रद लगा। दिल से धन्यवाद।
3: आपको भी दिल से धन्यवाद। अगला संदेश हमें मिला है केंद्रपाड़ा ओडिशा से देशदीप दास जी का।
2: हिंगोली महाराष्ट्र से साहजी बोड़खे, नंदा बोड़खे, हनुमान बोड़खे और उत्तम जमदाड़े।
3: और साथ ही साथ खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलकराज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा जी का संदेश हमें मिला है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद श्रोताओं, संदेश लगातार भेजने के लिए। आपसे निवेदन है, इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमारे और आपके उमंग कार्यक्रम से। आइए अब जानते हैं पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो हमारा पहला प्रश्न था, पीसा की मीनार कहाँ है और ये तिरछी क्यों है?
2: इसका उत्तर है, पीसा की मीनार इटली में स्थित है। इसकी नींव नरम और दलदली मिट्टी पर बनी हुई थी। इसकी मिट्टी कम गहरी है। जब इसे और ऊंचा बनाया गया तो ये धीरे धीरे तिरछी होनी शुरू हो गई।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न था, अधिकांश वर्षा वन पृथ्वी के किस क्षेत्र में पाए जाते हैं?
2: इसका उत्तर भी जान लेते हैं साथियों। अधिकांश वर्षा वन भूमध्य रेखा के आसपास पाए जाते हैं, क्योंकि इन क्षेत्रों में गर्मी बहुत पड़ने की वजह से वर्षा भी खूब होती है।
3: और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न। हमने आपसे पूछा था, अमेजन वर्षा वन के क्षेत्र में अमेजन नदी पर पुल क्यों नहीं बनाए जाते हैं?
2: अमेजन क्षेत्र में भारी वर्षा होने के कारण अक्सर अमेजन नदी अपना तटबंध बदलती रहती है, इसलिए निश्चित करना बहुत कठिन हो जाता है कि पुल कहां से कहां तक बनाया जाए।
3: जी, और अब सुनिए हमारा अगला प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था। हमारा प्रश्न था, मातृवृक्ष किसे कहते हैं?
2: इसका उत्तर है साथियों, मातृवृक्ष उन पेड़ों को कहा जाता है जो बहुत पुराने और बड़े होते हैं। उनकी जड़ें जमीन पर दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। वे छोटे पेड़ पौधों को अपनी जड़ों से पोषण देते हैं।
3: और श्रोताओं, अब सुनिए हमारा अंतिम प्रश्न। हमारा अंतिम प्रश्न था, साधारण पेड़ खारे पानी में मर जाते हैं, लेकिन मैंग्रोव वन के पौधे खारे पानी में भी जीवित रह पाते हैं, ऐसा क्यों?
2: इसका उत्तर भी बड़ा अनोखा है साथियों। मैंग्रोव वनों के पेड़ों की पत्तियां खारे पानी के नमक को छानकर निकाल देती हैं और उन्हें मीठे पानी में बदल देती हैं, जिसके कारण वहां के पेड़ खारे पानी में भी जीवित रहते हैं। ये प्रकृति का अद्भुत चमत्कार है।
3: तो श्रोताओं, ये थे हमारे पिछले सप्ताह पूछे गए प्रश्नों के उत्तर। तो प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी प्रकार से बने रहिए उमंग कार्यक्रम के साथ। जरूर बताइएगा कि आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगता है। तो आप सुनिए आज का प्रश्न। हमारा आज का प्रश्न है,
2: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
3: प्रश्न एक बार फिर से सुन लीजिए,
2: दुनिया का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कहाँ पर है?
3: और भेज दीजिए अपना उत्तर 8800440559 पर, जो हमारा IVRS नंबर है। आप हमारे ईमेल यानी audio@ciet.nic.in पर भी अपने संदेश और पत्रों के उत्तर भेज सकते हैं।
2: इंस्टा, फेसबुक, लिंक्डइन और एक्स पर भी आप CIET NCERT को जरूर फॉलो करें। इससे आपको हमारी गतिविधियों की जानकारी मिलती रहेगी।
3: और श्रोताओं, अब बारी है आज के शैक्षिक कार्यक्रमों की। तो हमारा पहला कार्यक्रम है, शेर और चूहे की दोस्ती।
4: शेर मतवाली चाल से चला जा रहा था। अचानक उसे एक हल्की सी चीख सुनाई दी। एक चूहे की पूंछ उसके पंजे के नीचे आ गई थी।

0: आप तो जंगल के राजा हैं, मुझे छोड़ दीजिए। देखना एक दिन मैं आपके काम जरूर आऊंगा। हाँ, छोड़ दीजिए।
1: मेरे काम आओगे? ये छोटा सा चूहा ये भला मेरे क्या काम आएगा? ठीक है, जाओ, तुम्हें आजाद किया, जाओ।
0: धन्यवाद महाराज, पर एक दिन मैं आपकी मदद जरूर करूंगा। हाँ, मदद करूंगा।
2: शेर ने अपना पैर हटाया, चूहा फुदक कर झाड़ियों में चला गया।

एक दिन शिकारी ने शिकार पकड़ने के लिए जाल बिछाया। उस जाल में शेर फंस गया। वो जोर जोर से दहाड़ने लगा।

0: जंगल में रहने वाले हाथी, भालू, हिरण, खरगोश, लोमड़ी, बंदर और अजगर समेत सभी पशु पक्षियों ने दहाड़ सुनी, पर कोई भी शेर की सहायता को नहीं आया।
1: ये कहां फंस गया मैं? अरे कोई तो मेरी मदद करो, मैं जाल में फंस गया हूं, निकालो मुझे यहां से।
0: हाँ, चूहा जरूर भागा भागा वहां आया।
2: अरे महाराज, आप यहाँ? लेकिन आप चिंता ना करें, मैं आपको अभी इस जाल से आजाद कर देता हूँ।
0: वो अपने पहने दांतों से जल्दी जल्दी जाल कुतरने लगा। कुछ ही पल में सारा जाल कट गया और शेर आजाद हो गया।
1: धन्यवाद, धन्यवाद मेरे नन्हे दोस्त, धन्यवाद
2: महाराज।
3: तो साथियों, सुना आपने, हम जिनसे आशा भी नहीं करते वे भी हमारे बहुत बड़े सहायक सिद्ध हो सकते हैं, है ना? तो इसलिए हमें सबका सम्मान करना चाहिए। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती। कार्यक्रम समन्वय प्रोफेसर राजेंद्र पाल, तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो, कलाकार बाबला कोचर, मुइनुल हसन नियाजी और परवेज गौहर, ध्वन्यांकन मयंक कुमार, निर्माण सहयोग मीनाक्षी कुकरेती, मार्गदर्शन अजीत होरो, निर्देशन एवं निर्माण विमलेश चौधरी। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली, भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम शेर और चूहे की दोस्ती।

0: दीक्षा शिक्षा की डिजिटल आधारिक संरचना पीएम ई विद्या कार्यक्रम और आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत एनसीईआरटी शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार की एक पहल। दीक्षा, दीक्षा।
1: और आइए अब सुनते हैं अगला कार्यक्रम। हमारा अगला कार्यक्रम है
2: अर्देशीर बुड़जोड़ जी तारापुर। ये कार्यक्रम परमवीर चक्र विजेता भारतीय सेना के जांबाज कर्नल अर्देशीर बुड़जोड़ जी तारापुर के जीवन और भारत पाक युद्ध के दौरान उनके अप्रतिम शौर्य और रण कौशल के प्रदर्शन की जानकारी देता है।

0: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है श्रृंखला वीर गाथा। इस श्रृंखला में सुनते हैं कार्यक्रम लेफ्टिनेंट कर्नल अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर।
1: भारत भूमि की जितनी वंदना की जाए कम है। कुछ तो ऐसा जरूर है इसकी माटी में जो अनगिनत प्रतिभाओं, वीरांगनाओं, वीरों, कलाकारों, मेधावियों और योद्धाओं को पैदा करती है।
2: आज हम चर्चा करने जा रहे हैं भारत माता के सपूत और पराक्रमी सैन्य योद्धा अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर के बारे में, जिन्होंने सन 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध में अपने असीम शौर्य का परिचय दिया और युद्ध का रुख भारत के पक्ष में निर्णायक रूप से मोड़ दिया। अर्देशीर बुरजोरजी तारापोर का जन्म 18 अगस्त 1923 को बंबई में हुआ था, जिसे आज हम मुंबई के नाम से जानते हैं। अर्देशीर महान योद्धा रतनजीबा की वंश परंपरा में पैदा हुए थे। रतनजीबा महान राजा छत्रपति शिवाजी की सेना में सेनानायक थे।
1: उनके अतुल्य पराक्रम, शौर्य और श्रेष्ठ कर्तव्य निर्वहन के सम्मान में स्वयं राजा शिवाजी द्वारा 100 गांवों की मनसबदारी दी गई थी। इन 100 गांवों में से एक था तारापोर, जहां रतनजीबा बस गए थे। इसी तारापोर गांव का नाम आगे चलकर उनके खानदान का उपनाम बन गया।
2: काल क्रम में तारापोर परिवार हैदराबाद में जा बसा। अर्देशीर यहीं बड़े हुए। सन 1940 में मैट्रिक पास करने के बाद वो हैदराबाद स्टेट आर्मी में शामिल हो गए। उन्हें प्यार से आदि पुकारा जाता था।
1: सेना में आते ही आदि ने अपूर्व साहस और निष्ठा का परिचय दिया। अपने सौम्य, मित्रवत और हंसमुख स्वभाव के कारण आदि समय के साथ साथ जवानों में बेहद लोकप्रिय थे। एक बार की बात है, उनकी यूनिट में हथगोला फेंकने का प्रशिक्षण चल रहा था।
3: जवानों,
4: जी सर।
3: हथगोला फेंकने के लिए बहुत अभ्यास की जरूरत होती है। जितना अधिक अभ्यास आप करेंगे, उतना ही सटीक आपका निशाना होगा।
4: जी सर, हमने सुना है कि यदि हथगोले को ठीक से नहीं फेंका गया तो।
3: तुमने ठीक सुना है, यदि इसे ठीक से नहीं फेंका गया तो यह जानलेवा हो सकता है। अच्छा चलो, अब अभ्यास शुरू करते हैं।
5: जी सर।
3: ध्यान रहे, जब आप गोला फेंकते समय अपने हाथ को घुमाते हैं तो गोले को सही समय पर फेंकिए। चलो राम सिंह, तुमसे शुरू करते हैं।
5: जी जनाब।
3: हाथ गोला हाथ में लो।
5: ले लिया जनाब।
3: अब पिन रिलीज करो।
6: फेंको,
5: फेंका जनाब।
7: अरे अरे, ये क्या हुआ,
8: ये क्या हुआ?
9: अरे बच्चों, बच्चों, बच्चों,
10: फट गया,
11: सब पीछे हटो, पीछे हटो,
12: जमीन पर लेट जाओ,
13: बाहर निकल जाओ, बाहर निकल
2: जाओ। साथियों, हुआ ये था कि वो सैनिक ग्रेनेड ठीक से नहीं फेंक सका और ग्रेनेड वापस अभ्यास स्थल पर ही आ गिरा।
1: कि तभी आदि तत्काल उठे, बिजली किसी गति से उस ग्रेनेड के पास पहुंचे।
5: ये आदि क्या कर रहा है?
1: और उसे उठाकर सुरक्षित दूरी पर फेंक दिया। हालांकि इसमें वो थोड़े घायल भी हुए।
4: वाह आदि, तुमने तो कमाल कर दिया।
5: तुमने साहस ना दिखाया होता तो शायद बहुत बड़ी दुर्घटना हो जाती आदि।
14: सही में
5: बहादुर सैनिक हो तुम।
14: हाँ।
2: घटना स्थल पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज भी उपस्थित थे। वो आदि की सजगता, बहादुरी और निर्णय कुशलता से बहुत प्रभावित हुए। अभ्यास सत्र के समाप्त

0: होने पर मेजर जनरल एल एंड्रयूज ने आदि को अपने कार्यालय में बुलवाया।
1: May I come in, sir?
2: Yes, come in.
1: Sir,
2: जवान, मैं तुम्हारी बहादुरी पर तुम्हें शाबाशी देना चाहता हूँ। तुम एक सच्चे सिपाही हो।
1: सर,
2: वेल डन एडी, तुम बहुत आगे जाओगे। ट्रेनिंग में खूब मन लगाओ।
1: थैंक यू सर। सर, क्या मैं एक रिक्वेस्ट कर सकता हूँ?
2: हाँ हाँ, कहो।
1: मुझे लगता है कि किसी आर्मर्ड रेजिमेंट में मैं और ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर पाऊंगा।
2: ओके ओके, तुम हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स ज्वाइन करने की तैयारी करो। शाम तक तुम्हें ऑर्डर्स मिल जाएंगे।
1: थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
2: गो अहेड यंग मैन।
1: सर,
0: दूसरे ही दिन आदि का तबादला हैदराबाद इंपीरियल सर्विस लांसर्स में हो गया। ये उनके लिए ऐसा था मानो कोई बहुत बड़ा सपना पूरा हो गया हो। अपनी कर्मठता, अनुशासन प्रियता और विनम्रता के कारण वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद पर पहुंच गए। रेजिमेंट में उन्हें लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के नाम से जाना जाता था।
3: भारत आजाद हो गया और हैदराबाद राज्य का भारतीय संघ में विलय हो गया। इसके बाद लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर की पोस्टिंग पूना हॉर्स रेजिमेंट में हो गई। पूना हॉर्स रेजिमेंट को उसके रण कौशल और बहादुरी के लिए बड़े सम्मान से जाना जाता है।
0: और फिर आया सन 1965। भारत की पश्चिमी सीमा पर युद्ध के बादल मंडराने लगे। 27 अगस्त 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच भीषण युद्ध शुरू हो गया। पूना हॉर्स रेजिमेंट को फौरन भारत पाकिस्तान सीमा की ओर कूच करने का आदेश दिया गया।
3: लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर को निर्देश दिया गया कि वो पंजाब के सियालकोट सेक्टर के चौविंडा इलाके पर नियंत्रण करें। 13 सितंबर 1965 को भीषण युद्ध शुरू हुआ।
4: साथियों, ये खास तौर पर ध्यान रखा जाए कि इस युद्ध में हमारी ओर से जन सामान्य को किसी तरह की हानि न पहुंचे। ये युद्ध दो सेनाओं के बीच में है।
5: जी सर, हम पूरा ध्यान रखेंगे।
4: हमें अचानक हमला करना है ताकि दुश्मन को तैयार होने का भी मौका न मिले। आज रात होते ही हमारे सारे टैंक बिना कहीं रुके उनकी सीमा के अंदर घुसेंगे। और इस बीच याद रहे, इस बीच वायरलेस पर कोई मैसेज नहीं जाएगा।
6: जी जनाब।
7: सर, सुबह होने को है, जल्द ही उजाला हो जाएगा। हमारे सारे टैंक उन घने पेड़ों के पीछे पहुंच चुके हैं।
1: अब समय आ गया है हमला करने का। हमारे टैंक तीन दिशाओं से दुश्मन की ओर बढ़ेंगे ताकि उनका ध्यान बंट जाए, और मैं खुद अपने टैंक पर रहूंगा।
5: जी सर, हम आपके टैंक को खबर देंगे। सर, वो देखिए, सामने से दुश्मन के टैंक आ रहे हैं।
1: लगता है उन्होंने हमें देख लिया है। टैंक को आगे बढ़ाओ प्रेमलाल, और जस्ट गन निशाना लगाओ उस तीसरे टैंक पर।
5: यस सर, वो टैंक निशाने पर आ गया है सर।
1: फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
1: गुड, तो अब निशाना लगाओ उस टैंक पर, बहुत स्पीड में है। जल्दी करो प्रेमलाल, फायर, समय मत गवाओ, फायर।
5: सर, ये टैंक तो गया।
1: गुड, शाबाश शाबाश प्रेमलाल, अब हमें बिना रुके उन दो टैंकों पर फायर करना है। गो एंड सेंड देम टू हेल, फायर।
5: यस सर।

0: रांडी की ओर आगे बढ़ी और अब समय आ गया था लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर के शौर्य के चरम उत्कर्ष का। बटूर और डोगरांडी के अलावा उन्हें वजीराली और जसोरन क्षेत्र पर भी कब्जा करना था ताकि पाकिस्तानी सेना को निर्णयात्मक रूप से पराजय दी जा सके।
1: सितंबर 1965 का दिन, उधर पाकिस्तानी सेना भी युद्ध के लिए पूरी तरह से तैयार थी। जीवन मरण की स्थिति सामने थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने अपनी रेजिमेंट के साथ पूरी शक्ति से हमला किया और बहुत बहादुरी से लड़े। उस दिन उन्होंने दुश्मन के 60 पैटन टैंकों को ध्वस्त कर दिया। भारत के भी 9 टैंक ध्वस्त हुए।

0: युद्ध अब पूरी तरह से भारत के पक्ष में आ चुका था।
1: कुछ देर युद्ध स्थल पर मानो शांति सी छा गई थी। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापुर अपने प्रिय टैंक खुशाब पर खड़े होकर चाय का घूंट ले रहे थे कि तभी
0: पेड़ों की झुरमुट में छिपे पाकिस्तानी सैनिकों ने उनके टैंक पर तोप से आक्रमण किया। इस टैंक पर पाकिस्तानी सेना की विशेष नजर थी। गोला लगते ही उनका टैंक खुशाब आग की लपटों से घिर गया। तारापोर को आग की लपटें निकल गईं और वो सदा के लिए चिर निद्रा में सो गए।
1: आंसुओं के साथ सैनिकों ने अपने नायक को विदाई दी।
0: मरणोपरांत उन्हें प्रदान किए गए प्रशस्ति पत्र में उनकी शौर्य गाथा के कुछ अंश इस प्रकार हैं।
1: युद्ध में आहत होने पर भी उन्होंने पीछे ले जाए जाने से इनकार कर दिया। घातक रूप से आहत होने पर भी उन्होंने अपनी चोटों की चिंता नहीं की। उनके टैंक पर अनेक वार हुए किंतु वो डटे रहे और केवल 9 टैंक खोकर दुश्मन के 60 टैंक ध्वस्त कर दिए। लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर द्वारा प्रदर्शित शौर्य भारतीय सेना की उच्चतम परंपराओं के अनुरूप था।
0: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर को मरणोपरांत भारत के सर्वोच्च युद्ध शौर्य पदक परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। कृतज्ञ राष्ट्र का उन्हें शत शत नमन।
2: लेफ्टिनेंट कर्नल अर्धशीर बुरजोर जी तारापोर। अकादमिक समन्वय डॉक्टर राजेंद्र पाल। तकनीकी समन्वय बटी लैंगलिंगडो। कलाकार बावला कोचर, शिमाइला परवेज, परवेज गौहर, किशोर साहिजानी और असर नवाज उस्मानी। ध्वनियांकन मयंक कुमार। आलेख एवं मार्गदर्शन अजीत होरो। निर्देशन विमलेश चौधरी। निर्माण कुसुमलता। यह कार्यक्रम CIET NCERT नई दिल्ली भारत द्वारा प्रस्तुत किया गया। अभी आपने सुना ये कार्यक्रम और अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को उमंग कार्यक्रम की तकनीकी टीम के साथ कल तक के लिए आज्ञा दीजिए।
2: नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: अब हमारे श्रोता जहां, हम भी वहां। आप उत्तराखंड के किसी भी कोने में क्यों न हो, आप हमें सुन सकते हैं। देश विदेश में भी आप हमारे साथ होंगे। 100.5 AIR FM देहरादून पर। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें न्यूज ऑन AIR प्रसार भारती ऑफिशियल ऐप AIR न्यूज प्लस लाइव और AIR देहरादून सेलेक्ट करें और सुने हर पल हर जगह आकाशवाणी देहरादून।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाश

0: Headlines once again. President Draupadi Murmu to present Padma Awards at Rashtrapati Bhavan in New Delhi this evening. Supreme Court seeks responses from Centre, NTA and CBI in NEET paper leak case, says lessons still not learnt from earlier paper leak cases. Assam Assembly introduces Uniform Civil Code Bill. IMD issues yellow alert in Delhi for next 3 days. Heat wave conditions to also persist over Haryana, Bihar, Madhya Pradesh, Odisha and Telangana. And Norway Chess 2026 tournament to begin in Oslo this evening. With that, we end the midday news.
1: नमस्कार, आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र, एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा एजेंसियों ने पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा। असम में विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया गया। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना में लू चलने की संभावना। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहेंगे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए जाएंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे।
2: सरकार ने इस वर्ष कुल 131 पद्म पुरस्कारों की घोषणा की है। इनमें 5 पद्म विभूषण, 13 पद्म भूषण और 113 पद्मश्री पुरस्कार शामिल हैं। पुरस्कार पाने वालों में 19 महिलाएं हैं, जबकि 16 लोगों को मरणोपरांत सम्मानित किया जाएगा। पद्म विभूषण और पद्मश्री देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मानों में शामिल हैं। इन पुरस्कारों की शुरुआत वर्ष 1954 में हुई थी। प्रतिवर्ष गणतंत्र दिवस पर इन पुरस्कारों की घोषणा की जाती है। कला, साहित्य, शिक्षा, खेल, चिकित्सा, समाज सेवा, विज्ञान, अभियांत्रिकी, जनसेवा, व्यापार और उद्योग सहित विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट और विशिष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिए जाते हैं। सौम्या शरण की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं प्राची वाजपेयी।
1: आकाशवाणी पर पीपल्स पद्म और आकाशवाणी श्रृंखला के अंतर्गत विशेष कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं। कार्यक्रम में अलग अलग पद्म पुरस्कार विजेता के जीवन और कृतित्व की जानकारी दी जाती है। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट परीक्षा में बार बार हो रही चूक पर चिंता जताते हुए कहा कि यह खेदजनक है कि राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनटीए ने पिछले पेपर लीक विवाद से कोई सबक नहीं सीखा। एक रिपोर्ट।
3: न्यायाधीश पीएस नरसिम्हा और आलोक आराधे की पीठ ने केंद्र सरकार, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो से उन याचिकाओं पर जवाब मांगा है जिनमें मेडिकल प्रवेश परीक्षा आयोजित करने के लिए राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जगह किसी सशक्त और स्वायत्त संस्था को लाने की मांग की गई है। न्यायालय ने एजेंसी को बृहस्पतिवार तक हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। याचिकाओं में आरोप लगाया गया है कि बार बार पेपर लीक होने से 22 लाख से अधिक विद्यार्थियों के अधिकारों पर असर पड़ा है। इस महीने की 3 तारीख को आयोजित नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक के आरोपों के बाद रद्द कर दी गई थी। समाचार कक्ष से मैं मुकेश कुमार बल।
1: इस बीच दिल्ली की एक अदालत ने नीट यूजी पेपर लीक मामले में पुणे निवासी भौतिकी विषय के लेक्चरर मनीषा संजय हवलदार को 6 दिन के लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की हिरासत में भेज दिया है। एनटीए ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तारीख आगे बढ़ा दी है। एजेंसी ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना जल्द ही दी जाएगी। ताजा जानकारी के लिए विद्यार्थी एनटीए की आधिकारिक वेबसाइट देख सकते हैं। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की बोर्ड परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की आज अंतिम तिथि है। बोर्ड ने कहा कि विद्यार्थियों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए ये तारीख बढ़ाई गई थी। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख जल्द घोषित की जाएगी।

0: ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। असम सरकार ने आज विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश किया। इस विधेयक का उद्देश्य बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाना और लिव इन रिलेशनशिप का पंजीकरण करना अनिवार्य है। विधेयक में ये प्रावधान है कि ये असम में रहने वाली किसी भी अनुसूचित जनजाति पर लागू नहीं होगा। विवाह के लिए विधेयक में पुरुषों के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष और महिलाओं के लिए 18 वर्ष निर्धारित की गई है और बहुविवाह पर रोक लगाई गई है। कानूनी अधिकारों की रक्षा के लिए विधेयक में विवाह और तलाक का पंजीकरण अनिवार्य करने का प्रस्ताव है, जो जीवन साथियों के लिए भरण पोषण, विरासत और अन्य कानूनी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण होगा। राज्य के कैबिनेट मंत्री अतुल बोरा ने मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा की ओर से सदन में समान नागरिक संहिता असम विधेयक 2026 पेश किया। भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर देश को कमजोर करने का आरोप लगाया। संवाददाताओं को संबोधित करते हुए पार्टी प्रवक्ता गौरव भाटिया ने कहा कि सरकार स्थिर और मजबूत है। उन्होंने कहा कि ऐसे वैश्विक संकट के बीच, जब कई देशों की अर्थव्यवस्थाएं कमजोर पड़ गई हैं, देश प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में इस वैश्विक चुनौती का मजबूती से सामना कर रहा है। बीजू जनता दल बीजेडी के नेता और राज्यसभा सांसद देवाशीष सामंतराय ने आज पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने राज्यसभा की सदस्यता से भी इस्तीफा दे दिया है। बीजेडी अध्यक्ष नवीन पटनायक को लिखे अपने इस्तीफे में देवाशीष सामंतराय ने आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर उन्हें जानबूझकर नीचा दिखाया जा रहा था। क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक कल नई दिल्ली में होगी। इसमें ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो हिस्सा लेंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर बैठक की अध्यक्षता करेंगे। एक रिपोर्ट।
1: विदेश मंत्रालय ने बताया कि बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने वाली पहलों की प्रगति की समीक्षा करने और आपसी हित के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। क्वाड समूह भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान का प्रमुख उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता कायम रखना है। भारत इस गठबंधन के वर्तमान अध्यक्ष के तौर पर इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। वर्ष 2024 में अमेरिका के विल्मिंगटन में आयोजित पिछले क्वाड शिखर सम्मेलन में इस समूह के शीर्ष नेताओं ने हिंद प्रशांत क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा सहयोग का विस्तार करने के लिए कई बड़े कदमों की घोषणा की थी। दीपेंद्र की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मनोज।
0: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने आज पश्चिम एशिया संकट के बीच ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर अधिक ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि घरेलू अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। मुंबई में भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक सिडबी के 37वीं वर्षगांठ समारोह के एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा कि डीजल और पेट्रोल के उत्पाद शुल्क में कटौती से राजस्व पर 1,00,000 करोड़ रुपए का असर पड़ेगा। उन्होंने कहा कि सोने की अधिक कीमत बाहरी मोर्चे पर कुछ चुनौतियां उत्पन्न कर रही हैं। उन्होंने कहा कि देश के नीतिगत प्रतिक्रिया को घरेलू विकास को बनाए रखने के हिसाब से तैयार किया गया है। वित्त मंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की परोपकार संबंधी अपीलों के बाद एक संशयपूर्ण और निराशावादी माहौल बनाने वालों पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भारत डर फैलाने का जोखिम नहीं उठा सकता। पेट्रोल के मूल्य में आज 2.61 रुपए और डीजल में 2.71 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। दिल्ली में पेट्रोल 102.12 रुपए और डीजल 95.20 रुपए प्रति लीटर मिलेगा। पेट्रोल और डीजल के मूल्य में पिछले 2 सप्ताह में ये चौथी वृद्धि है। सरकार ने सोशल मीडिया पर वायरल उस मैसेज का खंडन किया है, जिसमें दावा किया जा रहा है कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को भारत के समर्थन के संबंध में बयान दिया है। पत्र सूचना कार्यालय की तथ्य जांच इकाई ने कहा कि दावा भ्रामक है। इकाई ने कहा कि रक्षा मंत्री और सरकार ने ऐसा कोई बयान नहीं दिया है। सरकार ने नागरिकों को ऐसी भ्रामक जानकारियों से सावधान रहने की सलाह दी है। इस संबंध में केवल सरकारी सूत्रों पर ही विश्वास करने को कहा गया है। अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने कहा है कि अमेरिका और ईरान ने होर्मुज जलडमरू मध्य को फिर से खोलने के लिए वार्ता में महत्वपूर्ण प्रगति की है। संवाददाता

0: से बातचीत में मार्को रूबियो ने कहा कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम और क्षेत्रीय सुरक्षा पर प्रारंभिक समझौता व्यापक वार्ता का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। अमेरिका के विदेश मंत्री ने कहा कि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और विकल्पों पर विचार करने से पहले कूटनीति को हर मौका देंगे। होर्मुज जलडमरू मध्य से विश्व की ऊर्जा आपूर्ति का लगभग 20% हिस्सा गुजरता है। इस वर्ष की शुरुआत से ईरान पर अमेरिका और इसराइल के संयुक्त हमलों के बाद होर्मुज जलडमरू मध्य बाधित हुआ है। विदेश मंत्री रूबियो भारतीय नेताओं के साथ बैठक करने के लिए इस समय भारत में हैं। वे नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में शामिल होंगे। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @YIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने दिल्ली के लिए 3 दिन का लू का येलो अलर्ट जारी किया है। राष्ट्रीय राजधानी में तापमान 44 से 46 डिग्री सेल्सियस के बीच रह सकता है। अगले 2 दिन के दौरान हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, झारखंड, ओडिशा, तेलंगाना और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी लू की स्थिति बनी रहने की आशंका है। आज पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्र में मौसम गर्म और उमस भरा रहेगा। इस बीच आज पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों, पश्चिम बंगाल के तराई वाले क्षेत्र, सिक्किम, केरल, माहे, तमिलनाडु और पुदुचेरी में तेज वर्षा का अनुमान है। जम्मू कश्मीर, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, असम, मेघालय, बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश और लक्षद्वीप के कुछ स्थानों पर आज बिजली चमकने और आंधी तूफान आने की संभावना है। भीषण गर्मी नौतपा की आज से शुरुआत हो गई है। ये अगले महीने की 2 तारीख तक जारी रहेगा। मध्य प्रदेश से हमारे संवाददाता की एक रिपोर्ट।
1: मध्य प्रदेश में आज से नौतपा शुरू हो गया है। ये सिलसिला 2 जून तक चलेगा। नौतपा यानी साल के वो 9 दिन जब सूरज की तपिश सबसे ज्यादा होती है। मौसम विभाग ने आज प्रदेश के 44 जिलों में लू चलने की चेतावनी दी है। निवाड़ी, टीकमगढ़, छतरपुर, पन्ना और सतना में हालात सबसे गंभीर हैं। इसीलिए इन 5 जिलों में मौसम विभाग ने रेड अलर्ट घोषित किया है। मौसम विभाग का कहना है कि 25 से 28 मई के बीच गर्मी और भी बढ़ेगी और 31 मई तक किसी भी तरह की राहत की उम्मीद नहीं है। अभिनव गोयल, आकाशवाणी न्यूज, भोपाल।
0: घरेलू शेयर बाजार के संवेदी सूचकांक में आज दोपहर के कारोबार में लगभग 1.2% की वृद्धि दर्ज की गई। अंतिम समाचार मिलने तक सेंसेक्स 944 अंक की वृद्धि के साथ 76,360 जबकि निफ्टी 270 अंक बढ़कर 23,989 पर था। नॉर्वे शतरंज प्रतियोगिता 2026 का शुभारंभ आज नॉर्वे के ओस्लो शहर में हो रहा है। टूर्नामेंट भारतीय समय के अनुसार रात 8:30 बजे शुरू होगा। 13 वर्ष के इतिहास में पहली बार ये प्रतियोगिता स्टावांगर के बजाय ओस्लो में आयोजित की गई है। इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के ओपन और महिला दोनों वर्गों में शामिल खिलाड़ियों में मैग्नस कार्लसन, डी गुकेश और आर प्रज्ञानानंद जैसे विश्व के दिग्गज ग्रैंड मास्टर भी हैं। भारत ने जापान में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय अल्ट्रा रनर्स एसोसिएशन IAU एशिया तथा ओशिनिया चैंपियनशिप में इतिहास रच दिया। भारत ने कुल 5 पदक जीते और पुरुषों की श्रेणी में दबदबा कायम रखा। अमर सिंह देवंदा ने स्वर्ण पदक जीता। यीनो एंटनी ने रजत पदक हासिल किया जबकि कांस्य पदक भी भारत के खाते में गया। महिलाओं की श्रेणी में भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता। तेंजिन डोलमा शीर्ष भारतीय खिलाड़ी रही और व्यक्तिगत रूप से 4th स्थान पर रही। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में वरिष्ठ नागरिकों को एकीकृत डिजिटल सहायता प्रदान करने की पहल जीवन और शतायु ऐप पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। संयुक्त सचिव सामाजिक न्याय तथा अधिकारिता मंत्रालय में संयुक्त सचिव मोनाली पी धकाटे परिचर्चा में भाग लेंगी। वार्षिक हज यात्रा के लिए भारत सहित दुनिया भर से लाखों जायरीन सऊदी अरब के मीना में इकट्ठा हो रहे हैं। हज सुविधा मोबाइल ऐप के माध्यम से भारतीय जायरीनों को जानकारी और शिकायत दर्ज कराने की सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस की जयंती पर उन्हें नमन किया है। श्री शाह ने कहा कि राष्ट्र उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को हमेशा याद रखेगा। जम्मू कश्मीर में घाटी की रसदार और गहरे लाल रंग की चेरी अब मुंबई के बाजारों तक पहुंचेगी। मौसम के पहले चेरी फल का विशेष पार्सल वाहन आज जम्मू से रवाना हुआ। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज शाम राष्ट्रपति

0: भवन में पद्म पुरस्कार प्रदान करेंगी। सर्वोच्च न्यायालय ने नीट यूजी परीक्षा पेपर लीक मामले में केंद्र एनटीए और सीबीआई से जवाब मांगा। कहा, पहले के पेपर लीक मामलों से अब तक कोई सबक नहीं सीखा गया। असम विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन के लिए दिल्ली में गर्मी का येलो अलर्ट जारी किया। हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और तेलंगाना में लू की स्थिति बनी रहेगी। और नॉर्वे शतरंज 2026 टूर्नामेंट आज शाम ओस्लो में शुरू होगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में दोपहर के 2:30:05 हुए हैं। अब आप सुनेंगे कार्यक्रम हमारे सैनिक भाइयों के साथ, उनका दैनिक कार्यक्रम सैनिकों के लिए।

जय हिंद सैनिक भाइयों, आज का यह कार्यक्रम समर्पित है महान क्रांतिकारी राज बिहारी बोस को। आकाशवाणी परिवार आज उनके जन्म दिवस के अवसर पर उन्हें स्मरण करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता है। अंग्रेज सरकार के खिलाफ भारत की आजादी के लिए उन्होंने गदर षड्यंत्र और आजाद हिंद फौज की स्थापना और संगठन का कार्य किया।

सैनिक साथियों, ये गीत आपने सुना है फिल्म बोस द फॉरगॉटन हीरो से, जिसे आवाज़ दी थी विजय प्रकाश और साथियों ने। सैनिक भाइयों, अब हम आज याद कर रहे हैं महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस को। और सैनिक साथियों, जैसे कि हमने पहले बताया कि उन्होंने इंडियन नेशनल आर्मी यानी आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। उन्होंने विदेशों में रह रहे भारतीयों और अंग्रेजी शासन के खिलाफ लड़ रहे युद्धबंदियों को संगठित कर भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी दिलाने के उद्देश्य से आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। रास बिहारी बोस ने 1942 में जापान की राजधानी टोक्यो में इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की थी और इसी की सैन्य शाखा के रूप में आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था। और इस फौज के गठन का मुख्य कारण था कि जापान में रह रहे भारतीय प्रवासियों और द्वितीय विश्व युद्ध में जापान द्वारा पकड़े गए भारतीय युद्धबंदियों, जो पहले ब्रिटिश सेना में थे, उन सबको मिलाकर एक ऐसी सशस्त्र सेना तैयार करना जो अंग्रेजों के विरुद्ध लड़कर भारत को आज़ादी दिला सके। और रास बिहारी बोस ने बाद में इस सेना के सुचारू संचालन और सशस्त्र क्रांति को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1943 में आज़ाद हिंद फौज की कमान नेताजी सुभाष चंद्र बोस को सौंप दी थी।

0: ये गीत सैनिक साथियों आप सुन रहे थे फिल्म शहीद से मोहम्मद रफ़ी खान मस्ताना और साथियों की आवाज़ में। अब सुनते हैं ये संदेश।
1: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
2: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
0: सैनिक साथियों, आज के कार्यक्रम में हम याद कर रहे हैं मां भारती के अमर सपूत महान क्रांतिकारी रास बिहारी बोस को। उन्होंने न केवल भारत में कई क्रांतिकारी गतिविधियों का संचालन करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, बल्कि विदेश में रहकर भी वो भारत को स्वतंत्रता दिलाने के प्रयास में आजीवन लगे रहे। उन्होंने बहुत सारी ऐसी गतिविधियों को अंजाम दिया जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका रखती हैं, जैसे दिल्ली में तत्कालीन वायसराय लॉर्ड चार्ल्स हार्डिंग पर बम फेंकने की योजना बनाने की बात हो, गदर की साजिश रचने की बात हो, और बाद में जापान जाकर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग और आज़ाद हिंद फौज की स्थापना करने की बात हो। इन सभी गतिविधियों में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही और वो हिंदू महासभा की जापानी

नजर उस नजर को झुका के ही दम लेंगे हम। तेरी जान उठी जो कहर की नजर उस नजर

सैनिक साथियों, अभी कार्यक्रम का जो गीत आप सुन रहे थे वो था मनोज कुमार द्वारा निर्देशित फिल्म शहीद से, जिसे मोहम्मद रफ़ी और साथियों ने गाया था। और साथियों, हम बात कर रहे थे क्रांतिकारी रास बिहारी बोस और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनकी भूमिका की। बोस सन 1905 में बंग भंग के दौर में क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित होने लगे थे। और सैनिक साथियों, अगर हम बिंदुवार उनके जीवन की और गतिविधियों की बात करें तो हम इस तरीके से कुछ समझ सकते हैं कि रास बिहारी बोस का जन्म जो हुआ वो 25 मई 1886 में बंगाल के वर्धमान जिले के सुबलदह गांव में हुआ था। और बोस सन 1905 में बंग भंग के दौर में ही क्रांतिकारी गतिविधियों में सम्मिलित होने लगे थे। 1908 में अरविंद घोष और जतिन मुखर्जी के साथ अलीपुर बम कांड में शामिल हुए। ट्रायल से बचने के लिए बंगाल छोड़कर संयुक्त प्रांत में रहने लगे। और 23 दिसंबर 1912 को उन्होंने हाथी पर सवार गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग पर दिल्ली के चांदनी चौक में बम फेंकने की योजना भी बनाई और उसको अंजाम भी दिया। फरवरी 1915 में उन्होंने भारत में प्रथम स्वाधीनता संग्राम, यानी जैसे कि 1857 में जब विद्रोह हुआ था वैसे ही विद्रोह की योजना पर कार्य शुरू किया, लेकिन पुलिस को उस योजना का पता चल गया। 12 मई 1915 को प्रियनाथ ठाकुर के छद्म नाम का सहारा लेकर वो कोलकाता से जापान चले गए और जापान में अपना स्थान बदल बदल कर शरणार्थियों की तरह रहे। और उन्होंने कुल इस तरीके से 17 बार स्थान बदला। जापान में उनका विवाह हुआ, जापानी नागरिकता प्राप्त की और वहीं पर इंडियन इंडिपेंडेंस लीग की स्थापना की। लीग की द्वितीय बैठक बैंकॉक में बुलाई 22 जून 1942 को। इसी लीग में निर्णय हुआ कि सुभाष चंद्र बोस को बुलाकर इस लीग की कमान उन्हें सौंप दी जाए। और इसी महान क्रांतिकारी की 21 जनवरी 1945 को क्षय रोग के कारण मृत्यु हो गई। और हम कह सकते हैं कि रास बिहारी बोस के जो देश को स्वतंत्र कराने के जो प्रयास थे उनके जीवन काल में भले सफल नहीं हो पाए हों, लेकिन हम कह सकते हैं कि स्वतंत्रता संग्राम में उनका योगदान अत्यंत महान है।

सैनिक साथियों, रूप कुमार राठौर की आवाज़ में फिल्म बॉर्डर के इस गीत के साथ ही कार्यक्रम को समाप्त करने का समय हो गया है। और सैनिक साथियों, रास बिहारी बोस जी ने आज़ादी को जन जन का अटूट संकल्प बनाया। उनके अदम्य साहस और मातृभूमि के प्रति समर्पण को राष्ट्र सदैव सदैव नमन करता रहेगा। इन्हीं शब्दों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और बहुत जल्द मिलते हैं किसी अन्य महान विभूति के जीवन कार्यों और बेहद खूबसूरत गीतों के साथ। जय हिंद सैनिक साथियों।

0: FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी देहरादून से श्रोताओं अब प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मुदिता। पहले मुख्य समाचार। गंगा दशहरा पर हरिद्वार और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हर की पैड़ी समेत विभिन्न घाटों पर सुरक्षा के लिए प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऊधम सिंह नगर में पुलिस विभाग को 50 हाईटेक साइकिलें उपलब्ध कराई गईं और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पद्मभूषण सम्मान से सम्मानित करेंगी। अब समाचार विस्तार से। गंगा दशहरा के अवसर पर हरिद्वार और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालु ब्रह्म मुहूर्त से ही मां गंगा में आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। श्रद्धालु स्नान, पूजा अर्चना और दान पुण्य कर परिवार के सुख समृद्धि और पितरों की मोक्ष की कामना कर रहे हैं। प्रशासन के अनुसार हरिद्वार में कल करीब 27 लाख श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया, जबकि आज तड़के 2:30 बजे से अब तक लगभग 20 लाख से अधिक श्रद्धालु स्नान कर चुके हैं। हर की पैड़ी, सुभाष घाट, कुशाघाट, चंडीघाट, कनखल और अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिल रही है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए पूरे मेला क्षेत्र को कई जोन और सेक्टरों में बांटा गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक नवनीत सिंह भुल्लर ने बताया कि सुरक्षा और यातायात व्यवस्था के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं।
2: मेले को सकुशल संपन्न कराने के लिए पूरे मेला क्षेत्र को दो सुपर जोन जिसमें एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी हैं, 12 जोन जिसमें डिप्टी एसपी स्तर के अधिकारी हैं, 27 सेक्टर जिसमें इंस्पेक्टर और सब इंस्पेक्टर स्तर के अधिकारी हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है। इसके अतिरिक्त 3 कंपनी अर्धसैनिक बल, 4 कंपनी PSC और पर्याप्त संख्या में ट्रैफिक पुलिस, यातायात पुलिस और इसके साथ ही जो CPAP के हमारे जवान इसमें लगे हैं। और सुरक्षा की दृष्टिकोण जो है हमारी BDS टीम डॉग स्क्वाड वो लगातार चेक कर रही है इसमें, और CCTV मॉनिटरिंग करी जा रही है, ड्रोन सर्वेलेंस किया जा रहा है और डायवर्जन पॉइंट्स पे भी हमारी सफिशिएंट ड्यूटी है।
1: वहीं गंगा दशहरा पर गंगोत्री धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ रही है। सुबह से ही मंदिर परिसर और भागीरथी तट पर श्रद्धालु पुण्य स्नान कर मां गंगा की पूजा अर्चना कर रहे हैं। हर हर गंगे के जय घोष और वैदिक मंत्रोच्चार से पूरा क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबा हुआ है। गंगोत्री मंदिर को विशेष रूप से सजाया गया है और दर्शन के लिए लंबी कतारें लगी हुई हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा के लिए जिला प्रशासन, पुलिस, SDRF और स्वास्थ्य विभाग की टीमें लगातार तैनात हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी NTA ने 28 मई को होने वाली संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा की तिथि आगे बढ़ा दी है। NTA ने कहा कि बकरीद की तिथि में बदलाव के कारण यह निर्णय लिया गया है। संशोधित परीक्षा तिथि की सूचना शीघ्र ही दी जाएगी। उधर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 12वीं की बोर्ड की परीक्षा की स्कैन उत्तर पुस्तिकाओं को प्राप्त करने की अंतिम तिथि आज तक के लिए बढ़ा दी है। बोर्ड ने कहा कि छात्रों को आवेदन करने का पर्याप्त समय देने के लिए यह फैसला किया गया। स्कैन कॉपी उपलब्ध कराने के बाद भी पोर्टल 2 दिन तक खुला रहेगा। बोर्ड ने बताया कि पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन करने की तारीख शीघ्र घोषित की जाएगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने स्पष्ट किया है कि राज्य में नमाज पढ़ने पर किसी प्रकार की रोक नहीं है, लेकिन नमाज केवल चिन्हित स्थानों पर ही अदा की जानी चाहिए। हल्द्वानी में पत्रकारों के एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि धार्मिक गतिविधियों से आम लोगों को किसी तरह की परेशानी नहीं होनी चाहिए।
3: हम किसी भी धर्म के खिलाफ नहीं है और हमारे राज्य के अंदर के आपस में सब लोग बड़े प्रेम प्यार से एक दूसरे के साथ रहते हैं, बहुत भाईचारा है, लेकिन कानून को किसी को भी अपने हाथ में लेने की इजाज़त नहीं है और नमाज करने के लिए किसी को मनाही नहीं है, लेकिन नमाज करने का अपना स्थान है, उन स्थानों पर करें, स्थल हैं वहाँ पर करें, उनके कारण से किसी को परेशानी ना हो, क्योंकि

0: चार धाम यात्रा चल रही है। इस समय पूरे देश दुनिया के जो श्रद्धालु हैं, भक्तिगण हैं, बड़ी संख्या में यहाँ आ रहे हैं। उसके कारण से अव्यवस्था न हो, इसलिए हमने कहा है कि नमाज का स्थल जहाँ पर है वहीं पर नमाज।
1: ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। ऊधम सिंह नगर में ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और पुलिस कर्मियों के फिटनेस को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पुलिस विभाग को 50 हाईटेक साइकिलें उपलब्ध कराई गई हैं। रुद्रपुर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति ने पुलिस कर्मियों को साइकिलों का वितरण किया। SSP अजय गणपति ने बताया कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के आह्वान पर ईंधन बचाने की दिशा में ये पहल की गई है। उन्होंने बताया कि एक निजी बाइक कंपनी के सहयोग से मिली इन साइकिलों का उपयोग पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय परिसर में विभिन्न सरकारी कार्यालयों के लिए किया जाएगा। इससे वाहनों पर निर्भरता कम होगी, ईंधन की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा।
2: इन साइकिल्स का यूज जो है, हम लोग जो हमारे पुलिस कार्यालय एवं पुलिस लाइन के कर्मचारी है जिनका मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रैवलिंग का पुलिस लाइन से आवासों से बैरक से पुलिस कार्यालय तक होता है या अन्य जगह पे जो कार्यालय यूज के लिए साइकिल्स का यूज होता है उसमें किया जाएगा। इसमें किसी भी प्रकार से गश्त या पेट्रोलिंग में यूज हम लोग नहीं करेंगे। पुलिस की कार्यव्यवस्था प्रभावित ना करते हुए ईंधन की खपत जो हमारे कैंपस के भीतर होती है या कार्यालयों के भीतर होती है उसको कहीं ना कहीं कम किया जाएगा। इसके तहत हम लोगों ने हमारे पुलिस लाइन में 10 साइकिल स्टैंड बनवाए हैं।
1: उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू पद्मभूषण से सम्मानित करेंगी। यह सम्मान उन्हें जनसेवा, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के लिए प्रदान किया जाएगा।
3: भगत सिंह कोश्यारी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, पत्रकार और राष्ट्रवादी नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने वर्ष 1966 में पिथौरागढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की जिससे सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा मिला। इसके अलावा उन्होंने विवेकानंद इंटर कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक जीवन में वे उत्तराखंड के गठन के बाद राज्य की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और बाद में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली। वर्ष 2008 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और वर्ष 2014 में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से लोकसभा सांसद बने। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड आंदोलन और राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर पुस्तकें भी लिखी। उनका जीवन शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का उदाहरण माना जाता है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से पंकज सनवाल खुलबे।
1: चमोली में जिलाधिकारी गौरव कुमार की अध्यक्षता में बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान के तहत संचालित योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में बालिकाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण और सुरक्षा से जुड़े कार्यक्रमों के प्रभावी क्रियान्वयन पर चर्चा की गई। नैनीताल में आयोजित 21वें गवर्नर्स गोल्फ कप टूर्नामेंट 2026 का रविवार को समापन हो गया। 3 दिनों तक चले इस टूर्नामेंट में देश के 9 राज्यों से 179 गोल्फरों ने भाग लिया। लोकभवन में आयोजित पुरस्कार वितरण समारोह में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने विभिन्न वर्गों के विजेताओं और उपविजेताओं को सम्मानित किया। टूर्नामेंट के ओवरऑल चैंपियन समर्थ जैन रहे जबकि आशीष जैन उपविजेता घोषित हुए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। गंगा दशहरा पर हरिद्वार और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हर की पैड़ी समेत विभिन्न घाटों पर सुरक्षा के लिए प्रशासन ने विशेष प्रबंध किए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऊधम सिंह नगर में पुलिस विभाग को हाईटेक साइकिलें उपलब्ध कराई गई और उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पद्मभूषण से सम्मानित करेंगी। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा।

बचना ए हसीनो। जी हाँ, इस फिल्म से ये गीत आप सुन रहे थे के और शिल्पा राव की आवाज़ में। गीतकार थे अन्विता दत्त गुप्ता और विशाल शेखर ने इसका संगीत दिया था। अगला गीत हम सुना रहे हैं फिल्म सिंग इज किंग से राहत फतेह अली खान और श्रेया घोषाल की आवाज़ में।

के एस चित्रा और ए आर रहमान को आप सुन रहे थे फिल्म बॉम्बे से, और गीतकार थे वेरामुथु और संगीतकार ए आर रहमान। अब सुनते हैं अगला गीत फिल्म मरजावा से, जिसे लिखा है कुणाल वर्मा ने, पायल देव ने संगीत दिया है, और इस गीत की, हाँ, इस गीत को आवाज़ दी है जुबिन नौटियाल ने।

कहने दो मुझे दिल की बात कहने दो मैं पागल दीवाना तेरा मुझे इश्क की आग में जलने दो ये धुआं धुआं सा रहने दो मुझे दिल की

ये गीत आप सुन रहे थे फिल्म तुमसे नहीं तुमसा नहीं देखा, और आवाज़ थी रूप कुमार राठौर और श्रेया घोषाल की, बोल थे समीर के और संगीत नदीम चौहान का। आप सुनते हैं कार्यक्रम का अंतिम गीत जिसे लिया गया है फिल्म दिल से, आवाज़ है उदित नारायण और महालक्ष्मी की, गुलजार ने इस गीत को लिखा है और संगीत है ए आर रहमान का, और ये कार्यक्रम का अंतिम गीत।

0: इसी के साथ फिल्मी गीतों का कार्यक्रम गाने नए तराने यहीं समाप्त होता है। FM 100.5 MHz पर आप हमें आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओ, स्टूडियो की घड़ी में साया के 4 बजने को है। अब आप सुनेंगे FM न्यूज हेडलाइंस।
1: ये आकाशवाणी है, अब मुद्दता से सुनिए न्यूज हेडलाइंस। गंगा दशहरा पर आज हरिद्वार और गंगोत्री धाम में उमड़ा आस्था का सैलाब। अब तक 50 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने विभिन्न घाटों पर लगाई आस्था की डुबकी। गंगा दशहरा के मद्देनजर भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर, पूरे मेला क्षेत्र को 11 जोन और

0: 27 सेक्टरों में बांटा गया। सुरक्षा के दृष्टिगत अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने प्रदेश में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने और भू कानून के प्रभावी पालन को लेकर सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने 28 मई को होने वाली CUET स्नातक परीक्षा 2026 स्थगित की। वन मंत्री सुबोध उनियाल ने वनाग्नि रोकथाम के लिए जनता, प्रशासन और वन विभाग के समन्वित प्रयासों पर बल दिया। कहा, जंगलों में आग की घटनाओं पर नियंत्रण के लिए परस्पर सहयोग आवश्यक। चंपावत के लोहाघाट विकासखंड में 1 जून से विशेष स्वास्थ्य जांच शिविर शुरू होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को ब्लड टेस्ट, शुगर जांच और चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा मिलेगी। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज पद्म भूषण से सम्मानित करेंगी। ईंधन बचत और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए ऊधम सिंह नगर में पुलिस विभाग को 50 हाईटेक साइकिलें उपलब्ध कराई गईं। चंपावत में 8 जून से मतदाता सत्यापन अभियान शुरू होगा। BLO घर घर जाकर मतदाताओं का सत्यापन करेंगे। जिलाधिकारी मनीष कुमार ने शुद्ध और पारदर्शी मतदाता सूची पर जोर दिया। और नैनीताल जिले में सभी सरकारी और निजी अस्पतालों का संयुक्त सुरक्षा ऑडिट होगा। अग्नि सुरक्षा, भवन सुरक्षा और आपदा प्रबंधन व्यवस्थाओं की जांच के लिए प्रशासन ने संयुक्त टीम गठित की। आप सुन रहे थे न्यूज हेडलाइंस।
1: FM 100.5 MHz पर ये आकाशवाणी देहरादून है। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में सायं के 4:02 हुए हैं। अब आप सुनेंगे शास्त्रीय संगीत में पंडित हरिकृष्ण शाह से सितार वादन, राग शुद्ध सारंग और राग मांड में।

FM 100.5 MHz पर आप हमें आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से सुन रहे हैं। श्रोताओ, अब समय हो गया है आपको सुनाने का फिल्म संगीत एक कलाकार। श्रोताओ, आज की फिल्म संगीत एक कलाकार में आप सबका अभिनंदन करते हुए आज शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं भारतीय सिनेमा के दिग्गज निर्माता, निर्देशक और कलाकार करण जौहर को उनके जन्मदिवस के अवसर पर। श्रोताओ, करण जौहर के नाम बेहद लोकप्रिय फिल्मों के साथ साथ ढेर सारे पुरस्कार और सम्मान भी हैं। सुनते हैं निर्माता के तौर पर उनकी फिल्म राजी से विभा सराफ, हर्षदीप कौर और शंकर महादेवन की आवाज़ में ये गीत।

श्रोताओं, आमतौर पर तो करण जौहर एक निर्देशक, निर्माता और हाँ, कॉफ़ी विद करण के कारण टीवी होस्ट के रूप में ज़्यादा बेहतर जाने जाते हैं। हालांकि एक अभिनेता के रूप में भी उन्होंने कई फिल्मों में बहुत सारे कैमियो किए हैं, और जैसे कि दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे हो, कल हो ना हो, और ओम शांति ओम। इसके अलावा एक पूर्ण अभिनेता के तौर पर भी उन्होंने फिल्म बॉम्बे वेलवेट, जो अनुराग कश्यप ने डायरेक्ट की थी, उसमें काम किया था, और इसमें उन्होंने मुख्य विलेन की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वो OTT प्लेटफॉर्म्स पर भी अभिनय कर चुके हैं। नेटफ्लिक्स की एंथोलॉजी फिल्म लस्ट स्टोरीज में उनका अभिनय दर्शकों ने बहुत ज़्यादा पसंद किया, और जोया अख्तर के द्वारा निर्देशित सेगमेंट में उन्होंने एक मैगजीन एडिटर का किरदार भी किया था। इसके अलावा बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें वो छोटे छोटे रोल में आते रहे हैं। दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे, कल हो ना हो, ओम शांति ओम, और लक बाय चांस में तो वो स्वयं करण जौहर के तौर पर ही फिल्म में शामिल थे, और उन्होंने एक्टिंग की थी, और वेलकम टू न्यूयॉर्क में भी उन्होंने अभिनय किया था। तो अब सुनते हैं अगला गीत, जो फिल्म द टू स्टेट्स से लिया गया है, और इस गीत को आवाज़ दी है अरिजीत और चिन्मयी श्रीप्रधा ने। ये करण जौहर के द्वारा निर्मित फिल्म है टू स्टेट्स।

श्रोताओ, करण जौहर भारतीय सिनेमा के सबसे प्रसिद्ध और सबसे सफल निर्माता निर्देशकों की श्रेणी में है। उन्होंने 2004 में अपने पिता यश जौहर द्वारा स्थापित धर्मा प्रोडक्शंस की बागडोर संभाली और इसे नए आयामों तक पहुंचाया। करण जौहर ने एक निर्माता के रूप में बहुत सारी ब्लॉकबस्टर और ऐतिहासिक फिल्मों का निर्माण किया। कुछ इस तरह की फिल्में उनमें से हैं जैसे कल हो ना हो, ये जवानी है दीवानी, स्टूडेंट ऑफ ईयर, शेरशाह, ब्रह्मास्त्र। इनके अलावा उन्होंने कुछ कुछ होता है और कभी खुशी कभी गम इन फिल्मों का निर्देशन भी किया है निर्माण के साथ साथ। सुनते हैं उन्हीं के प्रोडक्शन की, उन्हीं के द्वारा निर्मित फिल्म ये जवानी है दीवानी से ये गीत रेखा भारद्वाज और तुषी रैना के स्वर में।

श्रोताओं, हम बात कर रहे थे करण जौहर के उन फिल्मों की जिनमें उन्होंने अभिनय किया और जिन फिल्मों का निर्माण किया। और मुख्य तौर पे करण जौहर को जो इंडस्ट्री में जाना जाता है वो उनके निर्देशन के लिए भी जाना जाता है। और वो बहुत सारी बड़ी हिट देने के बाद लगातार फिल्म निर्माण से जुड़ गए हैं और लगातार फिल्म निर्माण करते हैं। निर्देशन में उनका कार्य थोड़ा उन्होंने पहले के मुकाबले अब कम कर दिया है, लेकिन उनकी फिल्में जो उन्होंने निर्देशित की हैं, जैसे कभी खुशी कभी गम, कल हो ना हो और माय नेम इज़ खान, ये बहुत बड़ी हिट्स मानी जाती हैं। और उन्होंने बड़े बड़े मल्टी स्टारर पारिवारिक ड्रामा जैसे अमिताभ बच्चन को लेकर, जया बच्चन, शाहरुख खान, बड़ी स्टार कास्ट को लेकर काम करने के लिए करण जौहर को इंडस्ट्री में जाना जाता है। और उसके अलावा उन्होंने ऐसी फिल्मों के अलावा सोशल फिल्मों पर भी, जैसे रिश्तों और जटिलताओं पर आधारित कभी अलविदा ना कहना जैसी फिल्म भी बनाई है। और उन्होंने बहुत सारे पुरस्कार और सम्मान भी प्राप्त किए हैं। सुनते हैं ये गीत उन्हीं के निर्देशन में बनी फिल्म कुछ कुछ होता है से।

श्रोताओं, करण जौहर को भारत के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जी हाँ, यानी कि पद्मश्री से कला के क्षेत्र में उनके शानदार योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा सम्मानित किया गया था 2020 में। इसके अलावा कई राष्ट्रीय पुरस्कारों और फिल्म फेयर सहित कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से उन्हें सम्मानित किया जा चुका है। करण जौहर को सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म अभी 2025 में रॉकी और रानी की प्रेम कहानी, ये लोकप्रिय फिल्मों की कैटेगरी में उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था। और इसके अलावा उन्हें निर्देशन और निर्माण के लिए फिल्म फेयर के पुरस्कार, कई बार उन्हें बेस्ट डायरेक्टर और बेस्ट फिल्म निर्माता के फिल्म फेयर पुरस्कारों से नवाजा जा चुका है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय सम्मान की अगर बात करें तो दिसंबर 2023 में रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उन्हें वैरायटी इंटरनेशनल वैंगार्ड डायरेक्टर अवार्ड से सम्मानित किया गया। मई 2024 में उन्हें गोल्ड लेजेंड ऑनर से भी नवाजा गया। हम उन्हें जीवन की और भी उपलब्धियों और सफलताओं और एक स्वस्थ और लंबे जीवन की शुभकामनाओं के साथ इस कार्यक्रम का अंतिम गीत उन्हीं के द्वारा निर्देशित फिल्म कभी खुशी कभी गम से अब सुनाने जा रहे हैं, सोनू निगम और अलका याग्निक के स्वर में।

0: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून से अभी आप सुन रहे थे फिल्म संगीत एक कलाकार। श्रोताओ, हमारे स्टूडियो की घड़ी में साय के 5 बजने को हैं। आप हमें FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी देहरादून से सुन रहे हैं। अब आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू द्वारा राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में पद्म पुरस्कार 2025 का सजीव प्रसारण।
1: ये आकाशवाणी है। अब हम आपको राष्ट्रपति भवन लिए चलते हैं, जहां से आप भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामय उपस्थिति में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन सकेंगे। विवरण दे रहे हैं महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा। आइए राष्ट्रपति भवन चलें।
2: नमस्कार। राष्ट्रपति भवन के गणतंत्र मंडप से मैं महेंद्र सिंह लालस अपने साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ आप सभी का स्वागत करता हूं। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू आज यहां 66 विभूतियों को पद्म अलंकरण प्रदान करेंगी, जिनमें 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री शामिल हैं। नागरिक अलंकरण समारोहों का ये पहला चरण है और दूसरे चरण में शेष रहे पद्म अलंकरण प्रदान किए जाएंगे। अभी हमारे बीच माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय उपराष्ट्रपति जी, लोकसभा

0: अध्यक्ष, माननीय गृह मंत्री जी, ये तमाम अतिथि आ चुके हैं और कुछ क्षणों में यहाँ पर पधारेंगी राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू।
1: नमस्कार एंड अ वार्म वेलकम टू पार्ट वन ऑफ द सिविल इन्वेस्टिचर सेरेमनी एज वी ब्रॉडकास्ट फ्रॉम द गणतंत्र भवन एट राष्ट्रपति भवन इन द ऑगस्ट प्रेजेंस ऑफ डिग्निटरीज एंड द प्राउड रिसिपियंट्स ऑफ द प्रेस्टिजियस अवार्ड्स एंड देयर फैमिली मेंबर्स। And friends, today is the day when Padma Awards, the highest civilian awards of the country, shall be presented by the first citizen of the country, Honorable President Srimati Draupadi Murmu ji. The awards are given in various disciplines like art, social work, public affairs, science and engineering, trade and industry, medicine, literature and education, sports, civil services, etc. Padma Vibhushan is awarded for exceptional and distinguished service, and Padma Shri and Padma Bhushan is for distinguished service of high order, and Padma Shri is for distinguished service in any field. Friends, the awards are announced on Republic Day every year.
0: इस वक्त राष्ट्रपति जी का यहाँ पर इंतजार। हम ये बता दें कि राष्ट्रपति भवन का ये ऐतिहासिक गणतंत्र मंडप जहाँ पर 1947 में स्वतंत्र भारत के पहले कैबिनेट ने शपथ ली थी, ठीक यहाँ पर राष्ट्रपति जी के आसन के ठीक पीछे 5वीं शताब्दी की मथुरा की ऐतिहासिक बुद्ध की प्रतिमा जो कि गंधार शैली में बनी है, और ठीक बीच में यहाँ पर एक बहुत ही सुंदर शैंडिलियर और इसके ठीक ऊपर सांची के स्तूप से प्रेरित गुंबद और 12 बहुत ही सुंदर जैसलमेरी पत्थर के बने स्तंभ। और अब पधार रही हैं माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू गणतंत्र मंडप में।

0: राष्ट्रगीत और राष्ट्रगान प्रस्तुत किया था महार रेजिमेंट सेंटर सागर के बैंड ने। सुबेदार पीवी गुरुंग इसका कर रहे थे।
1: माननीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी आज्ञा हो तो पद्म पुरस्कार 2026 के अलंकरण समारोह की कार्रवाई आरंभ की जाए।
0: राष्ट्रपति जी ने कार्यक्रम शुरू करने की स्वीकृति दी। उन्होंने सुनहरे रंग की फिरोजी रंग के बॉर्डर वाली साड़ी पहनी है और मंच पर आसीन। अब कुछ ही पलों में प्रस्तुतीकरण शुरू होने वाला है।
1: श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
0: सबसे पहले महान अभिनेता हीमन के नाम से मशहूर, जिन्होंने 6 दशक तक कैरियर रखा है, 300 से भी ज्यादा फिल्मों में अभिनय किया है। 86 वर्ष की उम्र में उनका निधन हुआ। उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी पद्म विभूषण प्राप्त करने जाती हुई।
2: श्री धर्मेंद्र सर्व्ड एज अ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट इन द 14th लोकसभा रिप्रेजेंटिंग द बीकानेर कॉन्स्टिट्यूएंसी इन राजस्थान फ्रॉम 2004 to 2009। And he was known for his emotional bond with his constituents.
1: Dr. Shrimati N. Rajam, Kala Violin.
0: 87 वर्षीय Dr. Shrimati N. Rajam भारतीय शास्त्रीय संगीत की पहचान है और वायलिन के क्षेत्र में एक अनूठा नाम है। आप एर्नाकुलम में जन्मी थी और पंडित ओंकारनाथ ठाकुर से आपने वायलिन की शिक्षा प्राप्त की।
2: Beyond her illustrious performing career, Dr. Rajam served with distinction as a professor in the Faculty of Performing Arts at the Banaras Hindu University for nearly 4 decades and rose to become the head of department and subsequently dean of faculty, earning the prestigious title of Emeritus Professor by BHU.
1: Padma Bhushan, Shatavdhani Dr. R. Ganesh, Kala Avdhan.
0: अवधान के विशेषज्ञ 64 वर्षीय शतावधानी डॉक्टर आर गणेश कलम और कागज की किसी भी सहायता से, उसकी सहायता के बिना छंद लिखते हैं और इन्होंने 1300 से ज्यादा अष्टावधान और 5 शतावधान लिखे हैं और 70 से ज्यादा पुस्तकें भी।
2: डॉक्टर आर गणेश इज आल्सो अ प्रोलिफिक ऑथर हैविंग मोर देन 70 बुक्स टू हिज क्रेडिट।
1: भगत सिंह कोशियारी लोक कार्य।
0: भगत सिंह कोश्यारी, जिन्हें भगत दा के नाम से जाना जाता है, आप उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी रहे हैं 74 वर्षीय और लोक सेवा का अनूठा काम किया है, राष्ट्रवादी नेता हैं।
2: श्री कोश्यारी स्टार्टेड टीचिंग एट सरस्वती शिशु मंदिर कासगंज उत्तर प्रदेश, वेयर ही वर्क्स टू इम्पार्ट भारतीय वैल्यूज अलोंग विद मॉडर्न एजुकेशन टू यंग चिल्ड्रन।
1: श्री उदय सुरेश कुमार कोटक, व्यापार एवं उद्योग।
0: 67 वर्षीय कोटक, आपने कोटक महिंद्रा फाइनेंस लिमिटेड से शुरुआत की और

0: आज कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड जैसा एक बड़ा आयोजन इन्होंने किया है।
1: श्री कोटक हैज प्लेड एन इम्पोर्टेंट रोल इन डिफाइनिंग एंड डेवलपिंग इंडियाज बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर ओवर फोर डेकेड्स एंड ही लीड्स सेवरल की बॉडीज सर्विंग एज को-चेयरमैन ऑफ द इंडो-यूके फाइनेंशियल पार्टनरशिप।
2: विजय कुमार मल्होत्रा मरणोपरांत लोक कार्य उनके पुत्र श्री अजय कुमार मल्होत्रा।
0: बीते 30 सितंबर 2025 को श्री मल्होत्रा का निधन जरूर हो गया था, लेकिन आप एक खेल प्रशासक थे और एक राजनीतिज्ञ और अकादमिक भी थे। उनके बिहाव पर अजय कुमार मल्होत्रा पद्म भूषण प्राप्त करते।
1: A pioneer in sports, Professor Malhotra served over 40 years as the president of Archery Association of India.
2: Ramaswamy Palniswamy, Chikitsa Gastroenterology.
0: 77 वर्षीय डॉक्टर पलनीस्वामी देश के प्रतिष्ठित गैस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं। आपने 2007 में पद्मश्री सम्मान भी प्राप्त किया था।
1: He also served as president of the Society for Gastrointestinal Endoscopy of India, where he initiated a task force to form
2: श्री
1: guidelines.
2: श्री पीयूष पांडे मरणोपरांत कला विज्ञापन उनकी पत्नी श्रीमती नीता जोशी।
0: पीयूष पांडे कौन नहीं जानता उन्हें, विज्ञापन की दुनिया में एक अनूठा नाम। 70 वर्ष की उम्र में 24 अक्टूबर 2025 को इनका निधन हो गया। नीता जोशी उनके बिहाफ पर ये पुरस्कार प्राप्त करती हैं।
1: श्री पांडे वाज नेम्ड एज द मोस्ट इन्फ्लुएंशियल एडवर्टाइजिंग मैन इन इंडिया बाय द इकोनॉमिक टाइम्स।
2: श्री विश्वबंधु मरणोपरांत कला लोक नृत्य उनकी पत्नी श्रीमती इंदु देवी।
0: विश्वबंधु जी लोक कला के एक बड़े अनूठे हस्ताक्षर थे और बिहार में लोक कलाओं की खास तौर पर लोक नृत्यों की बहुत सेवा की। 95 वर्ष की उम्र में आपका निधन जरूर हो गया, लेकिन राष्ट्र आज कर रहा है उनका सम्मान पद्मश्री देकर मरणोपरांत।
1: श्री विश्वबंधु वाज द फाउंडर ऑफ सुरंगन वन ऑफ बिहार्स मोस्ट रिस्पेक्टेड कल्चरल इंस्टीट्यूशंस एंड रिमेन्स सो ओवर 6 डेकेड्स।
2: श्री भरत सिंह भारती कला लोक गायन।
0: भरत सिंह भारती 90 वर्ष की उम्र में भी आप सांस्कृतिक विरासत और खास तौर पर भोजपुरी गायन और भोजपुरी लोक शैलियों का अभी भी संरक्षण कर रहे हैं। आपने गुलाबी रंग का जैकेट पहना हुआ है, सबका अभिवादन करते हुए और राष्ट्रपति जी के सामने जाते हुए गुरुजी का इन्हें संबोधन दिया जाता है।
1: श्री भरत सिंह भारती रिप्रेजेंटेड इंडिया एट द सागर फेस्टिवल इन मॉरिशस इन 1987 व्हेयर हिज एल्बम पुरबियातान वाज रिलीज्ड। He has also guided a new generation of artists as a judge and mentor.
2: Shri Tagaram Bhil Kala Algoza Vadan.
0: Jaisalmer ki Tagaram Bhil Algoza bajate hain, kitna sundar saaz jo ki sheesham aur kair ki sukhi lakdi se bana hota hai. Inhone Jaisalmeri pattu pehna hai aur upar Jaisalmeri safa chundri ka.
1: Shri Tagaram is the recipient of numerous awards and honors and appreciation certificates. He has received a Maharawal Girdhar Award in 2013 by Maharawal Girdhar Trust Jaisalmer and many, many other awards. He got many opportunities.
2: Harmanpreet Kaur Bhullar, Khel Cricket.
0: कौन नहीं जानता हरमनप्रीत कौर को, जिन्होंने राष्ट्र के लिए विश्व कप की ट्रॉफी उठाई थी। 37 वर्षीय हरमनप्रीत कौर भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान, सुनहरे रंग का परिधान पहना हुआ राष्ट्रपति जी के सामने जाकर अपना पद्मश्री स्वीकार करती हुई।
1: Her achievements have not only strengthened India's presence in international cricket but have also contributed significantly to the growth.
2: Shri Ratilal Mohanlal Borisagar Sahitya evam Shiksha।
0: 88 साल के हैं रतिलाल मोहनलाल बोरीसागर और गुजरात में कितने ही बच्चों के चेहरों पर इन्होंने मुस्कान पैदा की है, क्योंकि ये कॉमिक्स और हास्य लेखन के लिए मशहूर हैं।
1: Yes, he has received many awards and honors and after 36 years his students have established a foundation in 2011 for literary and educational activities. He's also written a biography, Raman Bhai Neelkant.

0: श्री कुमार बोस कला तबला।
1: कुमार बोस तबले में एक बहुत बड़ा नाम है। आप 4 अप्रैल 1954 को जन्मे थे और पिता विश्वनाथ बोस से सीखा, लेकिन बाद में ये पद्म विभूषण पंडित किशन महाराज के भी शागिर्द रहे।
2: श्री बोस's quiet dignity, ethical integrity and unwavering commitment to classical values have earned him top grade status in All India Radio, the Sangeet Natak Academy Puraskar and Pandit Dinanath Mangeshkar Award, along with immense respect within the artistic community.
0: श्री जनार्दन बापूराव बोथे समाज सेवा।
1: मशहूर सामाजिक कार्यकर्ता हैं बोथे जी, 77 साल के हैं और पूज्य राष्ट्र संत टुकड़ो जी महाराज द्वारा स्थापित पवित्र गुरुकुंज आश्रम में आप सेवा दे रहे हैं।
2: श्री बोथे कंपनी राष्ट्र संत श्री टुकड़ो जी महाराज ऑन सिग्निफिकेंट विजिट्स अक्रॉस इंडिया इंक्लूडिंग गोवा, राष्ट्रपति भवन, मेजर कुंभ मेलास, साधु सम्मेलन एंड द फाउंडिंग मीटिंग ऑफ संस्था ऑफ द विश्व हिंदू परिषद इन मुंबई। He has also served as full-time personal secretary
0: Swami Brahmadev Samaj Seva.
1: Swami Brahmadev, 82 साल के हैं आप, श्रद्धेय हैं, राजस्थान के श्री गंगानगर से आते हैं और आपने राष्ट्र के कई अंचलों में आध्यात्मिक मार्गदर्शन भी दिया है और समाज की सेवा भी की है।
2: And during spiritual practice while completing bachelor degree at college in Amritsar, which was adjacent to a blind school, being compassionate with blind children, he decided to dedicate his life for upliftment of specially abled children. Swami Brahmadev.
1: केसरिया रंग का आपने साफा पहना है और केसरिया ही परिधान है। राष्ट्रपति जी के सामने उन्हें अभिवादन करते हुए इस संत पद्मश्री से सम्मानित होता हुआ।
0: श्री प्रोसेनजीत चैटर्जी कला फिल्म अभिनय।
1: प्रोसेनजीत चैटर्जी, इन्हें बुम्बा दा नाम से ज्यादा जानते हैं और भारतीय सिनेमा की एक अनूठी पहचान इन्होंने बनाई है और खास तौर पर बंगाली सिनेमा में आपने बहुत काम किया है और दूसरे के लिए आपको राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भी मिला है।
2: In the digital era, Shri Chatterjee successfully reinvented himself through Hindi streaming projects like Jubilee, Scoop and Khaki.
0: श्रीमती देवकी अम्मा जी समाज सेवा।
1: वन उत्पादक हैं आप, 82 साल की हैं लेकिन रुकी नहीं है, वन दादी नाम से जानी जाती हैं। 3000 से ज़्यादा पेड़ों और स्वदेशी औषधियों और दुर्लभ पौधों की प्रजातियों को बचाने का काम आपने किया है और केरल के अलपुआ से आती हैं।
2: श्रीमती देवकी अम्मा relied on traditional knowledge and close observation of soil and climate conditions for growing plant saplings and used mulching, organic manuring from home cattle, careful retention of leaf litter and thoughtful water management. She was also conferred the Nari Shakti Puraskar in 2018.
0: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले एवं श्रीमती सुनीता गोडबोले चिकित्सा।
1: डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले और उनके साथ सुनीता गोडबोले, आप एक
0: डॉक्टर
1: सामाजिक कार्यकर्ता हैं, 66 साल के हैं और आदिवासी समुदायों के लिए खास तौर पर छत्तीसगढ़ में आपने बहुत काम किया है।
2: In 1990, soon after their marriage, Dr. Godbole and his wife, Srimati Sunita Godbole, decided to move to Bastar to serve tribal communities medically.
0: Srimati Sunita Godbole.
1: ये भी कितना गौरव का क्षण है, उनके साथ आ रही हैं सुनीता गोडबोले। एक साथ दोनों को पद्मश्री मिलता हुआ। आपने भी समाज के लिए बहुत कार्य किया है और ख़ास तौर पर अपने पति डॉक्टर रामचंद्र गोडबोले के साथ महाराष्ट्र में 12 साल और छत्तीसगढ़ में 30 सालों से आपने सेवा की है।
0: श्री तेची गुबिन समाज सेवा।
1: अरुणाचल प्रदेश से आते हैं और वास्तुकार और सामाजिक कार्यकर्ता हैं। आपने बहुत ही कार्य किए वहाँ पर, और पारंपरिक अरुणाचली परिधान पहनकर जिसमें सिर पर पंख भी है हॉर्नबिल का, नमस्कार करते हुए तेची गुबिन 62 वर्षीय पद्मश्री प्राप्त करते हुए।
2: श्री गुबिन ऑर्गेनाइज्ड एंड लेड द सीमांत दर्शन यात्रा इन 2010 एंड 2021 विजिटिंग रिमोट विलेजेस बॉर्डरिंग चाइना, म्यांमार एंड भूटान। He also led a team of delegations to meet the Vice President to report on the security needs.
0: Dr. H.V. Hande, Chikitsa.
1: 99 साल के हैं आप, और ध्यान रखिए 99 वर्षों से इस शख्स ने भारत की सेवा की है। मशहूर चिकित्सक हैं और साथ में राजनीतिज्ञ भी हैं, लेकिन इन सब के अलावा डॉक्टर हंडे ने संपूर्ण कंब रामायण, जो कि तमिल में है मूल रूप से, उसका अंग्रेजी गद्य में अनुवाद भी किया है। राष्ट्रपति जी की एडीसी उनका हाथ पकड़ कर ले जाते हुए उन्होंने हल्के हरे रंग का जैकेट पहना है और राष्ट्रपति जी का अभिवादन करते हुए आगे अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए धीरे धीरे जाते हुए।
2: While Dr. Hande was the health minister of Tamil Nadu between 1980 and 1986, he brought the state into the first slot consecutively for 3 years in reducing infant mortality rate and maternal mortality rate, in drastically reducing the incidence of leprosy and other communicable diseases. Thereafter, he received the prestigious Dr.
0: Shri
2: B.C. Roy
0: Award. Shri Gafruddin Mevati Jogi Kala Bhapang Vadan.
1: राजस्थान में अलवर से गफरुद्दीन जी आते हैं, इन्होंने राजस्थानी साफा पहना है, नमस्कार करते हुए जाते हुए जोगी परंपरा का प्रतिनिधित्व करते हैं और भपंग बजाते हैं जिसे महादेव का वाद्य कहते हैं, और ख़ास तौर पर महाभारत और कृष्ण लीला अली बख्शी परंपरा जैसी कथाओं का वाचन करते हैं।
2: Well, through his sustained artistic practice, Shri Gafruddin has contributed significantly to the preservation of nearly 20 endangered folk musical instruments and oral narrative traditions. His work has supported academic research including PhD level studies.
0: Shri Mir Hazi Qasim Kala Dholak.
1: 75 साल के मीर हाजी कासम, इन्हें हाजी रामकडू नाम से बुलाते हैं, आप जूनागढ़ के एक महान और मशहूर लोक संगीतकार हैं। 75 वर्ष के हो चुके हैं, लेकिन इन्होंने पूरा जीवन गुजरात के पारंपरिक संगीत को समर्पित किया है और ख़ास तौर पर बहुत अच्छी ढोलक बजाते हैं।
2: श्री कासम हैज बीन इंस्ट्रूमेंटल इन कैरिंग गुजराती फोक म्यूजिक टू ग्लोबल ऑडियंसेस, परफॉर्मिंग अक्रॉस कंट्रीज सच एज द यूएसए, यूके, साउथ अफ्रीका, कनाडा, यूएई, ओमान एंड सेवरल अदर्स। He has also received many state-level honors, including the Gujarat Gaurav Puraskar, Gujarat Rajya Sangeet Natak Academy Award, Gujarat Lokala Rashtriya
0: Shri
2: Puraskar.
0: Shri Raghuveer Khedkar Kala Theatre.
1: रघुवीर खेड़कर को महाराष्ट्र के लोग अच्छी तरह जानते हैं। आप एक मशहूर तमाशा कलाकार हैं और तमाशा की एक मंडली भी चलाते हैं, और लोक कला और खास तौर पर मराठी लोक कला को संरक्षित करने के लिए कटिबद्ध हैं।
2: ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक व्हेन पब्लिक परफॉर्मेंसेस हॉल्टेड एंड मेनी आर्टिस्ट फेस्ड हंगर एंड अनएम्प्लॉयमेंट, श्री खेड़कर स्टूड अप एज अ स्टॉन्च एडवोकेट। ही लेड अपील्स फॉर फाइनेंशियल सपोर्ट एंड लीवरेज्ड सोलेस एंड सॉलिडैरिटी फॉर folk artists.
0: Shri R. Krishnan Kitna Marnoprant Kala Kurumba Tribal Painting, unki patni Srimati Sushila Krishnan.
1: R. Krishnan Kitna, जिनका 20 मार्च 2025 को निधन हो गया था, आप तमिलनाडु से आते हैं और बचपन से ही चित्रकारी करते आए थे और दीवारों पर इन्होंने बहुत चित्र बनाए। सुशीला कृष्णन, उनकी पत्नी, पद्मश्री प्राप्त करती हुई।
2: श्री आर कृष्णन किटना इज नोन फॉर यूजिंग नेचुरल पिगमेंट्स इन हिज आर्ट फॉर्म एंड हिज स्किल्स एज अ स्टोरी टेलर। ही इज आल्सो
0: प्रोफेसर डॉक्टर लार्स क्रिश्चियन कोच कला म्यूजिकोलॉजी।
1: एथनो म्यूजिकोलॉजिस्ट हैं आप, बंगाल से प्रेम करते हैं और ख़ास तौर पर गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ इनका एक आत्मिक संबंध है। बॉन में टैगोर इंस्टीट्यूट में आपने पढ़ाई की और शांति निकेतन पश्चिम बंगाल से भी जुड़े रहे।
2: प्रोफेसर कोच इज डायरेक्टर ऑफ द स्टेट एथनोग्राफिक कलेक्शंस इन द स्टेट आर्ट कलेक्शंस सैक्सोनिया इन ड्रेसडन जर्मनी सिंस अक्टूबर 2025।
0: प्रोफेसर मामीडाला जगदीश कुमार साहित्य एवं शिक्षा।
1: 66 वर्षीय जगदीश कुमार आपने एनसीईआरटी में बहुत काम किया है, सुप्रसिद्ध शिक्षाविद है और राष्ट्र की जो शिक्षा नीति है उसमें भी आपकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है।
2: वेल प्रोफेसर मामीडला जगदीश कुमार फ्रेम्ड एंड ऑपरेशनलाइज्ड मॉडल्स अंडर एनईपी 2020 एंड द 4-year अंडरग्रेजुएट प्रोग्राम विद फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर एंड द एकेडमिक बैंक ऑफ क्रेडिट्स।
0: श्री प्रवीण कुमार खेल एथलेटिक्स दिव्यांग।
1: और अब बारी इस 23 वर्षीय खिलाड़ी की, T44 ऊंची कूद में विश्व में आप नंबर वन है और पैरा ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय पैरा एथलीट है प्रवीण कुमार।
2: श्री प्रवीण कुमार वेंट ऑन टू क्लेम गोल्ड एट द वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड ग्रां प्री विद अ लीप ऑफ 2.05 मीटर सेटिंग एन एशियन रिकॉर्ड। एट टोक्यो पैरालंपिक्स ही वन अ सिल्वर मेडल।
0: श्री के विजय कुमार सिविल सेवा।
1: विजय कुमार जी सीआरपीएफ के पूर्व महानिदेशक रहे हैं और संकटपूर्ण मिशनों में आपने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
2: एज कमिश्नर ऑफ चेन्नई श्री के विजय कुमार रिफॉर्म्ड क्राइम कंट्रोल प्रैक्टिसेस, क्रैक्ड डाउन ऑन ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स एंड एनहांस्ड पब्लिक सेफ्टी एंड रिड्यूस्ड रोड फैटलिटीज बाय 40%। एज एडिशनल डीजी लॉ एंड ऑर्डर ही स्ट्रेंथन्ड पब्लिक सेफ्टी।
0: देवबा लाड दादा लाड कृषि।
1: देवा लाड किसानी खेती करते हैं और ग्रामीण विकास और स्थायी कृषि और सामाजिक कार्यों में बहुत योगदान दिया है। परभणी जिले के मालसोना गांव में आप जन्मे हैं, 79 वर्ष के हैं।
2: श्रीरंग देवा लाड इन्वेंटेड न्यू टेक्नोलॉजी इन कॉटन कल्टीवेशन व्हिच वाज यूज्ड बाय फार्मर्स इन ऑल कॉटन प्रोड्यूसिंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। ही हैड डन रिसर्च वर्क इन जवार एंड तूर एज वेल।
0: श्री अंके गौड़ा एम समाज सेवा।
1: 77 साल के अंके गौड़ा अब माननीय राष्ट्रपति जी से अपना पद्मश्री प्राप्त करने के लिए जाते हुए आपने अपना पूरा जीवन पुस्तकों के संरक्षण संग्रह और उसे लोगों तक पहुंचाने में दे दिया है।
2: श्री अंके गौड़ा जी हैज पर्सनली कलेक्टेड मोर देन 20 लाख बुक्स ओवर द लास्ट 50 years यूजिंग हिज इंटायर पर्सनल अर्निंग्स फॉर दिस पर्पज एंड हिज कलेक्शन इंक्लूड्स बुक्स इन Kannada, English, Hindi, Tamil, Telugu and several other Indian languages and diverse subjects such as literature, history, art, culture and philosophy.
0: Professor Dr. Saroj Mandal, Chikitsa, Cardiology.
1: 69 varshiya Dr. Mandal, interventional cardiologist. Aapne shiksha aur swasthya ke kshetra mein desh ki khoob seva ki hai.
2: Professor Dr. Mandal has served over 6 lakh patients in OPD over 35 years and independently performed and supervised 50,000 coronary angiograms and 50,000 angioplasties.
0: Professor Budh Rashmi Mani, Puratattva Vigyan.
1: Bharatiya Puratattva Vigyan ke ek mahatvapurna hastakshar, Professor Budh Rashmi Mani, Rashtriya Sangrahalaya ke महानिदेशक भी आप रहे हैं और कहां कहां उत्खनन इन्होंने नहीं किया हमारी सभ्यता के अवशेष खोजने में।
2: While working in the archaeological survey of India, Professor Mani conserved about 150 centrally protected monuments in Maharashtra, Goa, Delhi and Jammu and Kashmir and discovered 200 archaeological sites and he directed 20 expeditions.
0: Shri Nilesh Vinod
2: Ayodhya.
0: Chandra Mandlewala, Samaj Seva.
1: ऑर्गन मैन के रूप में जाने जाते हैं और डोनेट लाइफ संस्थान के रूप में इन्होंने बहुत कार्य किया है, खास तौर पर गुजरात और भारत में शव अंगदान के बारे में जागरूकता फैलाई है।
2: श्री मांडलेवाला He has a long-term vision that by 2047, no citizen should lose life because of the non-availability of organs. For that, he has traveled extensively across India for more than 2 decades.
0: Dr. Mahendra Kumar Mishra, Sahitya Evam Shiksha.
1: लुप्त प्राय जनजातीय आवाज़ों को आधुनिक शिक्षा शास्त्र में आपने शामिल किया है और आवाज़ों को संरक्षण करने में 4 दशक से अधिक का समय दिया है डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्र ने।
2: Internationally, Dr. Mishra has advised Nepal's MLE policy, lectured at China's CAS, Hanyang University, South Korea, Thailand's Mahidol University and Russia's Academy of Sciences.
0: Shrimati Tripti Mukherjee, Kala, Kantha Embroidery.
1: Kantha ऐसी कढ़ाई है जो पूरे विश्व में भारत की पहचान है और उसे आगे बढ़ाने में, उसे नए स्वरूप देने में तृप्ति मुखर्जी का बहुत योगदान रहा है.
2: श्रीमती मुखर्जी इज द रेसिपिएंट ऑफ न्यूमरस अवार्ड्स सच एज द नेशनल अवार्ड सर्टिफिकेट इन 2010 एंड शिल्प गुरु अवार्ड इन 2016 बाय द मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. शी इज आल्सो बीन एक्नॉलेज्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल बाय कन्फरिंग ऑन हर द बंगश्री अवार्ड.
0: हरि माधव मुखोपाध्याय कला थिएटर, उनके पुत्र श्री कृष्णेंदु मुखोपाध्याय.
1: आप मशहूर थिएटर निर्देशक, नाटककार और अभिनेता थे. 85 वर्ष की उम्र में 17 मार्च 2025 को आपका निधन हो गया. उनकी बिहाव पर पद्मश्री प्राप्त करने जाती हुई कृष्णेंदु उपाध्याय मुखोपाध्याय.
2: श्री
0: सत्यनारायण नंदलाल नुवाल, व्यापार एवं उद्योग.
1: 74 वर्षीय नुवाल सोलर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के संस्थापक और अध्यक्ष हैं. आज इन्हें सम्मानित किया जा रहा है पद्मश्री से.
2: Under Shri Nuwal's leadership, Solar became the first Indian company to design, develop and manufacture fully weaponized variants of the Nagastra loiter munition which has been supplied to the Indian Army.
0: Shri K. Pajanivel, Khel Silambam.
1: Silambam 5000 साल पुरानी भारतीय मार्शल आर्ट है और युद्ध शस्त्र आधारित पद्धति है. इसे आगे बढ़ा रहे हैं के पजनिवेल.
2: Well, Shri Pajanivel was conferred the Academy Puraskar Award of Sangeet Natak Academy presented by the Honorable President of India in 2023. And he also founded the Mamallan Silambam and Folk Arts Development Club in Pondicherry. He has also trained youths who were interested in Silambam.
0: Shri Dharmik Lal Chunilal Pandya, Kala Man Akhyan.
1: 94 वर्ष के हैं आप, धार्मिक लाल चुनीलाल पंड्या, और गुजरात की प्राचीन मान भट्ट मान आख्यान परंपरा के सर्वश्रेष्ठ उस्ताद हैं. आपने पगड़ी पहनी है और व्हील चेयर पर जाते हुए राष्ट्रपति जी खुद अपने आगे आकर श्री पंड्या का सम्मान.
2: In addition to preserving classical repertoire, Shri Pandya has composed new akhyans on contemporary social themes like water conservation.
0: Shri Kailash Chandra Pant, Sahitya Evam Shiksha.
1: प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक हैं कैलाश चंद्र पंत. मध्य प्रदेश से आते हैं और शुरू से ही पत्रकारिता और खास तौर पर निष्पक्ष पत्रकारिता में आपने अपना अनूठा नाम बनाया है.
2: In 1977, Shri Kailash Chandra Pant launched weekly Jan Dharam from November 1980s as secretary of Madhya Pradesh Rashtriya Bhasha Prachar Samiti. He revitalized Hindi Bhavan and upgraded the quarterly literary magazine Akshara.
1: Rashtrapati ji swayam ek seedhi utar ke niche aati hui aur Pant ji jo ki 90 saal ke hain unka samman karti hui aur ye kartal dhwani is baat ka prateek ki rashtra ऐसे सेवकों का ऋणी है.
2: His work earned him the Vishwa Hindi Samman.
0: श्री गरी मेला बाल कृष्ण प्रसाद मरणोपरांत कला गायन, उनके पुत्र श्री गरी मेला अनिला कुमार.
1: अनिला कुमार उनके ब्याह पर लेगी ये पुरस्कार. गली मेला बाल कृष्ण प्रसाद 78 वर्ष की उम्र में ये देह तो छोड़ गए लेकिन अपने महत्वपूर्ण कार्यों को राष्ट्र के लिए सौंप गए. प्रतिष्ठित भारतीय शास्त्रीय और भक्ति संगीत गायक थे आप.
2: Over a career spanning six decades, Shri Prasad presented more than 6,000 concerts across India and internationally.
0: Professor Dr. Rajendra Prasad, Chikitsa, Tuberculosis.
1: 76 वर्षीय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक सुप्रसिद्ध चेस्ट फिजिशियन है और क्षय रोग और खास तौर पर क्षय रोगियों की देखभाल और उनकी चिकित्सा में आपने बहुत महत्वपूर्ण कार्य किया है.
2: प्रोफेसर डॉक्टर प्रसाद वाज द फर्स्ट इन इंडिया टू एस्टैब्लिश द एसोसिएशन ऑफ बीडी स्मोकिंग एंड द यूज ऑफ बायोमास फ्यूल स्मोक विद क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज ट्यूबरकुलोसिस एंड लंग कैंसर. He has worked on 35 research projects and supervised 185 MD, MS and DM.
0: Dr. students. Gunduru Venkat Rao, Chikitsa, Gastroenterology.
1: अब एक और चिकित्सक का सम्मान होता हुआ 66 वर्षीय वेंकटराव एक प्रमुख सर्जरी गेस्ट्रो एंट्रोलॉजिस्ट हैं और आपने अपनी सर्जरी के जरिए कई लोगों की जान बचाई है।
2: Well, he has performed more than 12,000 complex gastrointestinal surgeries and nearly 16,000 advanced endoscopic procedures. He has also held several important leadership positions.

0: नृत्य।
1: 60 वर्षीय दीपिका रेड्डी एक मशहूर कलाकार है, कोरियोग्राफर भी हैं और समर्पित गुरु और एक सांस्कृतिक राजदूत भी है। शास्त्रीय नर्तकों की तीन पीढ़ियों से आप ताल्लुक रखती हैं।
2: श्रीमती रेड्डी वॉज द फर्स्ट वुमन चेयरपर्सन ऑफ तेलंगाना संगीत नाटक अकेडमी, गवर्निंग काउंसिल मेंबर संगीत नाटक अकेडमी दिल्ली, एंड हैज रिसीव्ड प्रेस्टिजियस अवार्ड्स लाइक संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड एंड मेनी मोर।
0: डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी, चिकित्सा ऑन्कोलॉजी।
1: अगले चिकित्सक पद्मश्री प्राप्त करने जा रहे हैं डॉक्टर पलकोंडा विजय आनंद रेड्डी। 67 साल के हैं और आप मशहूर ऑन्कोलॉजिस्ट हैं। इनकी यात्रा क्लिनिकल उत्कृष्टता से कहीं आगे जानी जाती है और हैदराबाद में आपने बहुत कार्य किया है।
2: Well, Dr. Reddy has delivered over 921 CME lectures, authored 112 plus publications and organized numerous international conferences to bring cutting edge technology to Indian practitioners. His advocacy efforts
0: have borne fruit. Shri Haricharan Shaikia, Kala Satriya Nitya.
1: Satriya, Assam ki ek suprasiddh kala. और हरिचरण शैकिया जी जो कि 94 वर्ष के हैं, व्हीलचेयर पर जाते हुए आपने इस कला का न सिर्फ संरक्षण किया है बल्कि इसे लोगों तक भी पहुंचाया है और बहुत सारे लोगों को सत्रीय कला का प्रशिक्षण भी दिया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी, उनको नमस्कार करते हुए आगे जाते हुए और राष्ट्रपति जी आकर उन्हें पद्मश्री प्रदान करती हूँ।
2: श्री हरिचरण सैकिया परफॉर्म सत्रिया डांस बिफोर इंडियाज फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर एंड सेकंड प्रेसिडेंट डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। आल्सो ही परफॉर्म द बरगीत विद मणिराम गायन मोक्तर एट ऑल इंडिया रेडियो इन 1948।
0: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री,
1: 86 साल के शास्त्री जी,
0: साहित्य एवं शिक्षा
1: विद्वानों में से हैं। आपने अद्वैत वेदांत दर्शन और संस्कृत काव्य शास्त्र में बहुत सारे कार्य किए हैं। नमस्कार करते हुए, अभिवादन करते हुए अमित शाह जी और माननीय प्रधानमंत्री जी का, और अब मुड़कर अभिवादन करते हुए राष्ट्रपति जी का पद्मश्री प्राप्त करने जाते हैं।
2: प्रोफेसर वेम्पटि कुटुंब शास्त्री has authored and edited 15 books and more than 50 research papers. He has also guided numerous doctoral scholars and delivered hundreds of lectures.
0: Professor Shafi Shauk, Sahitya evam Shiksha.
1: 100 से ज्यादा किताबें आपने लिखी हैं और कश्मीर से आते हैं और कश्मीरी, अंग्रेजी, हिंदी और उर्दू सब भाषाओं में आपने खूब लिखा है, प्रोफेसर शफी शौक।
2: His translations include his series of books under the title The Best of Kashmiri Literature. He has also written scripts for numerous TV serials and films.
0: Shri Baldev Singh Khel, hockey coach.
1: Baldev Singh ji ne बहुत सारे हॉकी खिलाड़ी इस राष्ट्र को दिए हैं। एक अनुभवी कोच हैं और आज इन्हें मिलता हुआ पद्मश्री और ये तालियां इस बात का प्रमाण कि उनका कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है।
2: श्री बलदेव सिंह जी इज वाइडली रिकॉग्नाइज्ड फॉर डेवलपिंग द शहबाग मारकंडा हॉकी नर्सरी इनटू वन ऑफ इंडियाज मोस्ट प्रोडक्टिव सेंटर्स फॉर हॉकी टैलेंट।
0: श्री युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत, कला नट संकीर्तन, उनके पुत्र श्री युमनाम बिशन भोर सिंह।
1: आप मणिपुर के पारंपरिक वैष्णव नृत्य और संगीत के प्रतिष्ठित प्रतिपादक थे और बीते वर्ष 11 अक्टूबर को हमारे बीच नहीं रहे, सम्मानित होते हुए युमनाम यात्रा सिंह मरणोपरांत।
2: His contributions to Nata Sankirtan are timeless. His efforts played a significant role in UNESCO's recognition of Sankirtan as an intangible cultural heritage in 2013.
0: Dr. Ashok Kumar Singh, Vigyan evam Engineering.
1: Ashok ji ne Bharat mein basmati chawal ki kheti ka kayakalp karne mein bahut bada yogdan diya hai aur is contribution ke liye आज राष्ट्र उन्हें सम्मान दे रहा है पद्मश्री का।
2: डॉक्टर सिंह हैज गाइडेड 34 पीएचडी एंड 5 एमएससी स्टूडेंट्स, मेकिंग सब्सटेंशियल कंट्रीब्यूशंस टू ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट एंड मेंटरिंग न्यूमरस यंग प्रोफेशनल्स।
0: श्रीमती शिव शंकरी, साहित्य एवं शिक्षा।
1: अबारी श्रीमती शिव शंकरी जी की आप 1942 में जन्मी हैं और चेन्नई में इन्होंने बहुत कार्य किया और ख़ास तौर पर लेखन में सभी भाषाओं में और ख़ासतौर तमिल में बहुत सारा इन्होंने लिखा है। 30 से ज़्यादा उपन्यास, 40 से ज़्यादा लघु उपन्यास, 100 से ज़्यादा लघु कथाएँ, 16 यात्रा वृत्तांत बहुत लिखा है इन्होंने।
2: Shrimati Shivshankari completed her Bachelor of Science degree as a university rank holder, reflecting her early academic excellence. She was also selected as the Woman of the Year 2000 by the International Women's Association. She was also one of the four writers who were recorded in her own voice for the archives of the U.S. Library of Congress.
0: Dr. R. Sridhar, Community Radio.
1: श्रीधर जी आकाशवाणी के उप महानिदेशक रहे और विज्ञान का एक लंबा सीरियल इन्होंने बनाया जो किसी भी देश में बना हुआ सबसे ज्यादा बड़ा सीरियल था, विज्ञान सीरियल।
2: डॉक्टर श्रीधर इज इन एसोसिएशन विद द नेशनल काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी डेवलप द लॉन्गेस्ट रेडियो साइंस सीरियल फॉर चिल्ड्रन टाइटल्ड द ह्यूमन एवोल्यूशन मानव का विकास, ब्रॉडकास्ट इन 18 इंडियन लैंग्वेजेस साइमल्टेनियसली थ्रू 200 रेडियो स्टेशंस। He has also played a central role in launching Gyan Darshan group of channels, the first 24-hour educational television channel.
0: Professor Shyam Sundar, Chikitsa Kalazar.
1: आप काशी हिंदू विश्वविद्यालय के Institute of Medical Sciences में medicine के मानद professor हैं। संक्रामक रोगों खासतौर पर विसरल लिशमैनियासिस कालाजार में आपने बहुत कार्य किया है।
2: प्रोफेसर सुंदर इज रैंक्ड एट द टॉप इन द वर्ल्ड इन द फील्ड ऑफ लिशमैनियासिस एंड कालाजार फ्रॉम द ईयर 2013 टू डेट। ही हैज पब्लिश्ड एक्सटेंसिवली इन एकेडमिक जर्नल्स इंक्लूडिंग NEJM एंड
0: डॉक्टर एस जी सुशील अम्मा समाज सेवा।
1: 24 मई 1939 को आप कर्नाटक में जन्मी हैं और प्रतिष्ठित सामाजिक कार्यकर्ता और ख़ास तौर पर अपने सेवा आश्रम के जरिए बहुत समाज सेवा का आपने कार्य किया है। 5 दशक कोई कम समय नहीं होता लालिमा जी, 5 दशक से ज़्यादा इन्होंने समाज सेवा की है और अब हाथ पकड़कर आगे जाती हुई और सफ़ेद साड़ी इन्होंने पहनी है और झुककर अभिवादन करती हुई माननीय गृह मंत्री जी का और माननीय प्रधानमंत्री जी का और अब माननीय राष्ट्रपति जी का अभिवादन करती हुई।
2: Dr. Sushil Amma has also implemented extensive rural development and women empowerment programs across Karnataka, including adult literacy campaigns, formation of self-help groups and Mahila Mandals, and vocational and entrepreneurship training, microcredit initiatives, and panchayat leadership development. She has also worked closely with tribal communities through sustainable agriculture and livelihood projects.
0: श्री एन स्वामीनाथन कला भक्ति संगीत।
1: तंजावूर से आते हैं और तमिल संगीत के क्षेत्र के प्रतिष्ठित कलाकार हैं और आपने तमिल भाषा में भगवान शिव के भजनों का पारंपरिक एक प्रामाणिक भजन संग्रह भी निकाला है।
2: He became a master of the art and served as Othuvar in many temples of Tamil Nadu and later worked at Thiruthani Lord Murugan Temple for nearly 26 years. He has served as a teacher in VS Trust, a charitable trust to Lord Nataraja Temple in Chidambaram.
0: Dr. Keval Krishna Thakral, Chikitsa Ayurved.
1: Dr. Thakral, Ayurvedic Paddhati ke Shalya Chikitsak hain aur Bharat mein ek Kshar Sutra Chikitsa ke madhyam se कई रोगों के उपचार और खासकर ब्रोंकियल अस्थमा के उपचार के लिए इन्होंने एक लघु शल्य प्रक्रिया कर्म वेदन भी आगे बढ़ाई है।
2: डॉक्टर केवल कृष्ण ठकराल मूव टू सैन फ्रांसिस्को यूएसए इन 1976 एज अ रिसर्च सर्जन। ही हैज बीन इनवाइटेड टू ओवर 80 सेमिनार्स एंड कॉन्फ्रेंसेस टू शेयर हिज नॉलेज एंड हिज प्रोफाइल हैज बीन पार्ट ऑफ इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस आल्सो।
0: डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी मरणोपरांत विज्ञान एवं इंजीनियरिंग, उनके पुत्र श्री रमन कुमार त्रिवेदी।
1: ज्यादा दिन नहीं हुए, 12 मई को ही आपका निधन हो गया था। डॉक्टर गोपाल जी त्रिवेदी एक कृषि वैज्ञानिक थे और राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति रह चुके हैं, पुरस्कार प्राप्त करते हुए इनके पुत्र रमण कुमार त्रिवेदी।
2: डॉक्टर त्रिवेदी, सिंस द लास्ट 5 years ऑन द प्रिंसिपल ऑफ थिंक ग्लोबल एक्ट लोकल इनिशिएटेड अ प्रोग्राम टू इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी ऑफ मेज।
0: श्री अरविंद वैद्य कला थिएटर
1: वरिष्ठ कलाकार हैं और 6 दशकों से ज़्यादा समय से आपने गुजराती रंगमंच, हिंदी टेलीविजन और फिल्मों के क्षेत्र में काम किया है।
2: श्री वैद्य
1: काले रंग का जोधपुरी सूट पहना हुआ है।
2: श्री वैद्य फाउंडेड द नाट्य संपदा, हिज ओन प्रोडक्शन कंपनी थ्रू विच ही प्रोड्यूस्ड, डायरेक्टेड एंड एक्टेड इन मोर देन 75 फुल लेंथ प्लेज। ईच वर्क कैरीड द क्वाइट वेट ऑफ डेडिकेशन, गैदरिंग रिकॉग्निशन अलोंग द वे। In 1993, Mumbai beckoned him and opened a wider horizon. He's multilingual and
0: Professor
2: very adaptable.
0: Juzar Vasi, Vigyan Evam Engineering.
1: Professor Juzar Vasi, IIT Bombay mein Professor Emeritus hai. Aur aapne micro electronics aur semiconductor aur solar photovoltaic se kshetron mein bahut karya kiya hai.
2: Professor Vasi, throughout his career in both semiconductors and solar photovoltaics, he stressed the importance of interdisciplinary, collaborative and inclusive research, which he thought was necessary, especially on major national missions. He has published about 200 papers in leading journals and conferences.
0: Dr. Narayan Vyas, Puratattva Vigyan.
1: डॉक्टर नारायण व्यास विश्व के सुप्रसिद्ध पुरातत्वविदों में से एक है, खास तौर पर मध्य प्रदेश में भीमबेटका और सांची और गुजरात के रानी जीरी वाव सीढ़ी कुआं के योगदान में आपने बहुत ही योगदान दिया है।
2: Dr. Vyas was associated with the National Archives of Indian Historical Record Committee, domain expert member in National Screening and Evaluation Committee. He was awarded the prestigious Dr. Vishnu Sridhar Vakankar Award from the government of Madhya Pradesh in
0: 2019. Professor Gambir Singh Yonzan, Sahitya Evam Shiksha.
1: Gambir Singh ji, Darjeeling पहाड़ियों के एक प्रतिष्ठित वनस्पति शास्त्रीय शिक्षाविद, पर्यावरणविद और संस्थान के निर्माता हैं और खास तौर पर वनस्पति विज्ञान में आपने बहुत कार्य किया है।
2: प्रोफेसर योनजोन्स कंट्रीब्यूशन टू एजुकेशनल एंड इंटेलेक्चुअल एडवांसमेंट ऑफ दार्जिलिंग हिल रीजन आर पायनियरिंग एंड फार रीचिंग। A passionate advocate of scientific temper and environmental awareness, he led a 6-year conservation movement that was a huge, huge success.
0: Shri Halley Var, Samaj Seva.
1: अब बारी हैली वार जी की। आप पर्यावरणविद और खासी लोगों के स्वदेशी ज्ञान के लिए एक प्रतिष्ठित नाम हैं।
2: Shri Vaur has spent more than 50 years nurturing and building the iconic living route bridges of the East Khasi Hills. Since the age of 10, he has meticulously guided the aerial roots of the Ficus elastica tree to create durable living structures. His most celebrated work, the Omkar Living Root Bridge, stands as a testament to his patience and profound understanding of natural ecosystems.
1: और अब सचिव महोदय आते हुए, क्योंकि ये अंतिम सम्मान था आज का और राष्ट्रपति,
0: माननीय राष्ट्रपति महोदय आपकी आज्ञा हो तो समारोह की कार्रवाई समाप्त की जाए। धन्यवाद महोदय।

0: and we can see everybody's standing.
1: राष्ट्रपति जी इस वक्त धीरे धीरे दरबार इस गणतंत्र मंडप से प्रस्थान करती हुई सबका अभिवादन करती हुई उनके ठीक पीछे उपराष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी अभिवादन करते हुए ठीक पीछे अमित शाह जी और मनसुख मांडविया जी ये तमाम और अब आ रहे हैं ओम बिरला जी पीछे श्री वेंकैया नायडू जी तमाम गणमान्य अतिथि धीरे धीरे सबका अभिवादन करते हुए गणतंत्र मंडप से बाहर जाते हुए
0: And there is a palpable excitement in the hall, which was jam-packed with the awardees and their relatives who had come to receive the prestigious Padma Awards. It is indeed a moment of pride.
2: So please pay your attention, please. I request all the award winners to move towards your right side.
1: Second part of the ceremony. Akashwani se uska aankhon dekha haal bhi sunna na bhule. तकनीकी टीम के सदस्य थे अशोक कुमार मिश्र कमल सिंह और हेमराज मीणा ओबी इंचार्ज हमारे साथ तुषार पराशर और इस कार्यक्रम के प्रोड्यूसर प्रमोद कुमार मैं महेंद्र सिंह लालस अपनी साथी कमेंटेटर लालिमा अनेजा डैंग के साथ अब आपको लिए चलता हूं आकाशवाणी के स्टूडियो वापस नमस्कार
3: अभी आप राष्ट्रपति भवन से भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित हुए नागरिक अलंकरण समारोह का सजीव विवरण सुन रहे थे विवरण दे रहे थे महेंद्र सिंह लालस और लालिमा अनेजा ये कार्यक्रम आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से प्रसारित किया गया

नमस्कार दगड़ियों, ग्राम जगत में आप सब हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। दीपक रावतों को आप सो थे प्रणाम सेवा स्वामी। और दगड़े उम्मीद कर दूँ कि आप सब अपना घर परिवार में कुटुंबदारी के दगड़ा सकुशल वेल्या बल से वेल्या। और दगड़ियों जन की सदनी के चार आज भी ग्राम जगत झोली में हम आप खुणों ले के यहाँ छो गीत रैबार और वे एक दगड़ा भेंट वार्ता विश्व फुटबॉल दिवस पर विशेष फुटबॉल खिलाड़ी प्रशिक्षक श्री दया मोहन लखेड़ा से विनय ध्यानी की बातचीत। छह बातों के दगड़ दगड़ ग्राम जगत अगण बटोल दगड़े। और आज जन कि आप सब थे पता चे कि खास दिन छ, उन तो हर दिन खास हों पर आजो को दिन इले खास कि आज का खास दिन पर छ विश्व फुटबॉल दिवस। तो दगड़ जन हम सब जान दो कि भाई खेलकूद जो छ हमार जीवन को कदम महत्वपूर्ण छ, हमार शारीरिक विकास खुण मानसिक विकास खुण कदगा महत्वपूर्ण छन, ये हम सब जान दो। और आज का दौर में जबकि बच्चा सोशल मीडिया मोबाइल पर लग्या छन तो वकम खेलकूदों की बहुत ज़्यादा महत्व बढ़ जात। तो दगड़ियों फुटबॉल भी एक ही नहीं खेल जैम की शारीरिक क्षमता और मानसिक चपलता दोनों को बहुत महत्वपूर्ण योगदान छ। और इन खेल की जैसे कोई भी खेल सकत, मतलब इम संसाधनों की ज़्यादा आवश्यकता नहीं है। एक फुटबॉल गेंद लेना आप लोगों ला और बस जूता लेनी फुटबॉल खेलना का और एक बात खेला और खेलता खेलता खेलता खेलता खेलता बढ़ जाओ जो जिंदगी को गोल जो है पूरा कह जाओ, है ना। तो फुटबॉल जो छ 11 खिलाड़ी होंगे ना आप तो पता छ, और दुई टीम जब हो तो 22 खिलाड़ी। तो दगड़ो ये में एक मानसिक चपलता भी दिखे जान कि जब हम बॉल थे एक खिलाड़ी पर दूसरा खिलाड़ी बट छीनी कर तो अगले खिलाड़ी तक पहुँचो दो पास दिन दो, जो हम फुटबॉल भाषा में बोल दो वो एक रोचक दृश्य हूँ देखने लायक। और इले फुटबॉल बहुत ही रोमांचक खेलो जान, बरखा हो धूप हो हर मौसम खेले जान फुटबॉल। इले भी बड़ो मजेदार रोमांचक खेल छ कि भाई निज के जन और खेल चिंत कद गए बार बरखा पड़ गया था रे यार मायूस होने पड़ता रे आप कन के खेलन फुटबॉल में इंज के बरखा पड़ी तो छप छप छप छप कह रही फुटबॉल खेल लियावा और दब दब दब दब कह रहे गोल कह लियावा। तो फुटबॉलो की हो चु इधर बढ़िया एक रोमांच छ। और सेना में तो फुटबॉल का बहुत महत्व छ, जो खिलाड़ी तो फुटबॉल खेलना सेना जो हमारे देश का सेना छे वहीं वो तो बड़ो महत्व दिए जाते कि लेकिन मिल पहले बोला है कि फुटबॉल जो छ एक शारीरिक क्षमता वाला खेल छ। भाई आप कम से कम 1.5-2 घंटा लगातार जो छ खेल मैदान दौड़ना तो आसान बात नहीं छ। और आजकल जमाना में जन बच्चा लोग नशा पता भी करना छा ना तो सांस फूलने में जान थोड़ी देर में, तो वहाँ से बचना को भी खेल बहुत बढ़िया छ फुटबॉल। तो दगड़ो जमा जम खेल फुटबॉल अब आस पास है ना, और फिर देखा कख तक पहुँचा तब डार। तो दगड़ो इन चूंकि जन आप तक पता चल कि ब्राजील हो गया अर्जेंटीना हो गया कुछ देश ही नहीं जो खेल फुटबॉल का बहुत ज़्यादा महत्व है। और एक से बढ़कर एक खिलाड़ी फुटबॉल में रोनाल्डो से लेकर कद गए और खिलाड़ी आप थे सुने वाला कि जो फुटबॉल जो नाम कमाई। पर थोड़ा एक चिंता की बात यह है कि हमारे भारतवर्ष इतना बड़ो देश और बाप रे बाप जनसंख्या दे देगा बुरीज की पूछना, पर भय ओलंपिक में नहीं पहुँचना करना चो फुटबॉल रह जाना चो जर जर कैरी की। तो इकेले होना चाहिए जरा हम तो सोचना पड़ा लो और अपना आस पास जो फुटबॉल का बच्चा छे जो फुटबॉल खेना छे वो तो प्रेरित करना पड़ लगे शाबाश भाई बहुत बढ़िया खेना चाहो तुम फुटबॉल अगने बढ़ा। और जब हम जोश भूल तो एक ऊर्जा बढ़ा लिया अगने अगने को बढ़ा लाया। तो दगड़ियों यूं छुई मातों की

आज हम सब मिले कि विश्व फुटबॉल दिवस थे मनोला और देश तक ने बढ़ोला। तो यूं छुई बातों के दगड़ अब मैं आप लोगों थे किशोरी लाल की आवाज में सुनोले एक सुंदर सी गढ़ोली गीत।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की नगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
2: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे। सो इजी।
3: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। RBI कहता है,
4: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
5: Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Up to 30% scholarships for all girls students. Applications close 29 April. Apply now at upes.ac.in. Future proof your career with UPES Dehradun, India's AI first university. Choose from 100 plus AI integrated programs across engineering, business, law, design, humanities and more. Join 60,000 strong UPES community working with industry giants like Apple, Google and Microsoft. Application close 29 April. Apply now at upes.ac.in.
6: त दगड़ियों भी आप रैबारों का दगड़ सुनना चाहिए। यो सुंदर सी गढ़ोली गीत किशोरी लाल की आवाज़ में। और अब आप सुन लिया विश्व फुटबॉल दिवस पर विशेष फुटबॉल खिलाड़ी प्रशिक्षक श्री दया मोहन लकेड़ा से विनय ध्यानी की बातचीत।
7: श्रोता भाई बंधु, फुटबॉल पूर्व विश्व को सबसे लोकप्रिय खेल छ और आज हम विश्व फुटबॉल दिवस मनाना छुआ। जब फुटबॉल की बात पूरी दुनिया का नहीं छ तो ग्राम जगतन कन के पैथ रहन। आज हमार दगड़ एक फुटबॉल खिलाड़ी, फुटबॉल प्रशिक्षक और फुटबॉल का जन गुरु जो था हम बोलना श्री दया मोहन लखेड़ा जी छन। लखेड़ा जी, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपको।
8: धन्यवाद ध्यानी जी।
7: तो आज एक दिन पर क्या कहना है, कुछ कहीं खेल खेले कहना छो कि जान छो आज?
8: आज तो कौथिक छो अगर देखे जा तो वो खेल जो खेल एक गरीब आदमी खेल चु, आम जनमानस हमारे पहाड़ों खेल चु, वे खेल को पूर्व विश्व भर में कौथी गुण चु। और ये श्री जांद यूनाइटेड नेशन जो हमारे संयुक्त राष्ट्र संस्था चु, वे बहुत बड़ा इनिशिएटिव है। वे दिया कि विश्व का कम से कम 250 से ज्यादा देश ये खेलते खेलना चाहिए। जब इतना ज्यादा देश ये खेलना चाहिए तो खेला ना पूर्व विश्व भर में एक कौथिक मनाया जाए। और 25 मई पूर्व देश भर में विश्व भर में ये खेलते सेलिब्रेट किए जानू छ, लोग कौथिक मनाना चाहिए। और ये गिंदु हमारे गिंदु मेला भी हूं उत्तराखंड में, तो गिंदु जो है जो आम जनमानस खेलते आज।

0: लोग सेलिब्रेट करना चाहिए, खेलना चाहिए।
1: अच्छा लखड़ा जी, आपन बताया कि साहब पहाड़ को खेल भी चाहिए, तो कनमाह मान लियो कुछ अंगलों में वो खिलाड़ी छिन जो था कि आज का दिन पर हम तो याद करण छिन, कितना बड़ा बड़ा खिलाड़ी हुए उत्तराखंड बटे, जरा उनके बारे में बताओ।
0: उत्तराखंड बटे बहुत बड़ा बड़ा खिलाड़ी हुए, रिसेंटली तो अमर देहरादून बटे अनिरुद्ध थापा वो खेल लू, रोहित दानू जो फुटबॉल में खेल लू, ब्लाइंड फुटबॉलर बात कर लो आप तो ब्लाइंड फुटबॉल अमर एक बटी जो सैफ अली रावत ब्लाइंड फुटबॉलर टीम का कैप्टन वो खेल रही है, है ना, गीतिका नेगी वो खेल रही है, तो बहुत चीज। और ओलंपियन की बात किया जाए राम बहादुर छेत्री जो 62 ओलंपिक खेल फुटबॉल में भाग लिया, वो सब लोग से शाम थापा सेबी थापा पुराना खिलाड़ी बहुत खिलाड़ी है जो ये देश का नाम रोशन कर, हमारे प्रदेश बेटी भी खेलना चाहिए लोग।
1: आज की स्थिति क्या है फुटबॉल की उत्तराखंड में, हम देखला दूर पहाड़ बेटे लेके अयोध्या रादून तक क्या हाल देखना चाहिए, बात कुछ इतनी के फिर क्रिकेटक जो चमक दमक जो एक तरफ जाना चाहूँ हम और फुटबॉल पे इधर रह गए।
0: क्रिकेटक चमक दमक हम तो हम लोग खेल खोना ही चाहूँ, मेन कारण क्या कि जो अट्रैक्शन चु ना ये माँ फाइनेंस बहुत ज्यादा इन्वॉल्वमेंट छ, लोगों ते प्राइज बहुत मिलना चाहिए, मैच जो है हमारे जो जो अभी मीडिया चु हुए थे बहुत ज्यादा कवरेज दे वे मुकाबला फुटबॉल में थोड़ा सा क्रेज कम तो छ, लेकिन फिर भी देश हम अगर क्रिकेट के बाद कोई खेल खेले जानू छो तो वो फुटबॉल खेले जानू, फुटबॉल की लोकप्रियता विश्व में तो बहुत ज्यादा छ पर अपने भारत में जो है दूसरे नंबर पर आप मान के चलो।
1: अच्छा आपन एक बात भी बताया कि सस्तु खेल छ बलियो, तो कनमा में तो सस्तु मान लियो एक गेंद छ और बाकी तब खुटा छ
0: सस्तु खेल, ये मानम बनो जो कि हमारे पहाड़ की जो इकोनॉमिक स्थिति जो आर्थिक स्थिति वो बहुत ज्यादा लोगों की अच्छी नहीं है, अब 22 खिलाड़ी जब मैच हो तो 22 खिलाड़ी एक बॉलर खेल दे, अगर आप साधारण साधन से बोल दो 700-800 रुपए आराम से एक बॉल आ जाए और बच्चा वो पैसा भी इकट्ठा कर सकती है अपना ला और छोटे से स्थान हम अपने खेल भी सकते, हाँ जब तक उनको पूरे टैलेंट तक बात की टैलेंट दिखाने का मौका होते टैलेंट दिखाने का मौका करने बहरान पड़ोल स्टेट अमान पड़ल इंटरनेशनल टूर्नामेंट नेशनल टूर्नामेंट खेलना पड़ा, लेकिन अगर जब तक प्रैक्टिस के बाद बच्चा थे अभ्यास करने के बाद तो एक छोटी सी जगह में भी वो बच्चा ये खेल बारीकी सीख सक, और सबसे बड़ी बात कि पहाड़क बच्चा के अंदर दम कम छो वो रोज उकाल और उंदार उन्हीं चढ़नू चाहे उतरनू तो वे अंदर स्टेमिना और स्ट्रेंथ उन्हीं चाहिए, बस सिर्फ टेक्निकल तकनीक रूप से साउंड पूर्ण पड़ल और जब वो तकनीक रूप से साउंड हो जाओ तो गोल हम गोल दे गोल दे गोल दे गोल मार,
1: क्या बात, गोल हो ही गया भाई।
0: हाँ जी
1: आपन तो कह रहे दिया। अच्छा आप अपन बारे में बताओ कि आपन कनमा खेल का प्रति फुटबॉल का प्रति रुचि हुई आपन और क्या क्या उपलब्धि रहे यहाँ पे।
0: पहल में फुटबॉल ही खेलते जाते हैं, दोनों बास्केटबॉल खेलते जाए।
1: अच्छा
0: हाँ बास्केटबॉल खेलते खेलते अचानक मैंने देखा कि बास्केटबॉल को देहरादून में कम क्रेज है या फुटबॉल का क्रेज बहुत है, तो एक बार मैंने फुटबॉल खेलना शुरू किया और उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम हो जाए जो स्कीम हम छात्रावास होने बच्चा सेलेक्ट चुने जाने, चुने जाने। तो वे खुण मिल ट्रायल दे एक बार में वे मेयर वहाँ चैन हुए गए वो और चैन वेग में काशीपुर हॉस्टल रहूँ।
1: अच्छा।
0: 3-4 साल काशीपुर हॉस्टल रहूँ, वे एक बार हमारा हॉस्टल वर्क बेटे शिफ्ट हुए कि हल्द्वानी चल गया, हल्द्वानी में ज़्यादा देर नहीं रुकूँ मुश्किल से 5-6 महीने रुकूँ और मेरी ट्रांसफर अपड़ो जो बनारस एक हब छाए फुटबॉल वक स्पोर्ट हॉस्टल बनारस में यार ट्रांसफर हो गया।
1: अच्छा।
0: और वक बटी मिल जो जो सीनियर नेशनल संतोष ट्रॉफी खेल और वे वक्ता को जो यूपी ऐतिहासिक प्रदर्शन कि यूपी अपने नॉर्थ जोन टॉप कैरिक जो है फाइनल राउंड प्रवेश कर और हमारे बंगाल दगड़ी जो ड्रॉ खेल जो बंगाल
1: फुटबॉल गढ़ चाहे, क्या बात, तो एक बड़ी उपलब्धि छे कि आप राष्ट्रीय स्तर और प्रदेश स्तर पर एक भला खिलाड़ी जने जंदन। प्रशिक्षक का तौर पर संसाधनों का तौर पर क्या मानना छुआ कि क्या अब जनगुरु जो फुटबॉल का छना आप जना लोग वो छिन कि ना स्टेडियम संसाधन अकादमी ये कुछ हमारे जो सरकार छ उनकी क्या क्या योजना ये बच्चा
0: ध्यानी जी संसाधन बहुत वेगे।
1: अच्छा
0: खिलाड़ वाला भी बहुत वेगे, बच्चों के अंदर ना जुनून नहीं दिखे,
1: ओहो
0: सबसे बड़ी कमी है भाई दम खमक है बच्चा आणुच फोन हम लगे या अपने लैपटॉप हम काम करनु ग्राउंड में तो दम खम चढ़ु सांस जो उम और उंद जान चढ़ी जब वो बच्चों तो बोलो कुछ करो इंडोरेंस प्रैक्टिस करो दौड़ने के पड़े स्टेमिना बढ़ाओ बच्चा दौड़ना खुड़े के राजी नहीं और ये गेम दम खमक देम छो पूरा टोटल आपसे कम से कम 90 मिनट हो गेम वेग बाद अगर ड्रॉ भी गया तो फिर आपसे और एक्स्ट्रा टाइम खेलो तो कम से कम 2.5 से 3 घंटे का अगर आपकी प्रैक्टिस निभाई 2.5 से 3 घंटे का आपको ग्राउंड में रहने की आप क्षमता नहीं भेल तो आप गिनत।

0: खेलन,
1: सही बात।
0: आप पाओ मगर गिंदु भी बाल ना और दूसरे छीनिक ले जाओ, जा नहीं नीच लेबे
1: हाँ
0: ले जा, तू ही ले जा बता जो म्यार बसक नहीं। तो
1: हाँ
0: बच्चा जो चु कना कुन राजी नीचे आ जाएगा सबसे बड़ी। अगर बच्चा यखा का दौड़ा भागा कुरी स्टेमिना बनाए स्ट्रेंथ बनाए तो फर्स्ट आला कि नहीं आला बताओ।
1: बिल्कुल। एक फुटबॉलर था कन होने चाहिए, जन आपन बताया कि भाई दमखम तो बहुत जरूरी है। ये के अलावा फुटबॉल में एक चपलता, चतुरता और इन बोले जा कि गति, ये बहुत
0: बिल्कुल
1: मायने रखत। ये के अलावा और कुकु गुण छन कि जो एक फुटबॉल खिलाड़ी था बहुत बड़ो खिलाड़ी बना सकते हैं।
0: सबसे बड़े फुटबॉल खिलाड़ी एक तो अनुशासन होने वाला, वेग प्रैक्टिस रेगुलर होनी चाहिए। भाई तुम खाना छोड़ दो, खाया कि तुम पिछले नहीं जान, लेकिन अगर तुम एक दिन दो दिन प्रैक्टिस छोड़ दिया ना तुम पिछले हो जाओ। तो रेगुलर प्रैक्टिस होनी बहुत जरूरी है। दूसर आप अगर अंदर स्पीड होनी चाहिए, स्टेमिना होनी चाहिए और स्ट्रेंथ होनी चाहिए, है ना। ये तीन चीज़ आप करो क्वालिटी वाल तो आप फुटबॉल में निसंदेह आप अग्नि अग्नि बढ़ ला। और प्लस गेम सेंस, बोले टीम गेम च अकेला गेम तो नहीं चे। अब मेरे पास गेंद आए तो अगर मैं गेंद ही लेके दौड़ रहा तो 22 लोग तो खाली रहा ना भाई। गेंद थे हमते ज़्यादा दौड़ान चाहिए, हम अपने स्टेमिना थे बचा के रखूँ और गेंद थे ज़्यादा दौड़ाऊँ तभी हम ढंग से खेल के बराबर हूं। क्या आज की जय के बराबर बच्चा के पास गेंद आया ना वो सो दो मी ले जाए गोल मार दो, है ना। तो
1: हाँ
0: बिल्कुल भाई तभी तो गेंद एक गेंद दीजिए बिल गेंदक ज्यादा दौड़ने की स्पीड से हमारे कम चे। तो वी थे ज्यादा दौड़ाओ अपने स्टेमिना सेव करे जब वो मिले तब वे थे इन कन्वर्ट कर दो कि ताकि समझ वाले दिया क्या कि क्या कलाकार फुटबॉलर चाहिए।
1: ये फुटबॉल माँ हमने देखी कि साहब अलग अलग जगहों का अलग अलग खिलाड़ी होते हैं, वो क्या क्या छे ना, और गोल कीपर को क्या महत्व छे कि लगे हुए था कुजान कुजान गेंद दबे नीचे कि ना, जबकि सबसे बड़ा काम वही करो। तो जो हमारे जो मैदान छे और उखमा जो पहली पंक्ति में खेलना चन पैथर खेलना चन, वो एक बाबत जरा से हमारा जो नए खिलाड़ी छे या जो आप तो सोना छन कन के समझे लो था।
0: गोल कीपर ये मानो हमारे दादाजी वे गया एक फुटबॉलर का पिछले
1: अच्छा
0: डेटा ची भाई
1: हाँ
0: मेन उद्देश्य तो गोल ही मन चुने
1: गोल
0: जैन
1: जे
0: टीम गोल मार
1: वही
0: तू ही
1: जीते।
0: जीतल, है
1: हाँ
0: ना।
1: हाँ
0: और वो गोल जो मन मुझे गोल थे अगर रोक दिया गोल कीपर तो वैसे सबसे। और दूसरी बात गोल कीपर पिछले बैठे हर मोमेंट देखो मुझ अपनी टीम उत्साह बढ़ानो कि भाई यक पास दे दे ये साइड हम रहे, है ना। तो पहल वे कोऑर्डिनेशन डिफेंस है जो हमारे जो रक्षा पंक्ति छ वेग देखो वे एक बार जो मिडफील्डम खेल दी और वे एक बार फॉरवर्ड राइट आउट लेफ्ट आउट सेंटर फॉरवर्ड। और अब सबसे बड़ी बात है कि टोटल फुटबॉलर का समय आ गया। अब ये नीचे कि भाई मेरी जगह या फिक्स गोल
1: अच्छा
0: कीपर छोड़े तिम लिया
1: हाँ
0: कि पे। अभी कभी कभी इन भी हुंद कि गोल कीपर देखो कि हमारी टीम हरनी वो गोल छोड़ेगा अगले बॉल लेके चल जान भाई
1: ओ हाँ
0: क्या
1: अब
0: कि जाओ। हाँ भाई अब
1: बिल्कुल
0: जब टीम हरनी
1: हाँ
0: क्या हुआ तो तब सब जोर लगा दे दी।
1: बिल्कुल
0: तो ये तो
1: बिल्कुल
0: टोटल फुटबॉलर का टाइम आ गया। हम तो हर प्लेस हम डिफेंस हम खेल में आना चाहो, हमें मध्य पंक्ति में खेलने आना चाहो, हमें फॉरवर्ड भी खेलना आना चाहो, जन जरूरत पड़ जाए उन हमसे खेलना आना चाहो तभी एक टीम सफल हुई।
1: बिल्कुल ठीक बोले आपन के लगे। हमारे भी पुराण समय में सुनी चाहे ना कि वो खिलाड़ी अफार मिड में बहुत सुंदर खेले दे या फ्रंट लाइन में बहुत सुंदर खेले दे या वो गोली बहुत बढ़िया छे, जन क्रिकेट में होना चाहिए ना आजकल ऑलराउंडर चेन
0: बिल्कुल
1: बल
0: बिल्कुल
1: जो सब
0: बिल्कुल
1: कुछ कर दिया था,
0: बिल्कुल
1: तेनी
0: बिल्कुल
1: फुटबॉल में भी छे।
0: बिल्कुल बिल्कुल
1: आने वाले समय में खास करी कि हमारे जो पहाड़ छे जबकि हम ही मनना छो कि जवान दगड़िया कुजाण के बाट हिटना छे, जब कुछ नहीं समझ में आना तो वो नशा का तरफ जाना छे। और जो खेल छ हम तक कहीं ना कहीं यूं व्यसनों से बहुत दूर रख दे, तो
0: बिल्कुल।
1: पहाड़ का परिपेक्ष में फुटबॉल की देन क्या हो सकत वो आप बताएं जरा।
0: फुटबॉल के देन देखो बहुत है। सबसे बड़ी बात है कि बच्चा थे हमसे एंगेज करूँ वेग जो एनर्जी च मैं तो चैनलाइज करना बहुत जरूरी है ना। तो एक खेल एक माध्यम से जय माध्यम के हिसाब से हम एक एनर्जी चैनल कर दूसरे में यार सरकार से भी जो हमारे खेल संघ से उनसे भी कि हम मैक्सिमम का आयोजन करूँ खेलों के। जब आयोजन वाल तो बच्चा घर बैठे निकला मैं खेलों में भाग लेला भाग लेला हूँ तो अपने परफॉर्मेंस पता चल ली कि हम हमारे जो स्टेज वो कन चलनी हम ईदगाह प्रैक्टिस कर हम ये खेलते ढंग से खेल पाना जा हमारे क्या कमी च ये सब चीज़ें। और अब तो हमारे जो उत्तराखंड फुटबॉल एसोसिएशन से पिछले दाम प्रदर्शन बड़े ऐतिहासिक रहा है 38वीं राष्ट्रीय खेल हुई यख और हमारे दूसरे स्थान रहा है। बहुत बड़ी उपलब्धि है कि राष्ट्रीय खेलों में हमारे दूसरे स्थान आना। तो मैं यार निवेदन चाहिए सुबोध उनियाल जी हमारा वन मंत्री जो ये का अध्यक्ष हैं कि कम से कम उत्तराखंड जो राज्य सरकारों को आप लोग खेल चाहिए फुटबॉल खेल चाहिए वे थे बढ़ाना पड़ेगा। मैक्सिमम ग्राउंड उपलब्ध होना चाहिए बच्चों को खुल फुटबॉल वगैरह उपलब्ध हो प्रशिक्षक उपलब्ध हो ताकि बच्चा खेले अपनी जो जो जवानी इन खेलों के माध्यम से लगे और देश से आगे बढ़े और ये नशा जो हो ये से दूर रह अब तक बिजी रखें तो ये सबसे बड़ी उपलब्धि हुई है हमारे।
1: बिल्कुल ठीक बना। एक यू नो सवाल जो कि चुभ दू सवाल जो हम बोलते ना पुराण सवाल जो वो ये हो

0: अपन खेल संघ एसोसिएशन की बात करें और इकमा खिलाड़ियों का चयन था, लेकिन कई बार जो हमारे खिलाड़ी थे निराश हुए पैथर हो जाते। आखिर ये जो चयन च यू संघों पर और एसोसिएशन जो छे ना हमारी उकमा देखे जान के कखे न कखे खिलाड़ियों की योग्यता और वे पर ना बल्कि कई और तरीके से, तो ये जो चयन की प्रक्रिया छे वो कितना पारदर्शी होनी चाहिए और क्या वे से खेलों पर प्रभाव पड़ना चाहिए।
1: ध्यानी जी, सबसे बड़ी समस्या हो गया चयन में बड़ी पारदर्शी हो। और म्यार अपने विचार छ कि चयन होने एक राज्य सरकार तरफ से एक कमेटी बनी चाहनी छ। वो कमेटी इन्वॉल्व वो क्या थे पता ना हुआ। हूँ क्या कि मान लीजिए मैं क्या एसोसिएशन का अध्यक्ष हूँ, सेक्रेटरी हूँ, दुनिया भरा का फोन, मंत्रियों का फोन, अधिकारियों का फोन, के आवर का फोन, के दोस्तों का फोन कि भाई ये तो रख दो। तो जो चयन करता पीछे वो भी दबाव में रहती। तो कम से कम चयन करता हो जो लिस्ट हो जारी नहीं होनी चाहिए, वो गुप्त रहना चाहिए। और बच्चा ट्रायल दिया वे खुली परफॉर्मेंस आ। और दूसर जो भी बच्चा ट्रायल में भाग लेने वे एक पोर्टफोलियो ट्रायल से
0: बिल्कुल
1: पहले
0: हाँ
1: हमारे पास होनी चाहिए कि भाई
0: उपलब्धि।
1: हाँ उपलब्धि। तब तो अब एक दिन का ट्रायल छे, वे ट्रायल में क्या देखना मन,
0: बिल्कुल ठीक
1: कम से
0: बात।
1: कम वे एक उपलब्धि रहा कि पिछले बोल ये रिप्रेजेंट करे यख खेलू ये पोजिशन हम खेल दो। तो हमारे पास एक रिटर्न डॉक्यूमेंट वे एक बात हम वे परफॉर्मेंस ग्राउंड में भी देख सकते, तब जाके कुछ वाला। अदरवाइज जो चारों तरफ वैसे टन टन टन घंटी बजनी रहे सिलेक्टर को पति भी ऊँग गोर दबाव रहे। तो कख न कह कि ये माँ जो जो अच्छा खिलाड़ी से ऊँग दबा अन्याय हुई जान जस्टिस नहीं हो पाता।
0: बिल्कुल ठीक। और ये ही कड़वो सच जो च वही की दगड़ी हम ये बातचीत समाप्त कर दें कि सच में खिलाड़ियों में प्रतिभाओं की कमी नीच अवसर नहीं मिलना छन कतेदा, और कतेदा हमारी जो मंशा च वो भी साफ सुथरी नहीं होंगी। लेकिन वे का चलदा हम कखी न कखी बहुत सी खेल प्रतिभाओं से मुख मोड़ दिन, ये ठीक नहीं च। और आज खेल का ये मौका पर जबकि विश्व फुटबॉल दिवस च लखेड़ा जिन बहुत शानदार बात एक में रखी, हमारा खिलाड़ियों तभी फायदा हुए और आप तभी फुटबॉल के बारे में और ज़्यादा जानकारी प्राप्त हुआ होली इन हम उम्मीद करना। लखेड़ा जी कार्यक्रम में आने का खातिर आपको बहुत बहुत धन्यवाद।
1: धन्यवाद यानी जी।
2: तो दगड़ियों भी आप सुनना चाहिए विश्व फुटबॉल दिवस पर विशेष भेंट वार्ता फुटबॉल खिलाड़ी प्रशिक्षक श्री दया मोहन लखेड़ा से विनय ध्यानी की बातचीत। तो दगड़ियों अब हाथ मिले जोलो जौन सारे के छोड़ और बारू निराला की आवाज में सुनो लो एक सुंदर सी जौन सारे गीत। वैसे पहली यो छोटू सी रैबार।
3: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे
4: सो इजी
5: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
6: जानकार बनिए सतर्क रहिए।

0: तो दगड़ियों भी आप सुनना चाहिए बारू निराला की आवाज़ में सुंदर सी जौनसारी गीत। और दगड़ियों अब थोड़ी देर में आप सुन लिया उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार।
1: वीडियो लाइक करने के पैसे मिलेंगे सो इजी
2: अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए। आरबीआई कहता है
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है। कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा ओ ये सही है बेटा।
5: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in। हर घर सूर्य घर।
6: अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए लीजिए आकाशवाणी का सहयोग और दीजिए उसे बुलंदियों के पंख।
7: आपका बिजनेस लोकल है या राष्ट्रीय, आकाशवाणी देती है उपभोक्ताओं तक पहुंचने का हर विकल्प।
6: और अब तो आप घर दफ्तर या दुकान पर बैठे बैठे कर सकते हैं आकाशवाणी के किसी भी केंद्र के लिए विज्ञापनों की बुकिंग।
7: आकाशवाणी के विभिन्न चैनलों पर विज्ञापन देना सुलभ और सस्ता।
6: बुकिंग है तो संपर्क करें 8700001-4242 पर।
7: 8700001-4242।
8: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून से प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं मुदिता। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण से सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने और भू कानून के प्रभावी पालन को लेकर जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। गंगा दशहरा पर हरिद्वार और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हरिद्वार में 55 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। सुरक्षा के लिए प्रशासन रहा अलर्ट। और विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा उत्तराखंड भ्रमण के बाद टिहरी जिले के विसोन पर्वत पहुंचकर संपन्न हुई। और अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहे। 2 पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए गए। शेष पद्म पुरस्कार समारोह के दूसरे चरण में प्रदान किए जाएंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को राष्ट्रपति ने पद्म भूषण से सम्मानित किया।

0: सम्मान उन्हें जनसेवा, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उनके योगदान के लिए प्रदान किया गया। एक रिपोर्ट।
1: भगत सिंह कोश्यारी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, पत्रकार और राष्ट्रवादी नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने वर्ष 1966 में पिथौरागढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की, जिससे सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा मिला। इसके अलावा उन्होंने विवेकानंद इंटर कॉलेज की स्थापना में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक जीवन में वे उत्तराखंड के गठन के बाद राज्य की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और बाद में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली। वर्ष 2008 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और वर्ष 2014 में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से लोकसभा सांसद बने। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड आंदोलन और राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर पुस्तकें भी लिखी। उनका जीवन शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का उदाहरण माना जाता है। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से पंकज सनवाल खुलबे।
0: प्रदेश में सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने और भू कानून के प्रभावी पालन को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं। उधम सिंह नगर के खटीमा से सभी जिलाधिकारियों के साथ वर्चुअल बैठक करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों और भू कानून उल्लंघन के मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में ग्राम सभाओं की सरकारी भूमि की जांच तेज करने और भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीनों की तत्काल जांच करने के निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जहां भी भू कानून का उल्लंघन पाया जाए, वहां संबंधित भूमि को राज्य सरकार में निहित किया जाए। उन्होंने शत्रु संपत्तियों से अवैध कब्जा हटाने और वक्फ संपत्तियों के ब्यौरे की नियमित जाँच के निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अन्य राज्यों से आए लोगों के शस्त्र लाइसेंस की जांच, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और सत्यापन अभियान में तेजी लाने को कहा। साथ ही अवैध राशन कार्ड बनाकर सरकारी सुविधाओं का लाभ लेने वाले अपात्र लोगों को चिन्हित करने के निर्देश भी दिए गए। बैठक में मुख्यमंत्री ने आगामी मानसून को देखते हुए सभी जिलों में पूर्व तैयारियां समय पर पूरी करने के निर्देश दिए। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत, पेयजल व्यवस्था सुचारू रखने और बिजली कटौती की स्थिति में लोगों को पहले से सूचना देने को कहा। इसके अलावा कृषि और उद्यान विभाग की योजनाओं को किसानों तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने और आपदा प्रभावित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण कार्यों में तेजी लाने के निर्देश भी दिए। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से अमित सुंदरियाल।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा भ्रमण के दौरान विकासखंड कार्यालय परिसर में लगभग 89 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और जन सुविधाओं के विस्तार के लिए लगातार कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने 55 लाख रुपए की लागत से निर्मित दीदी की लाइब्रेरी का लोकार्पण करते हुए कहा कि यह लाइब्रेरी विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं के लिए महत्वपूर्ण केंद्र साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, रोजगार और आधारभूत संरचना के क्षेत्र में समान रूप से कार्य कर रही है ताकि विकास का लाभ समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंच सके। ये समाचार आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं। गंगा दशहरा के अवसर पर आज हरिद्वार और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी समेत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना की। एक रिपोर्ट।
3: प्रशासन के अनुसार आज शाम तक हरिद्वार में लगभग 55 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान किया। रविवार को जहां करीब 27 लाख श्रद्धालुओं ने स्नान किया था, वहीं आज सुबह से ही लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचते रहे। हर की पौड़ी, सुभाष घाट, चंडी घाट, कनघल और अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भीड़ को देखते हुए पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहा। पूरे मेला क्षेत्र को 11 जोन और 27 सेक्टरों में बांटा गया था। घाटों और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया था। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों से निगरानी की गई। वहीं गंगा दशहरा और गंगोत्री धाम में भी श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने को मिला। देश विदेश

0: पहुंचे हजारों श्रद्धालुओं ने भागीरथी तट पर स्नान कर मां गंगा की पूजा अर्चना की। श्रद्धालुओं ने गंगा स्नान के लिए प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं पर संतोष जताया। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष से साक्षी सिंह।
1: विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा लगभग 11,000 किलोमीटर के उत्तराखंड भ्रमण के बाद आज टिहरी जिले के भिलंगाना विकासखंड स्थित विसोन पर्वत पहुंचकर संपन्न हो गई। गंगा दशहरा के अवसर पर श्रद्धालुओं ने डोली यात्रा के साथ विश्वनाथ नदी में स्नान कर आस्था की डुबकी लगाई। इस दौरान हवन, यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया तथा स्थानीय देवी देवताओं का अवतरण भी हुआ। कार्यक्रम के मुख्य संयोजक मंत्री प्रसाद नेथानी ने बताया कि ये डोली यात्रा पिछले 27 वर्षों से उत्तराखंड भ्रमण कर रही है और यात्रा का उद्देश्य विश्व शांति के साथ उत्तराखंड में 1,000 धामों को चिन्हित करना है।
2: विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा की 27वीं वर्ष की यात्रा का समापन है गंगा दशहरा के दिन। इस यात्रा का जो उद्देश्य है पूरे उत्तराखंड को तीर्थाटन प्रदेश बनाना है, तो इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के 13 जिलों में देवादेव संस्कृति की रक्षा हो और जो लोक संस्कृति है उसकी रक्षा हो, जो विश्व का कल्याण हो और साथ ही चार धाम के अलावा पूरे प्रदेश में 1,000 ऐसी शक्तिपीठ हैं जिनको कि धाम का स्वरूप मिलना बहुत जरूरी है। अब तक 27 साल की यात्रा में डोली ने 432 देवालयों को चिन्हित किया पूरे प्रदेश में, तो इस आधार पर इस यात्रा का चलने का मुख्य उद्देश्य है।
1: टिहरी में अमर शहीद श्रीदेव सुमन की 110वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान के साथ मनाई गई। इस अवसर पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की ओर से चंबा विकासखंड के जोल गांव में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने कहा कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन जननायक थे जिन्होंने राजशाही के खिलाफ संघर्ष कर जनता के अधिकारों के लिए आवाज उठाई। टिहरी रियासत को आजाद कराने के लिए श्रीदेव सुमन के 84 दिन तक उपवास रखने के संघर्ष को याद करते हुए श्री उपाध्याय ने कहा कि श्रीदेव सुमन का संघर्ष आज भी युवाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 के पद्म पुरस्कार प्रदान किए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण से सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सरकारी भूमि से अतिक्रमण हटाने और भू कानून के प्रभावी पालन को लेकर जिलाधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। गंगा दशहरा पर हरिद्वार और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। हरिद्वार में 55 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने किया गंगा स्नान। सुरक्षा के लिए प्रशासन रहा अलर्ट। और विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा उत्तराखंड भ्रमण के बाद टिहरी जिले के विसोन पर्वत पहुंचकर संपन्न हुई। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
3: तो दगड़ियों भी आप सुना था उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार। उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचारों का बाद एक बार फिर से ग्राम जगत में आप सबक स्वागत है। मैं दीपक रावत और दगड़ियों जन की हम बार बार बोल दो कि भाई हम एक बड़े छुई बात लगाऊँ तो तूने बड़े आप अगर हुरान चना छना और वहाँ हूँ का खातिर आप हम तक चिट्ठी लिख सकते हो। हमारे चिट्ठी को पता च कार्यक्रम चिट्ठी पत्री ग्राम जगत अनुभाग द्वारा केंद्र निदेशक आकाशवाणी देहरादून पिन 24800001 झट झटागो पता च चिट्ठी ग्राम जगत @gmail.com। तो दगड़ियों फटाफट चिट्ठी लिखाओ और हमते पता चलो कन चलो च ग्राम जगत कार्यक्रम। दगड़ियों जनकी आप आजकल देखने लगे छा कि चार धाम यात्रा चलनी देवभूमि च बद्री केदार यमुनोत्री गंगोत्री धाम छन। दूर दूर बैठे के श्रद्धालु आंदे न और श्रद्धालुओं का बीच में कुछ इन भीड़ भी आ जांद कि जहाँ से कि उत्तराखंड को थोड़ा माहौल खराब भी होच शोरगुल करना छन और घूमने का वास्ता आना छन। आवा स्वागत घूमने का वास्ता भी आवा आ सकते हो। पर मैं बार बार बोलू दू ग्राम जगत कार्यक्रम बटे कि जब भी आप उत्तराखंड में आने तो आप थे पहले उत्तराखंड को संस्कृति संस्कार और विरासत थे समझण पड़ ली। हम कई भी देश में कई भी राज्य में जब जन तो एक आचार विचार संस्कार हम समझण पड़ दिन।

तब हम वो एक जन वक व्यवहार कर दो और तब वक हम देखिए भव्य स्वागत हूं। दगड़ियों पर जन के आप चारों तरफ दिखाना छा कि कुछ अराजक तत्व भी ऐजन दिन जो अनावश्यक घटनाओं थे अंजाम देना छा जो कि बहुत दुखद बात भी चल रही निहून चुनू और हम थे कि देवभूमि थे देवभूमि जन पूजी की वे थे माणिक चरण चरण छ और शालीन और शांत व्यवहार हम आवा उत्तराखंड में आपक स्वागत है देवों धरती है और मेहमान नवाजी तो हमारे उत्तराखंड की शान छ पुराने पुरखों की पहले की विरासत छ कि जो भी मेहमान हमारे उत्तराखंड मान वे को मान सम्मान रखे जांद इज्जत खातिर ढंग से करे जांद पर वो आप थे भी समझन पड़ लो वो व्यवहार अच्छो व्यवहार आप थे भी करण पड़ लो। दगड़ यूं छु बात कि दगड़ अब मैं आप थे ले जाऊ कुमाऊं की छोड़ और दया शंकर फुलारा की आवाज में सुना दो एक सुंदर सी कुमाऊनी गीत।

0: तो दगड़ियों, अभी आप दयाशंकर फुलारा की आवाज़मा सुनना छा यू सुंदर सी कुमाऊन गीत और मठमोटू भगत आगने बढ़नू छ। अब थोड़ी देर में आप सुन लिया उत्तराखंड का प्रादेशिक समाचार गाढ़ोली मा।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों का दगड़ी में शबनम अमगाई। पहले मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 को पद्म पुरस्कार प्रदान करी। उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण बटी सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में सरकारी भूमि बटी अतिक्रमण हटाण और भू कानून का प्रभावी पालन थे लेकी सभी जिलाधिकारियों थे सख्त निर्देश देनी। गंगा दशहरा का अवसर पर आज हरिद्वार और गंगोत्री में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुरक्षा की दृष्टि बटी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात। और विश्वनाथ जगदीशिला डोली यात्रा लगभग 11,000 किलोमीटर का उत्तराखंड भ्रमण का बाद आज टिहरी जिला का विसोन पर्वत पहुंचे की संपन्नवाई। अब समाचार विस्तार बटी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 का पद्म पुरस्कार प्रदान करी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृहमंत्री अमित शाह भी उपस्थित रहनी। द्वीप पद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री सहित 66 अलंकरण आज दिए गए नी। शेष पद्म पुरस्कार समारोह का दूसरा चरण में प्रदान करे जाला। उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र का पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी थे राष्ट्रपति पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित करी। यू सम्मान ऊँ थे जनसेवा, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उनका योगदान का

0: वास्ता प्रदान करेगी आई।
1: भगत सिंह कोश्यारी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, पत्रकार और राष्ट्रवादी नेता का रूप मां पछणे जनन। उन साल 1966 मां पिथौरागढ़ मां सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना करी, जैसे सीमांत क्षेत्र मां शिक्षा थे बढ़ावा मिलू। ये का अलावा उन विवेकानंद इंटर कॉलेज की स्थापना मां भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक जीवन मां उला उत्तराखंड का गठन का बाद राज्य की पहली सरकार मां कैबिनेट मंत्री बनीन और बाद मां मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली। साल 2008 मां वो राज्यसभा को चुने गए ने और साल 2014 मां नैनीताल उद्धम सिंह नगर सीट से लोकसभा सांसद बने ने। उन महाराष्ट्र का राज्यपाल का रूप में भी काम करी। भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड आंदोलन और राज्य का विकास से जुड़े विषयों पर किताब भी लिखी। उनको जीवन, शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण का प्रति समर्पण को उदाहरण मने जाते। आकाशवाणी देहरादून खुणे की समाचार कक्ष बटे की सविता बड़थवाल।
0: प्रदेश में सरकारी भूमि बटी अतिक्रमण हटाण और भू कानून का प्रभावी पालन थे की मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सभी जिलाधिकारियों थे सख्त निर्देश दीनी। खटीमा बटी सभी जिलाधिकारियों का दगड़ी वर्चुअल बैठक कर दी। दाम मुख्यमंत्री ने बोली की सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जों और भू कानून उल्लंघन का मामलों में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करे जाली।
2: बैठक में ग्राम सभाओं की सरकारी भूमि की जांच तेज करण और भू कानून का उल्लंघन कर खरीदी गई जमीनों की तत्काल जांच करने का निर्देश दिए गए। मुख्यमंत्री ने बोली कि जब भी भू कानून का उल्लंघन पाए जाए वक्त संबंधित भूमि थे राज्य सरकार मिले जाए। उन शत्रु संपत्तियों से अवैध कब्जा हटाण और वक्त संपत्ति ब्यौरा की नियमित जाँच करने का निर्देश भी दी। मुख्यमंत्री ने बहरी राज्यों बटे आण वाला लोगों के शस्त्र लाइसेंस की जांच, संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और सत्यापन अभियान में तेज लाने के निर्देश दीन। उला अवैध राशन कार्ड बना के सरकारी सुविधा का लाभ लेने वाला अपात्र लोगों से चिन्हित करना खुणी भी बोली। बैठक में मुख्यमंत्री ने आण वाला मानसून से दिखता हुआ सभी जिलों में पहली बटे तैयारी पूरी करने का निर्देश दीनी। उन टूटिया रस्तों का मरम्मत, पेयजल व्यवस्था से सुचारू रखण और बिजली कटौती की स्थिति में लोगों से पहली बटे सूचना देना खुणी भी बोल। आकाशवाणी देहरादून खुणी समाचार कक्ष बिटी अमित सुंदरियाल।
0: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामीन खटीमा भ्रमण का दौरान विकासखंड कार्यालय परिसर में लगभग 90 लाख रुपए की विभिन्न विकास योजनाओं को लोकार्पण करी। ये दौरान उन बोली कि राज्य सरकार शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और जन सुविधाओं का विस्तार का वास्ता लगातार कार्य करनीचा। मुख्यमंत्री ने 55 लाख रुपए की लागत से निर्मित दीदी की लाइब्रेरी को लोकार्पण कर दी। दाम बोली कि ये लाइब्रेरी विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कना युवाओं का वास्ता महत्वपूर्ण केंद्र साबित होली। मुख्यमंत्री ने बोली कि राज्य सरकार शिक्षा, स्वास्थ्य, खेल, रोजगार और आधारभूत संरचना का क्षेत्र में समान रूप से कार्य करनी चाह ताकि विराम को लाभ समाज का प्रत्येक वर्ग तक पहुंचे जा सको। टिहरी मां अमर शहीद श्रीदेव सुमन की 110वीं जयंती श्रद्धा और सम्मान का दगड़ा मनाई गई। ये अवसर पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की तरफ बटी चंबा विकासखंड का जौल गांव में आयोजित कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और स्थानीय लोगों ने उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण कैरी श्रद्धांजलि अर्पित करी। कार्यक्रम थे संबोधित कर दीदा टिहरी विधायक किशोर उपाध्यायन बोली कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन जन नायक छा जौन राजशाही का खिलाफ संघर्ष करी, जनता का अधिकारों का वास्ता आवाज उठाई। टिहरी रियासत थे आजाद करण का वास्ता श्रीदेव सुमन को 84 दिन तक बर्त रखण को संघर्ष थे याद कैरी की। श्रीदेव उपाध्यायन बोली कि श्रीदेव सुमन को संघर्ष आज भी युवाओं का वास्ता प्रेरणा को स्रोत चा।
3: गढ़वाली में प्रादेशिक समाचारों को यू बुलेटिन आकाशवाणी का देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करे जाणो जे। ताजा समाचारों खुणी आप हमारा सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड थे फॉलो कर सकते हैं। दगड़ा दगड़ी यू समाचार हमारा यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध छिन।
0: गंगा दशहरा का अवसर पर आज हरिद्वार और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ीचा। धर्मनगरी हरिद्वार मां हर की पैड़ी समेत विभिन्न घाटों पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाकर सुख समृद्धि की कामना करी। हर हर गंगे और जय मां गंगे का जय घोष से पूर्व वातावरण भक्तिमय बन गया बनुराई।
2: प्रशासन का मुताबिक शाम बगे तक हरिद्वार में 55 लाख से अधिक श्रद्धालु गंगा स्नान के, रविवार खुणजक 27 लाख श्रद्धालु स्नान कह चाहिए। वकी आज सवेर बिटी लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचना रहे। हर की पैड़ी, सुभाष घाट, चंडीघाट

कनखल और अन्य घाटों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली। भीड़ से दिखता हुआ पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर रही। पूरा मेला क्षेत्र से 11 जोन और 27 सेक्टरों में बटे गए छे। घाटों और प्रमुख मार्गों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करेंगे। सुरक्षा व्यवस्था होनी सीसीटीवी कैमरा और ड्रोन दगड़ी निगरानी करेगी।

0: आकाशवाणी देहरादून खुनी समाचार कक्ष बिटी अमित सुंदरियाल।
1: विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा लगभग 11,000 किलोमीटर का उत्तराखंड भ्रमण का बाद आज टिहरी जिला का भिलंगना विकासखंड स्थित विसोन पर्वत पहुंची की संपन्न हुई गई। गंगा दशहरा का अवसर पर श्रद्धालुओं ने डोली यात्रा का दगड़ी विश्वनाथ नदी मां स्नान कैरी की आस्था की डुबकी लगाई। ये दौरान हवन यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों को आयोजन करे गई और स्थानीय देवी देवताओं को भी अवतरण वाई। कार्यक्रम में मुख्य संयोजक मंत्री प्रसाद नैथानी ने बताया कि ये डोली यात्रा पिछला 27 सालों बटी उत्तराखंड भ्रमण कनीचा उन बोली की यात्रा को उद्देश्य विश्व शांति का दगड़ा दगड़ी उत्तराखंड में 1,000 धामों थे अंकित कनीचा। अब तक 432 धामों को चिन्हीकरण हुई गई और ये को खाका सरकार थे भेजे जालू।
2: विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा की 27वीं वर्ष की यात्रा का समापन गंगा दशहरा के दिन। इस यात्रा का जो उद्देश्य है पूरे उत्तराखंड को तीर्थाटन प्रदेश बनाने का, तो इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के 13 जिलों में देवादेव संस्कृति की रक्षा हो और जो लोक संस्कृति है उसकी रक्षा हो, जो विश्व का कल्याण हो और साथ ही चार धाम के अलावा पूरे प्रदेश में 1,000 ऐसी शक्तियां हैं जिनको भी धाम का स्वरूप मिलना बहुत जरूरी है। अब तक 27 साल की यात्रा में डोली ने 432 देवालयों को चिन्हित किया पूरे प्रदेश में, तो इस आधार पर इस यात्रा का चलने का मुख्य उद्देश्य है।
1: उधम सिंह नगर में ईंधन बचत पर्यावरण संरक्षण और पुलिस कर्मियों की फिटनेस थे बढ़ावा देने का उद्देश्य से पुलिस विभाग थे 50 हाईटेक साइकिल उपलब्ध करेगी। रुद्रपुर पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपति पुलिस कर्मियों थे साइकिल को वितरण करी। SSP अजय गणपति बताई कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का आह्वान पर ईंधन बचाने की दिशा में ये पहल करेगा। उन बताई कि एक निजी बाइक कंपनी का सहयोग बटी मिली यू साइकिल को उपयोग पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय परिसर में विभिन्न सरकारी कार्यों का वास्ता करे जालू। यहां से वाहनों पर निर्भरता कम होली, ईंधन की बचत होली और पर्यावरण संरक्षण थे भी बढ़ावा मिललू। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 का पद्म पुरस्कार प्रदान करनी। उत्तराखंड का पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण बटी सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी प्रदेश में सरकारी भूमि बटी अतिक्रमण हटान और भू कानून का प्रभावी पालन थे लेकी सभी जिलाधिकारियों थे सख्त निर्देश देनी। गंगा दशहरा का अवसर पर आज हरिद्वार और गंगोत्री में श्रद्धालुओं की भारी भीड़, सुरक्षा की दृष्टि बटी अतिरिक्त पुलिस बल तैनात और विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा लगभग 11,000 किलोमीटर का उत्तराखंड भ्रमण का बाद आज टिहरी जिला का विसोन पर्वत पहुंची की संपन्न। यहां का दगड़ी ही गढ़वाली मां प्रादेशिक समाचारों को यू अंक समाप्त हुई। नमस्कार।
3: और यहां के दगड़ में था दीपक राउत है ग्राम जगत भटे आगे देवा। नमस्कार।
4: अभी आप पर्वतीय अंचलों का खास कार्यक्रम ग्राम जगत सुन रहे थे। आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है FM 100.5 MHz पर। अब लीजिए प्रस्तुत है किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत।

किसान साथियों राम राम। FM 100.5 MHz पर इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम कृषि जगत और आज आपके साथ मैं हूं कुलदीप सिंह। साथियों इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको प्रतिदिन खेती बाड़ी से जुड़ी नई नई जानकारियां देते हैं। हमारा प्रयास है कि हमारे किसान साथी नई नई जानकारी हासिल कर अपनी फसल से अच्छी आय प्राप्त करें। इसी के तहत आज हम चर्चा करेंगे चारे वाली फसलों की खेती और खुरपका और मुँहपक्का से पशु सुरक्षा। भेंटवार्ता का विषय रहेगा गर्मियों में कैसे रखें उत्पादन बरकरार। साथियों पशुपालन व्यवसाय में लगभग 70% खर्च पशु आहार पर ही होता है, ऐसे में हर

चारे की खेती करके किसान अपने पशुओं के लिए तो साल भर पौष्टिक चारा प्राप्त कर ही सकते हैं, साथ ही अन्य पशुपालकों को भी चारा उपलब्ध करवाकर कमाई कर सकते हैं। अलग-अलग मौसम में अलग-अलग चारे की बुआई की जा सकती है। बरसात और गर्मी के मौसम में ज्वार, जिसे हम चरी भी कहते हैं, मक्का, बाजरा और दलहनी चारे में जैसे लोबिया आदि की खेती कर सकते हैं, जबकि सर्दी के मौसम में बरसीम और जई की बुआई कर सकते हैं। साथियों, चारे की खेती के लिए दोमट, बलुई दोमट या हल्की काली मिट्टी अच्छी मानी जाती है। बुआई से पहले बीजों को उपचारित जरूर कर लें। अच्छी पैदावार के लिए मिट्टी की जांच भी जरूरी है। साथियों, सामान्य तौर पर खेत की अंतिम जुताई के समय 10 या 15 टन गोबर खाद जरूर मिलाएं। इसके अतिरिक्त प्रति हेक्टेयर 80 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 किलोग्राम फास्फोरस और 25 किलोग्राम पोटाश की मात्रा का भी प्रयोग करें। गर्मियों में 8-10 दिन के अंतराल पर और सर्दियों में 15-20 दिन के अंतराल पर सिंचाई जरूर करें। किसान साथियों, पहली कटाई बुआई के 60 से 70 दिन के बाद करें और उसके बाद 40 से 45 दिन के अंतराल पर कटाई करना शुरू करें फिर। साथियों, अब कार्यक्रम में समय हो चला है आपके मनोरंजन का। सुनते हैं ये लोकगीत, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।

0: खुशहाल।
1: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
2: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
1: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
2: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।
3: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.

0: साथियों, अब आपकी भेंट करवाते हैं डॉक्टर प्रमोद पाठक से। भेंट वार्ता का विषय है गर्मियों में कैसे रखें उत्पादन बरकरार। इस भेंट वार्ता में डॉक्टर प्रमोद पाठक से बातचीत कर रहे हैं हमारे साथी विकास चमोली जी।
1: नमस्कार किसान साथियों, आज हमारे साथ स्टूडियो में हैं डॉक्टर प्रमोद पाठक। आप वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी हैं और आज जो हमारी बातचीत का विषय रहने वाला है वो विषय है डॉक्टर साहब कि गर्मी में कैसे हमारे जो पशुपालक साथी हैं वो अपना उत्पादन बरकरार रख सकते हैं, पशुओं का जो स्वास्थ्य है उसको बरकरार रख सकते हैं। तो सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में।
2: बहुत बहुत धन्यवाद
1: डॉक्टर साहब। जैसे कि अब की बार हम देख रहे हैं तापमान दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है और कई सारे रिकॉर्ड्स की भी बात की जा रही है कि पिछले जो साल रहे हैं उसकी तुलना में गर्मी अब की बार बहुत ज़्यादा पड़ रही है। तो क्या जो ये गर्मी है इंसानों के साथ साथ ही हमारे पशुओं को भी प्रभावित करती है?
2: निश्चित रूप से वस्तुतः जितने भी जीवधारी हैं
1: जी
2: उनकी शरीर संरचना इस प्रकार की है कि वो बाह्य वातावरण के प्रभाव को न्यूनीकृत करने का प्रयास करते हैं ताकि उनके जो शरीर में एक स्टेटस को बना रहे, एक जैसी स्थिति बनी रहे, ऐसी व्यवस्थाएं जीवधारियों के शरीर में रहती हैं
1: जी।
2: तो पशु भी उसके अपवाद नहीं है, पशुओं में भी ऐसा ही है।
1: तो जैसे मनुष्यों की बात करें तो हम तो तरह तरह के उपाय कर लेते हैं, फैंस हम लगा रहे हैं, एसी, कूलर्स, इन सब के नीचे हमें। लेकिन अगर हम पशुओं की बात करें तो जैसे हमारे पशुपालक साथी उनको टीन सेड के नीचे बांध लेते हैं, बाड़े में बांध लेते हैं, ऐसी जगह पर ज़्यादा गर्मी अक्सर देखी जाती है और क्योंकि वहाँ पर जो गोबर है, मलमूत्र, इसके कारण अमोनिया गैस भी बन जाती है। तो ऐसी स्थिति में इन दिनों पशुपालक को क्या करना चाहिए?
2: बिल्कुल, गर्मी के हिसाब से केंद्रित व्यवस्थाओं की बात करें तो जो हमारी पशुशाला है
1: जी
2: उसकी डिज़ाइन इस तरह की होनी चाहिए कि वहाँ पे जो हवा का की आवाजाही है वो नियमित रूप से होती रहे, प्रॉपरली वेंटिलेटेड स्पेसेस हों। इसके अलावा जो सूरज की किरणें जब आती हैं तो जितनी वो सीधे शरीर उनसे संपर्क में आता है उतनी ही ज़्यादा गर्मी आती है, तो इसलिए बीच में हम बाधाएं लगा दें। छत है हमारी, छत गर्मी सर्दी को रोकने का ही तो काम करती है, बरसात को रोकने का ही काम करती है। छत का चयन बड़ी बुद्धिमानी से कर सकते हैं कि आमतौर पे जो पशुशालाएं टिन शेड की होती हैं, टिन शेड की अगर हमारी एस्बेस्टस शेड है या लिंटल है या कच्ची छत है या घास फूस की छत है, तो इन सब की अलग अलग हीट को एब्जॉर्ब, जो सूरज की ऊष्मा है उसको अवशोषित करने की और उसके बाद उसके विसर्जन की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। तो जैसे जो एस्बेस्टस शीट है वो ज़्यादा ठंडी रहती है टीन के मुकाबले, कच्ची छत भी ठंडी रहती है और सबसे अच्छी जो ठंड मिलती है वो मिलती है पेड़ों की छाया में। तो पशुओं के लिए सबसे ज़्यादा अगर किसी के पास खुली जगह है, खुली जगह में हम अगर ऐसे छायादार पेड़ लगाएं जैसे पाकड़ है, पीपल है, इस तरह के जो चौड़ी पत्ती वाले खूब जिनका फोलियज बहुत ज़्यादा होता है, कैनोपी खूब बड़ी होती है, ऐसे पेड़ जो हैं वो बहुत हीट को रोकने में मददगार साबित होते हैं
1: जी। उनके नीचे हम अपने पशुओं को इन दिनों बांध सकते,
2: पशु खुद ही पहुंच जाएंगे। अगर आप बांधेंगे भी नहीं तो धूप से छाया में उसे बिना किसी निर्देश के वो स्वतः स्फूर्त भावना से वहीं पहुंच जाएंगे
1: जी। डॉक्टर साहब, ये तो हमने बाड़े की बात की कि किस तरह का हमारा जो पशुशाला है वो होना चाहिए, इसके अलावा और किस तरह के बचाव पशुपालकों को इन दिनों करने चाहिए?
2: पशुओं के हिसाब से अगर देखें तो जो हल्के रंग के पशु हैं जैसे हमारी गाय आमतौर पर सफेद जो होती हैं उनको गर्मी कम लगती है।
1: अच्छा।
2: और जो काले भैंस है हमारी या भैंसे हैं इनको गर्मी ज्यादा लगती है।
1: अच्छा।
2: तो सबसे जो प्रिय माहौल होता है वो होता है किसी तालाब में स्नान करने का,
1: जो अक्सर भैंसों को देखा
2: भी भैंसे पूरे दिन के तालाब में पड़ी रहती हैं
1: जी।
2: तो ये बिल्कुल नेचुरल कूलिंग का सिस्टम है, लेकिन जहाँ ऐसी स्थिति नहीं है वहाँ हम फब्बारे लगा सकते हैं, दिन में कई बार नहला सकते हैं। जैसे आम तौर पे दोपहरी में तो एक बार पशुओं को नहलाया ही जाता है, लेकिन अगर गर्मी ज़्यादा है तो हम दो या तीन बार भी नहला सकते हैं। जो फव्वारे लगा देते हैं, जैसे NDRI करनाल ने तो एक इस तरह से डिज़ाइन स्पेसिफाई किया है कि जो सिरका वाला हिस्सा है उस पर फव्वारा गिरता रहता है, फुहार गिरती रहती है।
1: अच्छा।
2: इसमें लो प्रेशर और हाई प्रेशर मिस्टर्स भी आते हैं, जिनसे कि चारों ओर जो है फब्बारे की तरह वो फुहार गिरती रहती है, ठंडक होती रहती है। इसके अलावा जो और मॉडिफिकेशंस हैं वो क्षेत्र विशेष के मॉडिफिकेशन होते हैं। जैसे आप देखें कि जो हमारे उच्च पर्वतीय क्षेत्र, वहाँ भी दोपहर में बहुत गर्मी हो जाती है। तो एक हम थंब रूल बना सकते हैं कि जब पीक आवर्स है, दोपहर की खूब गर्मी पड़ रही है, उसमें हम आमतौर पे अपने पशुओं को धूप में जाने से रोक सकते हैं, बाड़े के अंदर रखने की आदत उनकी बना सकते हैं, जिससे कि वो धूप से बचे रहें।
1: जी, इसके अलावा क्या चारे का भी कुछ रोल रहता है डॉक्टर साहब, जैसे हरे चारे की हम बात करते हैं?
2: बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण रोल रहता है। और पशुपालन में तो पशुधन से जो उत्पादन है वो 60 से 70% उसके चारे दाने पे ही निर्भर करता है।
1: जी, तो गर्मियों के हिसाब से कैसा हमने आहार रखना है पशु?
2: गर्मियों में जो रसीली चीज़ें हैं, जैसे हमारे चारे रसीले चारे हैं जिनको हम हरा चारा आमतौर पे कहते हैं, जो रसीले होते हैं, उनकी मात्रा हमें बढ़ा देनी चाहिए।
1: अच्छा,
2: और साथ ही साथ जब हम हरा चारा बढ़ाएंगे तो दूसरी समस्या आती है कि जो हम रातिब देते हैं उसकी मात्रा में भी, और उसके जो मिश्रण है उसमें भी ऐसा परिवर्तन करना पड़ेगा जिससे उसकी जो आवश्यक पोषक तत्व हैं उनकी कमी ना होने पाए।
1: जी,
2: आमतौर पे गर्मी में होता क्या है, पशुओं को दस्त लग जाते हैं, डायरिया भी हो जाता है, तो हमें ऐसी खुराक भी देनी पड़ेगी जिससे कि डायरिया ना हो।
1: जी
2: और डायरिया रोकने के लिए हमें जैसे आमतौर पे जो कृमिनाशी दवाइयाँ हैं, कृमिनाशी दवाइयों का योगदान भी इसमें बढ़ जाता है, क्योंकि जब हमें तनाव होता है गर्मी की वजह से, जो पशु के शरीर में तनाव होता है उससे परजीवी और अन्य जो संक्रामक बीमारियाँ हैं

0: उनकी भी संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो उनकी रोकथाम भी बहुत ज़रूरी हो जाती है। और ख़ास तौर से अगर कोई भी लक्षण जो गर्मी की वजह से किसी भी रोग के लक्षण दिखाई दें, तो तुरंत ही उसके उपचार की बहुत आवश्यकता पड़ती है, और इसमें हमें थोड़ा सजग रहना चाहिए।
1: जी डॉक्टर साहब, जैसे डायरिया के बारे में तो आपने बताया, इसके अलावा गर्मी के कारण और किस तरह की बीमारियां पशुओं में देखी जा सकती हैं?
0: गर्मी खुद एक बीमारी हो जाती है।
1: जी
0: जैसे अगर हम पशुओं की बात करें, इसमें एक मैं छोटी सी चीज़ ये भी बताना चाहूँगा कि गर्मी उतना हानिकारी नहीं है जितना गर्मी और नमी का सम्मिश्रण है। इसके लिए वैज्ञानिकों ने एक इंडेक्स बनाया है, टेम्परेचर ह्यूमिडिटी इंडेक्स। तो गाय भैंस की बात करें तो 68 के नीचे जब तक वो रहता है, तब तक तो पशु को कोई स्ट्रेस नहीं होती। लेकिन जैसे ही 68 के ऊपर, 68-71 होता है, माइल्ड स्ट्रेस हो जाती है।
1: अच्छा
0: टेम्परेचर उसका 102.5 से 103 डिग्री की ओर बढ़ने लगता है। जैसे सामान्य शरीर जो 101.5 होता है या 102.5 तक रहता है, इसके बीच में रहता है। लेकिन जब गर्मी शुरू होती है तो बॉडी पहले तो रेजिस्ट करती है, फिर बॉडी भी तपने लगती है, तो
1: जी
0: टेम्परेचर बढ़ने लगता है। फिर ऐसे ही जब 72 से 79 के बीच में पड़ता है तो बुखार बहुत तेज हो जाता है, 103 से 104 डिग्री का बुखार हो जाता है। ऐसे ही और अगर ज़्यादा गर्मी हो, 80 से 90 पहुँच जाए, तो 104 से 105 डिग्री बुखार हो सकता है। जो उत्पादन है वो बहुत घट जाता है, श्वसन दर जो है बहुत तेज हो जाती है, क्योंकि गर्मी में होता क्या, सांस जल्दी जल्दी लेता है तो ऑक्सीजन कम पहुंच पाती है शरीर में, और उसकी वजह से सारा ड्राफ्ट और तकलीफें शुरू हो जाती हैं।
1: जी
0: जैसे मैं कह रहा था, रीजन स्पेसिफिक मीजर्स भी हैं हमारे, जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं उनमें क्या है कि दोपहर बहुत गर्म हो जाती है, और सुबह से लेके सुबह शाम रात ये सब ठंडी रहती हैं।
1: जी
0: और ऐसे ही चोटी वाला इलाका है वहाँ ठंडा है, और घाटी वाले में गर्म है। तो कुदरत ने ऐसी व्यवस्था की हुई है कि जो उच्च हिमालयी क्षेत्र हैं उन वहाँ पे जो पशु होते हैं खूब बड़े बड़े बाल होते हैं या ऊन होती है,
1: जी
0: उसमें वो ही ट्रैप कर लेते हैं। तो वो एक कंबल की तरह काम करता है, गर्मी में ठंडा रहता है, ठंडे में गर्म रहता है। इस तरह की प्रकृति ने ही उनको ऐसी क्षमताएं दी हुई हैं जिससे कि वो जो गर्मी की प्रचंडता है उसका सामना करने में सक्षम रहते हैं,
1: जी
0: सक्षम हो पाते हैं।
1: डॉक्टर साहब, इसके अलावा पशुपालकों की बात करें तो और किस तरह की सावधानी पशुपालकों को इन दिनों रखनी चाहिए?
0: सावधानी यही है कि अति से हमें बचना है ना, हम सारी चीज़ें ऐसी हों कि जो गर्मी है उसका प्रभाव कम से कम रहे। तो हम जो है जैसे आमतौर पे पंखे लगाते हैं, जो शुष्क इलाके हैं उनमें हम कूलर लगा सकते हैं, जैसे उसमें पानी की बूंदें निकलती रहती हैं और वो हीट को एब्जॉर्ब करके ठंडक पैदा करती रहती हैं।
1: जी
0: और इसके अलावा जहाँ सीधी सीधी सूरज की किरणें आती हैं वहाँ हम पर्दे लगा सकते हैं, पर्दे हल्के रंग के हो सकते हैं, जैसे हरे हो सकते हैं, सफ़ेद हो सकते हैं, इस तरह के उपाय किए जा सकते हैं।
1: जी तो डॉक्टर प्रमोद पाठक, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आज आप हमारे तमाम पशुपालकों तक पहुंचा रहे हैं कि कैसे हम अपने पशुओं को गर्मी से बचा सकते हैं, उत्पादन बरकरार रख सकते हैं। डॉक्टर साहब, इसके अलावा जैसे हम पानी की बात करते हैं, इन दिनों जो पशु हम चराने छोड़ते हैं वो तो अपने इधर उधर पानी पी लेते हैं, जो लेकिन हमारे बंधे हुए पशु हैं उनको एक दिन में हमें कितना पानी देना चाहिए?
0: पानी की जो व्यवस्था है उसके लिए हम लोग कहते हैं एड लिबिटम, कि जब प्यास लगे तो पानी उपलब्ध होना चाहिए।
1: जी
0: जो पशु की प्राकृतिक स्वतंत्रताएं हैं उनका भी तकाजा यही है कि पशु के पास हम पानी का एक स्रोत रखें। जैसे
1: अच्छा
0: बर्तन है पानी का, एक हमने खुली में पानी भर दिया या बाल्टी में पानी लगातार रख दिया, जैसे वो खाली हुआ हमने उसे भर दिया, तो जब भी उसे प्यास लगेगी, जब शरीर को आवश्यकता होगी, प्यास एक तरह से शरीर का ये संकेत है कि अब शरीर को पानी की आवश्यकता है,
1: जी
0: तो उसी समय वो पानी की आपूर्ति अगर हम सुनिश्चित कर पाएँ तो ये ऐसी व्यवस्था हमें रखनी पड़ेगी, जितनी बार वो चाहे उतनी बार पानी पी
1: जी
0: ले।
1: लेकिन अक्सर पशुपालक एक या दो बार ही हमने देखा है कि पशुओं को पानी पिलाते हैं।
0: हाँ वो गलत है, किंतु जो डिज़ाइन है विज्ञान ये कहता है कि हमें पानी पे कोई रोक नहीं करनी चाहिए, क्योंकि पानी ज़्यादा पीने से कोई नुकसान नहीं हुआ। पानी अगर ज़्यादा पी लेगा तो पेशाब के जरिए निकल जाएगा, लेकिन
1: जी
0: पानी का कम होना बहुत खतरनाक हो जाएगा।
1: जी
0: इसलिए पानी की अबाध आपूर्ति सुनिश्चित करना चाहिए पशुपालकों को, जिससे कि पानी से कूलिंग तो होगी होगी, साथ में पूरे शरीर का और जो सिस्टम है वो भी रन पानी पे ही करता है।
1: जी
0: आप खाना ना दें काम चलेगा, पर पानी तो देना ही पड़ेगा।
1: जी निश्चित तौर पे डॉक्टर साहब, इसके अलावा पशुपालकों को अक्सर देखा गया है कि वो शिकायत करते हैं कि जो उत्पादन है वो सर्दियों के मुकाबले गर्मियों में कम हो जाता है।
0: वो अधिकतर वातावरणीय जो तापमान है उसकी वृद्धि के वजह से ही होता है, और अगर हम उसको नियंत्रित कर लेते हैं और खान पान सही रखते हैं तो उत्पादन प्रभावित होगा, पर बहुत कम प्रभावित होगा और हमारा उत्पादन बरकरार रहेगा।
1: जी इसके अलावा जो जैसे नवजात हमारे पशु हैं उनके साथ किस तरह की सावधानी का हमें पालन करना होगा?
0: गर्मी से बचाना ही एक वो है कि बहुत ज़्यादा धूप से बचाएंगे, अन्यथा तो प्रकृति ने उन्हें ऐसी व्यवस्था दी हुई है कि बहुत ज़्यादा गर्मी छोटे बच्चों को लगती भी नहीं है। हालांकि वो ससेप्टिबल तो होते हैं, गर्मी से दिक्कतें तो उन्हें हो सकती हैं लेकिन महसूस नहीं होता।
1: अच्छा
0: तो गर्मी से बचाव ही एक सावधानी है, और कोई विशेष सावधानी ऐसी नहीं रखनी है।
1: जी, तो डॉक्टर प्रमोद पाठक, आज आप आकाशवाणी देहरादून के स्टूडियो में आए और गर्मी से अपने पशुओं को कैसे हमारे पशुपालक साथी बचाएं, कैसे हम अपना उत्पादन बरकरार रख सकते हैं, इस विषय पर बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपने हमारे तमाम पशुपालकों के साथ साझा की। स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।
2: साथियों, अभी आपने सुनी ये भेंट वार्ता। विषय था गर्मियों में कैसे रखें उत्पादन बरकरार। इस भेंट वार्ता में डॉक्टर प्रमोद पाठक से बातचीत कर रहे थे हमारे साथी विकास चमोली जी। किसान साथियों, खुरपका और मुंहपका रोग पशुओं में होने वाला एक संक्रामक रोग है। खासकर दुधारू पशु में ये बीमारी अधिक नुकसानदायक होती है। ये रोग एक सूक्ष्म विषाणु से तेजी से फैलने वाला रोग है। कुछ समय के बाद ही ये रोग एक झुंड या पूरे गांव के अधिकतर पशुओं को संक्रमित कर सकता है। इसमें तेज बुखार जानलेवा होता है। ये रोग किसी भी मौसम में पशुओं को हो सकता है, लेकिन गर्मियों और बरसात के मौसम में ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। ऐसे में पशुपालकों को अपने सभी पशु जो 4 महीने से ऊपर के हैं उनको टीका लगवाएं। प्राथमिक टीकाकरण के 4 सप्ताह के बाद बूस्टर खुराक जरूर दें। प्रत्येक 6 महीने में नियमित टीकाकरण जरूर करवाएं। इस उपचार के बाद भी आपका कोई पशु संक्रमित हो जाता है तो सबसे पहले निकटतम सरकारी पशु चिकित्सा अधिकारी को सूचित करें। साथियों, प्रभावित पशुओं में रोग का पता लगने पर तुरंत उसे अन्य पशुओं से अलग रखें। साथियों, इस रोग का उपचार संभव नहीं हो पाया है, इसलिए रोकथाम और जागरूकता सबसे कारगर नियंत्रण का उपाय है। सभी किसान भाइयों से अपील है कि इस रोग के प्रति जागरूक हों और अपने पशुधन को बचाएं। साथियों, अब कार्यक्रम में समय हो चला है आपके मनोरंजन का। सुनते हैं ये लोकगीत, लेकिन उससे पहले सुनते हैं ये संदेश।
3: डोंट कॉम्प्रोमाइज एंड गिव अप ऑन योर ड्रीम ऑफ जॉइनिंग उत्तराखंड हाईएस्ट रैंक्ड यूनिवर्सिटी। अवेल 25% डोमिसाइल स्कॉलरशिप एंड जॉइन UPES। एप्लीकेशंस क्लोज ऑन 30th मई। टू स्टार्ट योर UPES जर्नी अप्लाई नाउ एट UPES.ac.in।

0: प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी के कुशल नेतृत्व में उत्तराखंड ने स्थापित किए सुशासन की नई कीर्तिमान।
1: पारदर्शिता एवं जन कल्याण को प्राथमिकता देते हुए उत्तराखंड में लागू की गई समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, भू कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, अल्पसंख्यक शिक्षा अधिनियम 2025 के माध्यम से प्रशासनिक व्यवस्था को किया गया और भी मजबूत।
0: मानस खंड मंदिर माला मिशन, श्री केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम के पुनर्विकास एवं शीतकालीन यात्रा जैसी पहलुओं से पर्यटकों की संख्या बढ़कर पहुंची 6 करोड़ के पार।
1: उत्तराखंड सरकार का ये सफर प्रशस्त करता राज्य के विकास की डगर। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग उत्तराखंड द्वारा जनहित में जारी।

किसान साथियों, कार्यक्रम में बस आज इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको हमारा कार्यक्रम कैसा लगा उसके बारे में जरूर बताएं। और हाँ, यदि आपके पास खेतीबाड़ी से संबंधित कोई जानकारी है तो आप हमें पत्र जरूर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम कृषि जगत, द्वारा निदेशक, आकाशवाणी देहरादून, पिन 2480001। साथियों, आप हमें मेल भी कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी है जगतकृषि@gmail.com। अब कुलदीप सिंह को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: किसान साथियों का दैनिक कार्यक्रम कृषि जगत प्रस्तुत किया जा रहा था आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से FM 100.5 MHz पर। हमारे स्टूडियो की घड़ी में 7:30 हो चुके हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है कुमाऊनी प्रादेशिक समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी देहरादून बटी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों अगर मी ज्योति जोशी। पहली मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 पद्म पुरस्कार प्रदान करी। उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल प्रदेश में सरकारी जमीन बट्टी अतिक्रमण हटुणक और भू कानूनक प्रभावी पालन को लिबेर सभी जिलाधिकारियों को सख्त आज्ञा दी। गंगा दशहराक मौक पर आज हरिद्वार और गंगोत्री में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुरक्षा की दृष्टि जात पुलिस बल लगी। और विश्वनाथ जगदीशिला टोली यात्रा लगभग 11,000 किलोमीटर उत्तराखंड भ्रमणक बाद आज टिहरी जिला विसोन पर्वत पुजबेर संपन्न। अब समाचार विस्तार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 का पद्म पुरस्कार प्रदान करी। समारोह में उपराष्ट्रपति सीपी राधा कृष्णन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह शामिल भई। द्विपद्म विभूषण, 6 पद्म भूषण और 58 पद्मश्री दगड़े 66 अलंकरण आज दी गई। बाकी पद्म पुरस्कार समारोह दोहर चरण में दी जाल। उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को राष्ट्रपति पद्म भूषण सम्मान सम्मानित करो। यो सम्मान उनको जनसेवा, शिक्षा और सार्वजनिक जीवन में उनर योगदान के लिए प्रदान करेगी। एक रिपोर्ट।
2: भगत सिंह कोश्यारी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, पत्रकार और राष्ट्रवादी नेता के रूप में पछाणी जानल। उनल साल 1966 में पिथौरगढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना करी, जेल सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा के बढ़ावा मिलो। ये के अलावा उनल विवेकानंद इंटर कॉलेज की स्थापना में ले महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक जीवन में वो उत्तराखंड गठन के बाद राज्य पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री बनी और बाद में मुख्यमंत्री

0: जिम्मेदारी ले संभाली। साल 2008 में राज्यसभा के लिए चुनी गईं और वर्ष 2014 में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट बठे लोकसभा सांसद बढ़ीं। उनल महाराष्ट्र के राज्यपाल रूप में ले काम करो। भगत सिंह कोश्यारी उत्तराखंड आंदोलन और राज्य के विकास से जुड़ी विषयों पर किताब ले लिखी। उनर जीवन शिक्षा समाज सेवा राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का उदाहरण मानी जा। आकाशवाणी देहरादून के लिए समाचार कक्ष बैठे ममता पांडे।
1: प्रदेश में सरकारी भूमि बटी अतिक्रमण हटुणक और भू कानूनक प्रभावी पालन को लिबेर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल सभी जिलाधिकारियों को सख्त आज्ञा दी राखी। खटीमा बटी सभी जिलाधिकारियों दगड़ वर्चुअल बैठक करबेर मुख्यमंत्री को कि सरकारी जमीनों में अवैध कब्जों और भू कानून तोड़नक मामलों में झट कार्यवाही सुनिश्चित की जाचे। एक रिपोर्ट।
2: बैठक में ग्राम सभाओं के सरकारी जमीन की जांच तेज करन और भू कानून का तोड़ बेर खरीदे गए जमीनों को तुरंत जांच करने के निर्देश दिए गए छन। मुख्यमंत्री को कि जान ले भू कानून को तोड़न पाई जल व संबंधित जमीन को राज्य सरकार में निहित की जल। उन्होंने शत्रु संपत्तियों थे अवैध कब्जे हटान और वफ संपत्तियों के ब्यौरे को रोजाना जाँच करने के लिए निर्देश दिए छन। मुख्यमंत्री अन्य राज्यों में आई लोगों को शस्त्र लाइसेंस तक जाँच संदिग्ध गतिविधियों पर निगरानी और सत्यापन अभियान में तेजी लान को यक दगड़े अवैध राशन कार्ड बनाए बेर सरकारी सुविधाओं को लाभ लेने वाला पात्र लोगों को चयन करने के लिए निर्देश दिए छन। बैठक में मुख्यमंत्री आगामी मानसून को देख बेर सभी जिलों में पहली भी तैयारियां समय पर पूर्ण करने के निर्देश दी। उन्होंने क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत पेयजल व्यवस्था सुचारू रखन और बिजली कटौती की स्थिति में लोगों को पहली भी सूचना देने को कही छू। आकाशवाणी देहरादून जी समाचार कक्ष में रेणु प्रीति।
1: मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल खटीमा भ्रमणक वक्त विकास खंड कार्यालय परिसर में लगभग 89 लाख डबलों अलग अलग विकास योजनाओं का लोकार्पण करो। वो वक्त उन्होंने कहा कि राज्य सरकार शिक्षा युवा सशक्तिकरण और लोगों की सुविधाओं को बनूनक लीजी लगातार काम करने। मुख्यमंत्री 55 लाख डबलों की लागत थे बड़ी दीदी की लाइब्रेरी लोकार्पण कर बिर कहा कि यो लाइब्रेरी विद्यार्थियों और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करण वाल नांतिनों के लिए जरूरी केंद्र साबित होली। मुख्यमंत्री कहा कि राज्य सरकार शिक्षा स्वास्थ्य खेल रोजगार और आधारभूत संरचना क्षेत्र में समान रूपल काम करने जैल विकासक लाभ समाजक हर वर्ग तले पूछ सको। टिहरी में अमर शहीद श्रीदेव सुमन की 110वीं जयंती श्रद्धा और सम्मानक दगड़ मनाई गई। यो मौक पर श्रीदेव सुमन विश्वविद्यालय की ओर बटी चंबा विकास खंडक जोल गांव में वही कार्यक्रम में जनप्रतिनिधियों और वहां के स्थानीय लोगों को उनर प्रतिमा में मालहालवेर श्रद्धांजलि अर्पित करी। कार्यक्रम को संबोधित करवे टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय को कि अमर शहीद श्रीदेव सुमन जननायक छी जनूल राजशाही खिलाफ संघर्ष कर लोगों के अधिकारों के लिए आवाज उठे। टिहरी रियासत को आजाद करुणा के लिए श्रीदेव सुमनक 84 दिन तले बर्त राखण और उनर संघर्ष को याद करवेर श्री उपाध्याय को कि श्रीदेव सुमनक संघर्ष आज ले युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत छू।
3: कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की यो बुलेटिन आकाशवाणी देहरादून केंद्र बटी प्रसारित करी जा रो। ताजा समाचारों लीजिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड के फॉलो कर सकता। यह कदगर यू समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर ले उपलब्ध छी।
1: गंगा दशहरा के मौके पर आज हरिद्वार और गंगोत्री धाम में श्रद्धालुओं की खूब भीड़ लगी रहे। धर्मनगरी हरिद्वार में हर की पैड़ी दगड़े अलग अलग घाटों में श्रद्धालुओं आस्था एक डुबकी लगे बेर सुख समृद्धि की कामना की। हर हर गंगे और जय माँ गंगे जय घोषल पूरा वातावरण भक्ति भय बनी रहो। एक रिपोर्ट।
0: प्रशासन के अनुसार ब्याह जाने हरिद्वार में लगभग 55 लाख है जात श्रद्धालुओं गंगा नहाए। इतवार के जा करीब 27 लाख श्रद्धालुओं गंगा नाचे। वहीं आज रक्त बटे ही लाखों श्रद्धालु हरिद्वार पूजे रही। हर की पैड़ी सुभाष घाट चंडी घाट कनखल और अन्य जगहों पर ले श्रद्धालुओं भारी भीड़ देखने के लिए मिली। भीड़ के देखभेर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर रहे और पूर्म्याल प्रशासन के करीब 11 जोन और 27 सेक्टरों में बांटी गयो। घाट और प्रमुख बाटों पर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात करी गयो छी। सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीसीटीवी और ड्रोन कैमरों निगरानी करी गयी। वहीं गंगा दशहरा पर गंगोत्री धाम में ले श्रद्धा और आस्था का अद्भुत संगम देखने के लिए मिलो। देश विदेश बटे पूजिन हजारों श्रद्धालुओं भागीरथी तट पर नैबेर गंगा पूज अर्चना करी। गंगोत्री मंदिर और घाटों पर धार्मिक अनुष्ठान, भजन कीर्तन और गंगा आरती का आयोजन करी गयो छे। जैल पुर क्षेत्र भक्तिमय माहौल में डूबी रहो। श्रद्धालुओं गंगा नानक लीजिए प्रशासनक ओर बैठे की गई सारी व्यवस्थाओं पर संतोष जताए। आकाशवाणी देहरादून लीजिए समाचार कक्ष बैठे ममता पांडे।
1: हरिद्वार में गंगा स्नान आई ले चलते रुणो और भक्त लगातार आस्था की डुबकी लगुणक लीजिए अलग अलग घाटों में पूजन नागरी। विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा लगभग 11,000 किलोमीटरक उत्तराखंड भ्रमणक बाद आज टिहरी जिला का भिलंगना विकासखंड स्थित बिसोन पर्वत पुजबेर सम्पन्न है गे। गंगा दशहराक मौक पर श्रद्धालु डोली यात्राक दगड़े विश्वनाथ नदी में नैबेर आस्थाक डुबकी लगे। यो बखत हवन यज्ञ और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करी गयो और स्थानीय देवी द्यापतल्य अवतरित भई। कार्यक्रमक मुख्य संयोजक मंत्री प्रसाद नेथानील बता कि यो डोली यात्रा पिछाड़ी 27 वर्षों बटी उत्तराखंड भ्रमण करणे। उन्होंने कहा कि यात्रा का उद्देश्य विश्व शांति दगड़ दगड़े उत्तराखंड में 1,000 धामों को चिन्हित करण छू और एल ताले 432 धामों का चिन्हीकरण कर हेलो। यह योजना सरकार को भेजी जाली।
4: विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा की जो 27वीं वर्ष की यात्रा का समापन अवसर है गंगा दशहरा के दिन, इस यात्रा का जो उद्देश्य है पूरे उत्तराखंड को तीर्थाटन प्रदेश बनाने का, तो इस यात्रा के माध्यम से पूरे प्रदेश के 13 जिलों में देवादेव संस्कृति की रक्षा हो और जो लोक संस्कृति है उसकी रक्षा हो, जो विश्व का कल्याण हो और साथ ही चार धाम के अलावा पूरे प्रदेश में 1,000 ऐसी शक्तिपीठ हैं जिनको कि धाम का स्वरूप मिलना बहुत जरूरी है। अब तक 27 साल की यात्रा में डोली ने 432 देवालयों को चिन्हित किया पूरे प्रदेश में, तो इस आधार पर इस यात्रा का चलने का मुख्य उद्देश्य है।
1: उधम सिंह नगर में ईंधन बचत, पर्यावरण संरक्षण और पुलिस कर्मियों की सेहत को बढ़ावा देने का उद्देश्य पुलिस विभाग को 50 हाईटेक साइकिलें उपलब्ध कराई गईं। रुद्रपुर पुलिस लाइन में भई कार्यक्रम वक्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अजय गणपतिल पुलिस कर्मियों को साइकिल बांटी। SSP अजय गणपतिल बता कि प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री कोण पर ईंधन बचाने की दिशा में यो शुरुआत की जा रही। उन्होंने बता कि एक निजी बाइक कंपनी के सहयोग मिली यो साइकिलों का उपयोग पुलिस लाइन और पुलिस कार्यालय परिसर में अलग अलग सरकारी कामों के लिए करी जाल। यह वाहनों में निर्भरता कम होली, ईंधन की बचत होली और पर्यावरण संरक्षण को ले बढ़ावा मिलल। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज राष्ट्रपति भवन में वर्ष 2026 का पद्म पुरस्कार प्रदान करी। उत्तराखंड पूर्व मुख्यमंत्री भगत सिंह कोश्यारी पद्म भूषण सम्मानित। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामिल प्रदेश में सरकारी जमीन बटी अतिक्रमण हटूणा और भू कानूनक प्रभावी पालन को लिबेर सभी जिलाधिकारियों को सख्त आज्ञा दी। गंगा दशहरा के मौके पर आज हरिद्वार और गंगोत्री में श्रद्धालुओं की भारी भीड़। सुरक्षा की दृष्टि ज्यादा पुलिस बल लगी और विश्वनाथ जगदीश शिला डोली यात्रा लगभग 11,000 किलोमीटर उत्तराखंड भ्रमण के बाद आज टिहरी जिला के बिसोन पर्वत पुजबेर सम्पन्न। यह कदगड़ी कुमाऊनी में प्रादेशिक समाचारों की अंक समाप्त हूँ। नमस्कार।
5: FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। अब श्रोताओं, आपका मनोरंजन करवाते हैं कुछ सुगम और मधुर गीतों से।

जी हाँ, लता मंगेशकर की मखमली आवाज़ में हसरत जयपुरी और SH बिहारी के लिखे गीत को संगीत से संवारा था शंकर जयकिशन ने। फिल्म का नाम था पगला कहीं का। अब आइए श्रोताओं, आपको सुनवाते हैं लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में हरियाली और रास्ता फिल्म से ये अगला गीत। गीत रचना शैलेंद्र की है और इसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का ये जो सफर है ना, अभी यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 MHz पर हम आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से बोल रहे हैं। 7:50 हुए हैं। RNU देहरादून की प्रस्तुति में अब लीजिए पेश है विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण।
1: नमस्कार श्रोताओं, स्वागत है आपका राज्य की समसामयिक घटनाओं पर आधारित विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण में। आज के कार्यक्रम में जानेंगे प्रदेश की महत्वपूर्ण गतिविधियों, जनहित के मुद्दों और विकास से जुड़ी ताजा जानकारी के बारे में। आपके साथ मैं पंकज सनवाल खुलबे। श्रोताओं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त ज्ञानेश कुमार 23 मई को उत्तरकाशी जिले के 2 दिवसीय दौरे पर रहे। उन्होंने भारत चीन सीमा से सटे हर्षिल और आसपास के मतदान केंद्रों का निरीक्षण किया। उन्होंने हर्षिल में स्थापित पोलिंग बूथ का निरीक्षण कर विशेष गहन पुनरीक्षण SIR कार्यों की जानकारी ली। इस दौरान उन्होंने BLO मिंटू देवी से मतदाता सूची पुनरीक्षण, मैपिंग और स्मार्टफोन के माध्यम से किए जा रहे कार्यों के बारे में भी जानकारी प्राप्त की। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी का 19 मई को निधन हो गया। वे लंबे समय से बीमार थे और देहरादून के एक निजी अस्पताल में उनका उपचार चल रहा था। वे केंद्र सरकार में सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्री रहे और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने 2 कार्यकालों में सेवा दी। उन्होंने उत्तराखंड के विकास, सुशासन, पारदर्शिता और ईमानदार कार्यशैली की मजबूत पहचान बनाई और प्रदेश हित में अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लेकर विकास को नई दिशा प्रदान की। देश के ग्रामीण क्षेत्रों को विकास और रोजगार की नई दिशा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने VBG रामजी कानून की अधिसूचना जारी कर दी है। ये योजना आगामी 1 जुलाई से पूरे देश में लागू होगी। नया कानून मनरेगा का स्थान लेगा। सरकार ने विकसित भारत जी रामजी अधिनियम 2025 के तहत व्यापक जन परामर्श के लिए मसौदा नियम

प्रकाशित किए हैं। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने कहा कि कोई भी व्यक्ति, हितधारक, संगठन या संस्था 21 जून तक मसौदा नियमों पर आपत्ति या सुझाव प्रस्तुत कर सकते हैं। विकसित भारत की रामजी एक्ट ने 20 साल पुराने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 की जगह ली है। नए कानून के तहत अब एक वित्तीय वर्ष में रोजगार की गारंटी 100 दिनों से बढ़कर 125 दिन कर दी गई है। मंत्रालय ने बताया कि मसौदा नियमों को जनता से सुझाव और राय लेने के लिए सार्वजनिक किया गया है। इनमें संक्रमण प्रावधान नियम, राष्ट्रीय स्तर संचालन समिति नियम, केंद्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी परिषद नियम, प्रशासनिक खर्च नियम और शिकायत निवारण नियम शामिल हैं। उधम सिंह नगर के मुख्य विकास अधिकारी दिवेश शासनी ने बताया कि नई योजना को 4 श्रेणियों और 28 उप श्रेणियों में विभाजित किया गया है, जिनमें 318 प्रकार के कार्य शामिल किए गए हैं, जबकि मनरेगा में 266 प्रकार के कार्य शामिल थे। योजना के अंतर्गत जल सुरक्षा और संरक्षण, ग्रामीण अवसंरचना, आजीविका संवर्धन व जलवायु परिवर्तन और प्रतिकूल मौसम से निपटने से जुड़े कार्यों को प्राथमिकता दी गई है। सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में विद्यालय के पूर्व छात्र और शौर्य चक्र से सम्मानित शहीद मेजर चंद्रशेखर मिश्रा की प्रतिमा का अनावरण किया गया। मेजर चंद्रशेखर मिश्रा ने वर्ष 1973 में सैनिक स्कूल घोड़ाखाल में प्रवेश लिया था और वर्ष 1981 में राष्ट्रीय रक्षा अकादमी में चयनित हुए। इसके बाद वे भारतीय सेना की 14 जाट रेजिमेंट में शामिल हुए। वर्ष 1996 में जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के खिलाफ अभियान के दौरान उन्होंने असाधारण वीरता का परिचय देते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। उनके साहस और बलिदान के लिए उन्हें मरणोपरांत शौर्य चक्र से सम्मानित किया गया। इस अवसर पर विद्यालय परिवार, ओल्ड बॉयज एसोसिएशन, सैन्य अधिकारी और शहीद के परिजन मौजूद रहे। लोक भवन गोल्फ कोर्स नैनीताल में 21वां गवर्नर्स कप गोल्फ टूर्नामेंट आयोजित किया गया। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह ने टी ऑफ कर प्रतियोगिता का शुभारंभ किया। 3 दिनों तक चली इस प्रतियोगिता में विभिन्न श्रेणियों के 179 गोल्फर ने भाग लिया। इस वर्ष की प्रतियोगिता प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री स्वर्गीय मेजर जनरल भुवन चंद खंडूरी की स्मृति को समर्पित की गई। शुभारंभ अवसर पर राज्यपाल ने कहा कि गोल्फ धैर्य, अनुशासन और मानसिक संतुलन विकसित करने वाला खेल है। 19 अप्रैल से शुरू हुई चारधाम यात्रा ने रफ्तार पकड़ ली है और लाखों श्रद्धालु धामों के दर्शन के लिए उत्तराखंड पहुंच रहे हैं। 30 दिनों में 557,000 से अधिक तीर्थयात्री बद्री विशाल के दर्शन कर चुके हैं। पिथौरागढ़ जिले की प्रसिद्ध आदि कैलाश और ओम पर्वत यात्रा में अब तक देशभर के 13,000 से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं। बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन की ओर से प्रतिदिन 1,000 से अधिक इनर लाइन परमिट जारी किए जा रहे हैं। चमोली जिले में स्थित विश्व धरोहर फूलों की घाटी 1 जून से पर्यटकों के लिए खोल दी जाएगी। फूलों की घाटी को जोड़ने वाले पैदल मार्ग को भी नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क प्रशासन ने सुचारू कर दिया है। इस बार घाटी की सैर के दौरान पर्यटकों को मार्ग में हिमखंड के दीदार होंगे। गौरतलब है कि फूलों की घाटी प्रत्येक वर्ष 1 जून से 31 अक्टूबर तक पर्यटकों के लिए खुली रहती है। यहाँ जैव विविधता के सुंदर नजारे देखने को मिलते हैं। यहाँ दुर्लभ वन्य जीवों, हिमालयन थार, कस्तूरी मृग, हिम तेंदुआ सहित अन्य प्राकृतिक वास स्थल भी हैं। इन दिनों घाटी के फूलों के खिलने का सिलसिला शुरू हो गया है और विभिन्न प्रजाति के फूल रंग बिरंगी आभा बिखेर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 23 मई को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन 2026 के काउंटडाउन रन का फ्लैग ऑफ किया। इस दौरान उन्होंने मशाल प्रज्वलित कर प्रतिभागियों के साथ प्रतीकात्मक दौड़ में भी हिस्सा लिया। मुख्यमंत्री ने आगामी 31 मई को आयोजित होने वाली नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन के शुभंकर कयालू हिम तेंदुआ का भी अनावरण किया। इस आयोजन के लिए देश के 27 राज्यों और 2 अन्य देशों से 900 से अधिक प्रतिभागियों ने पंजीकरण कराया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि नीति एक्सट्रीम अल्ट्रा रन सीमांत क्षेत्रों में नई ऊर्जा, नए अवसर और नए

0: को विभिन्न शासकीय कार्यालयों का शैक्षिक भ्रमण कराया गया और महिला प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संवाद का अवसर भी मिला। इस दौरान छात्राओं ने प्रशासनिक कार्य प्रणाली को करीब से समझा और करियर से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां प्राप्त की। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री व महाराष्ट्र के पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज उन्हें नई दिल्ली में सम्मानित किया। श्री कोश्यारी को ये पुरस्कार शिक्षा, समाज सेवा, राजनीति और राष्ट्र निर्माण में उनके दीर्घ योगदान के लिए दिया जा रहा है। भगत सिंह कोश्यारी सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षाविद, पत्रकार और राष्ट्रवादी नेता के रूप में पहचाने जाते हैं। उन्होंने वर्ष 1966 में पिथौरागढ़ में सरस्वती शिशु मंदिर की स्थापना की, जिसमें सीमांत क्षेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा मिला। इसके अलावा उन्होंने विवेकानंद इंटर कॉलेज की स्थापना में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजनीतिक जीवन में वे उत्तराखंड के गठन के बाद राज्य की पहली सरकार में कैबिनेट मंत्री बने और बाद में मुख्यमंत्री पद की जिम्मेदारी भी संभाली। वर्ष 2008 में वे राज्यसभा के लिए चुने गए और वर्ष 2014 में नैनीताल उधम सिंह नगर सीट से लोकसभा सांसद बने। उन्होंने महाराष्ट्र के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया। भगत सिंह कोश्यारी ने उत्तराखंड आंदोलन और राज्य के विकास से जुड़े विषयों पर पुस्तकें भी लिखी। उनका जीवन शिक्षा, समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण के प्रति समर्पण का उदाहरण माना जाता है। इसी के साथ हमारा आज का ये विशेष कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।
1: आरएनयू देहरादून की प्रस्तुति में अभी आप सुन रहे थे विशेष कार्यक्रम ज्ञान दर्पण। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। रात्रि के 8 बजे हैं। अब लीजिए प्रस्तुत है हिंदी वार्ता, जिसके अंतर्गत आज हम आपको सुनवा रहे हैं कामकाजी महिलाओं की चुनौतियां और सफलताएं विषय पर वार्ता। वार्ताकार हैं गरिमा डिमरे।
2: भारतीय समाज में नारी को सदैव एक विशेष स्थान प्राप्त रहा है। कामकाजी महिलाएं वे होती हैं जो परिवार की देखभाल के साथ साथ आर्थिक रूप से भी योगदान देती हैं। वे शिक्षिका, डॉक्टर, इंजीनियर, पुलिस अधिकारी, उद्यमी, मजदूर या किसी भी अन्य पेशे से जुड़ी हो सकती हैं। उनकी मेहनत न केवल परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करती है, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। एक समय था जब महिलाओं को केवल घर की चार दीवारी तक सीमित माना जाता था, परंतु आज समय बदल चुका है। शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता की दिशा में कामकाजी महिलाओं ने उल्लेखनीय प्रगति की है। फिर भी इस यात्रा में उन्हें अनेक सामाजिक, मानसिक और पारिवारिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आइए अब हम बात करते हैं कामकाजी महिलाओं के समक्ष सामाजिक चुनौतियां कौन कौन सी होती हैं। भारतीय समाज में महिलाओं की भूमिका सदैव ही महत्वपूर्ण रही है। वे कभी रानी लक्ष्मीबाई के रूप में वीरता का प्रतीक बनी, तो कभी मदर टेरेसा बनकर सेवा और करुणा का उदाहरण पेश किया, परंतु पारंपरिक सामाजिक ढांचे में महिलाओं को घरेलू जिम्मेदारियों तक सीमित कर दिया गया। आज के बदलते समय में जब महिलाएं शिक्षा, विज्ञान, राजनीति, प्रबंधन और सेवा जैसे सभी क्षेत्रों में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं, तब उनकी सामाजिक स्थिति पर चर्चा करना अत्यंत आवश्यक है। विशेष रूप से कामकाजी महिलाओं की सामाजिक स्थिति में काफी परिवर्तन आया है, किंतु अभी भी कई चुनौतियां हैं जो उनके पूर्ण सामाजिक सम्मान और समरसता में बाधा उत्पन्न करती हैं। आज की महिला शिक्षित है, आत्मनिर्भर है और प्रत्येक क्षेत्र में अपनी उपस्थिति दर्ज करा रही है, चाहे वह प्रशासनिक सेवा हो, तकनीकी क्षेत्र हो, राजनीति, रक्षा, शिक्षा या स्वास्थ्य। हर क्षेत्र में महिलाएं नेतृत्व कर रही हैं, परंतु समाज का दृष्टिकोण अभी भी पूर्णतः परिवर्तनशील नहीं हुआ है। कहीं कहीं अब भी महिलाओं की सफलता को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है, उनकी मेहनत को पुरुषों से कमतर आंका जाता है। विगत कुछ दशकों में महिलाओं की सामाजिक स्थिति में कई सकारात्मक परिवर्तन देखने को मिले हैं, जिसमें शिक्षा का प्रसार, अब लड़कियों को शिक्षा का अधिकार और अवसर दोनों मिल रहे हैं, उच्च शिक्षा में भी उनकी भागीदारी बढ़ रही है, सरकारी योजनाएं जैसे मुद्रा योजना, महिला उद्यमी योजना आदि ने उन्हें आर्थिक रूप से सशक्त बनाया है। प्रौद्योगिकी का सहारा इसका एक अच्छा उदाहरण है। इंटरनेट और डिजिटल प्लेटफॉर्मों के जरिए महिलाएं घर बैठे भी काम कर पा रही हैं, जिस

से पारिवारिक और सामाजिक जिम्मेदारियों में संतुलन बनाना संभव हुआ है। कामकाजी महिलाओं की सामाजिक स्थिति में बीते वर्षों में निसंदेह सुधार हुआ है, लेकिन अभी भी संपूर्ण और संतुलित नहीं कही जा सकती। लैंगिक समानता और सामाजिक समावेश की दिशा में निरंतर प्रयास की आवश्यकता है। समाज, सरकार, परिवार और स्वयं महिलाओं को मिलकर एक ऐसी संरचना विकसित करनी चाहिए जिसमें महिलाएं आत्मनिर्भर बने, सम्मान पूर्वक जीवन जिए और अपने सपनों को बिना किसी भेदभाव के साकार कर सकें। जब एक महिला सशक्त होती है, तब न केवल उसका परिवार बल्कि पूरा समाज और राष्ट्र सशक्त होता है। हालांकि कामकाजी महिलाओं की संख्या और भूमिका में वृद्धि हुई है, फिर भी उनकी सामाजिक स्थिति पूरी तरह सुदृढ़ नहीं कही जा सकती। उन्हें अनेक सामाजिक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। घर और कार्यस्थल दोनों की जिम्मेदारी निभाने के चलते उन्हें अत्यधिक मानसिक और शारीरिक तनाव झेलना पड़ता है। सुरक्षा की चिंता। कार्यस्थल से लेकर घर लौटने तक उनकी सुरक्षा एक बड़ी चुनौती है, विशेषकर महानगरों में। सामाजिक पूर्वाग्रह। अब भी बहुत से लोग मानते हैं कि महिलाएं केवल घर चलाने के लिए ही बनी हैं। यदि कोई महिला नौकरी करती है तो उसे घर की उपेक्षा करने वाली समझा जाता है। सामाजिक चुनौतियों के साथ ही महिलाओं को कई पारिवारिक चुनौतियों का भी सामना करना पड़ता है। कामकाजी महिलाओं की सबसे बड़ी चुनौती पारिवारिक जिम्मेदारियां होती हैं। परंपरागत भारतीय समाज में घरेलू कार्यों को अब भी महिलाओं की जिम्मेदारी माना जाता है। कार्यस्थल पर दिन भर काम करने के बाद जब महिला घर लौटती है तो उससे यह अपेक्षा की जाती है कि वह रसोई, बच्चों की पढ़ाई, बुजुर्गों की देखभाल आदि भी पूरे मन से करे। इस दोहरी जिम्मेदारी के कारण उनका मानसिक और शारीरिक तनाव बढ़ता है। कामकाजी महिलाओं को सशक्त बनाने में परिवार और समाज की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि परिवार सहयोग करे, बराबरी का व्यवहार करे और घर की जिम्मेदारियों में परिवार के सभी सदस्य भागीदारी करें तो महिलाओं के लिए कार्य करना आसान हो जाता है। समाज में भी यह मानसिकता विकसित करनी होगी कि महिलाएं केवल सहायक नहीं बल्कि समान सहभागी हैं। स्कूलों और कॉलेजों में बच्चों को लिंग समता और महिला सम्मान के विषय में शिक्षित किया जाना चाहिए ताकि आगे चलकर वे समावेशी समाज का निर्माण कर सकें। कामकाजी महिलाओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती होती है घर और काम के बीच में संतुलन बनाए रखना। घर के प्रबंधन के साथ साथ कार्यस्थल की अपेक्षाओं को भी उन्हें पूर्ण करना होता है। इस दोहरी जिम्मेदारी के कारण उनमें मानसिक थकावट, चिड़चिड़ापन और चिंता जैसी समस्याएं पैदा हो जाती हैं। दोहरी भूमिका निभाने के कारण कामकाजी महिलाएं कई बार मानसिक तनाव और भावनात्मक संघर्ष का शिकार हो जाती हैं। उन्हें अपनी पहचान बनाए रखने की चिंता होती है। बच्चों की देखभाल, ससुराल और मायके की अपेक्षाएं, पति के साथ संबंधों का संतुलन आदि अनेक ऐसे पहलू हैं जो मानसिक दबाव पैदा करते हैं कि वह अपने बच्चों या परिवार को पर्याप्त समय नहीं दे पा रही हैं। महिलाओं के भावनात्मक संघर्ष का एक प्रमुख कारण यह भी है कि समाज आज भी उनसे परंपरागत आदर्श पत्नी, बहू और माँ की भूमिका निभाने की अपेक्षा करता है। अगर वे करियर पर अधिक ध्यान देती हैं तो समाज उन्हें संवेदनहीन या स्वार्थी कहने लगता है। यह सामाजिक दबाव उनके भीतर अपराध बोध और संकोच की भावना भर देता है। इसके साथ ही कई बार कामकाजी महिलाओं को स्वयं के लिए समय नहीं मिल पाता जिससे उनकी व्यक्तिगत इच्छाएं, रुचियां और भावनाएं पीछे छूट जाती हैं। कामकाजी महिलाओं के समक्ष मातृत्व और करियर के बीच में संतुलन बनाए रखना मुख्य चुनौती के रूप में आता है। आज की नारी शिक्षित, जागरूक और आत्मनिर्भर है। वह घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ कार्य क्षेत्र में भी बराबर की भागीदारी निभा रही है। लेकिन जब एक महिला माँ बनती है तो उसके जीवन में एक नया अध्याय शुरू होता है। मातृत्व सुंदर अनुभूति है, परंतु यह कामकाजी महिलाओं के लिए कई बार चुनौतीपूर्ण हो जाता है। उन्हें अपने करियर और मातृत्व के बीच संतुलन स्थापित करने के लिए कई तरह के मानसिक, शारीरिक और सामाजिक संघर्षों से गुजरना पड़ता है। मातृत्व के साथ आने वाली जिम्मेदारियां जैसे शिशु की देखभाल, नींद की कमी, स्तनपान, टीकाकरण, बाल पालन आदि कामकाजी महिलाओं के लिए अतिरिक्त दबाव का कारण बनती है। वहीं दूसरी ओर उनका कार्यस्थल की अपेक्षाओं और प्रतिस्पर्धा में भी पीछे नहीं रहना एक आवश्यकता बन जाती है। इस दोहरी जिम्मेदारी के कारण महिला के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। कामकाजी महिलाओं को अक्सर यह निर्णय लेना पड़ता है कि वे मातृत्व अवकाश के बाद कब और कैसे काम पर लौटें। कुछ महिलाओं को करियर में रुकावट आती है तो कुछ पर कमजोर
गैर प्रतिबद्ध कमी होने का

ठप्पा लगाया जाता है। यह स्थिति कई बार उनके आत्मसम्मान को ठेस पहुंचाती है। इसके अलावा समाज की अपेक्षाएं और पारिवारिक दबाव भी कामकाजी माताओं के लिए मानसिक तनाव का कारण बनते हैं। उनसे यह आशा की जाती है कि वे घर के कामकाज, बच्चों की परवरिश और नौकरी सभी में 100% प्रदर्शन करें। यदि वे किसी एक क्षेत्र में चूक जाएं, तो उन्हें कठोर आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि अनेक महिलाएं इन चुनौतियों के बावजूद अपनी भूमिका में संतुलन स्थापित करने में सफल होती हैं। वे समय प्रबंधन, योजना और तकनीक के सहारे अपनी दिनचर्या को इस प्रकार व्यवस्थित करती हैं कि न तो परिवार की अनदेखी होती है और न ही करियर, जिससे उन्हें संतुलन बनाने में मदद मिलती है। परिवार की भूमिका भी इस संतुलन को बनाने में महत्वपूर्ण है, क्योंकि मातृत्व और करियर दोनों ही महिलाओं के जीवन के महत्वपूर्ण पक्ष हैं। यह आवश्यक है कि समाज, परिवार और संस्थाएं मिलकर एक ऐसा माहौल बनाएं जहां महिलाएं बिना अपराध बोध के दोनों भूमिकाएं निभा सकें। संतुलन तभी संभव है जब महिला के प्रति सम्मान, समझ और सहयोग की भावना हो। तभी एक माँ और एक प्रोफेशनल दोनों रूपों में वह पूरी क्षमता से समाज की सेवा कर सकेगी। कामकाजी महिलाओं को कई सामाजिक आलोचनाओं का भी सामना करना पड़ता है। आज भारतीय समाज का एक बड़ा वर्ग कामकाजी महिलाओं को पारंपरिक दृष्टिकोण से देखता है और उनके प्रति अनेक पूर्वाग्रह और आलोचनाएं रखता है। यह सामाजिक दृष्टिकोण महिलाओं के मानसिक और भावनात्मक स्वास्थ्य पर नकारात्मक प्रभाव डालता है। समाज में अब भी यह धारणा मौजूद है कि महिलाओं का प्रमुख कार्य घर और परिवार की देखभाल करना है। जब कोई महिला घर से बाहर जाकर नौकरी करती है, तो उसे परिवार के प्रति लापरवाह या घर संभालने में असमर्थ समझा जाता है। समाज की एक आम प्रवृत्ति बन गई है। इसके अलावा कुछ लोग यह भी मानते हैं कि कामकाजी महिलाएं अपने बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं कर पाती, जिससे अगली पीढ़ी पर बुरा असर पड़ता है। इस प्रकार की सोच न केवल महिला के आत्मबल को कमजोर बनाती है, बल्कि उसकी सफलता और योगदान को भी नकारती है। हालांकि समाज का एक वर्ग अब धीरे धीरे बदलाव की ओर अग्रसर है। शहरी क्षेत्रों में महिलाओं के कामकाजी होने को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है, लेकिन ग्रामीण और पारंपरिक सोच वाले क्षेत्रों में अब भी कामकाजी महिलाओं को कई तरह की सामाजिक आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। समाधान के रूप में समाज को यह समझना है कि कामकाजी महिलाएं केवल अपनी नहीं, बल्कि पूरे परिवार और समाज के आर्थिक, सामाजिक और मानसिक विकास में योगदान दे रही हैं। उन्हें सहयोग, समानता और सम्मान का अधिकार मिलना चाहिए। सामाजिक दृष्टिकोण में बदलाव लाना केवल महिलाओं की नहीं, बल्कि पूरे परिवार और पूरे समाज की जिम्मेदारी है। जब समाज आलोचना की जगह सहयोग और सराहना करेगा, तब एक नई पीढ़ी आत्मनिर्भर और समर्पित महिलाओं की जन्मदात्री बन सकेगी। कामकाजी महिलाओं के लिए सरकार के द्वारा कई प्रयास किए गए हैं। भारत में कामकाजी महिलाओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है और उनके कार्यस्थलों पर समानता, सुरक्षा एवं सम्मान की आवश्यकता को समझते हुए सरकार एवं न्याय व्यवस्था ने अनेक कानूनी एवं सरकारी प्रयास किए हैं। इन प्रयासों का उद्देश्य महिलाओं को कार्य क्षेत्र में समान अधिकार, यौन उत्पीड़न से सुरक्षा, मातृत्व लाभ तथा अवसर की समानता प्रदान करना है। इसके अंतर्गत सबसे प्रथम जो बिंदु है, समान वेतन कानून। यह कानून पुरुषों और महिलाओं को समान कार्य के लिए समान वेतन सुनिश्चित करता है। इसमें नियोक्ता किसी भी महिला कर्मचारी के साथ वेतन या भर्ती में भेदभाव नहीं कर सकते। यह कानून कार्य क्षेत्र में लिंग भेद की प्रवृत्ति को रोकने का प्रयास करता है। मातृत्व लाभ अधिनियम। यह अधिनियम महिलाओं को गर्भावस्था के दौरान अवकाश और वित्तीय सहायता देने का प्रावधान करता है। संशोधित अधिनियम 2017 के अनुसार महिलाएं 26 सप्ताह तक का सवेतन मातृत्व अवकाश प्राप्त कर सकती हैं। इसके साथ ही कार्यस्थल पर क्रैच सुविधा भी अनिवार्य की गई है। कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न रोकथाम अधिनियम 2013। यह कानून कार्यस्थल पर महिलाओं के साथ किसी भी प्रकार के यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए बनाया गया है। इसके अंतर्गत प्रत्येक संस्थान में आंतरिक शिकायत समिति का गठन आवश्यक है, जो ऐसी शिकायतों की निष्पक्ष जाँच करती है। फैक्ट्री अधिनियम 1948 एवं शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट। ये अधिनियम महिलाओं के कार्यस्थल पर स्वास्थ्य, सुरक्षा, शौचालय, विश्राम और कार्य समय से संबंधित सुविधाएं सुनिश्चित करते हैं। रात्रि पाली में काम के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, जिससे महिला श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित हो। कार्यस्थल पर महिला हेल्पलाइन, जिससे कार्यस्थल पर उत्पीड़न या असुविधा की स्थिति में तत्काल

0: सहायता मिल सके। इन कानूनी और सरकारी प्रयासों ने कामकाजी महिलाओं के लिए एक सुरक्षित और समान कार्य वातावरण बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। अंत में हम यह कह सकते हैं कि कामकाजी महिलाओं की यात्रा संघर्षों से भरी रही है, परंतु उनकी उपलब्धियां किसी प्रेरणा से कम नहीं है। उन्होंने यह साबित कर दिया है कि वे न केवल एक आदर्श पत्नी, माँ, बहू और बेटी हैं, बल्कि एक सशक्त नेतृत्वकर्ता, विचारक और कर्मशील नागरिक भी हैं। आज आवश्यकता है कि हम उन्हें केवल सहानुभूति नहीं अपितु समानता का अधिकार दें, तभी सच्चे अर्थों में नारी शक्ति का सम्मान और भारत के सर्वांगीण विकास का मार्ग प्रशस्त होगा। वे आज के युवा वर्ग के लिए प्रेरणा है और यह संदेश देती हैं कि लगन, मेहनत और आत्मविश्वास के साथ कोई भी स्त्री जीवन के किसी भी क्षेत्र में सफल हो सकती है। जरूरत है तो केवल एक सकारात्मक दृष्टिकोण, जागरूकता, आत्मविश्वास, समान अवसर और सामाजिक समर्थन की। आइए हम सब मिलकर एक ऐसे समाज की रचना करें जहां महिलाओं को न केवल काम करने की स्वतंत्रता हो, बल्कि उन्हें उनकी सफलता के लिए समान रूप से सराहा जाए। उनकी सफल कहानियां आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनती रहेंगी।
1: हिंदी वार्ता के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे कामकाजी महिलाओं की चुनौतियां और सफलताएं विषय पर वार्ता। इस विषय पर जानकारी दे रही थी गरिमा डिमरे। आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से हम बोल रहे हैं FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर। 8:15 होने को है। अब लीजिए प्रस्तुत है सुगम संगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आज आप आनंद लेंगे सुप्रसिद्ध गायक मुकेश के गीतों का।

मुकेश के गाए गीतों का अभी आप आनंद ले रहे थे सुगम संगीत के अंतर्गत FM 100.5 MHz पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 8:30 हो चुके हैं। अब श्रोताओं, समय हो चला है गीतों की महफिल का। अब आइए आपको ले चलते हैं कुछ प्यारे प्यारे गीतों की ओर। ये पहला गीत आप तक पहुंच रहा है लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज़ों में, आस का पंछी फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं हसरत जयपुरी ने और इसे संगीतबद्ध किया है शंकर जयकिशन ने।

0: श्रोताओं, अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.

0: जी हाँ, बाजी फिल्म से गीता दत्त की आवाज़ में अभी आपने ये प्यारा सा गीत सुना। गीत के बोल लिखे थे साहिर ने और इसे संगीतबद्ध किया था SG बर्मन ने। अब श्रोताओं, अगले गीत की ओर बढ़ने से पहले आइए लेते हैं एक छोटा सा अंतराल।
1: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
0: अब लीजिए सुनिए लता मंगेशकर और मोहम्मद रफी की आवाजों में हाथ की सफाई फिल्म से ये अगला गीत। शब्द रचना गुलशन बावड़ा की है और इसे संगीत पथ किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का ये सफर अब यहीं संपन्न होता है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। 8:45 होने को है, अब आप हमारे दिल्ली केंद्र से समाचार सुनेंगे, कृपया प्रतीक्षा करें।
1: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं लवली निगम। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में पद्म पुरस्कार 2026 प्रदान किए। प्रसिद्ध फिल्म अभिनेता दिवंगत धर्मेंद्र और जानी मानी वायलिन वादक डॉ एन राजम को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पहलों का शुभारंभ किया। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार प्रणाली में तकनीकी खराबी के बाद फंसे पर्यटकों को निकालने के लिए संयुक्त अभियान जारी। सेना और SDRF की टीमों ने अब तक 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाला। भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका के विदेश मंत्री कल नई दिल्ली में होने वाली क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेंगे। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिन के दौरान हरियाणा, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू का अनुमान व्यक्त किया। और एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म विभूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया।
2: पद्म विभूषण श्री धर्मेंद्र सिंह देओल मरणोपरांत कला फिल्म अभिनय, उनकी पत्नी श्रीमती हेमा मालिनी।
1: वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया।
2: पद्म विभूषण
3: डॉक्टर श्रीमती एन राजम कला वायलिन।
1: पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। एक रिपोर्ट।
4: पद्म भूषण श्रेणी में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को सार्वजनिक क्षेत्र में उनके योगदान के लिए ये पुरस्कार प्रदान किया गया है, जबकि भाजपा नेता विजय कुमार मल्होत्रा को मरणोपरांत लोकसभा श्रेणी में ये पुरस्कार दिया गया। इसके अलावा शतपथधारी डॉक्टर आर गणेश को कला क्षेत्र में और विज्ञापन जगत के दिग्गज पीयूष पांडे को मरणोपरांत ये पुरस्कार मिला। उद्योगपति उदय सुरेश कुमार कोटक को पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। वहीं डॉक्टर कलीपति रामास्वामी स्वामी को चिकित्सा क्षेत्र में उनके योगदान के लिए यह पुरस्कार मिला। पद्मश्री से सम्मानित होने वालों में भारत

0: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर बुल्लर, तागाराम भिल, रतिलाल मोहनलाल, बोरी सागर, सौम्य ब्रह्मदेव और कुमार बोस शामिल हैं। वर्ष 2026 के लिए राष्ट्रपति ने 131 पद्म पुरस्कार को मंजूरी दी है। शेष पद्म पुरस्कार विजेताओं को बाद में आयोजित होने वाले समारोह के दूसरे चरण में पुरस्कार प्रदान किए जाएंगे। आनंद कुमार के साथ शिवांग मिश्रा, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा है कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ के कार्यक्रम में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के अतिरिक्त उर्वरक की कीमतें अप्रत्याशित स्तर पर पहुंच गई हैं।
2: हाई इंटरनेशनल क्रूड प्राइसेस एंड
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
2: Fertilizer and foreign exchange.
1: सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। पश्चिम एशिया संघर्ष पर आज नई दिल्ली में आयोजित अंतर मंत्रालय संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने ये बात कही
4: कि रिफाइनरी प्रोडक्शन LPG का इंक्रीज किया गया है, इट इज टचिंग अराउंड 50,000 टन पर डे नाउ। LPG घरेलू कुकिंग गैस की सप्लाई के लिए लगभग पिछले चार दिनों में 1.72 करोड़ सिलेंडर्स की डिलीवरी की गई है और 95% जो डिलीवरी हुई है वो डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड के साथ की गई है। 5 किलो के सिलेंडर पिछले चार दिनों में लगभग 1,96,000 सेल हुए हैं।
1: विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने कहा कि खाड़ी क्षेत्र में स्थित भारतीय दूतावास प्रवासी भारतीयों के कुशल मंगल के लिए लगातार उनके संपर्क में है।
5: Several key agreements were signed.
6: यात्रा के दौरान कई महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। इससे भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूती मिली है, विशेष रूप से LPG की आपूर्ति सुनिश्चित करने और देश के पेट्रोलियम भंडार को सुदृढ़ करने में इन समझौतों की अहम भूमिका रहेगी। इसके साथ ही निवेश से जुड़े समझौते भी किए गए। इससे संयुक्त अरब अमीरात और भारत के बीच विभिन्न क्षेत्रों में नए अवसरों का प्रभाव बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त रक्षा क्षेत्र में रणनीतिक साझेदारी के लिए एक रूपरेखा समझौते पर भी हस्ताक्षर किए गए।
5: Which is again given a boost to our defense partnership with UAE.
1: उर्वरक विभाग के अपर सचिव अपर्णा शर्मा ने बताया कि देश में उर्वरकों का भंडार संतोषजनक बना हुआ है।
7: अगेंस्ट द असेसमेंट ऑफ
3: इस वर्ष के लिए निर्धारित 390.54 लाख मीट्रिक टन के अनुमानित लक्ष्य की तुलना में वर्तमान में उपलब्ध भंडार 200.12 लाख मीट्रिक टन है। ये कुल अनुमान का 51% से अधिक है, जो सामान्यतः रहने वाले 33% के स्तर से काफी अधिक माना जा रहा है। देश में अब तक लगभग 95 लाख मीट्रिक टन का घरेलू उत्पादन हुआ है, जबकि करीब 22.60 लाख मीट्रिक टन आयातित सामग्री भी देश में पहुंच चुकी है।
7: Like metric tons of imports have reached our shores.
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 1454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।

जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।

0: हर उड़ान से पहले एक फैसला होता है, हर फैसले से पहले एक सवाल, क्या मैं तैयार हूँ? अगर जवाब है हाँ, तो भारतीय वायुसेना आपका इंतजार कर रही है। AFCAT 1 of 2026 के आवेदन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक खुले हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें careerairforce.gov.in या afcat.edcil.co.in पर।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में केबल कार में तकनीकी खराबी के बाद सेना और राज्य आपदा मोचन बल बचाव अभियान चला रहे हैं। बेस स्टेशन और पहले चरण के बीच सेवाएं आज अचानक बंद हो गईं और कई पर्यटक फंस गए। सेना ने कहा कि बुटापथरी बटालियन के जवानों ने मार्ग पर 3 सहायता दल तैनात किए हैं और दुर्गम इलाके में बचाव कार्य में सहायता के लिए एक ऑल टेरेन व्हीकल भी लगाया है। सेना के अनुसार तकनीकी खराबी के कारण कुल 65 केबल कारें प्रभावित हुई हैं। बचाव दल अब तक 46 केबल कारों में 286 पर्यटकों को सुरक्षित निकाल चुके हैं। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्यटकों को निकालने के लिए बचाव दल जुटे हुए हैं। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया है। श्री प्रधान ने देश भर के सभी मुख्यमंत्रियों, उपराज्यपालों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newzoneair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन एआईआर ऐप पर भी उपलब्ध है।

0: जनगणना के पहले चरण में हाउस लिस्टिंग और हाउसिंग सेंसस यानी आपके मकान की गणना होगी। आइए आपकी साझेदारी से इसे सफल बनाएं और विकसित भारत 2047 की ओर एक और कदम बढ़ाएं।
1: ये आकाशवाणी है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड के विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशी मित्सो मोटेगी और अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। बैठक में प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में क्वाड सहयोग को आगे बढ़ाने, हिंद प्रशांत क्षेत्र में हाल के घटनाक्रमों और आपसी चिंता के अन्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। एक रिपोर्ट।
2: इस साल क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक ऐसे समय में हो रही है जब विश्व भर में अनिश्चितता का माहौल है और पश्चिम एशिया में संकट गहराया हुआ है। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और जापान को मिलाकर बना क्वाड एक अहम समूह के तौर पर उभरा है, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंद प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। इस समूह के मौजूदा अध्यक्ष के तौर पर भारत इस बैठक की मेजबानी कर रहा है। क्वाड देशों ने दुनिया की भलाई के लिए मिलकर काम करने और एक ऐसे खुले, स्वतंत्र और समावेशी हिंद प्रशांत क्षेत्र का समर्थन करने का संकल्प लिया है जो समृद्ध और मजबूत हो। क्वाड ने एक सकारात्मक और व्यवहारिक एजेंडा अपनाया है जिसमें स्वास्थ्य, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन तथा उभरती टेक्नोलॉजी और क्षेत्रीय देशों के समुद्री क्षेत्र से जुड़ी जागरूकता को बढ़ाने जैसे समकालीन मुद्दों तथा चुनौतियों पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री मोटेगी तोशिमित्सु से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। जापान के विदेश मंत्री क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक में भाग लेने के लिए 2 दिन की भारत यात्रा पर आज नई दिल्ली पहुंचे। ईरान के शीर्ष वार्ताकार अमेरिका के साथ महत्वपूर्ण वार्ता के लिए दोहा पहुंच गए हैं। संभावित समझौते को लेकर आशा का माहौल है। वार्ता होर्मुज जल डमरू मध्य ईरान के उच्च संवर्धित यूरेनियम भंडार सहित प्रमुख मुद्दों पर केंद्रित होगी। एक रिपोर्ट।
3: ईरान और अमेरिका के बीच जारी कूटनीतिक वार्ता में एक नया मोड़ सामने आया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार ईरान ने कतर में लगभग 12 अरब डॉलर की अपनी जब्त संपत्तियों को तत्काल जारी करने की मांग की है। माना जा रहा है कि यही मुद्दा दोनों देशों के बीच संभावित समझौते की दिशा में सबसे बड़ी बाधा बना हुआ है। ईरान के विदेश मंत्रालय ने कहा है कि मध्यस्थों के जरिए हुई वार्ताओं में कई मुद्दों पर प्रगति हुई है, लेकिन अब भी दोनों पक्षों के बीच कई बड़े मतभेद बने हुए हैं। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप बातचीत से जुड़ी नई शर्तें सामने रखी हैं। हालांकि राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि वार्ता सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रही है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से शशांक कुमार।
1: वियतनाम में एशियाई अंडर 23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।

कुमार सानू और अलका याग्निक की आवाज़ों में अभी आपने तड़ी पार फिल्म से ये प्यारा सा गीत सुना। गीत के बोल लिखे थे समीर ने और इसे संगीतबद्ध किया था नदीम शरवन ने। अब आइए आपको सुनवाते हैं गीत फिल्म से, ये अगला गीत मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर के युगल स्वर में, शब्द रचना आनंद बख्शी की है और इसे सुरों में पिरोया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से इस समय आप आनंद ले रहे हैं फिल्मी नगमों का, फिल्म संगीत के अंतर्गत। अब आइए श्रोताओं, आगे बढ़ते हैं और आपको सुनवाते हैं ये प्यारा सा गीत हसीना मान जाएगी फिल्म से, मोहम्मद रफ़ी और लता मंगेशकर की आवाज़ों में। गीत के बोल लिखे हैं अख्तर रोमानी ने और इसे संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
1: आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से इस समय आप आनंद ले रहे हैं फिल्मी नगमों का फिल्म संगीत में। अब आइए श्रोताओं, सुनवाते हैं आपको किशोर कुमार की आवाज में ये अगला बेहतरीन नगमा कलाकार फिल्म से। गीत के बोल लिखे हैं इंदिवर ने और इसे संगीतबद्ध किया है कल्याण जी आनंद जी ने।

0: श्रोताओं, फिल्मी गीतों के सफर को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन एक छोटे से अंतराल के बाद।
1: Don't compromise and give up on your dream of joining Uttarakhand's highest ranked university. Avail 25% domicile scholarship and join UPES. Applications close on 30th May. To start your UPES journey, apply now at upes.ac.in.
0: अब आइए आपको सुनवाते हैं फिल्म संगीत में ये अंतिम गीत कश्मीर की कली फिल्म से। आवाज़ें हैं मोहम्मद रफ़ी और आशा भोसले की। गीत के बोल लिखे हैं SH बिहारी ने और इसे संगीतबद्ध किया है OP नैयर ने।

श्रोताओं, इसी गीत के साथ फिल्मी गीतों का ये सफर अब यही संपन्न होता है। FM 100.5 मेगाहर्ट्ज़ पर आकाशवाणी का ये देहरादून केंद्र है। हमारे स्टूडियो की घड़ी में रात्रि के 10 बज चुके हैं। अब लीजिए, प्रस्तुत है आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश।

रात की ये चादर जब सितारों से सज जाती है, रात की ये चादर जब सितारों से सज जाती है और चांद अपनी चांदनी बिखेर जाता है, तो इसी चांदनी में हमारी महफिल का आगाज होता है। जी हाँ, ये रात भी श्रोताओं हर दिन की तरह खास है, क्योंकि हम आपके लिए लेकर आए हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश। और आज के अंक में मैं आपके साथ जुड़ी हूँ आपकी रेडियो दोस्त पीयूष स्वधा। उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगे और सुन रहे होंगे आकाशवाणी का देहरादून केंद्र। अब आइए श्रोताओं, कार्यक्रम का आगाज करते हैं इस प्यारे से गीत के साथ, जो कि है परदेस फिल्म से।

जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम में पहला मैसेज हम शामिल करते हैं। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है कस्बा उगेती बदायूं से हैं देवेंद्र कुमार गुप्ता, धीरज कुमार, पंकज कुमार, प्रिंस कुमार और इनके साथ है प्रशांत गुप्ता, कार्तिक गुप्ता और निर्भय गुप्ता। ये मैसेज हम तक पहुंचाने वाले श्रोता हैं जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश से आप हैं मुकेश कश्यप, शीतल कश्यप, सोनू, सुरेश, राजपाल, पंकज, काजल, सीमा, मानवी, तन्वी, लक्ष्य, सोनी, मोहिनी, ऋतिक और बलवीर सिंह। अगले हमारे फरमाइश करता है आजाद नगर लक्सर हरिद्वार से ये मैसेज कर रहे हैं आप हैं ताज मोहम्मद अंसारी, गुलाम साबिर राही और मेहराज जहां। अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है कस्बा अग्रवाल मंडी टटरी बागपत उत्तर प्रदेश से हैं आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काम आसिफ, सादिक अली खान और सारिक अली खान। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है काजल यादव ने रुद्रापुरा से। अगले फरमाइश करता है सिहोरा जिला बिजनौर से आप हैं आसिफ चौधरी, बेगम रिहाना, अरफात अदीब और इनके साथ हैं कादिर चौधरी। अगले फरमाइश करता है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं वीना मस्कीन, तुलसी मस्कीन, आशीष राजा, चैतन्य मस्कीन, मेघा मस्कीन, चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना और रचिता खुराना। ये हमारे श्रोता हैं मनाली हिमाचल से हमें मैसेज भेज रहे हैं आप हैं हर्ष, विनय, विनीत, रोजस और चंडीगढ़ सिटी से हैं शेफाली, शेफी, डेविस, बिमला और सतीश अनेजा। अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से आप हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और इनके साथ हैं आलिया अंसारी। अगले पसंद करता है भोगुटा तेलंगाना से हैं

छोटा पूरन, पार्वती, बाला प्रसाद, सूरज बाली और भानुराज। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है कस्बा बराड़ा, जिला अंबाला, हरियाणा से हैं रवि कुमार राहुल, रंजीत कौर, जयप्रकाश राहुल, प्रियंका मन्नत गुरकीरत और गुरशबद सिंह राहुल। गांव नथाना पंजाब से ये मैसेज हम तक आ पहुंचा है। आप है हरजिंदर छिंदा, जसवीर जस्सी, सीता और गीता। अगले हमारे पसंद करता है राजनगर कांति निकेतन, कुशवेश्वर कांति गुप्ता, दादा ठाकुर रुद्र गुप्ता, रिद्धि सिद्धि गुप्ता और कोमल गुप्ता हमें मैसेज भेज रहे हैं ऐशबाग लखनऊ से। और इनके साथ है रानी मुकेश गुप्ता, रश्मि गुप्ता, नीलम गुप्ता, शारदा गुप्ता, कुसुम और रूपा एलाहाबादी। ये मैसेज हम तक आ पहुंचा है मुक्कम पोस्ट फूल चिचलोली तालुका पंडरपुर से। आप हैं जाकिर मुलाणी, सुमेया मुलाणी, सुबान मुलाणी, समीर मुलाणी, सलमा मुलाणी, मुमताज मुलाणी, दिलशाद मुलाणी, नसीर मुलाणी और पूरा मुलाणी परिवार इस समय ये कार्यक्रम सुन रहा है। ये हमारे श्रोता हैं संबलपुर काकेर से हैं फागुराम यादव, ज्योति यादव और ओजस्वी यादव। अगला मैसेज हम तक पहुंचाया है पांडर कवड़ा से हैं अनिल बुराड़े, उषा बुराड़े, अनुश्री बुराड़े, धनश्री बुराड़े और बलहार शाह से इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं सूरज, प्राची और एकलव्य। पद्मा टाकीज नेपानगर मध्य प्रदेश के ये हमारे श्रोता हैं। आप हैं सुदर्शन शाह, पल्लवी शाह, प्रकर शाह, कुशल शाह, नीति शाह, सुरभि शाह, अश्विनी शाह, मंगलाबेन शाह और इनके साथ हैं राजेंद्र जी शाह। अब आइए श्रोताओं, आप सबकी पसंद पर सुनते हैं अलका याग्निक और उदित नारायण की आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत।

जी हाँ श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश का, और आप सभी की फरमाइशें जो हैं कार्यक्रम में लगातार हम तक पहुंच रही है। तो चलिए बिना देर करे पढ़ते हैं अगला मैसेज। ये मैसेज हम तक पहुंचा है झारखंड सुपाही साहे गांव से हैं। आप हैं देवेंद्र तांती, राकेश तांती, प्रकाश, निशा, कुमारी रेशमा, कुमारी दीपाली, कुमारी और इनके साथ हैं देवन जी। अगले गीत के लिए फरमाइश हम तक आई है जिला मुरादाबाद गांव दुल्हापुर उत्तर प्रदेश के। ये हमारे श्रोता हैं, आप हैं मोहम्मद फरमान, मोहम्मद सलमान, मोहम्मद इरफान, मोहम्मद इसरार और नरगिस खातून। कस्बा अग्रवाल मंडी टटरी बागपत उत्तर प्रदेश से हैं आसिफ अली खान, मोमिना नाज, मुस्काम आसिफ, सादिक अली खान और सारिक अली खान। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है गांव कुम्हारहेड़ा सहारनपुर से हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, अक्सा, नाजिया आफिया, इब्राहिम सद्दाम और अदीब हसन। अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है बिहारी कॉलोनी दिल्ली से हैं तुलसी मस्कीन, चैतन्या मस्कीन, रचिता मस्कीन और इनके साथ हैं आशीष राजा। चंडीगढ़ से हैं राहुल खुराना, रचिता खुराना और रिधान खुराना। ये मैसेज पहुंचाने वाले हमारे श्रोता हैं गांव जाखो राजस्थान से हैं शंभुदयाल खटक, विमला देवी, अमरजीत खटक, सुंदरलाल खटक, योगेश कुमार खटक, दीपक कुमार खटक और कुमारी पूजा खटक। अगले पसंद करता हैं जलालाबाद वेस्ट से सुरेश गगनेजा, पूनम गगनेजा, विशाल, प्रिया दिशानी और निमित आहूजा। ये मैसेज हम तक पहुंचा है मेन रोड तेलहारा से हैं प्रकाश पोहरकार, नर्मदा पोहरकार और कुमारी सुजाता पोहरकार। इस समय कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं मारहरा दरवाजा एटा से नबी हसन अब्बासी, शहनाज अब्बासी, नवेद हसन अब्बासी, रसीद वारसी, सुहेल हसन अब्बासी, अनम अब्बासी, यसफ अब्बासी, सिकंदरा राव से हैं मुबीन अब्बासी और इशरत परवीन। अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है नरगोड़ा छत्तीसगढ़ के। हमारे श्रोता हैं, आप हैं महाराज कीर्तनपुरी गोस्वामी, लक्ष्मीन देवी गोस्वामी, जोगेशपुरी, ट्विंकल, टिम्पल, मीनाक्षी, निशा, तुलसी और दीशा गोस्वामी। अगले हमारे श्रोता हैं रमेश सिंह यादव और हंसा देवी।

हमें मैसेज कर रहे हैं उत्तराखंड कीचा से। ये हमारे श्रोता हैं वारसी क्लब सिंधोली मीरगंज बरेली से। आप हैं जिशान वारसी, इमरान शेख, रेहान शेख और करूला मुरादाबाद से हैं आयुब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। अगले गीत को सुनना चाहा है, ये है राजेश्वरी सागर, अधिकारी निवास मिलन विहार जीएमएस रोड देहरादून से इस समय कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। अगले हमारे श्रोता हैं जमशेदपुर झारखंड सुपाही साही गांव से हैं निशा कुमारी, रेशमा कुमारी, देवेन, ये हमें मैसेज भेज रहे हैं। गंज डुडवारा से हैं शमसूल कमर राही, शाहीन फातिमा, अदनान खान, फैजान खान, अनु खान, उस्मान अंसारी और कलीम अंसारी। अगले गीत को सुनना चाहा है गांव हीरावाली फाजिलका पंजाब से हैं सुभाष गोदारा, बिमला गोदारा, इंदु पार्वती, हिमांशु गोदारा इस समय कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। गांव हाड़ीखेड़ा जिला सिरसा हरियाणा के हमारे श्रोता हैं राधेश्याम शर्मा, इंदिरा शर्मा और इनके साथ हैं सार्थक शर्मा। व्हाइटफील्ड बेंगलुरु से हमें मैसेज कर रहे हैं भारत भूषण, अंजू श्रीवास्तव, दिव्येंदु भूषण, संस्कृति और पौरुष। अगले फरमाइश करता है यूपी से हैं जलालाबाद शामली, आप हैं राशिद मंसूरी, अयान मंसूरी और जिशान मंसूरी। अगले अनुरोध करता है नई बस्ती गंज डुडवारा से हैं मोहम्मद यासीन हाशमी, नजमा बेगम हाशमी, मोहम्मद तौसीफ हाशमी, मोहम्मद तैमूर हाशमी और इनके साथ हैं मोहम्मद कलीम अंसारी। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है संदीप मक्कर, ज्योति मक्कर, मन्नत मक्कर, भारत मक्कर, कमल सहानी, पिंगावाला चौक गुरैया जालंधर से हमें मैसेज भेज रहे हैं। अब चलिए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत लता मंगेशकर और भूपेंद्र की आवाज़ों में।

श्रोताओं, कार्यक्रम चल रहा है आपकी फरमाइश का और आज के इस अंक में मैं आपके साथ जुड़ी हूँ, आपकी रेडियो दोस्त पीयूष स्वधा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं और आप सभी के नामों को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। ये मैसेज हम तक पहुँचाया है आदर्श नगर मलोट पंजाब से, ये हमारे श्रोता हैं। आप हैं राज शर्मा, मीना शर्मा, योगेश शर्मा, मैडी शर्मा, सौरव शर्मा, सयाना शर्मा और निवान शर्मा। अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है कोटवा नारायणपुर बाबा पट्टी बलिया से, हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय, हैप्पी राय, दुबिहा नेवादा जिला गाजीपुर से हैं, प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय और इनके साथ है प्रांजल राय। वारली नबई से हैं नवाब खान, इशरत जहां, मास्टर अजहर खान और अजीम खान। अगले पसंद करता है वड़िंगखेड़ा पंजाब से है मीटू टोमस, पिंकी लवली और आरती अरोड़ा। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है भोपालगढ़ राजस्थान के हमारे श्रोता हैं। आप हैं धर्मेंद्र छिंपा, कपिल छिंपा, ईशान छिंपा और पूजा परिहार। अगले हमारे पसंद करता है करूला मुरादाबाद से हैं अयूब खान, इरम गुड़िया और शोएब खान। सिधोली बरेली से इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं जिशान वारसी। ये मैसेज हम तक

पहुंचाने वाले श्रोता हैं जैन मंदिर वाली गली कुरावली से राशिद हुसैन अंसारी, नसरीन अंसारी, नौरीन अंसारी, आसना अंसारी और मोहम्मद कैफ अंसारी। ये मैसेज हम तक पहुंच चुका है मनकारा मंदिर बीडीए कॉलोनी करगीना बरेली उत्तर प्रदेश से। आप हैं बेनी सिंह सागर, पनीलाल सागर, आशीष कुमार सागर, अमर सिंह, हितेश सागर उर्फ बंटी, राजेश कुमार वर्मा, रूबी भारती, एकता भारती, दिव्या भारती, रचना भारती, श्रीमती ओमवती भारती। इनके साथ है खनक, शगुन, सारांश, आयांश, अदिति वर्मा, शिवांश और पृथव सिंह। अगले गीत के लिए फरमाइश हम तक आ पहुंची है नर्मदा पार्क मंगलावेड़ा से। आप हैं मास्टर अलीम पटेल, मुजाहिद पटेल और नदीम पटेल। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है, ये हमारे श्रोता हैं देहरादून चक्राता रोड ईदगाह मोहल्ला निवासी। आप हैं सुनील चावला, मीना चावला, साक्षी चावला, दिनेश चोपड़ा, तन्नू, नानू, राधिका रानी गुप्ता, अंशुल गुप्ता, स्मिता रानी गुप्ता, दीक्षा चावला, कृतिका, कविता आहूजा, आर एस आहूजा, रजत आहूजा, सोनिया आहूजा, तनिषा आहूजा सीमा द्वार से इस समय कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। ये हमारे श्रोता हैं गणेशपुर गंज डुडवारा एटा उत्तर प्रदेश के, हमारे श्रोता हैं। आप हैं एम फारूक शेख, शेख शमा परवीन, साइमा फारूक, सरफराज शेख, गुलफराज शेख और इनके साथ हैं बेबी मुस्कान। अगले हमारे पसंदकर्ता हैं किशन वांजानी, नीलम, स्वाति, संगीता, सरिता, सुमन महाजन और कीशु, रेलवे कॉलोनी आनंद विहार दिल्ली से इस समय कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। दुबीहा निवादा जिला गाजीपुर से हैं प्रतीक राय, श्रीमती रोशनी राय, प्रांजल राय, कोटवा, नारायणपुर, बाबा पट्टी, बलिया के ये हमारे श्रोता हैं। आप हैं ओम प्रकाश राय, श्रीमती उषा राय, अमित कुमार राय और हैप्पी राय। अगले पसंद करता हैं गांव फ्रांसी हिसार से राजकुमार डुड्डी, प्रमोद कुमार डुड्डी, पुष्पिंदर कुमार डुड्डी इस समय कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। कोठा गोदाम डिस्ट्रिक्ट तेलंगाना से हैं राजेश खन्ना, अनीता राज खन्ना, सुनीता राज खन्ना, भानु राज खन्ना, अमित खन्ना और इनके साथ हैं इनकी अम्मी। नाज पैलेस अजमेर शरीफ से इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं सैयद आलम हाशमी, गुलनाज सलमा, असद अरहाम और इनके साथ हैं मोहम्मद आलम हाशमी। ये मैसेज हम तक आ पहुंचा है एक रिश्ता रेडियो श्रोता संघ अभय सिल्लोड जिला छत्रपति संभाजी नगर औरंगाबाद महाराष्ट्र से ये मैसेज हम तक पहुंचा है। आप हैं अनिल कुमार घोड़ के, वैशाली अनिल, प्रजक्ता घोड़ के, वैष्णवी घोड़ के, गायत्री घोड़ के और इनके साथ है यज्ञेश घोड़ के। इस समय कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। कासगंज से ये सलाम अर्ज कबूल करे लिखते हैं कासगंज से, लेकिन इन्होंने अपना जो नाम है वो नहीं बताया है। जी हाँ, ये इनका नाम है परी महल कासगंज से ही लिख रहे हैं। आबाद खान, नबील खान, आरफा खान, इल्मा खान, एम असलम सैफी, मास्टर जाहिद अली, मीरा सराय बदायूं से है आफरीन खान और इनके साथ है जमीर खान। ये मैसेज हम तक आ पहुंचा है। जिला रंगारेड़ी एक लव्य नगर से हैं। आप हैं वेंकटेश, श्यामला, आयांश, सुना, ये सब इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं और इनके साथ हैं अभिजोत, सुषमा, साई प्रकाश। अगला मैसेज हम तक आ पहुंचा है झज्जर हरियाणा के, ये हमारे श्रोता हैं बिट्टू भाटिया और रीटा भाटिया। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है अनारकली बाजार जागराव से सुनील पाठक, कमल पाठक, दीपिका मल्होत्रा, गव्या मल्होत्रा, भाई सुचा सिंह पाठक, विनोद पुरी और इनके साथ हैं जयपाल यादव। अगली फरमाइश करता है मोहल्ला बारादरी महमूद खान रामपुर से भाई रफत साहब, सईद भाई मंसूरी, राशिद भाई मंसूरी, असद भाई बहन, फिरोजा मुस्कान, अफसर अली और नगमा नाज मंसूरी। अगले गीत के लिए फरमाइश हम तक आ पहुंची है अस्तुपुरा जिला मऊ से हैं मजहर अली अंसारी, रजिया बेगम अंसारी, मोहम्मद सादिक अंसारी, बहादुरगंज गाजीपुर से हैं आजाद अली अनवर, रिजवाना परवीन और अब्दुल्ला आजाद।
अगले पसंद करता है गांव गाला जिला अम्बाला हरियाणा के हमारे श्रोता हैं। आप हैं राजेंद्र कुमार, मलकित कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण। शेरकोट बिजनौर से हैं नदीमा की, कलिम्बा की, अलिम्बा की, अजीम्बा की, अदीम्बा की।

अब्दुल गनी, अलमीर मोहम्मद जैन, जन्नत विष्णु अग्रवाल इस समय ये कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। अब आइए श्रोताओं, अब सुनते हैं लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी के स्वर में ये अगला गीत।

श्रोताओं, इन दिनों गर्मी का जो प्रकोप है बढ़ता ही जा रहा है, तो ऐसे में आप कुछ आवश्यक सावधानियां जरूर बरतें। समय का ध्यान रखकर ही घर से बाहर निकले, जो कि सुबह 11 से 4 बजे तक आप निकल सकते हैं। यदि आवश्यकता ना हो तो बाहर भी ना जाए। यदि बाहर जाना भी है तो सिर पर टोपी गमछा ढक कर जाएं, सूती ढीले हल्के रंग के कपड़े पहने, धूप का चश्मा भी आप यूज़ कर सकते हैं जो हमारी आँखों को यूवी किरणों से बचाता है। समय समय पर पानी भी पीते रहें। आप नींबू पानी, नारियल पानी, छाछ, खीरा, ककड़ी आदि का सेवन कर सकते हैं। बच्चे और बुजुर्गों का खास ध्यान रखें, क्योंकि सतर्कता ही सुरक्षा है। अब बहरहाल बढ़ते हैं कार्यक्रम की ओर और आप सभी के मैसेजेस को कार्यक्रम में शामिल करते हैं। लाल कुर्ती रुड़की कैंट से ये मैसेज हम तक आ पहुंचा है। आप हैं राजेश वर्मा, मंजू वर्मा, निशांत वर्मा, कौशिकी वर्मा, दीपाली वर्मा, सचिन युवान और इनके साथ हैं आर के राजा। अगले पसंदकर्ता हैं नया पारा भिराई से बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर और पप्पू ठाकुर। ये मैसेज जो हम तक आ पहुंचा है, इनके साथ हैं रमेश कुमार नेताम और अनित राम नेताम। अगले पसंदकर्ता हैं नंद किशोर घटे, संगीता घटे, साक्षी घटे, जयश्री महित्रे, अंजलि करवा, बाला साहब करवा, रामनिवास अग्रवाल, धनंजय ट्विंकल, पीबी कुलथे हमें मैसेज कर रहे हैं बीड शहर महाराष्ट्र से। ये हमारे श्रोता हैं जिला संभल पंजूसराय से, इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं। आप हैं इस्लाम सिद्दीकी, इकराम सिद्दीकी, अहताम सिद्दीकी, इस समय कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं। चौटाला हरियाणा से दारा पंडित संजय शर्मा और प्रियंका शर्मा हमें मैसेज भेज रहे हैं। अगले पसंदकर्ता हैं गांव डाकघर निमनाबाद जिला जिंद हरियाणा से हमें मैसेज कर रहे हैं जसबीर सिंह अरोड़ा, जतेंद्र कौर, गुरप्रीत सिंह, लवप्रीत कौर और इनके साथ हैं करमजीत कौर। ये मैसेज पहुंचाने वाले हमारे श्रोता हैं वार्ड नंबर 1 पुफाली जिला यवतमाल से, आप हैं जयराम सिंगणकर, निशांत कुमार सिंगणकर और इनके साथ हैं अर्पिता। मथुरा से इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं सबा अंसारी, शकील अंसारी, बुशरा अंसारी, हीना अंसारी, गुलिस्ता रानी, नंदिनी और अंजलि। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है बठिंडा रोड मंडी डबवाली से राजेंद्र नारंग, अंजू नारंग, मोहित नारंग, लक्की नारंग, तारिया नारंग। अगले हमारे पसंदकर्ता हैं छत्तीसगढ़ पलारी से प्रकाश वर्मा, प्रिंस वर्मा, निखिल वर्मा और यशस्वी वर्मा। ये मैसेज हम तक आ पहुंचा है गांव ग्वाला जिला अंबाला हरियाणा से, आप हैं राजेंद्र कुमार, मलकित कौर, आरती रानी, राघव हरमन और परिवार के अन्य सभी सदस्यगण। हिंदुस्तान रेडियो मित्र बने बुजुर्ग पलेरा टिकमड़ मध्य प्रदेश से इस समय कार्यक्रम सुन रहे हैं बजेंद्र विश्वकर्मा, तारा देवी विश्वकर्मा, सोनाली विश्वकर्मा, सोनम विश्वकर्मा और आशीष विश्वकर्मा। अगले पसंदकर्ता हैं गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से मास्टर खिल्लू परवेज, बेगम इमराना नाज, नवाज शेख, दानिश शेख, अमन आफरीदी और राधा नामदेव। ये मैसेज हम तक पहुंचाया है राजेश्वरी सागर ने, अधिकारी निवास मिलन विहार GMS रोड देहरादून से। अगले पसंदकर्ता हैं मोहल्ला हलवाइया शेरकोट जिला बिजनौर से, आप हैं मोहम्मद वक्कार फरीदी, मोहम्मद इकबाल फरीदी, सितारा बेगम, नसरीन परवीन, रोजी परवीन, बिट्टू भैया, साजिता रानी और हीना कौसर। अगले पसंदकर्ता हैं इस समय जो कार्यक्रम सुन रहे हैं छत्तीसगढ़ चूड़ी लाइन मुंगेली से, आप हैं मोहम्मद इसहाक, खतीजा बेगम, मोहम्मद अशफाक, आफरीन कौसर, मोहम्मद अल्ताफ और नीलोफर फातिमा। ये मैसेज हम तक आ पहुंचा है शांति निवास लेह गांव रेलवे जिला अमरावती महाराष्ट्र से, आप हैं दीपक कुरहाड़े, वंदना कुरहाड़े, आशीष कुरहाड़े और कुमारी कल्पना कुरहाड़े। अब चलिए श्रोताओं सुनते हैं कार्यक्रम में ये अगला गीत किशोर कुमार और लता मंगेशकर की आवाजों में।

आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से इस समय आप आनंद ले रहे हैं आपका पसंदीदा कार्यक्रम आपकी फरमाइश का। और आज मैं आपके साथ जुड़ी हूँ आपकी रेडियो दोस्त पीयूष स्वधा। अब चलिए श्रोताओं बढ़ते हैं आगे और आप सभी के मैसेजेस को शामिल करते हैं।

0: मैसेज हम तक पहुंचाया है गांव कुम्हार हेड़ा सहारनपुर से। आप हैं सैयद मसरूर, शाइना हसन, इब्राहिम और सद्दाम। इन्होंने बेहद ही खूबसूरत लाइनें लिखी हैं। चाहने से कोई चीज़ अपनी नहीं होती, हर मुस्कुराहट खुशी नहीं होती, अरमान तो बहुत होते हैं मगर कभी वक्त हो तो कभी किस्मत अच्छी नहीं होती। जी, बेहद खूबसूरत पंक्ति। अब अगला मैसेज जो है, मुबारकपुर ऊंची तकिया आजमगढ़ उत्तर प्रदेश से हम तक पहुंचा है। आप हैं दिलशाद हुसैन, फातिमा सोगरा, वक्कार हैदर और हसीना दिलशाद। अगले पसंद करता है खालापार मुजफ्फरनगर से। आप हैं साहिना परवीन, फातिमा खुशबू, आयजा मोहम्मद अदीब और मसरूर अली। अगले पसंद करता है गांव लोहेडी जिला महोबा बुंदेलखंड यूपी से। हमें मैसेज भेज रहे हैं जयपाल यादव, इंदरपाल यादव, राघवेंद्र, अरविंद, रागिनी रिया, रेनू देवांशी, आराधना, रोनिका यादव और चंद्रेश गोहर। इनके साथ है सुनील पाठक। अगले पसंद करता है जनकपुरी सहारनपुर से जॉन डिकेस्ट्रो, रोजी डिकेस्ट्रो, पर्ल डिकेस्ट्रो और विलीज डिकेस्ट्रो। ये मैसेज हम तक आ पहुंचा है गांव भिराई नया पारा जिला बालोद से। ये हमारे श्रोता हैं। आप हैं बसंत कुमार ठाकुर, सरोज ठाकुर, ईश्वर राज ठाकुर, कुमारी प्राची ठाकुर, रमेश कुमार नेताम और इनके साथ है अनित राम नेताम। अगले पसंद करता है शेरवानी स्कूल गंज डुडवारा उत्तर प्रदेश से। आप हैं आफताब अंसारी, रियाज अंसारी, मोहम्मद कैफ, अनवर मास्टर, लुबना अंसारी और इनके साथ हैं आलिया अंसारी। अब आइए श्रोताओं, बढ़ते हैं अगले गीत की ओर जो कि है लता मंगेशकर के स्वर में।
1: ले लिया तो इसको मत बेकरार करना, इसका कोई नहीं है इस दिल को प्यार करना।
2: अय्या

श्रोताओं, वक्त का पता ही नहीं चला कि कब हम कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव तक आ पहुंचे। उम्मीद है आप सभी के नामों को कार्यक्रम में शामिल किया गया होगा। अब बहरहाल अंतिम गीत के लिए ये जो मैसेज हम तक आ पहुंचा है, ये मैसेज हम तक पहुंचा है कस्बा जिलकाना जिला सहारनपुर से। आप हैं ज़रीफ़ अंसारी, नैम अंसारी, डॉक्टर आमिर मुन्ना नज़्म। और अगले जो पसंद करता है, गंज डुडवारा से हैं मोहम्मद कलीम अंसारी, जहीरा बेगम अंसारी, मोहम्मद अयान अंसारी, मोहम्मद उस्मान अंसारी, मोहम्मद यासीन हाशमी और इनके साथ हैं शमसूल कमर राही। अंतिम गीत के लिए फरमाइश हम तक भेजी है गांव जसवाड़ी जिला खंडवा मध्य प्रदेश से। आप हैं दुर्गेश नागनपुरे, राधेश्याम नागनपुरे, वंदना भावना बिंदु, गोलू कुसुम्बाई, बाबू दिव्यांश और इनके साथ हैं सूरज कुमार ठाक से। अब आइए श्रोताओं, सुनते हैं कार्यक्रम का ये अंतिम गीत मुकेश की आवाज़ में।

0: से समाचार सुनेंगे।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं जया भारती। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित नागरिक अलंकरण समारोह में वर्ष 2026 के लिए 66 जानी मानी हस्तियों को पद्म पुरस्कारों से सम्मानित किया। इनमें से 2 हस्तियों को पद्म भूषण, 6 को पद्म भूषण और 58 को पद्मश्री से सम्मानित किया गया। जाने माने फिल्म अभिनेता धर्मेंद्र सिंह देओल को कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए मरणोपरांत पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। अभिनेता की पत्नी और लोकसभा सदस्य हेमा मालिनी ने ये पुरस्कार ग्रहण किया। वायलिन वादक डॉक्टर एन राजम को भी पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। पद्म विभूषण असाधारण और विशिष्ट सेवा के लिए, पद्म भूषण विशिष्ट सेवा के लिए और पद्मश्री किसी भी क्षेत्र में विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। गृहमंत्री अमित शाह ने आज पद्म पुरस्कार से सम्मानित सभी विशिष्ट हस्तियों को बधाई दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पद्म पुरस्कारों को समाज के जमीनी स्तर पर बदलाव लाने वाले लोगों को सम्मानित करने का माध्यम बनाया है। गृहमंत्री अगले कुछ दिनों में भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों का दौरा करेंगे और सुरक्षा से संबंधित बैठकें करेंगे। सूत्रों ने बताया कि वे आज देर रात राजस्थान के बीकानेर पहुंचेंगे और कल सुबह बीएसएफ की सांचो सीमा चौकी का दौरा करेंगे, जहां वे सुरक्षा बलों के साथ बातचीत कर उनके लिए कल्याणकारी योजनाओं का उद्घाटन करेंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने पश्चिम एशिया संघर्ष के चलते ईंधन, उर्वरक और विदेशी मुद्रा पर विशेष ध्यान देने का आह्वान किया। श्रीमती सीतारामन ने आज मुंबई में लघु उद्योग विकास बैंक की 37वीं वर्षगांठ समारोह में सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम क्षेत्र के पारिस्थितिकी तंत्र को मजबूत करने और ग्रामीण उद्योगों के आधुनिकीकरण में तेजी लाने के उद्देश्य से कई पोर्टल तथा पहलों का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि देश की अर्थव्यवस्था लचीली बनी हुई है।
2: High international crude prices and
3: अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें लगातार ऊंचे स्तर पर बनी हुई हैं। इसके साथ ही उर्वरकों की कीमतों में अप्रत्याशित वृद्धि और सोने के बढ़ते दाम भी बाहरी आर्थिक मोर्चे पर नई चुनौतियां पैदा कर रहे हैं। इन तीनों क्षेत्रों, ईंधन, उर्वरक और सोना के लिए भुगतान विदेशी मुद्रा में करना पड़ता है, इसलिए हमें इन तीन महत्वपूर्ण पहलुओं यानी 3F, फ्यूल, फर्टिलाइजर और फॉरेन एक्सचेंज के व्यापक आर्थिक संदर्भ को अच्छी तरह समझना होगा।
2: Fertilizer and foreign exchange.
1: इस बीच नई दिल्ली में अंतर मंत्रालयी संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि सरकार देश में पेट्रोलियम उत्पादों की सुचारू आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखकर 21 जून को होने वाली नीट यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के सुरक्षित, सुचारू और सफल संचालन का आह्वान किया। श्री प्रधान ने देशभर के सभी उपराज्यपालों, मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों से इस संबंध में सहयोग मांगा है। विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर ने आज नई दिल्ली में जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी से बातचीत की। डॉ. जयशंकर ने कहा कि भारत और जापान के बीच एक विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी है। श्री जयशंकर कल नई दिल्ली में क्वाड विदेश मंत्रियों की बैठक की मेजबानी करेंगे। बैठक में ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री पेनी वोंग, जापान के विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोतेगी और अमरीका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो शामिल होंगे। जम्मू कश्मीर के गुलमर्ग में गोंडोला रोपवे में तकनीकी खराबी आने के बाद फंसे सभी पर्यटकों को सुरक्षित बचा लिया गया है। अधिकारियों के अनुसार रोपवे की 65 केबिनों में 300 से अधिक पर्यटक फंस गए थे। नेपाल में मौसम विभाग ने तराई क्षेत्रों में हीट वेव का अलर्ट जारी किया है। पश्चिमी तराई और लुम्बिनी क्षेत्र में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच गया है। नेपालगंज में भेरी अस्पताल में गर्मी से जुड़ी बीमारियों से करीब 100 मरीज रोज पहुंच रहे हैं। इस बीच भारतीय मौसम विभाग ने मध्य प्रदेश, उड़ीसा, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश और विदर्भ में कल तक के लिए लू का रेड अलर्ट जारी किया है। अगले 2 से 3 दिन हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, पंजाब, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में भीषण लू चलने की आशंका है। वियतनाम के दानांग में एशियाई अंडर-23 कुश्ती चैंपियनशिप में आज भारतीय पहलवान विक्की और अक्षय तानाजी धीरे ने पुरुष फ्री स्टाइल वर्ग में स्वर्ण पदक जीता।